रस तस आप सलाहना ए कर्म मेरे करतार। बाबा बोलिए पत होए उत्तम से डर उत्तम कहिए नीच कर्म बहरोए रहाओ। रस सोयना रस रूपा कामण।

कै कट नाम निवास जित बोले पत पाये सो बोलिया परवान फिक्का बोल विगुचना सुन मूरख मन अजान जो तिस पावे से पले होर के कहन वखान तिन मत तिन पत तिन तन पल्ले।

तामन खीवा जानिए जा मैली पाए था नाव नीर चंगी आईया सत परमल तनवास ता मुख हो वे उजला लख दासी इक दात दुख तिसे पै

कमान सांग तेग बंद गुण तात वाजा ने जा पक्षियों प्रगट कर्म तेरा मेरी जात। बाबा होर चढ़ना खुशी खुआर जित चढ़े तन पीड़िए मन में चले विकार रहाओ। कर मंदर खुशी नाम की नदर तेरी परवार हुक्म सोई तुद पावसी होर आखन बहुत अपार। नानक सच्चा पाप सा पूछ ना करे विचार। बाबा होर

नाउ सदाए आपना होवे सिद्ध सुमार, जा पत लेखे ना पवे सबा पूज खुआर। जिनको सतगुर था पिया तिन मिलत ना सके कोए, ऊना अंदर नाम निदान है नामो प्रगट होए। नाउ पूजिए नाउ मनिए अखंड सदा सच सोए।

ताप मिले पुन ताप कहो सुस्ती सुप्त समाय, लाल गुलाल गह बरा सच्चा रंग चढ़ाओ, सच मिले संतोषिया हर जप एक।

पार, गुरुमुख मन समझाइए आत्म राम विचार, त्रिविद कर्म कमाइए आस अंदेशा होए, क्यों गुरु बिन त्रिकुटी छुटसी सहज मिले सुख होए, निज कर मैल पछानिए नदर करे मल तोए।

आओ आप सुजान ना कुल्लई सच्चा वद किरसान पहला तरती साध के सच नाम दे दान नौनिद उपजे नाम एक कर्म पवे निशान गुर को जान ना जानई क्या तिस चज अचार अंधले नाम विसारिया मनमुख अंध गुबार आवन जान न चुकई मर जन्मे होए खुआर चंदन मोल अनाया कुंगू मांग संदूर चोआ चंदन बहु कना पाना नाल कपूर जे तन कंत न भावई ता सब अडंबर कूर सब रस पोगन बाद है सब सिगार विकार जब लग शब्द ना पेजी है क्यों सो है गुरुद्वार नानक तन

कर्म मिले सच पाए, गुरमुख सदा निरोध सच्ची कार सच मिले, गुरमत पल्ले पाए, सो नर जमे ना मरे ना आवे ना जाए, नानक दर प्रधान सो दर्दे पैदा जाए। श्री राग महला पहला, तन जल बल माटी।

निर्मल मैला ना पिया शब्द रते पत होए। इह मन साथ संतोखिया नदर करे तिस माहे

लख सियाणप जे करी लक्ष्यो प्रीत मिलाप बिन संगत साधना प्रापिया बिन नावे दुख संताप।

हर गुर सरवर शेव तू पावे दरगे मान राव। राम नाम जप दिन सरात गुरमुख हर तन जान। सब सुख हर रस भोगणे संत सभा मिल ज्ञान। नित एनस हर प्रभ

तिसरे रोग वड्डा मन माहे क्यों दर्गे पत पाये जा हर नवसे मन माहे गुर मिलिये सुख पाये अगन मरे गुण माहे मन रे एनिस हर गुण सहा।

गुरुमुख कूड न पावै, सच रत्ते सच भाए, साकत सच न भावै, कूड़े कूड़ी पाए, सच रत्ते गुर मेले है, सच्चे सच समाए, मन में मानक लाल नाम, रतन पदार्थ हीर, सच वखर तन नाम है, कट कट गहर गंभीर, नानक गुरमुख पाई है, दया करे हर हीर, श्री राग महला पहला, परने पाए ना विजवे, जे पवे दिशंतर देश, अंतर मैल ना

मिल सत्संगत हर पाए, गुरमुख हर निविलाए, आप गया सुख पाया, मिल सलल सलल समाए, जिन हर हर नाम न चेत्यो।

जिस सतगुरु पुरख ना पेट्यो सो पाव जल पचै पचाए। ए मानक जियो निर्मोल है क्यों कौडी बदले जाए। जिना सतगुरु रस

तैसी वस्त विसाई है जैसी निभ नाल अग्गे साओ सुजान है लैसी वस्त समाल पाई रे राम कहो चित लाए हर जस वखर

ते जात ना पत है खोट ना सी जिस कोए खोटे खोट कमावना आए गया पत खोए नानक मन समझाई है गुर कै शब्द सलाह राम नाम रंग रखिया।

आओ ऐब तन चुकड़ो ए मन मिलद को कमल की सार नहीं मूल पाई। पौर उस्ताद नित पाथिया बोले क्यों बूझे जान है बुझाई। आखन सुनना पौन की बानी ए मन रत्ता माया खसम की नजर दिले पसंदे जिनी कर एक तियाया। ती कर रखे पन कर साथी नाव शैतान मत कट जाए नानक आखे।

आपे नेड़े दूर आपे ही आपे मंझ में आनो आपे वे सुने आपे ही कुदरत करे जहानो ज्योतिष पावे नानका हुक्म सोई।

आए। सतगुर मन कामना तीर्थ है, उसनो दे बुझाए। मन चिंदिया वर पावना, जो इच्छा सो फल पाए। नाउ पिलाई।

सो गुरुमुख नाम समाए। पर पर पंगत जोत की वाद करें विचार, मत बुद्ध पवी न बुझई अंतर लोभ विकार। लक्ष 84 परम दे परम परम होए खुआर।

आप गवाए, शब्द मिले ताहर मिले, सेवा पवे सब खाए, पारस परसे पारस होए, ज्योति ज्योत समाए, जिनको पूरब लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए। मन पुखा पुखा मत करें,

गुरमुख नाम से आया विच्चों आप गवाए ओए अंदरों बारों निर्मले सच्चे सच समाए नानक आए से परवान है जिन गुरमति हर प्याए श्री राग महला तीजा हर पगता हर तन रास है गुर पूछ करें वापार।

नानक गुरमुख हर पाया सदा हर नाम समाए। श्री राग महला तीजा सुख सागर हर नाम है गुरमुख पाया जाए। अंदिन नाम त्याये सहजे नाम समाए। अंदर रचे हर सच सिउ रसना हर गुण गाए। पाई रे जग दुखिया दूजे भाए गुर सरनाई सुख लहे। अंदिन नाम त्याये रहाओ साचे मैल ना ला गई मन निर्मल हर त्याये। गुरमुख शब्द पछाणिए हर अमृत नाम समाए। गुर ज्ञान प्रचंड बलाया अज्ञान अंधेरा जाए। मन मुख मैले मल परे हों मैं तृष्णा विकार। बिन शब्द मैल ना उतरे मर जम्मे हुए खुआर। तातुर बाजी पलस रहे ना उर्वार न पार। गुरमुख जप तप संजमे हर के नाम प्यार। गुरमुख सदा त्याय एक नाम करता।

मन मुख मोहे व्यापिया बैराग उदासी न होए, शब्द न चीने सदा दुख हर दरगे पथ होए। हों मैं गुरमुख खोये नाम रते सुख होए, मेरे मन एनस पूर रही नित आशा सतगुर सेव मोह।

ऐनस भगत करे दिन राती, होमे मार निचिंद वड्डे भाग सत्संगत पाई, हर पाया सहज आनंद सो साधु बैरागी सोई, हिरदय नाम वसाए अंतर लाग ना तामस मूले, विच्चों आप गवाए, नाम निधान सतगुरु।

लाग। नानक शब्द रते हर नाम रंगाए, बिन पै के ही लाग। श्री राग महला तीजा, कर ही सौदा पाई है, अंतर सब वस होए। खिन खिन नाम समालिए, गुरमुख पावे कोए। नाम निधान अकुट है, वड पाग प्राप्त होए। मेरे मन ताज निंदा हो मैं अंकार, हर जियो सदा ते आए तू।

गुर प्रसादी मन वसे हौ मैं दूर करे एहो मन तावत ता रहे जा आपे नदर करे। पाई रे गुरमुखर नाम से आए नाम निधान सद मन वसे महली पावे थाओ रहाओ मन मुख मन तन अंध है तिसनो ठौर न ठाओ बहु जोनी पौंदा फिरे ज्यों सुन्ये कर काओ गुरमति कट

कर कृपा में लायन हर नाम वस्या मन आए पोते जिन कै पुन है तिन सत्संगत में लाए पाई रे गुरमत साच रहाओ साचो साच कमावना।

भाई लाहा हर हर नाम मिले सहजे नाम समाए बिन गुर महल ना पाईए नाम ना प्राप्त होए ऐसा सतगुरु लोड़ लहो जिद्दू पाईए सच सोए असुर संगारे सुख वसे जो तिस पावे सो होए जेहा सतगुर कर जानिया ते हो जेहा सुख होए एहो सहसा मूले नाही पाओ लाए जन कोए नानक एक

अपना धर्म गवावे बूझे नाही अंधन दुख विहानी मन मुख अंध न चेत ही डूब मोए बिन पानी मन रे सदा पजो हर सरनाई गुर का शब्द अंतर वसे ता हर विसर न जाई रहाओ इहो शरीर माया का पुतला विच हो मैं दुष्टि पाई आवन जाना जम्मन मरना मन मुख पत गवाई सतगुर सेव सदा सुख पाया ज्योति ज्योत मिलाई सतगुर की सेवा अत सुखाली जो इच्छे सो फल पाए जत सत तप पवित्र शरीरा हर हर मन वसाए सदा आनंद रहे दिन राती मिल प्रीतम सुख पाए जो सतगुर की

पाई रे, गुर बिन भगत ना होए, बिन गुर भगत ना पाई है, जे लोचे सब कोए रहाओ, लख चौरासी फेर पया कामन दूजे भाए, बिन गुर नींद ना आवई।

सतगुर सेव सुख पाया विचों गया गुमान दर सेवन संत जन खड़े पायन गुणी निदान मेरे मन गुरमुख त्याए हर सोए गुर का शब्द मन वसै मन तन निर्मल होए रहाओ कर कृपा कर आया आपे मिलिया आए गुर शब्दी सालाई है रंगे सह सुवाए सच्चे सच समाया मिल रहे न विछड़ जाए जो किस करना सो कर रहा अवर न करना जाए चिरी विछुन्ने मेलियन सतगुर पन्ने पाए आपे कार कराए सी।

अंत ना पाया जाए, कतनी बदनी ना पाये, हों मैं विच्चों जाए, सतगुर मिले है, सद पैर चे, आप बसे मन आए, पाई रे गुरमुख बूझे कोए, बिन बूझे कर्म कमावणे।

देवन वाले के हाथ दात है, गुरु द्वारे पाए, जेहा की तुन तेहा हुआ, जेहे कर्म कमाए, जात सत संजम नाम है, विण नाम है निर्मल।

काया सादै उर तप करे विच्चों हो में न जाए। अध्यात्म कर्म जे करे नाम न कभी पाए। गुर कै सबद जीवत मरे हर नाम वसै मन आए। सुन मन मेरे पाच सतगुर सरना गुर प्रसादी छुट्टी है। बिख पवजल सबद गुर तरना रहाओ त्रै गुण सभा तात है। दूजा पाओ विकार पंडित पढ़े बंधन मोह बाधा ने बूझे बिखिया प्यार। सतगुर मिले तृप्ति छूटे चौथे पद मुक्त द्वार। गुर ते मार्ग पा

गुर पाये हर नामो दे दृढ़ाए, बिन गुर किने न पायो बिरथा जन्म गवाए, मन मुख कर्म कमावणे दरगे मिले सजाए, मन रे दूजा पाव चुकाए, अंतर तेरे हर वसे गुर सेवा सुख पाए, रहाओ सच बाणी सच शब्द है जा सच तरे प्यार, हर का नाम मन वसे होमे क्रोध निवार।

आप गवाए, हम दिन भगत करे सदा साचे की लिवलाए, नाम पदार्थ मन वस्या नानक सह समाए, श्री राग महला तीजा। जिन्नी पुरखी सतगुर ना सेवियो से दुखिए जुग चार, कर होंदा पुरख ना पछाणिया अभिमान मुठे अंकार, सतगुरु क्या फिटकिया मंग थके संसार, सच्चा शब्द ना सेवियो सब काज सवारनहार, मन मेरे सदा

विचार। सतगुर सेव मन निर्मला हौ मैं तज विकार, आप छोड़ जीवत मरे गुर के शब्द विचार। तंदा तावत रह गए लागा साच प्यार, सच रते मुख उजले तित साचे दरबार। सतगुर पुरख ना मन्यो शब्द ना लगो प्यार, इस्नान दान जेता करें दूजे पाए खुआर। हर जियो अपनी कृपा करें ता लागे नाम प्यार, नानक नाम संभाल।

आया त्यो जाए। मनमुख जन्म बिठा गया क्या मो देसी जाए। सब किछ आपे आप है हौ मैं विच कहन ना जाए। गुर कै शब्द पछाणिए दुख हौ मैं विचों गवाए। सतगुर सेवन अपना हौ तिन कै लागो पाए। नानक दर सच्चै सच्यार है हौ तिन बलिहारे जाओ। श्री राग महला तीजा। जे वेला वक्त विचारिए ता कित वेला भगत होए। अंदर नामे रतिया सच्चे सच्ची सोए। एक तिल प्यारा विसरे भगत किने ही होए। मन तन शीतल सात्स्यों सास न बिरथा कोए। मेरे मन हर का नाम दियाए साची भगत तासी है। जा हर वसे मन आए रहाओ सहजे खेती राही है। सच नाम बीज

विनकर्मा पाया न जाए, पूरे पाग सत्संगत लहे, सतगुर पेटे जिस आए, अंधन नामे रत्या दुख बिखिया विच्चों जाए, नानक शब्द मिलावड़ा नामे नाम समाए। श्री राग महला तीजा। अपना पाओ तिन पायोन जिन गुरु का शब्द विचार, सत्संगति सदा मिल रहे सच्चे के गुणसार, दुबदा मैल चुकायन हर राखिया उरदार, सच्ची बाणी सच मन सच्चे नाल प्यार, मन मेरे हों मैं मैल पर नाल, हर निर्मल सदा सोना शब्द सवारण हार, रहाओ सच्चे शब्द मन मोहया प्रभ आपे लय मिलाए, अंधन नामे रत्या ज्योति ज्योत समाए, ज्योति हूँ प्रभ जापदा बिन सतगुरु बूझ न पाए, जिनको पूरब लिखिया सतगुरु पेटिया तिन आए, विण नावे सब डुमणी दूजे पाए खुआए।

सच्ची बाणी हर पाये हर स्यो रह समाए रहाओ। सच्ची भगती मन लाल थिया रत्ता सह सुवाए गुर शब्दी मन मोहया कहना कछू न जाए। जेवा रत्ती शब्द सच्चे अमृत पीवे रस गुण गाए गुरमुख एहो रंग पाये जिसनो कृपा करे र जाए। संसा एहो संसार है सुतिया रहन विहाए एक अपने पाने कड लयन आपे ले उन मिलाए। आपे ही आप मन वस्या माया मोह चुकाए आप वडाई दितियन गुरमुख दे बुझाए। सबना का दाता एक है पुलिया ले समझाए एक आपे आप खुआयन दूजे छड़ियन लाए। गुरमती हर पाई

सके मन मुख बूझ न पाए जिस सतगुरु मेले सो मिले सच्चे शब्द समाए मित्र कनेरे कर थकी मेरा दुख काटे कोए मिल प्रीतम दुख कटिया शब्द मिलावा होए सच खटना सच रास है सच्चे सच्ची सोए सच मिले से ना बिछड़े नानक गुरमुख होए।

बिना सुखे सुख विहाय। ज्ञान विहूणी पिर मुतिया पिरम न पाया जाए, अज्ञान मति अंधेर है बिन पिर देखे पुख ना जाए।

या सुहागणी जिनको नदर करे खसम पछाणे आपना तन मन आगे दे कारवार पाया आपना हों में दूर करे नानक सो बावंतिया सुहागणी अंदिन भगत करे श्री राग महला तीजा एक पिर रावे आपना हों

किस दूर, जिन पिर संगे जानिया पिर रावे सदा हदूर। मुंदे तू चल गुर कह पाए, अंदिन रावे पिर अपना सहजे सच समाए। रहाओ शब्द रतिया सुहागणी सच्चे शब्द सिंगार, हर वर पायन कर अपने गुर कह हेत प्यार। सेज सुहावी हर रंग रवे भगत परे भंडार, सो प्रभ प्रीतम मन वसे जे सबसे दे आधार। फिर सालाहन अपना तिनके हो सद बलिहारे।

गुरुमति नाम सलाही है, दूजा अवर न कोए रहाओ। धर्म राय नो हुक्म है, बह सच्चा धर्म विचार। दूजे पाए दुष्ट आत्मा, ओ तेरी सरकार। अध्यात्मी हर गुण तास, मन जपे एक मुरार। तिनकी सेवा धर्म राय करे, तन सवारण हार। मन के विकार मन तजे, मन चूके मोह अभिमान। आत्म राम पछाणिया, सहजे नाम समान। बिन सतगुरु मुक्त ना पाईए, मन मुख फिरे दीवान। शब्द नाची ने कथनी बदनी करे, बिख्या माए समान। सब किछ आपे आप है, दूजा अवर ना कोए। ज्यों बोलाए त्यों बोलिए, जा आप बुलाए सोए। गुरमुख बाणी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होए। नानक नाम समाल तू, जित सेवे सुख होए। श्री राग महला तीजा। जग हो मैं मैल दुख पाया, मल लागी दूजे भाए। मल हो मैं तोती किवे ना उतरे, जेसो तीर्थ नाए। बहुविध कर्म कमाव

गुर शरण आवे ता निर्मल होए, मनमुख हर हर कर थके मैल न सकी तोए। रहाओ मन मैले भगत ना हो वही नाम ना पाया जाए, मनमुख मैले मैले मोए जासन पत गवाए। गुर प्रसादी मन वसे मल हो मैं जाए समाए, ज्यों अंधेरे दीपक बालिए त्यों गुर ज्ञान अज्ञान तजाए।

रंग ना होए, कूड़ कपट किने ना पायो, जो बीजे खावे सोए, सबना तेरी आस प्रभ, सब जी तेरे तू रास, प्रभ तुद्दो खाली को नहीं, दर गुरमुखा नो सावास, बिख पौजल डुब दे कड ले, जन नानक की अरदास, श्री राग महला चौथा, नाम मिले मन तृप्ति है, बिन नामे त्रिग जीवास, कोई गुरमुख सज्जन जे मिले, मैं दसे प्रभ गुणतास, हौं तिस विट्टो चौखनी है, मैं नाम करे परगास, मेरे प्रीतमा हौं जीवा नाम ते आए, बिन नामे जीवन ना थी है, मेरे सतगुरु नाम दृढ़ाए, रहाओ नाम अमोलक रतन है, पूरे सतगुरु पास, सतगुरु सेवे लग्या, कड रतन देवे प्रगास, तन वड़ पागिया, जो आए मिले गुरु पास, जिना सतगुरु पुरख ना पेटेओ, से पागहीन बस काल, ओए फिर जोन पवाईए, विच विस्ता कर विकराल, ओना पास दुआस न पिटिए, जिन अंतर क्रोध चंडाल, सतगुरु पुरख अमृत सर, वड़ पागी नावे आए, उन जन्म जन्म की मैल उतरे, निर्मल नाम दृढ़ाए, जन नानक उत्तम पद पाया, सतगुरु की लिवलाए, श्री राग महला चौथा, गुण गावा गुण विथरा, गुण बोली मेरी माए, गुरमुख सज्जन गुण कारिया।

गावा त्रिपत मन होए अंतर प्यास हर नाम की गुर तुस मिलावे सोए रहाओ। मन रंगो वड पागी हो गुर तुठा करे पसाओ गुर नाम दृढ़ाए रंग स्यो हों सतगुर के बल जाओ बिन सतगुर हर नाम न लब्बई लख कोटी कर्म कमाओ। बिन पागा सतगुर नाम मिले कर बैठिया निकट नित पास अंतर अज्ञान दुख परम है विच पड़दा दूर पयास बिन सतगुर पेटे कंचन नासिए मन मुख लो बूढ़ा बेड़ी पास। सतगुर बोहित हर नाम है कित बिद चढ़िया जाए सतगुर के पाने जो चले विच बोहित बैठा आए। तन तन वड पागी नानका जिना सतगुर ले मिलाए। श्री राग महला चौथा हों।

सतगुरु नो सब को लोचदा जेता जगत सब कोए बिन पागा दर्शन ना थिए पागहीन बैरोए जो हर प्रभ पाना सोचिया तुर लिखिया ना मेटे कोए आपे सतगुर आप हर आपे मेल मिलाए आप दया कर मेल सी गुर सतगुर पीछे पाए सब जग जीवन जग आप है नानक जल जले समाए। श्री राग महला चौथा। रस अमृत नाम रस अत पला कित बिद मिले रस खाए जाए पुछो सुहागनी तुसा क्यों कर मिलिया प्रभु आए ओए वे परवा ना बोलनी हौ मल मल तो वा तिन पाए पाई रे मिल सज्जन हर गुण सार।

ज्ञान आए, सतगुरु वचन रतन है, जो मन्ने सो हर रस खाए, सेवड पागी वड जानिए, जिन हर रस खादा गुर पाए, एहो हर रस वन तिन सबत है, पागहीन नहीं खाए, बिन सतगुर पल्ले ना पवे, मन मुख रहे बिल लाए, ओए सतगुर आगे ना निले, ओना अंतर क्रोध बलाए, हर हर हर रस आप है, आपे हर रस होए, आप दया कर देवसी, गुरमुख अमृत चोए, सब तन मन हरिया होया, नानक हर वसिया मन सोए, श्री राग महला चौथा, दिन चढ़े फिर आठवें, रैन सवाई जाए, आव कटे नर न बुझे, नित मूसा लाज चुकाए, गुड़ मिठा माया पसरिया, मन मुख लग माखी पचै पचाए, पाई रे मैं मीत सखा प्रभ सोए, पुत कलत मोह बिख है, अंत बेली कोय न होए, रहाओ गुरमत हर लिव उबरे, अलिपत रहे सरनाए, ओनी चलन सदा निहालिया, हर खर्च लिया पत पाए, गुरमुख दर गए मनिए, हर आप ले गल लाए, गुरमुखानो पंथ प्रगटा, दर ठाक न कोई पाए, हर नाम सलाहन नाम मन, नाम रहन लिव लाए, अनहद तुनी दर वजदे, दर सच्चे सोबा पाए, जिनी गुरमुख नाम सलाया, तिना सब को कहे सब आ

रस भोगे खुशिया करें माने रंग अपार बोध करें फुरमाइसी वरते हुए अपार करता चितना आवई मन मुख अंध गवार मेरे मन सुखदाता हर सोए गुर प्रसादी पाये कर्म प्राप्त होए रहाओ कपड़ भोग लपटाया सोयना रूपा खाक हैवर गैवर बहुरंगे किए रथ अथाक किसी चित न पावही बिसरे।

शोषण तुझे अनित अहंकार करे अहंकारिया व्याप्या मन की मत तिन प्रभु आप पुलाया ना तिस जात ना पत सतगुर पुरख मिलाया इको सज्जन सोए हर जन का राखा एक है क्या मानस हो मैं रोए जो हर जन पावे सो करे दर फेर ना पावे कोए नानक रता रंग हर सब जग में चानन होए श्री राज महला पंजवा मन विलास बहु रंकना दृष्ट पूल खुशिया छत्रतार बादशाहियां विच सहसे परिया पाई रे सुख साध संग पाया लिखिया लेख तिन पुरख विदाते दुख सहसा मिट गया रहाओ जेते थान सनंतरा तेते पावे आया तन पाती वड भूमिया मेरी मेरी कर परया हुक्म चलाए निसंग होए वरते अफरिया सबको वसगत कर लयोन बिन नावे खाक रलिया कोट तेती सेवका सिद्ध साधक दर खरिया गिरमबारी वड साहेबी सब नानक सुपंथिया श्री राग महला पंजवा पलके उठ पपोलिये बिन बुझे मुग्ध अजान सो प्रभ चित न आयो छुटेगी बेबान सतगुर से ती चित लाए सदा सदा रंगमान प्राणी तू आया लाहा लेन लगा कित कु पकड़े।

तीजे चाक चखाया चौथे पोर पया तद ही चितना आयो जिन जियो पिंड दिया साध संगत को वारिया जियो किया कुर्बान जिससे सोजी मन पई मिलिया पुरख सुजान नानक डिठा सदा नाल हर अंतर जामी जान। श्री राग महला पंजवा सबे गल्ला विसरन इको विसरना जाओ तंदा सब जलाए कै।

हाथ जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द कथ गुरते महल प्राप्ते जिस लिखिया हो वह मत मेरे मन एकस्यों चित लाए एकस बिन सब तंद है।

तिन सतगुर चरण गहे। सफल मूरत सफला करी जिस सच्चे नाल प्यार, दुख संताप ना लग गई जिस हर का नाम आधार। बाह पकड़ गुर काडे।

अपनाओ आठ पहर प्रभ त्याय तू गुण गोविंद नित गाओ रहाओ तिसकी सरनी परमना जिस जेवड अवर न कोए जिस सिमरत सुख होए कणा दुख दर्द ना मूले होए सदा सदा कर चाकरी प्रभ साहिब सच्चा सोए साध संगत होए निर्मला कटिए जम की फास सुख दाता पह पंजनो।

उपाव स्यानप सगल छड़ गुर की चरणी लाग तिसे प्राप्त रतन होए जिस मस्तक होवे पाग तिसे प्राप्त पाई हो जिस देवे प्रभ आप सतगुर की सेवा सो करे जिस बिन सहो मैं ताप नानक कहो गुर पेटिया बिन से सगल संताप। श्री राग महला पंजवा। एक पछाणु जी का इको रखनहार इकस का मन आसरा इको प्राण आधार तिस सरनाई सदा सुख पार ब्रह्म करतार मन मेरे सगल

इको मात पिता इकस की मन टेक है जिन जियो पिंड दिता सो प्रभ मनो न विसरे जिन सब किछ वस कीता कर इको बाहर इको थान सनंतर आप जी जंत सब जिन

काल, साधु संगत निर्मला आप करे प्रतपाल। जन्म मरण की मल कटी है गुरु दर्शन देखने हाल, थान थान अंतर रव रहे आप।

मेरे मन गुर सबदी सुख होए, गुर पूरे की चाकरी बिरथा जाए न कोए। रहाओ मन किया इच्छा पूरिया, पाया नाम निधान, अंतर जामी सदा।

पाया लाहा लाभ नाम पूरन होए काम, कर कृपा प्रभ मेलिया दिया अपना नाम। आवन जाना रह गया आप हुआ निर्वाण, सच महल कर पाया गुर का शब्द पछान। भगत जना को राखदा अपनी कृपा तार, हलत पलत मुख उजने साचे के गुण सा।

वड पागी मिल संगति सच्चा शब्द विसाहो कर सेवा सुख सागर सिरसाहा पात साहो चरण कमल का आसरा दूजा नाही ठाओ मैं तर तेरी पार ब्रह्म तेरे तान रहाओ निमाणया प्रभु मान तू तेरे संग समाओ हर जपिए आराधिए आठ पहर गोविंद जी प्राण तन तन रखे कर कृपा राखी जिंद नानक सगले दोख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद श्री राग महला पंजवा प्रीत लगी तिस सच स्यों मरे ना आवे जाए ना वे छोड़िया विछड़े सब में रहा समाए दीन दर्द दुख पंजना सेवक कै सत भाए अचरज रूप निरंजनो गुर में लाया माए पाई रे मीत करो प्रभ सोए माया मोह प्री त्रिग सुखी ना दिसे कोए रहाओ दाना दाता सीलवंत निर्मल रूप अपार सखा सहाय अत वड़ा ऊंचा वड़ा अपार बालक बिरद ना जानिए

मनमुख पस ना पाक। अंतर बाहर रव रहा तिसनो जाने दूर, तृष्णा लागी रच रहा अंतर हो मैं कूर। भगती नाम विहुणिया आवे मंजे पूर, राख ले हो प्रभ करणहार जी जंत कर दया। बिन प्रभ कोई ना रखन हार महा बिकट जम पाया। नानक नाम ना विसरो कर अपनी हरमया। श्री राग महला पंजवा। मेरा तन अर तन मेरा राज रूप मैं देश, सुतदारा बनता अनेक बहुत रंग अरवेश। हर नाम हृदय न वसई कारज किते न लेख। मेरे मन हर हर नाम ते आए, कर संगत नित साधकी गुरचरणी चित लाए। रहाओ नाम निधान ते आई है मस्तक हो वै पाग, कारज सब सवारियां।

अठसठ तीरथ नाओ। जियो प्राण मन तन हरे साचा एहो सुआओ। ऐसे मिले वडियाईया दरगे पावे थाओ। करे कराए आप प्रभ सब किछ तिस ही हाथ। मार आपे जी वालदा अंतर बाहर साथ। नानक प्रभ शरणागति सर्व कटा के नाथ। श्री राग महला पंजवा। शरण पए प्रभ अपने गुरु होआ कृपाल। सतगुर के उपदेश है बिनसे सर्व जंजाल। अंदर लगा राम नाम अमृत नदर निहाल। मन मेरे सतगुर सेवा सार। करे दया प्रभ अपनी एक निमख ना मनो विसार। रहाओ गुण गोविंद नित गाविए अवगुण कटन हार। बिन हर नाम ना सुख होए कर डिठे विस्तार। सहजे सिफती रत्या पवजल उतरे पार। तीरथ वर्त लख संजमा पाये साधु दूर। लूक कमावे किस्ते जा वेखे सदा हदूर। थान थनंतर रव रहा प्रभ मेरा परपूर। सच पात साही अमर सच सच्चे सच्चा थान। सच्ची कुदरत तारियन सच सिरज्योन जहान। नानक जपिए सच नाम हो सदा सदा कुर्बान। श्री राग महला पंजवा। उद्दम कर हर जापना वड़ पागी तन खाट। संत संग हर सिमरना मल जन्म जन्म की काट। मन मेरे राम नाम जप जाप मन इच्छे फल पुंच तू। सब चूके सोग संताप रहाओ। जिस कारण तन तारिया सो प्रभ डिठा नाल। जल थल मैयल पूरिया प्रभ अपनी नजर निहाल। मन तन निर्मल होया लागी साच परीत। चरण पजे पार ब्रह्म के सब जप तप तिन ही कीत। रतन जवे हर मान का अमृत हर का नाओ। सुख सहज आनंद रस जन नानक हर गुण गाओ। श्री राग महला पंजवा। सोई सासत सौन सोए जित जपिए हर नाओ। चरण कमल गुर तन दिया मिलिया निथावे थाओ। साची पूंजी सच संजमो आठ पहर गुण गाओ। कर कृपा प्रभ पेटिया मरण न आवन जाओ। मेरे मन हर पज सदा एक रंग। कट कट अंतर रव रहा सदा सहाई संग। रहाओ सुखा की मित क्या गणी जा सिमरी गोविंद। जिन चाखिया से तृप्ता सिया ओह रस जाने जिंद। संता संगत मन वसे प्रभ प्रीतम बख्शिंद। जिन सेव्या प्रभ आपना सोई राज नरिंद। अवसर हर जस गुण रमन जित कोट मज्जन स्नान। रसना उचरे गुणवती कोई न पुजे दान। दृष्ट तार मन तन वसे दयाल पुरख मेहरवान। जियो पिंड तन तिसदा हों सदा सदा कुर्बान। मिलिया कदे ना विछड़े जो मेलिया करतार। दासा के बंधन कटिया साचे सिरजनहार। पूला मार्ग पायुन।

रसना सच्चा सिमरिय मंतन निर्मल होए, मात पिता साथ अगले तिस बिन अवर न कोए, मेर करे जे आपनी चसा न विसरै सोए, मन मेरे साचा सेव जिचर सास, बिन सच्चे सब कूड़ है अंते होए विनाश, रहाओ साहिब मेरा निर्मला तिस बिन रह न जाए, मेरे मन तन पुख अत अगली कोई आन मिलावे माए, चारे कुंडा पालिया सह बिन अवर न जाए, तिस आगे अरदास कर जो मेले करतार, सतगुरु दाता नाम का पूरा जिस भंडार, सदा सदा सालाही है अंत न पारावार, परवदगार सालाही है जिस दे चलत अनेक, सदा सदा आराधी है एहा मत विशेख, मन तन मिठा तिस लगे जिस मस्तक नानक लेख, श्री राग महला पंजवा, संत जनों मिल पाइयो सच्चा नाम समाल, तोसा बंदो जी का एथे ओथे नाल, गुरपूरे ते पाइए अपनी नदर निहाल, करम प्राप्त तिस होवे जिसनो होए दयाल, मेरे मन गुर जेवड अवर न कोए, दूजा छाओ ना कोस जै गुर मेले सच सोए, रहाओ सगल पदार्थ तिस मिले जिन गुर डिठा जाए, गुर चरणी जिन मन लगा सेवड पागी माए, गुरदाता समरथ गुर गुर सब में रहा समाए, गुर परमेश्वर पार ब्रह्म गुर डुबदा ले तराए, कित मुख गुर सालाही है करण कारण समरथ, से मथे नहीं चल रहे जिन गुर तारिया हाथ, गुर अमृत नाम पिया लिया जन्म मरण का पथ, गुर परमेश्वर सेविया पै पंजन दुख लथ, सतगुर गहर गंभीर है सुख सागर अगखंड, जिन गुर सेविया अपना जमदूत ना लागे डंड, गुर नाल तुल ना लग गई खोज डिठा ब्रह्मंड, नाम निदान सतगुर दिया सुख नानक मन में मंड।

प्रभात। क्या तू रत्ना ग्रस्त्यों सब फुल्ला की बागात, मेरी मेरी क्या करें जिन दिया सो प्रभलोड, सर पर उठी चलना छड़ जासी लख करोड़, लख चौरासी भरमत्या दुलभ जन्म पाए हुए नानक नाम समा

मन बैराग भया दर्शन देखने का चाओ तन सो तेरा थान रहाओ। जिचर वस्या कंत कर जियो जियो सब का हाथ जा उठी चलसी कंकड़ा ता कोई ना पूछे तेरी बात। पेई अरणै सौ सेव तू सौ रणै सुख वस गुर मिल चज अचार सिख तुद कदे ना लगे दुख। सबना सोहरै वंजना सब मुकलावन हार नानक तन सुहागणी जिन सै नाल प्यार। श्री राज महला पंजवां कर छेवां।

दुख कलेश ना पौ व्यापै, गुरु मंत्र हृदय होए, कोट जतना कर रहे गुरु बिन तरयो ना कोए, देख दर्शन मन साधारण है, पाप सगले जाहे, हौं तिनके बलिहारण है, जे गुर की पैरी पाहे, साध संगत मन वसे साच हर का नाओ, सेवड पागी नानका जिना मन एहो पाओ। श्री राग महला पंजवा। संच हर तन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार, जिन तू साज सवारिया हर सिमर होए उधार, जप मन नाम एक अपार, प्राण मन तन जिन्हें दिया हृदय का आधार। रहाओ काम क्रोध अंकार माते व्याप्या संसार, पौ संत सरणी लाग चरणी मिटे दुख अंधार, सत संतोख दया कमावे ए करनी सार, आप छोड़ सब होए रेणा जिस दे प्रभ निरंकार, जो दिसे सो सगल तू है पसरिया पासार, कहो नानक गुर परम काटिया।

इच्छा छुटी है जिन अंदर नाम निदान गुरजेवर दाता को नहीं जिन दिता आत्मदान आए से प्रवान है जिन गुर मिलिया सुवाय सच्चे से तीरतिया दरगह बैसन जाए करते हाथ वड्याइया पूरब लिखिया पाए सच करता सच करनहार सच साहेब सच टेक सच्चो सच वखाणिए सच्चो बुद्ध विवेक सर्व निरंतर रव रहा जप नानक जीवे एक श्री राग महला पंजवा गुर परमेश्वर पूजिए तन लाए प्यार सतगुरु दाता जी का सबसे दे आधार सतगुरु बचन कमावणे सच्चा एहो विचार बिन साधु संगत रत्या माया मोह सब चार मेरे साजन हर हर नाम समाल साधु संगत मन वसे पूरन होवे काल रहाओ गुर समरथ अपार गुर वड़ पागी दर्शन होए गुर अगोचर निर्मला गुर जेवड अवर न कोए गुर करता गुर करनहार गुरमुख सच्ची सोए गुर ते बाहर किछ नहीं गुर कीता लोड़े सो होए गुर तीरथ गुर पार जात गुर मनसा पूरन हार गुरदाता हर नाम दे उदरे सब संसार गुर समरथ गुर निरंकार गुर ऊंचा अगम अपार गुर की महिमा अगम है क्या कथे कथन हार जितड़े फल मन बाछिए तितड़े सतगुर पास पूरब लिखे पावणे साच नाम दे रास सतगुर सरणी आया बहुड़ नाही विनाश हर नानक कदे ना विसरो एहो जियो पिंड तेरा साथ श्री राग महला पंजवा संत जनो सुन पाई हो छूटन सा चैन आए गुर के चरण सरेवणे तीरथ हर का नाम आगे दरगह

रहाओ। सतगुर विटो वारिया जिन दिता सच नाओ, अंदिन सच सलाहना सच्चे के गुण गाओ, सच खाना सच पहनना सच्चे सच्चा नाओ, सास गिरास ना विसरे सफल मूरत गुर आप, गुर जेवड़ अवर ना दिसई आठ पहर तिस जाप, नदर करे ता पाई है सच नाम गुणतास, गुर परमेश्वर एक है सब में रहा समाए, जिनको पूर्व लिखिया सही नाम ते आए नाम।

अष्टपदियां आख आख मन वावना ज्यों ज्यों जा पैवाए जिसनो वाय सुनाई है सो केवड़ कित थाए आखण वाले जेतड़े सब आख रहे लिवलाए।

पाखंड प्रेम ना पाइए, खोटा पाज खुआर हर जियो त्यों फिर रावे नार। तुद पावन सुहागणी अपनी कृपा लह सवार। रहाओ गुर शब्दी सिगारिया तन मन फिर कै पास, दोए कर जोड़ खड़ी तकै।

साची प्रीत ना तुटई साचे मेल मिलाओ। शब्द रती मन वेद्या हो सद बलिहारे जाओ। सा तन रंड ना बैसई जे सतगुरु माए समाए। फिर रिसालू नौतनो साचो मरे न जाए। नित रवै सुहागणी साची नजर जाए। साच तड़ी तन मांडिये कापड़ प्रेम सिगार। चंदन चीत वसाया मंदर दसवां द्वार। दीपक शब्द विगासया राम नाम उरहार। नारी अंदर सोहणी मस्तक मणि प्यार। शोभा सुरत सुहावणी साचे प्रेम अपार। बिन पिर पुरख न जानी साचे गुर कै हेत प्यार। निस अंधियारी सुतिए क्यों फिर बिन रैन विहाय। अंक जलो तन जालियो मन तन जल बल जाए। जा तन कंत न राविया ता बिरथा जोबन जाए। सेजै कंत महेलड़ी सूती बूझ न पाए।

आपे गुण आपे कथे आपे सुन विचार आपे रतन परख तू आपे मोल अपार साचो मन महत तू आपे देवनहार हर जियो तू करता करतार ज्यों पावे त्यों राख तू हर नाम मिले आचार रहाओ आपे हीरा निर्मला आपे रंग मजीत आपे मोती उजलो आपे भगत बसीठ गुर कै शब्द सलाहना कट कट डीठ अडीठ आपे सागर बोहेथा आपे पार अपार साची वाट सुजान तू शब्द लंगावन हार निडरिया डर जानिए बाज गुरु गुबार अस्थिर करता देखिए होर केती आवे जाए आपे निर्मल एक तू होर बंदी तंदे पाए गुर राखे से उबरे साचे स्यों लिवलाए हर जियो शब्द पछाणिए सांच रते गुरवाक तितन मैल ना लग गई सच कर जिस ओताक नजर करे सच पाईए बिन नावे क्या साक जिन्नी सच पछाणिया।

चार वाद विरोध सलाहने वादे आवन जान बिन गुर कर्म न छुटसी कह सुन आख वखान सब गुणवंती आखिए मैं गुण नाही कोए हर वर नार सुहावनी मैं पावे प्रभ सोए नानक शब्द मिलावड़ा नावे छोड़ा होए श्री राग महला पहला जप तप संजम साधिए तीरथ की चैवास पुन दान चंगियाईया बिन साचे क्या तास जे हारा दे ते हा लुणे बिन गुण जन्म विनाश मुंदे गुण दासी सुख होए अवगण त्याग समाये गुरमत पूरा सोए रहाओ विन राशि वापारिया तके कुंडा चार मूल न बुझे अपना वस्त्र ही कारबार विन वखर दुख अगला।

त्रिभवन सो प्रभ जानिए साचो साचे नाए। सातन खरी सुहावनी जिन पिर जाता संग, मैली मैल बुलाये सो पिर रावे रंग। सच सुहागन सापली पिर मोही गुण संग, पूली पूली थल चढ़ा थल चढ़ डूगर जाओ। बन में पूली जे फिरा बिन गुर बूझ न।

कर ठाक न होए, नानक एको रव रहा दूजा अवर न कोए। श्री राग महला पहला, गुर ते निर्मल जानिए निर्मल देह शरीर, निर्मल साचो मन वसै सो जाने अब पीर, सहजै ते सुख अगलो ना लागे जम तीर। पाई रे मैल नाही निर्मल जल नाए, निर्मल साचा एक तू होर मैल परी सब जाए। रहाओ हर का मंदर सो

देख निरंजन पाए। गुपत प्रगट सब जानिए जे मन राखे ठाए, ऐसा सतगुरु जे मिले ता सहजे ले मिलाए। कस कसवटी लाई है परखे हित चित लाए, खोटे ठौर न पाए नी खरे खजाने पाए। आस अंदेसा दूर कर क्यों मल जाए समाए, सुख को मांगे सबको दुख ना मांगे कोए। सुख है को दुख अगला मन मुख बूझ ना होए, सुख दुख सम कर जानिए सबद पेद सुख होए। वेद पुकारे वाचिए बाणी ब्रह्म व्यास, मुन जन सेवक साधका नाम रते गुणतास। सच रते से जिन गए हो सद बलिहारे जास, चौ जुग मैले मल परे जिन मुख नाम ना होए। भगती पाए विहूनिया मोह काला पत खोए, जिन्नी नाम विसारिया अवगुण मुठी रोए। खोजत खोजत पाया डर कर मिले मिलाए, आप पछाने कर वसे हों मैं तृष्णा जाए। नानक निर्मल उजले जो राते हर नाए, श्री राग महला पहला। सुन मन पूले बावरे गुर की चरणी लाग, हर जप नाम से आए तू जम डर पे दुख पाग। दुख कणों दोहागणी क्यों थिर रहे सुहाग।

गुरुमत पत सावा तिस तिस के संग मिलाओ, तिस बिन कड़ी ना जीवो बिन नावे मर जाओ, मैं अंधले नाम ना विसरे टेक टिकी कर जाओ। गुरु जिना का अंधुला चेले ना ही ठाओ, बिन सतगुरु नाव ना पाये बिन नावे क्या सुआओ, आए गया पछतावना ज्यो सुन्ये कर काओ। बिन नावे दुख देहोरी ज्यो कलर की पीत, तब लग महल न पाइए जब लग साच न चीत, शब्द रपे कर पाइए निर्बाणी पदनीत। हों गुर पूछो आपने गुर पुछ कार कमाओ, शब्द सलाही मन वसे हों मैं दुख जल जाओ, सहजे हुए मिलावड़ा साचे साच मिलाओ। शब्द रते से निर्मले तज काम क्रोध अहंकार, नाम सलाहन सद सदा हर राखे उर्धार, सो क्यों मनो विसारिये सब जिया का आधार। शब्द मरे सो मर रहे फिर मरे ना दूजी वार, शब्द ही ते पाये हर नामे लगे प्यार, बिन शब्द जग पूला फिरे मर जन्मे वारो वार। सब साला है आपको वढ़ो वडेरी होए, गुर बिन आप ना चीनिए कहे सुने क्या होए, नानक शब्द पछाणिए हो मैं करे न कोई। श्री राग महला पहला। बिन फिर तन सिगारिये जोबन बाद खुआर, ना माने सुख सेजड़ी बिन फिर बाद सिगार, दुख कणो दोहागणी ना कर सेज पतार। मन रे राम जपो सुख होए, बिन गुर प्रेम ना पाइए शब्द मिले रंग होए, रहाओ गुर सेवा सुख पाइए हर वार सह सिंगार। सच माने फिर सेजड़ी गूड़ा हे प्यार, गुरमुख जान सियाणिए गुर मेली गुणचार। सच मिलो वर कामणी फिर मोही रंग लाए, मन तन साच विकसिया कीमत कह न जाए, हर वार कर सुहागणी निर्मल साचे नाए। मन में मनु आजे मरे।

विचार, संत सवा सुख उपजे गुरमुख नाम आधार। खिन में उपजे खिन खपे, खिन आवे खिन जाए, शब्द पछाने रव रहे ना तिस काल संताए। साहिब अतुल ना तोलिए कथन ना पाया जाए, व्यापारी बन जा रहा।

छुट्टी है ना पढ़ पुस्तक पार, काया सोच ना पाईए बिन हर भगत प्यार, नानक नाम ना विसरे मेले गुर करतार। श्री राग महला पहला, सतगुर पूरा जे मिले पाईए रतन विचार, मन दीजे गुर आप।

ज्ञान ध्यान तुन जानिए अकथ कहावे सोए सफल्यो बिरख हरियावला छाव कनेरी होए लाल जवे हरमान की गुर पंडारे सोए गुर पंडारे पाई।

पाव जल बिखम डरावनो ना कंदी ना पार ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना तिस वंज मलार सतगुर पैका बोहे था नदरी पार उतार एक तिल प्यारा विसरे दुख लागे सुख जाए जेवा जलो जलावनी नाम ना जपै रसाए कट बिन सह दुख अगलो जम पकड़े पछताए मेरी मेरी कर गए तन तन कलत न साथ बिन नावे तन बाद है पूलो मार गयाथ साचो साहिब सेविय गुरमुख अकथो काथ आवे जाए पवाईए पये किरत कमाए पूरब लिखिया क्यों मेटिए लिखिया लेख रजाए बिन हर नाम न छुटिए गुरमुत मिले मिलाए तिस बिन मेरा को नहीं जिसका जियो प्राण हौं मैं ममता जल बलो लोभ जलो अभिमान नानक।

जल मरण तिनेह। मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, गुरुमुख अंतर रल रहा, बक्से भगत पनार रहाओ। रे मन ऐसी हर्षों प्रीत करे, जैसी मछली नीर, ज्यों अधिको त्यों सुख।

हमें मैल न जाए। सो हम आप पछाणिए शब्द तेज पति आए, गुरुमुख आप पछाणिए अवर के करे कराए। मिलिया का क्या मिलिए शब्द मिले पति आए, मन मत सो जीना पवे बिछड़ चोटा खाए। नानक दर कर एक है अवर न दूजी जाए। श्री राग महला पहला, मन मत पुले पुलाइए पुली थौर न काए। गुरु बिन को ना दिखावे अंगी आवे जाए, ज्ञान पदार्थ खोया ठगिया मुठा जाए। बाबा माया परम पुलाए, परम पुली दोहागनी ना फिर अंक समाए। रहाओ पुली फिर दिसंतरी, पुली द्रोह तज जाए। पुली डूंगर थल चढ़े पर मैं मन डोलाए, तुरो विछनी क्यों मिले गर्भ मुठी बिरलाए। विछड़िया गुर मेल की हर रस नाम प्यारे, साच सहज शोभा कणी हर गुण नाम आधार। ज्यो पावे क्यों रख तू मैं तुझ बिन कवन पतार। अखर पढ़ पढ़ पुलिये पेखी बहुत अभिमान, तीरथ नाता क्या करे मन में मैल गुमान। गुरु बिन किन समझाइए।

जिन कन मन साज सुधारिया तुस सुरती निगलाए रहाओ। तन दे संतर होमी है इक रत्ती तोल कटाए, तन मन समदा जे करी अंदिन अगन जलाए। हर नाम में तुल न पुजई जे लख कोटी कर्म कमाए, अर्ग शरीर कटाई है सिर करवत धराए। तन है मंचल गाली है ती मन से रोग न जाए, हर नाम में तुल न पुजई सब जिथी ठोक बजाए। कंचन के कोट बत करी।

सबको ऊंचा आखिए नीच ना भूसे कोए, इतने पांडे साजिए इक चानन के होलोए, कर्म मिले सच पाइए थोर बख्त ना मेटे कोए, साध मिले साधु जने संतोष वसे गुर पाए, अकथ कथा विचारिए जे सतगुर माहि समाए, ई अमृत संतोखिया दरगह पैदा जाए, कट कट वाजे किंगुरी अंदिन शब्द सुभाए, विरले को सोजी पई गुरमुख मन समझाए, नाम

रकत बिंद का एतनो अग्नि पास पिराण पवने के वस देहोरी मस्तक सच निशान। बहुता जीवन मंगिए मुआ ना लोड़े कोए सुख जीवन किस आखिए जिस गुरुमुख वस्या सोए नाम विहुने क्या गणी जिस हर गुरु

ऊंचो पर्वत गाखड़ो ना पौड़ी तित पास, गुरमुख अंतर जानिया गुरमेली तरियास। पाई रे पाउजल बिखम डराओ, पूरा सतगुर रस मिले।

गुरुमुख कृपा करे भगत की जय बिन गुरु भगत न होए। आपे आप मिलाए बूझे ता निर्मल होवे कोई हर जियो सच्चा सच।

आओ आपे हर जग जीवन दाता आपे बख्श मिलाए जी जंत एक आवे चारे क्या को आप सुनाए गुरमुख आपे दे वडियाए आपे सेव कराए देख पुटंब मोह लुभाना चलदियां नाल ना जाए सतगुरु सेव गुण निधान पाया।

जग जीवन दाता मन मुखपत गवाई, बिन सतगुरु को मग न जाने अंधे ठौर न काई, हर सुख दाता मन नहीं बसया अंत गया पछताई। तेयड़े जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया, अंग दिन भगत करे दिन राती हों मैं मोह चुकाया, जिस्यों राता तैसो होवे सच्चे सच समाया। आपे नदर करे पाओ लाए गुर शब्दी विचार, सतगुर सेवे सहज उपजे हों मैं तृष्णा मार, हर गुण दाता सद मन वसे सच रखिया उद्धार। प्रभु मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाए, नाम निधान हर मन वसे हों मैं दुख सब जाए, सतगुर शब्द सुनाया हों सद बलिहार जाऊं। अपने मन चित कहे कहाए दिन गुर आप ना जाए, हर जियो भगत वचन सुख दाता कर कृपा मन वसाई, नानक शोभा सुरत दे प्रभ आपे गुरमुख दे वलियाई। श्री राग महला तीजा, हो मैं कर्म कमाव दे जम दंड लगे तिन आए, जे सतगुर सेवन से उबरे हर सेती लिवलाए, मन रे गुरमुख नाम ते आए तुर पूरब करते लिखिया किना गुरमत नाम समाए, रहाओ जिन सतगुर प्रतीत ना आवई नाम ना लागो पाओ, सुपने सुख ना पावई दुख में सवै समाए, जे हर हर की कह बहुत लोची है किरत नाम ते आ जाए, हर का पाना भगती मनिया से भगत पे दर खाए, गुर शब्द दिलावे रंग स्यों बिन कृपा ले आना जाए, जो सो अमृत नीरी है पी दिख फल लागे ताए, से जन सच्चे निर्मले जिन सतगुरु नाल प्यार, सतगुरु का पाना

हर का नाम निधान है, जिस अंत ना पारावार, गुरुमुख से ही सो दे जिन कृपा करे करतार। नानक दाता एक है, दूजा और न कोए, गुरु प्रसादी पाए कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा, पंखी दीर्घ सुहावना, सच चुग गए गुरु।

ना अमृत फल पाए। गुरुमुख ब्रह्म हरियावला साचे सह सुवाए, साखा तीन निवारिया एक शब्द निवलाए। अमृत फल हर एक है आपे देखवाए। मन मुख उबे सुख गए ना फल तिन्ना चाओ, तिन्ना पास ना बैठी है ओना कर ना गिराओ। कटिया तै नित जालिए ओना शब्द ना।

हुक्म ना जाने बपुने पूले सिरे गवार मन हट कर्म कमाउंदे नित नित होए कुवार अंतर शांत न आवई ना सच लगे प्यार गुरमुखिया मोह सोने गुर के हेत प्यार सच्ची भगती सच रते दर सच्चे सच्यार आए से परवान।

नानक नाम वडाईया कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा। गुरुमुख नाम से आये मनमुख बूझ न पाए, गुरुमुख सदा मुख उजले हर वस्या मन आए। सहजे ही सुख पाये सहजे रह समाए, पाई रे दासन दासा होए। गुरु की सेवा गुरु भक्त है विरला पाए कोए। रहाओ सदा सुहाग सुहागनी जे चले सतगुरु भाए। सदा फिर निचल पाये ना ओ मरे न जाए, शब्द मिली ना बिछड़े फिर कै अंक समाए। हर निर्मल अप उजला बिन गुरु पाया न जाए, पाठ पढ़े ना बुझई तेखी परम पुलाए। गुरमति हर सदा पाया रसना हर रस समाए, माया मोह चुकाया गुरमति सह सुवाए। बिन सौदे जग दुखिया फिरे मन मुखा नो गई खाए। सबदे नाम ते आये सबदे सच समाए, माया पूले सिद फिरे समाज ना लगे सुवाए। पीने लो व्यापत है अधिक रही लपताए, बिन गुरु मुक्त न पाये ना दुबदा माया जाए। माया किसनो आखी है क्या माया कर्म कमाए, दुख सुख एहो जियो बद है हमें कर्म कमाए। बिन शब्द है परम न चूके न विच्चों हमें जाए, बिन प्रीति पगत न हो वही बिन शब्द है छाए न पाए। शब्दे हमें मारिए माया का परम जाए, नाम पदार्थ पाये गुरमुख सह सुभाए। बिन गुर गुण न जापनी बिन गुण पगत न होए, भगत वसल हर मन वसिया सहज मिलिया प्रभ सोए। नानक सबदे हर्षा लाही है कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा। माया मोह मेरे प्रभ कीना आके परम पुलाए।

रहाओ सच्चे शब्द पत उपजे सच्चे सच्चा नाओ जिन्नी हो मैं मार पछाणिया हो तिन बलिहारे जाओ मन मुख सच ना जानी तिन ठौर ना कतहु उठाओ सच खाना सच पहनना सच्चे ही विचवास सदा सच्चा सलाहना सच्चे शब्द निवास सब आत्म राम पछाणिया गुरमति निज करवास सच वेखण सच बोलना।

गया तीर्थ गमन करे, खट कर्मा ते दुगने पूजा करता नाए, रंग न लगी पार ब्रह्म ता सर पर नरके जाए। राज मिलक सिकदारिया रस ओगन विस्तार, बाग सुहावे सोने चले हुक्म अपार, रंग तमाशे बहुविधि चाहे लग रहा, चितना आयो पार ब्रह्म ता सर्प की जून गया। बहुत तनाद अचार वंत शोभा निर्मल रीत, मात पिता सुत पाया साधन संग परीत,

जम कंकर वस करया। कृपा करे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग, जो जो ओ वधाये त्यों त्यों हर्षों रंग, दोहा श्रेया का खत्म आप।

नानक सतगुरु दिया बुझाए जियो। एहो जगत परम पुलाया आपो तुद खुआया पर पाप लगा दोहाजनी पाग बिना के ना जियो। दोहाजनी क्या निशानिया खसमो कुथिया फिर निमानिया मैले वे उसकिना कामनी दुखी रहन विहाए जियो। सुहागनी क्या कर्म कमाया पूर्व लिखिया फल पाया नदर करे कै अपनी आपे ले मिलाए जियो। हुक्म जिनानो मनाया तिन अंतर शब्द वसाया।

ਲੱਗਾ ਪਾਏ ਜੀਉ। ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰ ਕਹਿ ਆਇਆ, ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ ਨਾਮ ਦਿੜਾਇਆ,

आप जियो। वात वजन चमक तेरिया, मल लखे लेंदे तेरिया, नेते पंच जवान में गुरखा पी दिती कंड जियो। सब इकट्ठे होए आया, कर जासन वात वटाया, गुरमुख लाहा ले गए, मनमुख चले मूल गवाए जियो। तू वरना चेहना बारा, हर दिसे हाजिर जाहरा, सुन सुन तुझे ते आएंगे, तेरे भगत रखे गुणतास जियो। मैं जुग जुग दया सेवड़ी, गुर कटी मेहंदी जेवड़ी, हाँ बाहड़ छिंज ना नचू, नानक अवसर लदा।

तप अंतर करे वन जा रहा मित्रा खसम सेती अरदास खसम सेती अरदास वखाने उर्द ध्यान लिव लागा नामर जाद आया कल पीतर बाहुर जासी नागा जैसी कलम बुरी है मस्तक तैसी जीड़े पास कहो नानक प्राणी पहले पहरे हुकुम पया गरबास दूजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा विसर गया ध्यान हथो हथ नचाए वन जा रहा मित्रा ज्यो जसदा कर कान हथो हथ नचाए प्राणी माप कहे सुत मेरा चेत अचेत मूड मन मेरे अंत नहीं कछ तेरा जिन रच रचिया तिसे न जाने मन भीतर तर ज्ञान कहो नानक प्राणी दूजे पहरे विसर गया ध्यान तीजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा तन जोबन स्यो चित हर का नाम न चेत ही बन जा रहा मित्रा बद्दा छुटे जित हर का नाम न चेत प्राणी विकल पया संग माया तन स्यो रता जोबन मता अहला जन्म गवाया कर्म से तीवा पार ना की तो कर्म ना की तो मित कहो नानक की।

जा जम पकड़ चलाया वन जा रहा मित्रा किसे न मिलिया पेट पेट चेत हर किसे न मिलियो जा जम पकड़ चलाया झूठा रुदन हुआ दो आले छिन में पया पराया साई वक्त प्राप्त होई जिस

ज्ञान ध्यान गुण संयम नाही जन्म मरोगे झूठे। तीरत वर्त सुच संयम नाही कर्म तर्म नहीं पूजा नानक पाए भगत निस्तारा दुबदा व्यापै दूजा। तीजे पैरे रैन कै बन जा रहा मित्रा सर हंस उलखड़े आए जो बन कटे जरुआ जिने बन जा रहा मित्रा आव कटे दिन जाए। अंत काल पछतासी अंगले जा जम पकड़ चलाया सब किछ अपना कर कर राखिया खिन में पया कराया। बुद्ध विसर्जी गई सियानप कर अवगुण पछताए कहो नानक प्राणी तीजे पहरे प्रभ चेतो लिवलाए। चौथे पहरे रहन के बन जा रहा मित्रा बिद पया तन खीन

मेरा मेरा कर पालिए वनजारिया मित्रा ले मात पिता गल लाए लावे मात पिता सदा गल सेती मन जाने खट खवाए जो देवे तिसे ना जाने मूड़ा दिते नो लपटाए कोई गुरमुख होवे सो करे विचार हर त्यावे मन

पूरा सतगुरु बन जा रहा मित्रा सब चली रहन विहांदी हर सेवो खिन खिन टिल मूल न करहो जित अस्थिर जुग जुग होवो हर सेती सद मानो रलिया जन्म मरण दुख खोवो गुर सतगुर स्वामी भेद न जानो जित मिल हर

कर्म कमाने जैसा लिख तुर पाया, मात पिता पाई सुख बनता तिन पीतर प्रभु संजोया। कर्म सो कर्म कराए आपे इस जनते वस किछ।

बवरे तब क्या जवाब करे कहो नानक दूजे पहरे प्राणी पर जोबन लहरी दे तीजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा।

ते आया। हर पुरुख ना कभी बिन सै जावे, नित देवे चढ़े सवाया। नानक संत संत हर एको जप हर।

मन प्यारिया जियो मित्रा गोविंद नाम समाले। मन प्यारिया जी मित्रा हर निभे तेरे नाले। संग सहाई हर नाम त्याई बिरथा कोई न जाए। मन सिंधे से ही फल पावे चरण कमल चितलाए। जल थल पूर रहा बनवारी कट कट नदर निहाले। नानक सिख दे मन प्रीतम साध संग प्रम जाले। मन प्यारिया जी मित्रा हर बिन झूठ पसारे। मन प्यारिया जियो

आठ पहर प्रभजा पे आप जुगादी सेवक स्वामी पगता नाम आधारे नानक सिख दे मन प्रीतम बिन हर झूठ पसारे मन प्यारिया जियो मित्रा हर लब्दे खेप सवली मन प्यारिया।

हर हर उत्तम नाम है जिन श्रेया सब कोए जियो। हर जी सबे प्रतपालदा कट कट रमैया सोए। सो हर सदा त्याई है तिस बिन अवर न कोए। जो मोहे माया चित लाए दे से छोड़ चले दुख रोए। जन नानक नाम ते आया हर अंत सखाई होए। मैं हर दिन अवर न कोए। हर गुरसन आई पाई है मन जारिया मित्रा। वड भाग प्राप्त होए रहाओ। संत जना विण पाया हर किने न पाया नाओ। विच हो मैं कर्म कमाऊं दे ज्यों वे सुआ पुत ने नाओ। पिता जात ता होई है गुर तुठा करे पसाओ। वद पागी गुर पाया हर एनस लगा पाओ। जन नानक ब्रह्म पछाणिया हर कीरत कर्म कमाओ। मन हर हर लगा चाओ गुर पूरे नाम दृढ़ाया। हर मिलिया हर प्रवनाओ रहाओ। जब लग जोबन सांस है तब लग नाम से आए। चल जिया नाल हर चलसी हर अंते ले छड़ाए। हौ बलिहारी तिन तो जिन हर मन उठा आए। जिनी हर हर नाम न चेत्यो से अंत गए पछताए। तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया जन नानक नाम से आए। मन हर हर पीत लगाए वड पागी गुर पाया। गुर सबजी पार लगाए रहाओ। हर आपे आप उपायदा हर आपे दे वैले। हर आपे परम पुलायदा हर आपे ही मत दे। गुरमुखा मन प्रगास है से विरले के ही के। हौ बलिहारी तिन कौ जिन हर पाया गुरमते। जन नानक कमल प्रगासिया मन हर हर उठड़ा है। मन हर हर जपन करे हर गुर शरण आई पज पो। जिंदु सब किलिख दुख पर हरे रहाओ। कट कट मैया मन वसे क्यों पाई है कित पत। गुर पूरा सतगुर पेटिए हर आए वसे मन चित। मैं तार नाम आधार है हर नाम में ते गत मत। मैं हर हर नाम विसाहो है हर नाम में ही जत पत। जन नानक नाम से आया रंग रतड़ा हर रंग रत। हर त्यावो हर प्रभ सत गुरबचनी हर प्रभ जानिया। सब हर प्रभ ते उत्पत रहाओ। जिनको पूर्व लिखिया से आए मिले गुर पास। सेवक पाए बन जा रहा मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास। तन तन वणज वपारिया जिन वखर लगेड़ा हर रास। गुरमुखा दर मुख उजले से आए मिले हर पास। जन नानक गुर तिन पाया जिना आप तुठा गुणतास। हर त्यावो सास गिरास मन प्रीत लगी।

है जे सच तरे प्यार सदा हर सच मन वसै नेचल मत अपार रतन अमोलक पाया गुरु का शब्द विचार जेवा सच्ची मन सच्चा सच्चा शरीर आकार नानक सच्चे सतगुरु सेवे है सदा सच व्यापार महला तीजा और बिरहा सब तात है जब लग साहिब प्रीत न होए इहो मन माया मोया वेखण सुनन ना होए सह देखे बिन प्रीत ना उपजे अंधा क्या करे नानक जिन अखी लीतिया सोई सच्चा दे पौड़ी हर इको करता इक इको दीवान हर हर इक सैदा है अमर इको हर चित तर हर किस बिन कोई ना है डर परम पौ दूर कर हर किसे नो साला है जे तुद रखे बार कर हर जिसनो हुए दयाल सो हर जप पौ बिखम कर श्लोक महला पहला दाती साहे

जो की कै सो हर जानदा मेरे मन हर चेत सो डरे जे पाप कमावदा तरमी विगसेत तू सच्चा आप न्याओ सच ता दरिये केत जिना नानक सच पछाणिया से सच रलेत। श्लोक पहला तीजा। कलम जलो सन मसवाणी है कागज भी जल जाओ लिखन वाला जल बलो जिन लिखिया दूजा पाओ नानक पूरब लिखिया कमावना अवर ना करना जाए। महला तीजा। होर कूड पढ़ना कूड बोलना माया नाल प्यार नानक बिन नामे को थिर नहीं पढ़ पढ़ हो एक वार। पौड़ी। हर की वड्याई वड्डी है हर कीर्तन हर का हर की वड्याई वड्डी है जा न्याओ है धर्म का हर की वड्याई वड्डी है जा फल है जी का हर की वड्याई वड्डी है जा ना सुनई कहा चुगल का हर की वड्याई।

मनोख सुद्धा कालिया बार चिटविया रीसा करह तिनाड़िया जो सेवे दर खलिया नाल खसमे रतिया माने सुख रलिया होंदे तान नितानिया रह निमानिया नानक जन्म सकार था जे तिनके संग मिला। पौड़ी तू आपे जल मीना है आपे आपे ही आप जाल तू आपे जाल बताएदा आपे विच सेवाल तू आपे कमल अलिप्त है सह हत्था विच गुलाल तू आपे मुक्त कराएदा एक निमक कड़ी कर ख्याल हर सुद्धों बार किच नहीं गुर सब्दी वेख निहाल। श्लोक महला तीजा हुक्म ना जाने बहुता रोवे अंदर तोखा नींद ना सोवे जे तन खसमे चले रजाई दर कर शोभा महल बुलाई नानक करमी ए मत पाई गुर प्रसादी सच समाई। महला तीजा मनमुख नाम विहूणिया रंग कुसुम्बा देख ना पुल इक्का रंग बिन खोड़िया सोचा इसदा मुल दूजे लगे पत मोए मूर्ख अंध गवार।

पौड़ी। सिष्ट उपाय सब तुद आपे रिजक संभाया, एक वल छल करके खाम दे मोह कूर कुसत तिन्नी ताया। तुद आपे पावे सो करें, तुद ओते कम कोय लाया। इकना सच बुझायन तिना अतुट भंडार देवाया। हर चेत खाहे तिना सफल है, अचेता हथ तदाया। श्लोक महला तीजा। पढ़ पढ़ पंडित वेद बखाने, माया मोह सुआए। दूजे पाए हर नाम विसारिया, मन मूरख मिले सजाए। जिन जियो पिंड दिता तिस कभू न चेते, जो देंदा रिजक समाहे। जम का पाथा गलो न कटी है, फिर आवे जाए। मन मुख किछु न सूजे, अंगले पूरब लिखिया कमाए। पूरे पाग सतगुर मिले, सुखदाता नाम वसै मन आए। सुख माने सुख पहनना, सुखे सुख विहाए। नाम सो ना मनो ना विसारिये, जित दर सच्चे शोभा पाए। महला तीजा। सतगुर सेव सुख पाया, सत नाम गुण तास। गुरमति आप पछाणिया, राम नाम प्रगास। सचो सच कमावना वड्याई वड्डे पास। जियो पिंड सब तिसका, शिव करे अरदास। सच्चे सब सलाहना, सुखे सुख निवास। जप तप संजम मने माहे, बिन नावे त्रिग जीवास। गुरमति नाउ पाई है, मन मुख मोह विनाश। ज्यो पावे त्यो रास तू, नानक तेरा दास। पौड़ी। सब को तेरा तू सब सदा, तू सब ना रास। सब तुदे पासो मंग दे, नित कर अरदास। जिस तू दे तिस सब किछ, मिले इकना दूर है पास। तुद बाजो थाओ को नाही, जिस पासो मंगिए मन वेखो को निर्जास। सब तुदे नो सलाह दे, दर गुरुमुखा नो प्रगास। श्लोक महला तीजा। पंडित पढ़ पढ़ उच्चा फूकदा, माया मोह प्यार। अंतर ब्रह्म न ची नहीं, मन मूरख दावार। दूजे पाए जगत प्रबोध दा, न बुझे विचार। बिरथा जन्म गवाया, मर जमे वारो वार। महला तीजा। जिन्नी सतगुर सेविया, तिन्नी नाव पाया बूझो कर विचार। सदा सांत सुख मन वसे, चूके कूक पुकार। आपे नो आप खाए मन, निर्मल होवे गुर सबदी विचार। नानक शब्द रते से मुक्त है, हर जियो हेत प्यार। पौड़ी। हर की सेवा सफल है, गुरमुख पावे थाए। जिस हर पावे तिस गुर मिले, सो हर नाम त्याए। गुर सबदी हर पाए, हर पार लगाए। मन हट किन न पायो, पुछो वेदा जाए। नानक हर की सेवा सो करे, जिस लय हर लाए। श्लोक महला तीजा। नानक सो तूरा वरियाम, जिन विच्चों दुष्ट अंकरण मारिया। गुरमुख नाम सलाहे जन्म सवारिया। आप होवा सदा मुक्त, सब कुल निस्तारिया। सोहन सच द्वार, नाम प्यारिया। मन मुख मरे अंकार, मरण बिगारिया। सबो वर्ते हुकुम, क्या करें विचारिया। आपो दूजे लग खसम विसारिया। नानक बिन नावे सब दुख सुख विसारिया। महला तीजा। गुरपुरे हर नाम दिलाया, तिन विच्चों परम चुकाया। राम नाम हर कीरत गाई, कर चावन मद दिखाया। होमे मार एक लिव लागी, अंतर नाम बसाया। गुरमति जम जोहे न साके, साचे नाम समाया। सब आपे आप वर्ते करता, जो पावे सो नाई लाया। जन नानक नाम ले ता जीवे, बिन नामे खिन मर जाया। पौड़ी। जो मिलिया हर दीवान स्यों, सो सबनी दीवानी मिलिया। जिथे ओ जाए तिथे ओ सुरखरू, उसके मोह जिथे सब पापी तरिया। उस अंतर नाम निदान है,
नाम परवरिया, नाव पूजिए नाव मनिए नाए किलविक सब।

सो ऐसा हर नाम से आए मन मेरे जो सबना ऊपर हुक्म चलाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो अंति अवसर लय चढ़ाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो मन की तृष्णा सब भुख गवाए। सो गुरुमुख नाम जपिया वड पागी तिन निंदक दुष्ट सब कैरी पाए। नानक नाम अराध सबना ते वड़ा सब नामे अगे आन निवाए। श्लोक महला तीजा वेस करे कुरूप कुलखणी मन खोटे कूड़ियार तिरके पाने ना चले हुकम करे गावार। गुर के पाने जो चले सब दुख निवारण हार लिखिया मेट न सकिए जो तुर लिखिया करतार। मन तन सौंपे कंत को सब दे तरे प्यार बिन नावे किने न पाया देखो हृदय विचार। नानक सा सुवालियो सुलखणी जे रावी सिरजनहार। महला तीजा माया मोह गुवार है तिसदा ना दिसे उरवार ना पार। मन मुख अज्ञानी महा दुख पाए दे डुबे हर नाम विसार। पलके उठ बहु कर्म कमावे दूजे पाए प्यार सतगुरु सेवे अपना पौजल उतरे पार। नानक गुरमुख सच समावे सच नाम उरधार। पौड़ी हर जल तल मैयल भरपूर दूजा नाहे कोए हर आप बह करे न्याओ कुड़ियार सब मार कडोए। सचियारा दे वड्याई हर धर्म न्याओ की ओए सब हर की करो उस्तत जिन गरीब अनाथ राख लिए।

सतगुर कै पाए प्यार, सदा रावे फिर आपना सच्चे प्रेम प्यार। अत सुआलो सुंदरी शोभावंती नार, नानक नाम सुहागनी मेली मेलनहार। पौड़ी हर तेरी सब करे उसकत जिन फाफे काढ़िया, हर तुदनो करे सब नमस्कार जिन पापे ते राखिया। हर निमाणिया तू मान, हर डाडी हूँ तू डाडिया, हर अंकारिया मार निवाए मन मुख मूड सादिया। हर भगता दे वड़ियाई गरीब अनाथिया। श्लोक महला तीजा, सतगुर के पाने जो चले तिस वड़ियाई वड़ी होए, हर का नाम उत्तम मन वसे मेट न सके कोए। कृपा करे जिस आपनी तिस कर्म प्राप्त होए, नानक कारण करते वस है गुरमुख बूझे कोए। महला तीजा, नानक हर नाम जिनी आराध्या अंदिन हर लिवतार, माया बंदी खत्म की तिन अगे कमावे कार। पूरे पूरा कर छोड़िया हुक्म सवारन हार, गुर प्रसादी जिन बुझिया तिन पाया मोख द्वार। मनमुख हुक्म ना जाननी तिन मारे जम जंदार, गुरमुख जिन्नी आराध्या तिन्नी तरिया पौ जल संसार। सब अवगण गुणी मिटाया गुर आपे बख्शनहार। पौड़ी हर की भगता प्रतीत हर सब किस जानदा, हर जेवड़ नाही कोई जान हर धर्म विचारदा। कारा अंदेसा क्यों कीजे जा नाही अतर्म मारदा, सच्चा साहिब सच न्याओ पापी नर हारदा। साला हो भगत।

तानत सुत बड़ा होत है, इतना को ना जाने जे दिन दिन अवध कटत है। मोर मोर कर अधिक लाड कर, देखत ही जमराव हसे, ऐसा तैं जग परम लाया, कैसे बूझे जब मोया है माया। रहाओ कह कबीर छोड़ बिखिया रस, इस संगत ने चो मरना, रमैया जपो प्राणी अनत जीवन बाणी, इन विद पव सागर तरना, जा तिस पावे ता लागे पाओ, परम पुलावा विच्चों जाए, उपजे सहज ज्ञान मत जागे, गुर प्रसाद अंतर लिवलागे, इत संगत नाही मरना, हुकम पछाण ता कसमें मिलना। रहाओ दूजा श्री राज त्रिलोचन का, माया मोह मन अगलड़ा प्राणी, जरा मरण पौ विसर गया, कुटुंब देख बिगसे कमला ज्यों, पर कर जो है कपट नरा, दूरा आयो हो जमे तना, तिन आगलड़े में रहन न जाए, कोई कोई साजन आए कहे, मिल मेरे बीसला ले बाहरी वलाए, मिल मेरे रमैया मैं ले छड़ाए। रहाओ अनक अनक भोग राज बिसरे प्राणी, संसार सागर पे अमर पया, माया मूठा चेतस नाही, जन्म गवायो आलसिया, बिखम कोर पंख चालना प्राणी, रव सप तहना परवेसं, माया मोह तब बिसर गया, जा तजियले संसारं। आज मेरे मन प्रगट भया है, पेखियले तर्म राओ, तह कर दल करन महाबली, तिन आग लड़े में रहन न जाए, जे को मुंह उपदेश करत है, ता वन त्रिन रतड़ा नारायण, ए जी तू आपे सब किस जानदा, बदत त्रिलोचन रामैया। श्री राग भगत कबीर जियो का, अचरज एक सुनो रे पंडिया, अब किस कह न जाए, सुर नर गण गंधर्व जिन मोहे, त्रिभुवन मेखली लाए, राजा राम अनहद किंगरी बाजे, जाकी दिस्त नाद लिव लागे। रहाओ पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया, कनक कलश इक पाया, तिस में तार चुए अत निर्मल, रस में रसन चुआया, एक जो बात

रे नर गर्भ कुंडल जब आचत उर्द ध्यान लिव लागा मृतक पिंड पद मद ना एनस एक अज्ञान सोनागा ते दिन सम्मल कष्ट महा दुख अब चित अधिक पसारया गर्भ छोड़ मृत मंडल आया तो नरहर मनो बिसारया फिर पछतावेगा मूड़या तू कवन कुमत परम लागा चेत राम नाही जमपुर जाहेगा जन बिचरे अनरादा रहाओ बाल विनोद चिंद रस लागा खिन खिन मोह व्यापे रस मिस मेद अमृत दिख चाकी तो पंच प्रगट संतापे जप तप संजम छोड़ सुकृत मत राम नाम ना आराध्या उछलिया काम काल मत लागी तो आन सकत गल बांधिया तरुण तेज परत्रय मुख जो है सर अफसर ना पछाणिया उन मत काम महा बिख पूले पाप पुन ना पछाणिया सुत संपत देख एओ मन गर्भिया राम हृदय ते खोया अवर मर्त माया मन तोले तो पग मुख जन्म विगोया कुंडर केस कुसुम ते तौले सपत पताल की बाणी लोचन समय बुद्ध बल नाथी ता काम पवस माधानी ताते बिखे पई मत पावस काया कमल कुम लाना अवगत बाण छोड़ मृत मंडल तो पाछे पछताना निकुटी देह देख तुन उपजे मान करत नहीं बूझे लालच करे जीवन पद कारण लोचन कछु न सूझे साका तेज उड़िया मन पंखी कर आंगन ना

अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। जो पे हम ना पाप करंता, अहे अनंता, पतित पावन नाम कैसे हुंता। रहाओ तुम जो नायक आछो अंत

हर हर नाम में हर मन भाया, वड पागी हर नाम ते आया। गुरपूरे हर नाम सिद्ध पाई, को विरला गुरमत चले जियो। मैं हर हर खर्च लिया बन पल्ले, मेरा प्राण सिखाई सदा नाल चले। गुरपूरे हर नाम दृढ़ाया, हर नेचल हर तन पल्ले जियो। हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया, कोई आन मिलावे मेरे प्राण जीवाया। हों रह ना सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वह चले जियो। सतगुर मित्र मेरा बाल सखाई, हों रह ना सका बिन देखे मेरी माई। हर जियो कृपा करो गुर मेलो, जन नानक हर तन पल्ले जियो। माज महला चौथा। मधुसूदन मेरे मन तन प्राणा, हों हर बिन दूजा अवर ना जाना। कोई सज्जन संत मिले वड पागी, मैं हर तक प्यारा दसे जियो। हों मन तन खोजी पाल पलाई, क्यों प्यारा प्रीतम मिले मेरी माई। मिल सत संगत खोज दसाई, विच संगत हर प्रभु वसे जियो। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, हम बारिक दीन करो प्रतिपाला। मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा, गुर जल मिल कमल विकसे जियो। मैं बिन गुर देखे नींद ना आवे, मेरे मन तन वेदन गुर बिरहो लगावे। हर हर दया करो गुर मेलो, जन नानक गुर मिल रह सह जियो। माज

चौथा हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए हर हर नाम कथा नित सुनिए मिल सत्संगत हर गुण गाए जग पौजल दुत्तर तरिए जियो आओ सखी हर मेल करेहा मेरे प्रीतम का मैं दे स्नेहा मेरा मित्र सखा सो प्रीतम भाई मैं दसे हर नर हरिए जियो मेरी बेदन हर गुर पूरा जाने हौं रह ना सका बिन नाम वखाने मैं औखद मंत्र दीजै गुरपूरे मैं हर हर नाम उधरिए जियो हम चात्रिक दीन सतगुर शरणाई हर हर नाम बूंद मुख पाई हर जल निद हम जल के मीने जन नानक जल बिन मरिए जियो माज महला चौथा हर जन संत मिलो मेरे भाई मेरा हर प्रभ दसो मैं भूख लगाई मेरी श्रद्धा पूर जग जीवन दाते मिल हर दर्शन मन पी जय जियो मिल सत्संग बोली हर बाणी हर हर कथा मेरे मन भाणी हर हर अमृत हर मन पावे मिल सतगुर अमृत पी जय जियो वड पागी हर संगत पावे पागहीन प्रम चोटा खावे बिन पागा सत्संग न लब्बे बिन संगत मैल परी जय जियो मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे हर हर नाम दया मन तारे गुरमत नाम मीठा मन पाया जन नानक नाम मन पी जय जियो माज महला चौथा हर गुर ज्ञान हर रस हर पाया मन हर रंग राता हर रस पी आया हर हर नाम मुख हर हर बोली मन हर रस टुल टुल पौदा जियो आवो संत मैं गल मेल आईए मेरे प्रीतम की मैं कथा सुनाईए हर के संत मिलो मन देवा जो गुरबाणी मुख चौदा जियो वड पागी हर संत मिलाया गुरपूरे हर रस मुख पाया पागहीन सतगुर नहीं पाया मन मुख गर्भ जूनी नित पौदा जियो आप दयाल दया प्रवतारी मल हो मैं बिखिया सब निवारी नानक हट पट्टन विच काया हर लेंदे गुरमुख सौदा जियो माज महला चौथा हौं गुण गोविंद हर नाम ते आई मिल संगत मन नाम वसाई हर प्रभ अगम अगोचर स्वामी मिल सतगुर हर रस की चै जियो तन तन हर जन जिन हर प्रभ जाता जाए पुछा जन हर की बाता पाप मलोवा मल मल तोवा मिल हर जन हर रस पी चै जियो सतगुर दाते नाम दृढ़ाया वड पागी गुर दर्शन पाया अमृत रस सच अमृत बोली गुर पूरे अमृत ली चै जियो हर सत्संगत सतपुरख मिलाइए मिल सत्संगत हर नाम ते आइए नानक हर कथा सुनी।

तिसके हौवारियां मिल सत्संगत लद्दा हर सज्जन हों सतगुरु विट्टों कुमाइया जीओ जै जै देखा तै तै स्वामी तू कट कट रविया अंतर जामी गुरपूरे हर नाल दिखा लिया हों सतगुरु विट्टों सदवारिया जीओ एको पवन माटी सब एका जोत सबाइया सब इका जोत वरते पिन पिन नार लई किसे दीर लाइया गुर प्रसादी इक नदरी आया हो सतगुरु विट्टों बताया जीओ जन नानक बोले अमृत बाणी गुर सिखा कै मन प्यारी पानी उपदेश करे गुर सतगुर पूरा गुर सतगुर पर उपकारिया जीओ सत चौपदे महले चौथे के माज महला पंजवा चौक दे घर पहला मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई बिल्प करे चात्रिक की न्याई त्रिखा ना उतरे सांत ना आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो हों कोली जियो कोल कुमाई गुर दर्शन संत प्यारे जियो रहाओ तेरा मुख सुहावा जियो सह तुन बाणी चिर होआ देखे सारंग पानी पांच सौ देश जहां तू वस्या मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो हों कोली हों कोल कुमाई गुर सज्जन मीत मुरारे जियो रहाओ एक कड़ी ना मिलते ता कल युग होता हुण कद मिली है प्रिय तुद भगवंता मोहे रैन ना बिहावे नींद ना आवे बिन देखे गुर दरबारे जियो हों कोली जियो कोल कुमाई तिस सच्चे गुर दरबारे जियो रहाओ पाग हुआ गुर संत मिलाया प्रभ अविनाशी कर में पाया सेव करी पल चसा ना बिछड़ा जन नानक दास तुम्हारे जियो हों कोली जियो कोल कुमाई जन नानक दास तुम्हारे जियो रहाओ राग माज महला पंजवा सारुत सुहावी जित तुद समाली सो कम सुहेला जो तेरी काली सो रिदा सुहेला जित रिदे तू उठा सबना के दाता राजियो तू सांझा साहिब बाप हमारा नौ निद तेरे अखुट पंडारा जिस तू दे सो त्रिपत अघावे सोई भगत तुम्हारा जियो सबको आसे तेरी बैठा कट कट अंतर तू है उठा सबे सांझी वाल सदाइन तू किसे न दिसे बहरा जियो तू आपे गुरमुख मुक्त कराए तू आपे मनमुख जन्म पवाए नानक दास तेरे बलिहार है सब तेरा खेल दसहरा जियो माज महला पंजवा अनहद बाजे सहज सुहेला शब्द आनंद करे सद केला सहज गुफा में

पाणे हर गुण गुरमुख गावा, पाणे परम पवे बहु जूनी, सब किछ तिसे रजाई जियो, ना को मूरख ना को स्याणा, वरते सब किछ तेरा पाणा, अगम अगोचर बे अंक अथा।

ऊंच नीच करे प्रतपाला, नाम रसायन मंत्र पायण गुरुमुख अमृत पीवा जियो। दुख सुख प्यारे तुद त्याई, ए सुमत गुरु।

जीता, आत्मगढ़ बिखम तिना ही जीता, तुम दाते तुम पुरख बिदाते, खुद जेवड़ अवरना सूरा जियो। रेन संतन की मेरे मुख लागी, दुर्मत बिनसी कुबुद अपागी, सच कर बैस रहे गुण।

कर कृपा भगतन संग राते दिन सरैन ज्यों तुद त्याई एहो दान मोहे करना जीयो माटी अंधी सुरत समाई सब किश दिया पलिया जाई अनद बिनोद चोज तमासे तुद पावे सो होना जीयो जिस दा दित्ता सब किश लेना शक्ति अमृत भोजन खाना सेज सुखाली शीतल पवना सहज केल रंग करना जीयो सा बुद्ध दीजै जित विसरै नाही सा मत दीजै जित तुद त्याई सास सास तेरे गुण गावा ओट नानक गुर चरणा जीयो माज महला पंजवा सिफत सलाहन तेरा हुकम रजाई सो ज्ञान ध्यान जो तुद पाई सोई जप जो प्रभ जियो पावे पाणे पूर ज्ञाना जियो अमृत नाम तेरा सोई गावे जो साहिब तेरे मन पावे तू संतन का संत तुम्हारे संत साहिब मन माना जियो तू संतन की करे प्रतपाला संत खेले तुम संग गोपाला अपने संत तुद खरे प्यारे तू संतन के प्राणा जियो उन संतन के मेरा मन कुर्बाने जिन तू जाता जो तुद मन पाने तिनके संग सदा सुख पाया हर रस नानक तृप्त अघाना जियो माज महला पंजवा तू जल निद हम मीन तुम्हारे तेरा नाम बूंद हम चात्रिक तिखारे तुमरी आस प्यासा तुमरी तुम ही संग मन लीना जियो ज्यो बारिक पी खीर अगावे ज्यो निर्धन तन देख सुख पावे त्रिखावंत जल पीवत ठंडा त्यों हर संग इहो मन पीना जियो ज्यो अंधियार है दीपक परगासा परता चितवत पूरन आसा मिल प्रीतम ज्यो होत आनंदा त्यों हर रंग मन रंगीना जियो संतन मोको हर मार्ग पाया साध कृपाल हर संग गिजाया हर हमरा हम हर के दासे नानक शब्द गुरु सच दीना जियो माज महला पंजवा अमृत नाम सदा निर्मलिया सुखदाई दुख बिडारन हरिया अवर साध चख अगले देखे मन हर रस सब ते मीठा जियो जो जो पीवे सो तृप्तावे अमर होवे जो नाम रस पावे नाम निधान तिसे प्राप्त जिस शब्द गुरु मन बुठा जियो जिन हर रस पाया सो तृप्त अघाना जिन हर साध पाया सो नाए डुलाना तिसे प्राप्त हर हर नामा जिस मत पागी था जियो हर इकत हाथ आया वरसाने बहु तेरे तिस लग मुक्त पय कनेरे नाम निधाना गुरुमुख पाई है कहो नानक विरली डीठा जियो माज महला पंजवा निद सिद्ध रिद हर हर हर मेरे जन्म पदार्थ गैर गंभीर है लाख कोट खुशियां रंग रावे जो गुर लागा पाई जियो दर्शन पेखत पय पुनीता सगल उधारे पाई मीता अगम अगोचर स्वामी अपना गुर कृपा ते सच त्याई जियो जा को खोजे सर्व उपाए वड पागी दर्शन को विरला पाए ऊच अपार अगोचर थाना ओ महल गुरु देखाई जियो गैर गंभीर अमृत नाम तेरा मुक्त पया जिस हृदय सेरा गुरबंधन तिनके सगले काटे जन नानक सहज समाई जियो माज महला पंजवा प्रभ कृपा ते हर हर प्यावो प्रभु दया ते मंगल गावो उठत बैठत सोवत जागत हर त्याय सगल अवरदा जियो नाम औखद मोको साधु दिया किलबिख काटे निर्मल थिया आनंद पया निक्सी सब पीरा सगल बिना से दर्दा जियो जिसका अंग करे मेरा प्यारा सो मुक्ता सागर संसारा सत करे जिन

जब ते साधु संगत पाए गुर पेटत हो गई बलाए सास सास हर गावे नानक सतगुरु टाक लिया मेरा पड़दा जियो। माज महला पंजवा। ओत पोत सेवक संग राता प्रप्रत पाले सेवक सुखदाता पानी पखा पीसो सेवक कै ठाकुर ही का आहार जियो। काट सिलक प्रभ सेवा लाया हुकम साहिब का सेवक मन पाया सोई कमावे।

ठाकुर के सेवक हर रंग माने, जो किछ ठाकुर का सो सेवक का, सेवक ठाकुर ही संग जाहर जियो। अपने ठाकुर जो पहराया, बहुर न लेखा पुछ बुलाया, तिस सेवक के नानक कुर्बानी, सो गहर गंभीरा गहर जियो। माज महला पंजवा, सब किछ कर में बाहर नाही, बाहर टोले सो परम पुलाही, गुर प्रसादी जिन अंतर पाया, सो अंतर बार सुहेला जियो। चिम चिम वर्षे अमृत धारा, मन पीवे सुन शब्द बिचारा, अनद विनोद करे दिन राती, सदा सदा हर के लाजियो। जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया, साध कृपा ते सु का हरिया, सुमत पाए नाम ते आए, गुरमुख होए मेला जियो। जल तरंग ज्यो जले समाया, त्यों ज्योति संग ज्योत मिलाया, कहो नानक प्रम कटे किवाड़ा, बहुड़ ना होई है जौला जियो। माज महला पंजवा, तिस कुर्बानी जिन तू सुनिया, तिस बलिहारी जिन रसना पणिया, वार वार जाई तिस विटो, जो मन तन तुद आरा दे जियो। तिस चरण पखाली जो तेरे मार्ग चाले, नैन निहाली तिस पुरख दयाले, मन देवा तिस अपने साजन, जिन गुर मिल सो प्रबला दे जियो। सेवड पागी जिन तुम जाने, सब के मदे अलिपत निर्बाणे, साध के संग उन पौजल तरिया, सगल दूत उन सा दे जियो। तिनकी शरण परया मन मेरा, मान तान तज मोह अंधेरा, नाम दान दीजे नानक को, तिस प्रभ अगम अगा दे जियो। माज महला पंजवा, तू पेड़ साख तेरी फूली, तू सूखम होआ अस्थूली, तू जल निद तू फेन बुदबुदा, तुद बिन अवर न पाली है जियो। तू सूत मणिये भी तू है, तू गंठी मेर सिर तू है, आद मद अंत प्रभ तोई, अवर न कोई दिखा लिए जियो। तू निर्गुण सरगुण सुखदाता, तू निर्माण रसिया रंग राता, अपने कर सब आपे जाने, आपे तुद संभाली है जियो। तू ठाकुर सेवक फुन आपे, तू गुपत प्रगट प्रभ आपे, नानक दास सदा गुण गावे, एक पोरी नदर निहाली है जियो। माज महला पंजवा, सफल सोबाणी जित नाम वखाणी, गुर प्रसाद किने विरले जानी, तन सोवेला जित हर गावत सुनना, आए ते परवाना जियो। से नेत्र परवान जिनी दर्शन पेखा, से कर पले जिनी हर जस लेखा, से चरण सुहावे जो हर मार्ग चले, हों बल तिन संग पछाणा जियो। सुन साजन मेरे मीत प्यारे, साध संग खिन माहे उदारे, किलविक काट हुआ मन निर्मल, मिट गए आवन जाना जियो। दो कर जोड़ एक बिनो करी जाए, कर कृपा दुबदा पत्थर लीजे, नानक कहो प्रभ भय कृपाला, प्रभ नानक मन पाणा जियो। माज महला पंजवा, अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी, जलन बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो। सुख पया दुख दूर पराना, संत रसन हर नाम वखाना, दल थल नीर परे सर सुबर, बिरथा कोई न जाए जियो। दया तारी तिन सिरजन हारे, जी जंत सगले प्रत पारे, मेहरवान कृपाल दयाला, सगले तृप्त अघाए जियो। वन त्रिण त्रिभवन की तोन हरिया, करण हार खिन पीतर करिया, गुरमुख नानक तिसे अरादे, मन की आस पुजाए जियो। माज महला पंजवा, तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंदक तू मेरा प्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई, तांबो के आकारा जियो। तुमरी कृपा ते तुद पछाणा, तू मेरी ओट तू है मेरा माणा,
तुझ बिन दूजा अवर न कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। जी जंत सब तुद उपाए, जित जित पाना तित तित लाए, सब किछ कीता तेरा होवे, नाही किछ असाड़ा जियो। नाम ते आए महा सुख पाया, हर गुण गाए मेरा मन सीत लाया, गुरपूरे वजी वधाई, नानक जिता विखाड़ा जियो। माज महला पंजवा, जी प्राण प्रभ मने अधारा, भगत जीवे गुण गाए अपारा, गुण निधान अमृत हर नामा, हर त्याए त्याए सुख पाया जियो। मनसा तार जो करते आवे, साध संग जन्म मरण मिटावे, आस मनोरथ पूरे होवे, पेटत गुर दर्शाया जियो। अगम अगोचर किछ मित नहीं जानी, साधक सिद्ध त्यावे ज्ञानी, खुदी मिटी चूका पोलावा, गुर मन ही मैं प्रगटाया जियो। आनंद मंगल कल्याण निधाना, सुख सहज हर नाम वखाना, होए कृपाल स्वामी।

तू प्रीतम ठाकुर अथपारी तुमरे कर्तव्य तुम ही जानो तुमरी ओट गोपाला जियो। गुण गावत मन हरिया होवे कथा सुनत मल सगली खोवे पेटत संग साध संतन कह सदा जपो दयाला जियो। प्रभ अपना साथ साथ समारो ए मत गुर प्रसाद मन पारो तुमरी कृपा ते हुए परगाता सर्व मया प्रतपाला जियो। सत सत सत प्रभ सोई सदा सदा सद आपे होई चलत तुम्हारे प्रगट प्यारे देख नानक पए निहाला जियो। माज महला पंजवा हुक्मी वर्षण लागे मेहा साजन संत मिल नाम जपेहा शीतल सांत सहज सुख पाया ठांड पाई प्रभ आपे जियो। सब किछ बहुतो बहुत उपाया कर कृपा प्रभ सगल रजाया दात करो मेरे दातारा जी जंत सब त्रापे जियो। सच्चा साहिब सच्ची नाई गुर प्रसाद तिस सदा त्याई जन्म मरण पै काटे मोहा बिनते सोग संतापे जियो। सास सास नानक साला है सिमरत नाम काटे सब पाहे पूरन आस करी खिन पीतर हर हर हर गुण जापे जियो। माज महला पंजवा आओ साजन संत मीत प्यारे मिल गावे गुण अगम अपारे गावत सुनत सदे ही मुक्ते सो त्याये जिन हम किए जियो। जन्म जन्म के किल विख जावे मन चिंदे से ही फल पावे सिमर साहिब सो सच स्वामी रिजक सबस को दिए जियो। नाम जपत सर्व सुख पाये सब पौ बिन से हर हर त्याये जिन से व्या सो पार ग्रामी कारज सगले थिए जियो। आए पया तेरी शरणाई ज्यों पावे त्यों लह मिलाई कर कृपा प्रपक्ति लावो सच नानक अमृत पिए जियो। माज महला पंजवा पए कृपाल गोविंद गोसाई मेघ वर्षे सबनी थाई दीन दयाल सदा कृपाला ठाड पाई करतारे जियो। अपने जी जंत प्रत पारे ज्यो बार माता सम्मारे दुख पंजन सुख सागर स्वामी देत सगल आहारे जियो। जल थल पूर रहा मेरवाना सद बलिहार जाये कुर्बाना रैन दिन सत्य सदा ते आये जे खिन में सगल उधारे जियो। राख लिए सगले प्रभ आपे उतर गए सब सोग संतापे नाम जपत मन तन हरियावल प्रभ नानक नदर निहारे जियो। माज महला पंजवा जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे से अक्सल सोइन चुबारे जिथे नाम ना जपिए मेरे गोइंदा से नगर उजाड़ी जियो। हर रुखी रोटी खाए समाले हर अंतर बाहर नदर निहाले खाए खाए करे बद फैली जान विसु की वाड़ी जियो। संता सेती रंग न लाए साकत संग विकर्म कमाए दुलब दे कोई अज्ञानी जड़ अपनी आप उपाड़ी जियो। तेरी शरण मेरे दीन दयाला सुख सागर मेरे गुरु गोपाला कर कृपा नानक गुण गावे राखो शर्म असाड़ी जियो। माज महला पंजवा चरण ठाकुर के हृदय समाने कल कलेश सब दूर पयाने सांत सुख सहज तुन उपजी साधु संग निवासा जियो। लागी प्रीत ना टूटे मूले हर अंतर बार गया पर पूरे सिमर सिमर सिमर गुण गावा काटी जम की फासा जियो। अमृत वर्खे अनहद बाणी मन तन अंतर सांत समाणी त्रिपक अघाए रहे जन तेरे सतगुर किया दिलासा जियो। जिसका साथ तिसते फल पाया कर कृपा प्रभ संग मिलाया आवन जान रहे वड पागी नानक पूरन आसा जियो। माज महला पंजवा मियो पया परमेश्वर पाया जी जंत सब सुखी वसाया दया कलेस पया सुख साचा हर हर नाम समाली जियो।
जिसके से तिन ही प्रतपारे पार ब्रह्म प्रपैर खवारे सुनी बिनंती ठाकुर मेरे पूरन होई काली जियो। सर्व जिया को देवन हारा गुर प्रसादी नदर निहारा जल थल मैयल सब तृप्ताने साधु चरण पखाली जियो। मन की इच्छे पुजावन हारा सदा सदा जाई बलिहारा नानक दान किया दुख पंजन रते रंग रसाली जियो। माज महला पंजवा मन तन तेरा तन भी तेरा तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा जियो पिंड सब रास तुम्हारी तेरा जोर गोपाला जियो। सदा सदा तू है सुखदाई निव निव लागा तेरी पाई कार कमावा जे तुझ पावा जा तू दे दयाला जियो। प्रभ तुम ते लेना तू मेरा गहना जो तू दे सोई सुख सहना जिथे रखे बेकुंठ सिथाई तू सबना के प्रतपाला जियो। सिमर सिमर नानक सुख पाया आठ पहर तेरे गुण गाया सगल मनोरथ।

मेला जप अमृत नाम संत संग मेला करी मूरत सिमरत पल वंजे जीवन सफल तिथाई जियो। सिमरत नाम दोख सब लाके अंतर बाहर हर तरफ साथे तै पाओ परम खोया गुरपुर देखा सबनी जाई जियो। प्रभ समरथ वड ऊंच अपारा नौ निज नाम परे पंडारा आद अंत मद प्रभ सोई दूजा लवे न लाई जियो। कर कृपा मेरे दीन दयाला जाचित जाचे सादर वाला देह दान।

आपे खुद बिन अवर न कोई करते मैं तर ओत तुम्हारी जियो। रसना जप जप जीवे स्वामी पार ब्रह्म प्रभ अंतर जामी जिन सेव्या तिन ही सुख पाया सो जन्म न जुए हारी जियो। नाम अवखद जिन जन तेरे पाया जन्म जन्म का रोग गवाया हर कीर्तन गावो दिन राती सफल एहा है कारी जियो। दृष्ट तार अपना दास सवारिया कट कट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया इक्कत बिन होर दूजा नाही बाबा नानक ए मत सारी जियो। माज महला पंजवा मन तन दत्ता राम प्यारे सर्व सु दीजे अपना वारे आठ पैर गोविंद गुण गाये बिसर न कोई सासा जियो। सोई साजन मीत प्यारा राम नाम साध संग बिचारा साधु संग तरी जय सागर कटिये जम की फासा जियो। चार पदार्थ हर की सेवा पार जात जप अलख अपेवा काम क्रोध किल दुख गुर काटे पूरन होई आसा जियो। पूरन पाग पै जिस प्राणी साध संग मिले सारंग पानी नानक नाम वस्या जिस अंतर परवान गृहस्थ उदासा जियो। माज महला पंजवा सिमरत नाम हृदय सुख पाया कर कृपा पंक्ति प्रगटाया संत संग मिल हर हर जपिया बिन से आलस रोगा जियो। जा कै गृह नव निध हर पाई तिस मिलिया जिस पूर्व कमाई ज्ञान ध्यान पूरन परमेश्वर प्रभ सबना गल्ला जोगा जियो। जिन में थाप उठा पनहारा आप इकंती आप पसारा लेप नहीं जग जीवन दाते दर्शन डिठे लहन विजोगा जियो। अंचल लाए सब सिस्त्राई अपना नाव आप जपाई गुरबो हित पाया कृपा ते नानक तुर संजोगा जियो। माज महला पंजवा सोई करना जे आप कराए जिथे रखे सा पली जाए सोई सियाना सो पतवंता हुक्म लगे जिस लीठा जियो। सब परोई इकत तागे जिस लाए ले सो चरणी लागे ऊंड कवल जिस होए परगासे।

सुप्रसादी मन वसाई अंदिन सदा रहे रंग राता दर्श कैसो जी पावनिया पाप पुन की सार न जानी दूजे लागी परम पुलानी अज्ञानी अंधा मग न जाने फिर आवन जावनिया गुरु सेवा ते सदा सुख पाया हों मैं मेरा ठाक रहाया गुरु साखी मिटिया अंधियारा बजर कपाट खुलावनिया हों मैं मार मन वसाया गुर चरणी सदा चित लाया गुर कृपा ते मन तन निर्मल निर्मल नाम ते आवनिया जीवन मरना सब तू दैताई जिस बख्शे तिस दे वडियाई नानक नाम त्याय सदा तू जम्मन मरण सवारणिया माज महला तीजा मेरा प्रभ निर्मल अगम अपारा बिन तकड़ी तोले संसारा गुरमुख हो वे तोई बूझे गुण कह गुणी समावणिया हों वारी जियो वारी हर का नाम मन वसावणिया जो सच लागे से अंदन जागे दर्श कै शोभा पावणिया रहाओ आप सुने ते आपे वेखे जिसनो नजर करे सोई जन लेखे आपे लाए ले सो लागे गुरमुख सच कमावणिया जिस आप बुलाए सो किथे हथ पाए पूरब लिखिया सो मेकना ना जाए जिन सतगुर मिलिया से बड पागी पूरे कर्म मिलावणिया तेयड़े तन अंगिन सुती कंक विसारी अवगण मुती अंगिन सदा फिरे बिल लादी बिन फिर नींद न पावणिया तेयड़े सुखदाता जाता हो मैं मार गुर शब्द पछाता सेज सुहावी।

इर्बिक का थरा जन निर्मल दर सच्चे नाम सुहावणिया। लेखा मांगे ता किन दिए, सुख नाही फुन दुए तिए, आपे बख्श ले प्रभ साचा, आपे बख्श मिलावणिया। आप करे तै आप कराए, पूरे गुर के शब्द मिलाए, नानक नाम मिले वड्याई, आपे मेल मिलावणिया। माज महला तीजा, इको आप फिरे परछन्ना, गुरमुख वेखा ता एहो मन पिन्ना, तृष्णा तज सहज सुख पाया, एको मन वसावणिया। हों वारी जियो वारी, इकस क्यों चित लावणिया, गुरमति मन इकट कर आया, सच्चे रंग रंगावणिया। रहाओ एहो जग पूला तें आप पुलाया, इक विसार दूजे लोभाया, अन दिन सदा फिरे परम पूला, बिन नावे दुख पावणिया। जो रंग राते कर्म विदाते, गुर सेवा ते जुग चारे जाते, जिसनो आप दे वड्याई, हर कै नाम समावणिया। माया मोह हर चेते नाही, जमपुर बद्दा दुख सहाई, अन्ना बोला किछ नजर ना आवे, मन मुख पाप पचावणिया। इक रंग राते जो तुद आप लिव लाए, पाए भगत तेरे मन पाए, सतगुर सेवन सदा सुख दाता, सब इच्छा आप पुजावणिया। हर जियो तेरी सदा शरणाई, आपे बख्शे दे वड्याई, जम काल तिस नेड़ ना आवे, जो हर हर नाम ते आवणिया। अन दिन राते जो हर पाए, मेरे प्रभ मेले मेल मिलाए, सदा सदा सच्चे तेरी शरणाई, तू आपे सच बुझावणिया। जिन सच जाता से सच समाने,

काल ना चापे दुख ना संतापे ज्योति विच मिल जोत समाणी सुन मन सच समावने हों वारी जियो वारी हर कै नाए शोभा पावने सतगुर सेव सच चित लाया गुरमती सहज समावने रहाओ काया कच्ची कच्चा चीर हंडाए दूजे लागी महल ना पाए।

ते सच कमाए सतगुर सेवन से तनवंते ऐथे ओथे नाम समावनिया तै पाए सिंगार बनाए गुर प्रसादी महल कर पाए अन दिन सदा रवे दिन राती मजीठे रंग बनावनिया सबना पिर वसे सदा नाले गुर प्रसादी को नदर निहाले मेरा प्रभ अत ऊचो ऊचा कर कृपा आप मिलावनिया माया मोए इहो जग सुत्ता नाम विसार अंत विगुत्ता जिते सुत्ता सो जा गाए गुरमत सोजी पावनिया अप्यो पिए सो परम गवाए गुर प्रसाद मुकत गत पाए भगती रखा सदा बैरागी आप मार मिलावनिया आप उपाए संदै लाए लख चौरासी रिजक आप अपड़ाए नानक नाम से आए सच राते जो तिस पावे सो कार करावनिया माज महला तीजा अंदर हीरा लाल बनाया गुर के शब्द परख परखाया जिन सच पल्ले सच वखाने सच कसवटी लावनिया होवारी जियो वारी गुर की बाणी मन वसावनिया अंजन माहे निरंजन पाया ज्योति ज्योत मिलावनिया रहाओ इस काया अंदर बहुत पसारा नाम निरंजन अत अगम अपारा गुरमुख हो वै सोई पाए आपे बख्श मिलावनिया मेरा ठाकुर सच दिड़ाए गुर प्रसादी सच चित लाए सचो सच वरते सबनी थाई सच्चे सच समावनिया वे प्रवाहो सच मेरा प्यारा किलविख अवगुण काटन हारा प्रेम प्रीत सदा त्याय पै पाए भगत दृढ़ावनिया तेरी भगत सच्ची जे सच्चे पावे आपे दे ना पछो तावे सबना जिया का एको दाता सबदे मार जीवावनिया हर कुद बाजो मैं

दुखो दुख कमावणिया। आप करे किस आखे कोई, आखण जाइए जे पूला होई, नानक आपे करे कराए नामे नाम समावणिया। माज महला तीजा आपे रंग हर रंग चढ़ाए, मन तन रत्ता रसना रंग चलूली, पै पाए रंग चढ़ावणिया। हौ वारी जियो वारी निरपौ मन वसावणिया, गुर कृपा से हर निरपौ त्याया, बिख पौ जल सब तरावणिया। रहाओ मन मुख मुग्ध करें चतुराई, नाता तोता थाए ना पाई, जेहा आया तेहा जाती, कर अवगण पछोतावणिया। मन मुख अंधे किछु न सूजे, मरण लिखाए आए नहीं बूझे, मन मुख कर्म करे नहीं पाए, बिन नावे जन्म गवावणिया। सच करनी शब्द है सार, पूरे गुर पाईए मोख द्वार, अंधिन बाणी शब्द सुनाए, सच राते रंग रंगावणिया। रसना हर रस राती रंग लाए, मन तन मोहया सहज सुभाए, सहजे प्रीतम प्यारा पाया, सहजे सहज मिलावणिया। जिस अंदर रंग सोई गुण गावे, गुर कै शब्द सहजे सुख समावे, हौं बलिहारी सदा तिन विटो, गुर सेवा चित लावणिया। सच्चा सच्चो सच पति जै, गुर प्रसादी अंदर पी जै, बैठ सुखान हर गुण गावे, आपे कर सत मनावणिया। जिसनो नजर करे सो पाए, गुर प्रसादी हो मैं जाए, नानक नाम वसे मन अंतर, दर सच्चे सोभा पावणिया। माज महला तीजा सतगुर सेवे वड्डी वड्याई, हर जी अचिंत वसे मन आई, हर जी ओ सफलियो बिरख है अमृत, जिन पीता तिस तिखा लहावणिया। हौ वारी जियो वारी सत संगत मेल मिलावणिया, हर सत संगत आपे मेल है, गुर सबदी हर गुण गावणिया। रहाओ सतगुर सेवी शब्द सुहाया, जिन हर का नाम मन वसाया, हर निर्मल हो मैं मैल गवाए, दर सच्चे शोभा पावणिया। बिन गुर नाम न पाया जाए, सिद्ध साधक रहे बिन लाए, बिन गुर सेवे सुख न होवी, पूरे पाग गुर पावणिया। एहो मन आरसी कोई गुरमुख वेखे, मोर्चा ना लागे जाहो मैं सोखे, अनहत बाणी निर्मल शब्द बजाए, गुर शब्दी सच समावणिया। बिन सतगुर क्यों ना देखिया जाए, गुर कृपा कर आप जिता दिखाए, आपे आप मिल रहया, सहजे सहज समावणिया। गुरमुख होवे सो इक्कस क्यों लिवलाए, दूजा परम गुर शब्द जलाए, काया अंदर वणज करे वा पारा, नाम निधान सच पावणिया। गुरमुख करनी हर कीरत सार, गुरमुख पाए मोख द्वार, अंधिन रंग रता गुण गावे, अंदर महल बुलावणिया। सतगुरु दाता मिले मिलाया, पूरे पाग मन शब्द वसाया, नानक नाम मिले वड्याई, हर सच्चे के गुण गावणिया। माज महला तीजा आप बंजाए ता सब किछ पाए, गुर सबदी सच्ची लिवलाए, सच वणन जै सच संग्रह, सच व्यापार करावणिया। हौ वारी जियो वारी हर गुण अंधिन गावणिया, हौ तेरा तू ठाकुर मेरा, शब्द वड्याई देवणिया। रहाओ वेला वक्त सब सुहाया, जित सच्चा मेरे मन भाया, सच्चे सेवे सच वड्याई, गुर कृपा ते सच पावणिया। पाओ भोजन सतगुरु तुथे पाए, अनरस चूके हर रस मन वसाए, सत संतोख सहज सुख बाणी, पूरे गुरते पावणिया। सतगुरु ना सेवे मूरख अंध गवारा, फिर ओए किथों पाएन मोख द्वारा, मर मर जमे फिर आवे, जमदर चोटा खावणिया। शब्दे साफ जाने ता आप पछाणे, निर्मल बाणी शब्द वखाणे, सच्चे सेव सदा सुख पाएन, नौनिध नाम मन वसावणिया। सो थान सुहाया जो हर मन भाया, सत संगत बह हर गुण गाया, अंधिन हर सालाहे साचा, निर्मल नाद वजावणिया। मन मुख खोटी रास खोटा पासारा, कूर कमावन

गुर के सब सदर है समाए सच सलाहे सब खट अंतर सचो सच सुहावणिया सच सलाही सदा हजूरे गुर के शब्द रहा पर पूरे गुर प्रसादी सच नदरी आवे सच्चे ही सुख पावणिया सच मन अंदर रहा समाए सदा सच ने चल आवे न जाए सच्चे लागे सो मन निर्मल गुरमती सच समावणिया सच सलाही अवर न कोई जित सेवे सदा सुख होई नानक नाम रते विचारी सचो सच कमावणिया माज महला तीजा निर्मल शब्द निर्मल है बाणी निर्मल जोत सब माहे समाणी निर्मल बाणी हर सा लाही जप हर निर्मल मैल गवावणिया हों वारी जियो वारी सुख दाता मन वसावणिया हर निर्मल गुर सब सलाही शब्दो सुन पिसा मिटावणिया रहाओ निर्मल नाम वस्या मन आए मन तन निर्मल माया मोह गवाए निर्मल गुण गावे नित साचे के निर्मल नाद बजावणिया निर्मल अमृत गुर ते पाया विच्चों आप मुआ सिखे मोह न माया निर्मल ज्ञान ध्यान अत निर्मल निर्मल बाणी मन वसावणिया जो निर्मल सेवे सो निर्मल होवे होमे मैल गुर शब्दे तोवे निर्मल वाजे अनहद तुन बाणी दर सच्चे शोभा पावणिया निर्मल ते सब निर्मल होवे निर्मल मनुआ हर शब्द पर होवे निर्मल नाम लगे बड़ पागी निर्मल नाम सुहावणिया सो निर्मल जो शब्दे सो है निर्मल नाम मन तन मोहे सच नाम मल कदे न लागे मुख उजल सच करावणिया मन मैला है दूजे पाए मैला चौका मैले छाए मैला खाए फिर मैल वधाए मन मुख मैल दुख पावणिया मैले निर्मल सब हुक्म सवाए से निर्मल जो हर साचे भाए नानक नाम वसै मन अंतर गुरमुख मैल चुकावणिया माज महला तीजा गोविंद उजल उजल हंसा मन बाणी निर्मल मेरी मनसा मन उजल सदा मुख सो है अत उजल नाम ते आवणिया हों वारी जियो वारी गोविंद गुण गावणिया गोविंद गोविंद कह दिन राती गोविंद गुण शब्द सुहावणिया रहाओ गोविंद गावे सह सुबाए गुर कै पै उजल होमे मल जाए सदा आनंद रहे भगत करे दिन राती सुन गोविंद गुण गावणिया मनुआ नाचे भगत दृढ़ाए गुर कै शब्द मने मन मिलाए सच्चा ताल पूरे माया मोह चुकाए शब्दे नृत करावणिया ऊंचा कूके तने पछाड़े माया मोह जोहया जमकाले माया मोह इस मने नचाए अंतर कपट दुख पावणिया गुरमुख पगत जा आप कराए तन मन दाता सह सुभाए बाणी वजे शब्द वजाए गुरमुख पगत थाए पावणिया बहुताल पूरे वाजे वजाए ना को सुने ना मन वसाए माया कारण पिड़ बंद नाचे दूजे पाए दुख पावणिया जिस अंतर प्रीत लगे सो मुक्ता इंद्री वस सच संजम जुगता गुर कै शब्द सदा हर त्याए एहा भगत हर पावणिया गुरमुख भगत जुग चारे होई होरत भगत ना पाए कोई नानक नाम गुर भगती पाईए गुर चरणी चित लावणिया माज महला तीजा सच्चा सेवी सच सलाही सच्चे नाए दुख कभी नाही सुख दाता सेवन सुख पायन गुरमत मन वसावणिया हों वारी जियो वारी सुख सह समाद लगावणिया जो हर सेवे से सदा सोहे शोभा सुरत सुहावणिया रहाओ सबको तेरा भगत कहाए सही भगत तेरे मन पाए सत बाणी तुदे सलाहन रंग राते भगत करावणिया सबको सच्चे हर जियो तेरा गुरमुख मिले ता चूके फेरा जां तुद पावे ता नाए रचावे तू आपे नाओ जपावणिया
गुरमति हर मन वसाया, हरख सोग सब मोह गवाया, इक स्यों लिव लागी सधी हर नाम मन वसावणिया। भगत रंग राते सदा तेरे चाए, नौ निद नाम वखरा मन आए, पूरे पाग सतगुर पाया सबदे मेल मिलावणिया। तू दयाल सदा सुखदाता, तू आपे मेले गुरमुख जाता, तू आपे देवे नाम वडाए, नाम रते सुख पावणिया। सदा सदा साचे तुद सलाहे, गुरमुख जाता दूजा को नाही, एक स्यो मन रहा समाए, मन मने मन है मिलावणिया। गुरमुख होवे सो साला है, साचे ठाकुर वे परवाहे, नानक नाम वसे।

न होए, तू कर कर वेखे जाने सोए, आपे करे कराए करता, गुरमत आप मिलावणिया। कामन गुणवंती हर पाए, पै पाए सिगार बनाए, सतगुरु सेव सदा सुहागण, सच उपदेश समावणिया। शब्द विसारण तिना ठौर न ठाओ, तम पूले ज्यों सुन्ने कर पाओ, हलत पलत तिनी दोवे गवाए, दुखे दुख विहावणिया। लिख दिया कागद मस कोई, दूजे पाए सुख पाए न कोई, कूड़ लिखे ते कूड़ कमावे, जल जावे कूड़ चितलावणिया। गुरमुख सच्चो सच लिखे विचार, से जन सच्चे पावे मुख द्वार, सच कागज कलम मसवाणी, सच लिख सच समावणिया। मेरा प्रभ अंतर बैठा वेखे, गुर प्रसादी मिले सोई जन लेखे, नानक नाम मिले वड्याई, पूरे गुरते पावणिया। माज महल है तीजा, आत्म राम प्रवास गुरते होवे, होमे मैल लागी गुर शब्दी खोवे, मन निर्मल अंदिन पगती राता, पगत करे हर पावणिया। हौ वारी जियो वारी, आप पगत करन अवरा पगत करावणिया, तिना पगत जना को सदा नमस्कार की जय, जो अंदिन हर गुण गावणिया। रहाओ आपे करता कारण कराए, जित पावे तित पारे लाए, पूरे पाग गुर सेवा होवे, गुर सेवा ते सुख पावणिया। मर मर जीवे ता किछ पाए, गुर प्रसादी हर मन वसाए, सदा मुक्त हर मन वसाए, सहजे सहज समावणिया। बहु कर्म कमावे मुक्त न पाए, देश अंतर पवे दूजे पाए खुआए, बिरथा जन्म गवाया कपटी, बिन शब्दे दुख पावणिया। तावत राखे ठाक रहाए, गुर प्रसादी परम पद पाए, सतगुरु आपे मेल मिलाए, मिल प्रीतम सुख पावणिया। एक कूड़ लागे कूड़े फल पाए, दूजे पाए बिरथा जन्म गवाए, आप डूबे सगले कुल डूबे, कूड़ बोल बिखावणिया। इस तन में मन को गुरमुख देखे, पाए पगत जा हो में सोखे, सिद्ध साधिक मोन तारी रहे लिव लाए, तिन भी तन में मन ना दिखावणिया। आप कराए करता सोई, होर के करे कीते क्या होई, नानक जिस नाम देवे सो लेवे, नामो मन वसावणिया। माज महला तीजा, इस गुफा में अकुट पंडारा, तिस विच वसे हर जियो अलख अपारा, आपे गुपत प्रगट है आपे, गुर शब्दी आप वंजावणिया। हौ वारी जियो वारी, अमृत नाम मन वसावणिया, अमृत नाम महा रस मीठा, गुरमती अमृत पियावणिया। रहाओ हौ में मार बजर कपाट खुलाया, नाम अमोलक गुर प्रसादी पाया, बिन शब्दे नाम न पाए कोई, गुर कृपा मन वसावणिया। गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चामन अज्ञान अंधेर गवाया, ज्योति ज्योत मिली मन मान्या, हर दर शोभा पावणिया। शरीरों पालन को बाहर जाए, नाम नाल है बहुत बेगार दुख पाए, मन मुख अंधे सूजे नाही, फिर किर आए गुरमुख वत पावणिया। गुर प्रसादी सच्चा हर पाए, मन तन वेखे हो में मैल जाए, बैस सुतान सद हर गुण गावे, सच्चे शब्द समावणिया। नौ दरखा के तावत रहाए, दसवें निज करवासा पाए, ओथे अनहद शब्द बजे दिन राती, गुरमती शब्द सुनावणिया। बिन शब्दे अंतर आनेरा, ना वसल है ना चूके फेरा, सतगुर हथ कुंजी होरत दर खुले नाही, गुर पूरे पाग मिलावणिया। गुपत प्रगट तू सबनी थाई, गुर प्रसादी मिल सोजी पाई, नानक नाम सलाहे सदा तू, गुरमुख मन वसावणिया। माज महला तीजा, गुरमुख मिले मिलाए आपे, काल न जो है दुख न संतापे, हौमे मार बंधन सब तोड़े, गुरमुख शब्द सुहावणिया। हौ वारी जियो वारी, हर हर नाम सुहावणिया,
गुरमुख गावे गुरमुख नाचे हर से ती चित लावण्या रहाओ। गुरमुख जीवे मरे प्रवान आर जा ना छीजे शब्द पछाण। गुरमुख मरे न काल न खाए गुरमुख सच समावण्या। गुरमुख हर दसो बाबाए गुरमुख विच्चों आप दवाए आप करे कुल सगले तारे गुरमुख जन्म सवारण्या। गुरमुख दुख कदे ना लगे शरीर गुरमुख होमे चूके पीर। गुरमुख मन निर्मल फिर मैल ना लागे गुरमुख सह समावण्या। गुरमुख नाम मिले वड्याई गुरमुख गुण गावे शोभा पाई।

आपे मारे आप जीवाए, आपे मेले मेल मिलाए, सेवा ते सदा सुख पाया, गुरुमुख सहज समावणिया। आपे ऊंचा ऊंचो होई, जिस आप विखाले सो वेखे कोई, नानक नाम वसै कट अंतर, आपे वेख विखालणिया। माज महला तीजा, मेरा प्रभ पर

जग जीवन मन वसावणिया, हर जग जीवन निरपौ दाता, गुरमत सहज समावणिया, रहाओ कर मैं करती तौल पताला, कर ही मैं प्रीतम सदा है बाला, सदा आनंद रहे सुख दाता, गुरमत सहज समावणिया, काया अंदर हो मैं मेरा, जमन मरण न चूके फेरा, गुरमुख हो वैसो हो मैं मारे, सच्चो सच त्यावणिया, काया अंदर पाप पुन दोए पाई, दो ही मिलके सृष्ट उपाई, दो में मार जाए इक्कत कर आवे, गुरमत सहज समावणिया, कर ही माहे दूजे पाए अनेरा, चानन होवे छोड़े हो मैं मेरा, प्रगट सब रह सुख दाता, अंदर नाम ते आवणिया, अंतर जोत प्रगट पासारा, गुर साखी मिटिया अंधियारा, कमल विगास सदा सुख पाया, ज्योति जोत मिलावणिया, अंदर महल वतनी परे पंडारा, गुरमुख पाए नाम अपारा, गुरमुख वन जे सदा वपारी, लाहा नाम सद पावणिया, आपे वस राखे आपे दे, गुरमुख वणजे केई के, नानक जिस नजर करे सो पाए, कर कृपा मन वसावणिया, माज महला तीजा, हर आपे मेले सेव कराए, गुर के शब्द पाओ दूजा जा।

सच्चा नाम सदा है निर्मल, गुर शब्दी मन वसावण्या रहाओ। आपे गुरदाता कर्म विदाता, सेवक सेवे गुरमुख हर जाता। अमृत नाम सदा जन सोवे, गुरमत हर रस पावण्या। इस गुफा में एक थान सुहाया, पूरे गुर हो में परम चुकाया। अंदिन नाम सलाहन रंग राते, गुर कृपा ते पावण्या। गुर के शब्द एहो गुफा विचारे, नाम निरंजन अंतर वसे मुरारे। हर गुण

संगत होई आसरे सगले कुल तारे हर नाम मन वसावणिया हो वारी जियो वारी हर रस चक साध पावणिया हर रस चाखे से जन निर्मल निर्मल नाम ते आवणिया रहाओ सो नेह कर्मी जो शब्द विचारे अंतर तत ज्ञान हो मैं मारे नाम पदार्थ नौ निद पाए त्रै गुण मेच समावणिया हो मैं करे ने कर्मी ना होवे गुर प्रसादी हो मैं खोवे अंतर विवेक सदा आप विचारे गुर शब्दी गुण गावणिया हर सर सागर निर्मल सोई संत चुगे नित गुरमुख होई इस नाम करे सदा दिन राती हो मैं मैल चुकावणिया निर्मल हंसा प्रेम प्यार हर सर वसे हो मैं मार एनस प्रीत सबद साचे हर सर्वासा पावणिया मन मुख सदा बग मैला हो मैं मल लाई इस नाम करे पर मैल न जाई जीवत मरे गुर शब्द विचारे हो मैं मैल चुकावणिया रतन पदार्थ करते पाया पूरे सतगुर शब्द सुनाया गुर प्रसाद मिटिया अंधियारा फट चानन आप पछानणिया आप उपाय तै आपे वेखे सतगुर सेवे सो जन लेखे नानक नाम वसै कट अंतर गुर कृपा ते पावणिया माज महला तीजा माया मोह जगत सवाया तै गुण दीसे मोहे माया गुर प्रसादी को विरला बूजे चौथे कद लिवलावणिया हौ वारी जियो वारी माया मोह शब्द जलावणिया माया मोह जलाए सो हर्षो चित लाए हर दर मैली सो बा पावणिया रहाओ देवी देवा मूल है माया सिमरत फास जिन उपाया काम क्रोध पथरिया संसारे आए जाए दुख पावणिया तिस विच ज्ञान रतन इक पाया गुर प्रसादी मन वसाया जप सत संजन सच कमावे गुर पूरे नाम ते आवणिया पेयड़े तन परम पुलाणी दूजे लागी फिर पछो ताणी हलक पलक

गुर प्रसाद करे नाम देवे नामे नाम समावणिया। तू आपे सच्चा सृजनहारा भगती परे तेरे भंडारा गुरमुख नाम मिले मन पीजे सहज समाध लगावणिया। आन दिन गुण गावा प्रभ तेरे तुझ साला ही प्रीतम मेरे तुझ बिन अवर न कोई जाचा गुर प्रसादी तू पावणिया। अगम अगोचर मित नहीं पाई अपनी कृपा करें तू लह मिलाई।

गुरुमुख सदा रह रंग राती मिल सच्चे शोभा पावणिया। मन मुख कर्म करे अंकारी जुए जन्म सब बाजी हारी अंतर लोभ महा गुबारा फिर आवन जावणिया। आपे करता दे वड़ियाई जिनको आप लिखत तुर पाई नानक नाम मिले पौ पंजन गुर सबदी सुख पावणिया। माध महला पंजवा कर पहला अंतर अलख ना जाई लखिया नाम रतन लै गुजा रखिया अगम अगोचर सब।

सोतम ममता सो वड साहा जो गुर चरणी मन लावण्या। पहलो देते रिजक समाहा पिछो देते जंत उपाहा तुझे वरदाता अवर न स्वामी लवे न कोई लावण्या। जिस तू तुथा सो तुद त्याए सात जना का मंत्र कमाए आप करे सगले कुल तारे तिस दरगे खाक न पावण्या। तू वड्डा तू ऊंचो ऊंचा तू बेअंत अत मूचो मूचा।

कौन सो बत्ता, कौन सो गिरही, कौन उदासी, कौन सो कीमत पाए जियो। किन बिद बांदा, किन बिद छूटा, किन बिद आवन जावन टूटा, कौन कर्म कौन नेह कर्मा, कौन सो कह कहाए जियो। कौन सो सुखिया, कौन सो दुखिया, कौन सो सन्मुख।

कौन सो चाल जित पार ब्रह्म ते आए, किन विद कीर्तन गाए जियो। गुरुमुख मुक्ता गुरुमुख जुगता, गुरुमुख ज्ञानी गुरुमुख बक्ता, तन गिर ही उदासी गुरुमुख, गुरुमुख कीमत पाए जियो। होमे बांदा गुरुमुख चूटा, गुरुमुख आन जान टूटा, गुरुमुख कर्म गुरुमुख ने कर्मा, गुरुमुख करे सो सुभाए जियो। गुरुमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरुमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया, गुरुमुख मिलिए मनमुख विचरे, गुरुमुख विद प्रगटाए जियो। गुरुमुख अक्षर जित तारत रहता, गुरुमुख उपदेश दुख सुख सम सहता, गुरुमुख चाल जित पार ब्रह्म ते आए, गुरुमुख कीर्तन गाए जियो। सगली बंस बनाई आपे, आपे करे कराए थापे, इकस से होयो अनंता, नानक एकस माए समाए जियो। माज महला पंजवा, प्रभ अविनाशी ता क्या काड़ा, हर परवंता ता जन खरा सुखाला, जी प्राण मान सुख दाता, तू करे सोई सुख पावनिया। हों वारी जियो वारी, गुरुमुख मंतन पा।

चाड़े कर कृपा दास नगर निहाले गुण गावे पूरन अविनाशी कह सुन तोट ना आवणिया ऐसे ओथे तू है रखवाला मात गर्भ में तुम ही पाला माया अगर न पोहे तिनको रंग रते गुण गावणिया क्या गुण तेरे आख समाली मंतन अंतर तुद नगर निहाली तू मेरा मीत।

तू साहिब सरण सुखदाता सत्संगत जप प्रगटाणिया तू ऊंच अथाह अपार अमोला तू साचा साहिब दास तेरे गोला तू मीरा साची ठकुराई नानक बल बल जावणिया माज महला पंजवा कर दूजा नित नित दया संभालिए मूल न मनो विसारिए रहाओ संता संगत पाइए जित जम के पंख न जाइए तोसा हर का नाम।

सेव संत साध के सगल मनोरथ पूरे कट कट एक वर्तदा जल फल महियल पूरे पाप विनाशन सेविया पवित्र संतन की दूरे सब छदाई खसम आप हर जप पई थरूरे करते किया कपाव सो दुष्ट मोए होए मूरे।

समय जित कर हर कंस ना सकते पथ नगर से ग्राम सब सिगार कंबोल रस सन देही सब खाम कब स्वामी कंक विहूनिया।

वैसाख सुहावा तां लगे जा संत पेटे हर सोए। हर जेठ जुड़न दा लोड़ी है जिस अग्गे सब निवल। हर जेठ जुड़न दा लोड़ी है।

मानन हर जेठ रंगीला तिस्तनी जिसके पाग मथन असार तपंदा तिस लगे हर नाम जिन्ना पास असार तपंदा तिस लगे।

प्रभ तुध बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास असार सुहंदा किस लगे, जिस मन हर

धर्म मिलावन हार जिन्नी सखिए प्रभ पाया हौ तिनके सब बलिहार नानक हर जी मया कर शब्द सवारन हार सावन तिना सुहागनी जिन राम नाम उरहार पादोए परम पुलाणिया दूजे लगा हेत लख सिगार बनाया।

प्रभ शरणागती चरण बोवित प्रभ देत से पादों नरक न पाई है गुर रखन वाला हेत।

इच्छ पुनी वड पागिनी वर पाया हर राय। मिल सैया मंगल गावही गीत गोविंद अलाए। हर जेहा अवर न दिसई कोई दूजा लवे न लाए। हालत पलत सब

हर वेलो सज्जन सैन जो जी हर ते विछड़े से सुख न वसन पैन हर तिर दिन चैन न पाए खोज दिखे सब गैन आप कमाने विछड़ी दोष न काहू देन।

नानक जीवै जप हरि दोष सबे ही हंत दिन रैन जिसना विसरै सो हरिया होवै जंत। सर्व कला प्रभ पूर्णो मंद निमाणी थाओ हर ओट गही मन

खेड, पंजवे खान पीन की तात, छेवे कामना पुछे जात, सतवे संज किया परवास, अठवे क्रोध हुआ तन ना।

कर होवे कारक करी न जाए नानक गुर बिन नाहे पत पत बिन पार न पाए। महला दूजा देंगे थावो दिता चंगा मन मुख ऐसा जानिए सुरत मत चतुराई ताकि क्या कर आंख वखाणिए अंतर बहके कर्म कमावे सोचो कुंडी जानिए जो कर्म कमावे तिस कर्म नाव होवे पाप कमाने पापी जानिए। तू आपे खेल करे सब करते क्या दूजा आंख वखाणिए जिचर तेरी जोत तिचर ज्योति विच तू बोले विन ज्योति कोई किछ करो दिखा सियाणिए नानक गुरमुख नदरी आया हर इको सुगुण सुजानिए। पौड़ी तुद आपे जगत उपाय कै तुद आपे तंदे लाया मोठ गौली पाए कै तुद आपो जगत खुआया।

मर जम में आया जाया दिन सतगुर मोह न टूटई सब थके कर्म कमाया गुरमति नाम ति आई है सुख रजा जा तुद पाया कुल उधारे अपना तन जने दी माया शोभा सुरत

गल लगे ताए तैके चरण कर पाव के लोइन सुरत करे नानक कह सियाणिए इव कंत मिलावा होए पौड़ी। सदा सदा तू एक है तुझ दूजा खेल रचाया हौ मैं गर्व उपाय कह लोभ अंतर जनता पाया ज्यों पावे त्यों रख तू सब करे तेरा।

पर पहरा तोवा सदाकार बड़ा रत्ता पीला काला बेदा करी पुकार होए कुचील रामल तारी दुर्मत मत विकार ना हो ना मैं ना हो होवा नानक शब्द विचार महला पहला वस्त्र पखाल पखाले काया आपे संजम होवे अंतर मैल लगी नहीं जाने बारो मल मल तोवे अंदा फूल पया जम जाने वक्त पराई अपनी कर जाने हो मैं विच दुख काले नानक गुरु

हंस संजोग मेल मिलाया, तिन्ही किया विजोग जिन उपाया, मूर्ख भोगे भोग दुख सवाया, सुखों उठे रोग पाप कमाया, हर्षों सोग विजोग उपाय खपाया, मूर्ख गणित गणाए चगड़ा पाया, सतगुर हथ निबेड़ चगड़ चुकाया, करता करे सोहोग न चले चलाया। श्लोक महला पहला। ऊर बोल मुर्दार खाए, अवरी नो समझावन जाए, मुठा आप मुहाए साथ है, नानक ऐसा आगू जापे। महला चौथा। जिस दे अंदर सच है, सो सच्चा नाम मुख सच अलाए, ओ हर मार्ग आप चलदा, होर नानो हर मार्ग पाए। जे अग्गे तीर्थ होए ता मल लह, छप्पड़ नाते सगरी मल लाए, तीर्थ पूरा सतगुरु जो अंदिन हर हर नाम के आए, ओ आप छुटा कुटुंब स्यो दे हर हर नाम सब सृष्टि छदाए, जन नानक तिस बलिहारण जो आप जपे अवरा नाम जपाए। पौड़ी। एक कंद मूल चुन खाए वन खंड वासा, एक पगवा वेश कर फिरे जोगी सन्यासा, अंदर तृष्णा बहुत छादन भोजन की आशा, बिरथा जन्म गवाए न गिरही ना उदासा, जमकाल सिरो ना उतरे त्रिविद मनसा, गुरमति काल ना आवे नेड़े जा होवे दासन दासा, सच्चा शब्द सच मन कर ही मह उदासा, नानक सतगुर सेवन अपना से आशा ते निराशा। श्लोक महला पहला। जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत, जो रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल चीत, नानक नाम खुदाई का दिल हच्छे मुख ले हो अवर दिव

पाओ। सुर्ग दिया मोहनिया स्त्रियां होवन नानक सबो जाओ। पीतू है सालाहना आसन लह न चाओ। पौड़ी बद शैली गैबाना कसम ना जानई। सो कही है देवाना आप ना पछाणई। कल बुरी संसार वादे खपी है विर नावे बेकार परमे पची है। राह दो में इक जाने सोई सिज सी। कुफर गो कुफराने पया गज सी। सब दुनिया सुबहान सच समाई है। सिजे दर दीवान आप गवाई है। महला पहला श्लोक। सो जीव्या जिस मन वस्या सोए। नानक अवर न जीवे कोए। जे जीवे पत लखी जाए। सब हराम जेता किछ खाए। राज रंग माल रंग।

क्या सोए, क्या मेवा, क्या घ्यो, गुड़ मिठा, क्या मैदा, क्या मांस, क्या कपड़, क्या सेज खाली, कीजे भोग विलास, क्या लश्कर, क्या नेब खवासी, आवे महली वास, नानक सच्चे नाम विण, सबे तोल विनाश, पवड़ी जाति दे क्या हाथ सच परखिए, मोहरा होवे हाथ मरिए चखिए, सच्चे की सरकार जुग जुग जानिए, हुक्म मने सिरदार दर दीवानिए, खुरमानी है कार खसम पठाया, तबल बाज बीचार सबक सुनाया, इक होए असवार इकना साखती इक

गंद बोले सच कोए, मोया गंद नेकी सत होए। एस गंद वरते संसार, मूरख गंद पवे मोहे मार। नानक आखे एहो विचार, सिफती गंद पवे दरबार। पौड़ी आपे कुदरत साज के आपे करे विचार। इक खोटे इक खरे आपे परखन हार। खरे खजाने पाईए खोटे सतिए बार बार। खोटे सच्ची दरगे सुटिए किस आगे करे पुकार। सतगुर पिछे पज पवे एहा करनी सार। सतगुर खोटियों खरे करे।

चार कर्म कमाई है, गुरमति आप गवाए नाम से आई है, दूजी काल है लग जन्म गवाई है, बिन नाम है सब विश्व कह जय खाई है, सच्चा सबल सलाह है सच समाई है।

कदर शराब की बहुर ना पाई ताओ सती पैरी सत पला बही है पड़िया पास उथे पाप पुन बिचारी है कूड़े कत्ते रास उथे खोटे सती है खरे की चैसा बास बोलन।

गया सब सवारी आस अमृत पी गया। श्लोक महला पहला। मारू मी न तृप्तिया अग्नि लह न पुख, राजा राज न तृप्तिया सायर परेक सुख, नानक सच्चे नाम की केती पुछा पुछ महला दूजा। नेखलंग तस जन्म सजावत ब्रह्म न बिंदते, सागरंग संसारस गुर प्रसादी तरें के, करण कारण समरथ है कहो नानक विचार, कारण करते वश है जिन कल रखी तार, पौड़ी खसने के दरबार टाडी वसया, सच्चा खसम कलान कमल विकसया, खसमो पूरा पाए मनो रहस्या, दुश्मन कदे मार सज्जन सरसया, सच्चा सतगुरु सेवन सच्चा मार्ग दसया, सच्चा शब्द विचार काल विदुषया, ताडी कथे अकथ शब्द सवारिया, नानक गुण गहरास हर जियो मिले प्यारिया। श्लोक महला पहला। खत्यो जम्मे खत्ते करनित खत्या विच पाहे, होते मूल ना उतरे जे सो तोन पाहे, नानक बख्शे बख्शे नाहे तपाई पाए। महला पहला। नानक बोलन चखना दुख छड मंगिए सुख, सुख दुख दोए कर कपड़े पैरें जाए मनुख, जिथे बोलन हाई है तिथे चंगी चुप पौड़ी, चारे कुंडा देख अंदर पालिया, सच्चे पुरब अलख सिरज निहालिया, उजड़ पुले रहा गुर वे खा लिया, सतगुर सच्चे वाहो सच समा लिया, पाया रतन कराहो दीवा बालिया, सच्चे सबल सलाहे सुखिये सच वालिया, निदरिया डर लग गर्व से गालिया, नावो पुला जग फिरे बेता लिया। श्लोक महला तीजा। पैर च जमे पै मरे पीपो मन में होए, नानक पैर च जे मरे सहला आया सोए। महला तीजा। पैविन जीवे बहुत बहुत खुशियां खुशी कमाए, नानक पैविन जे मरे मोह काले उठ जाए। पौड़ी सतगुरु होए दयाल ता सरदा पूरी है, सतगुरु होए दयाल ना कबू चूरी है, सतगुरु होए दयाल ता दुख ना जानी है, सतगुरु होए दयाल ता हर रंग मानी है, सतगुरु होए दयाल ता जमका डर के हा, सतगुरु होए दयाल ता सद ही सुख देहा, सतगुरु होए दयाल ता नव निध पाई है, सतगुरु होए दयाल ता सच समाई है। श्लोक महला पहला। सिर खोहाए पिए मलवानी जूठा मंग मंग खाई, फोल फदीहत मो लैन परासा पानी देख सगाई, पेगा वांगी सिर खोहायन परियन हाथ सुहाई, माऊ पियू किरत गवाए टब्बर रोवन ताही, ओना पिंड ना पत्ता।

ऐं दर्दी बहन जाहे लकी कासे हथी फुमण अगो पिची जाहे ना ओए जोगी ना ओए जंगम ना ओए काजी मुल्ला

तू सच्चा दातार नित देवे चरण सवाया नानक मंगे दान जो तुद पाया। श्लोक मैला दूजा दीखिया आख बुझाया

दादी सच्चे महल खसम बुलाया, सच्ची सिफत सलाह कपड़ा पाया, सच्चा अमृत नाम भोजन आया, गुरुमती खादा रज तिन सुख पाया, ताजी करे पसाओ।

सिर पर चलिए सही है पार, नगरी कर्मी गुर विचार। कै बिन कोई ना लंगस पार, कै पौ राख्या पाए सवार। रहाओ कै तन अगन पखे पै नाल, कै पौ कड़िए सब दुसवार। कै बिन कारत कच निकच, अंधा सच्चा अंधी सच। बुद्धि बाजी उपजे चाओ, सह स्याणप पवे न पाओ। नानक मन मुख

डर डर जाए, सो डर के हाँ जित डर डर पाए, तुद बिन दूजी ना ही जाए, जो किछ वरतै सब तेरी रजाए। डरिए जे डर हो वै होर, डर डर डरना मन का सोर, रहाओ ना जियो मरे ना डूबे तरे, जिन किछ किया सो किछ करे, हुक्मे आवे हुक्मे जाए, आगे पाछे हुक्म समाए। हंस हेत आखा समान, पिछ विच पूख बहुत नैसान।

देही माटी बोले कौन, गुजरे ज्ञानी मुआ है कौन। मुई सुरत बाद अंकार, ओ नाम हुआ जो देखनहार। जय कारण पट तीरथ जाही, रत्न पदार्थ पट ही माही। पढ़ पढ़ पंडित बाद वखाने, पीतर हो दी वक्त न जाने। हाउ नाम हुआ मेरी मुई बलाए, ओह नाम हुआ जो रहा समाए। कहो नानक गुरु ब्रह्म दिखाया, मरता जाता नजर न आया। गौड़ी महला पहला दखनी, सुन सुन गूजे माने नाओ। ताके सब बलिहारे जाओ, आप पुलाए ठौर न ठाओ। तू समझावे मेल मिलाओ, नाम मिले चले।

सीख हुकम संजोगी गढ़ दस द्वार पंचवसे मिल जोत अपार आप तुले आपे वनजार नानक नाम सवारन हार गौड़ी महला पहला जातो जाए कहां ते आवे कह उपजे कह जाए समावे।

मन से उपजे मन माए समाए, गुरमुख मुक्तो बंद न पाए, शब्द विचार छुटे हर नाए, करवर पंखी बहु निस्वास, सुख दुखिया मन मोह विनाश, साज बिहाग तक है आगास, देह दिस पावे कर्म लिखियास। नाम संजोगी गोयल खाट, काम क्रोध फूटे बिखमाट, बिन वखर सुनो कर हाट, गुर मिल खोले बजर कपाट, साध मिले पूरव संजोग, सच रहसे पूरे हर लोग, मन तन दे ले सहज सुभाए, नानक तिनके लागू पाए। गौड़ी महला पहला, काम क्रोध माया में

परपंच व्याप रहा मन दोए, फिर नारायण करे सोहोए। बोहित चढ़ो जावे वार, ठाके बोहित दरगे मार, सत्साला ही तन गुरुद्वार, नानक दर कर एकंकार। गौड़ी महला पहला, उल्टो कमल ब्रह्म विचार, अमृत तार गगन दस द्वार, त्रिभुवन वेदिया आप मुरार। रे मन मेरे पौम न कीजे, मन माने अमृत रस पीजे रहाओ। जन्म जीत मरण मन मानिया, आप मुआ मन मन ते जानिया। नजर पई कर करते जानिया, जप सत तीरथ मज्जन नाम, अजक विचार करो किस काम। नर नारायण अंतर जाम, आन मनो तो पर कर जाओ। किस जाचो नाही को थाओ, नानक गुरुमत सहज समाओ, नानक गुरुमत सहज समाओ। गौड़ी महला पहला, सतगुरु मिले सो मरण दिखाए, मरण रहन रस अंतर पाए। गर्भ निवार गगन पुर पाए, मरण लिखाए आए नहीं रहना। हर जप जाप रहन हर शरणा रहाओ। सतगुरु मिले ता दुबदा पागे, कमल विगास मन हर प्रबला।

किरत पया नह मेटे कोए क्या जानो क्या आगे होए जो तिस पाना सोई हुआ अगर न करने वाला दुआ न जाना कर्म केवड़ तेरी दात कर्म कर्म तेरे नाम की जात रहाओ तू एवड़ दाता देवन हार सोत नाही खुद भगत पंडार किया गर्द न आवे रात जियो पिंड सब तेरे पास तू मार जीवाले बख्श मिलाए जो पावी त्यो नाम जपाए तू दाना बीना साचा सिर मेरे गुरमत दे परोसे तेरे तन में मैल नाही मन राता गुरबचनी सच शब्द पछाता तेरा तान नाम की वड्याई नानक रहना भगत शरणाई गौड़ी महला पहला जिन अपख कहाया अपियो पी आया हम कह विसरे नाम समाया क्या डरिए डर डरे समाना पूरे गुर के शब्द पछाना रहाओ जिस नर राम हृदय हर वास सहज सुभाए मिले सावास जाए सवारे सांस बिहाल इत उत मन मुख बांधे काल एनस राम हृदय से पूरे नानक राम मिले परम दूरे गौड़ी महला पहला।

सतगुर ते हर जान, राम भगत गुर सेवा करना, बहुड़ जन्म ना होए है मरना। रहाओ चार पदार्थ कहे सब कोई, सिमरत शास्त्र पंडित भुख सोई, बिन गुर अर्थ विचार न पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया। जा कह हृदय वस्या हर सोई, गुरुमुख भगत प्राप्त होई, हर की भगत मुक्त आनंद, गुरुमत पाए परमानंद। जिन पाया गुर देख दिखाया, आशा माहे निराश बुझाया, दीना नाथ सर्व सुख दाता, नानक हर चरणी मन राता। गौड़ी चेती महला पहला, अमृत काया रह सुखाली, बाजी इहो संसारो, लग लोभ मुझ

हाँ तुद आसा मेरी काया तू सुन सिखा मारी निंदा चिंदा करे पराई झूठी लाए तबारी वेल पराई जो है जीअड़े करे चोरी बुरियारी हंस चलिया तू पिछे रहिए छुटर होई है नारी तू काया रही है सुपनंतर तुद क्या कर्म कमाया कर चोरी मैं जा किछ लिया तामन पल्ला पाया हल्त न सोबा पल्त न टोई एला जन्म गवाया हौ खरी दुहेली होई बाबा नानक मेरी।

सुन मूरख मन अजाना, भोग तिसे का पाना रहाओ, साओ हमारा ठाकुर पारा, हम तिसके वन जारे, जियो पिंड सब रास तिसे की, मार आपे जी वाले, गौरी चेती महला पहला। अगर पंच हम एक जना, क्यों राखो कर बार मना, मारे लूटे नीत नीत किस आगे करी।

प्राते कट पीतर मुंदरा काया की जय खिंसाता पंच चेले वस की जय रावल इहो मन की जय डंडाता जोग जुगत इव पावसता एक शब्द दूजा होर नास्त कंद मूल मन लावस्ता रहाओ मूंड मुंडाये जे गुर पाये हम गुर की नी गंगा पार त्रिभवन तारण हार स्वामी एक न चेत संधाता कर पटंग गली मन लावस संसा मूल न जावस्ता एक चरणी दे चितलावे लब लोभ की तावस्ता जपस निरंजन रचस मना काहे बोले जोगी कपट खना रहाओ काया कमली हंस इआना मेरी मेरी करत बिहानी ता प्रणवत नानक नागी दाजे फिर पाछे पस्तानी ता गौड़ी चेती महला पहला औखद मंत्र मूल मन एक है जे कर दृढ़ चित की जय रे जन्म जन्म के पाप कर्म के पाटन हारा ली जय रे मन एको सा

देखे ते पंख उड़ाए। हट पटन बीज मंदर पन्ने कर चोरी कर आवे, अगों देखे पिछो देखे तुझते कहां छपावे। तट तीरथ हम नवखंड देखे हट पटन बाजारा, लेके तकड़ी तोलन लागा।

तरे अंस मौ चाहे आ जाए, अंस को चाहन जो गए से आए अंस गवाए। आपन लिया जे मिले ता सबको पाग चु होए, कर्मा ऊपर निबड़े जे लोचे सब कोए। नानक करना जिन किया सोई सार करे, हुक्म न जाती खत्म का किसे बढ़ाई दे।

तेरा सौ मिले वार वार हो जाओ जियो। मैं बन जारन राम की तेरा नाम वखरवा पार जी रहाओ। कोकिल होवा अंब बसा सहज सबद विचार सहज सुबह मेरा सौ मिले दर्शन रूप अपार। मछली होवा जल बसा जी जंत सब सार पुरवार पार मेरा सौ वसे हो मिलोंगी बाप पार। नागन होवा तर वसा शब्द वसे कौ जाए नानक सदा सुहा।

अंत न पारा वार, मेरा प्रभ बख्शे बख्शनहार। गुरु मिले सब मत बुद्ध होए, मन निर्मल वसे सत सोए, साच वसे साची सब कार, उत्तम करनी शब्द विचार। गुर ते साची सेवा होए, गुरमुख नाम पछाणे कोए, जीवे दाता देवन हार, नानक हर नामे लगे प्यार, गौड़ी ग्वारे।

पूरे पाग मिले गुर आए, साचे सहज साथ समाए रहाओ। गुर मिले कृष्णा अगन बुझाए, गुर ते सांत वसे मन आए, गुर ते पवित्र पावन सुच होए, गुर ते शब्द मिलावा होए। बाज गुरु सब परम पुलाई, बिन नामे बहुता दुख पाई, गुरमुख हो वैसो नाम से आए, दर्शन सत्य सच्ची पत होई। किसनो कही है दाता इक सोई, कृपा करे शब्द मिलावा होई, मिल प्रीतम साचे गुण गावा, नानक साचे साथ समावा। गौड़ी ग्वारे री महला तीजा, सोथाओ सच मन निर्मल होए, सच निवास करे सच सोए, सच्ची बाणी जुग चारे जापे, सब किस साचा आपे आपे। कर्म होवे सब संग मिलाए, हर गुण गावे बैस सोखाए, रहाओ जलो एह जेवा दूजे पाए, हर रस न चाखे फीका आलाए, बिन बूझे तन मन फीका होए, बिन नावे दुखिया चलिया रोए। रसना हर रस चाखिया सहज सुदाए, गुर कृपा ते सत समाए, साचे राती गुर शब्द विचार, अमृत पीवे निर्मल तार। नाम समावे जो पांडा होए, उंदे पांडे टिके ना कोए, गुर शब्दी मन नाम निवास, नानक सच पांडा जिस सब

गावत रहे जे सतगुरु पावे मन सन राता नाम सुहावे रहाओ एक दावे एक भगत करे नाम न पावे बिन असनेह सच्ची भगत गुर शब्द प्यार अपना तिर राख्या सदा उद्धार भगत करे मूर्ख आप जनावे नच नच तपे बहुत दुख पावे नचिए टपे भगत न होए शब्द मरे भगत पाए जन सोए भगत वछल भगत कराए सोए सच्ची भगत विचों आप खोए मेरा प्रभु साचा सब विद जाने नानक बक्से नाम पछाने गौड़ी ग्वारे री महला तीजा मन मारे तात मर जाए बिन मुए कैसे हर पाए मन मरे दारू जाने कोए मन शब्द मरे बूझे जन सोए जिसनो बख्शे देव डिहाई गुर प्रसाद हर वसे मन आई रहाओ गुरमुख करनी कार कमावे ता इस मन की सोजी पावे मन में मत मैगल मित धारा गुर अंकत मार जीवा लनहारा मन असाध साधे जन कोए अचर चरे ता निर्मल होए गुरमुख एव मन लया सवार हो मैं विचों तजे विकार जो तुर रा

नानक गुरमुख नाम पछाणे गौड़ी ग्वारे री महला की जा होमे विच सब जग बोराना दूजे पाए परम फुलाना बहुत चिंता चितवे आप न पछाना तंदा करत्या अंजन विहाना हृदय राम रमो मेरे पाई गुरमुख रसना हर रसन रसाई रहाओ गुरमुख हृदय जिन राम पछाता जग जीवन सेव जुग चारे जाता हो मैं मार गुर शब्द पछा।

जित सेवे दरगह पत परवाना, हर के नाम विटो बल जाओ, तू विसरे तद ही मर जाओ रहाओ, तिन तू विसरे जे तुझ आप भुलाए, तिन तू विसरे जे दूजे पाए, मनमुख अज्ञानी जो नी पाए, मनमुख अज्ञानी जो नी पाए, जिन एक मन तुठा से सतगुरु सेवा लाए, जिन एक मन तुठा तिन हर मन वसाए।

गुर शब्द समावे बूझे हर सोई, सुन सुन वेखे शब्द मिलाए, वड्डी वड्याई गुर सेवा ते पाए। नानक नाम रते हर नाम समाए, नानक नाम रते हर नाम समाए। गौड़ी ग्वारे री महला तीजा, मनमुख सूता माया मोह प्यार, गुरमुख जागे गुण ज्ञान विचार।

असंत अनाड़ी कदे न बूझे, कथनी करे ते माया नाल लूझे, अंध अज्ञानी कदे न सीजे। इस जुग में राम नाम निस्तारा, बिरला को पाए गुर सद विचारा, आप करे सगले कुल उधारा। इस कल युग में कर्म कर्म ना कोई, कली का जन्म चंडाल के कर होई, नानक नाम बिना को मुक्त न होई। गौड़ी महला तीजा ग्वारे री, सच्चा अमर सच्चा पातशाह हो, मन साचे राते हर।

परमे आवे परमे जाए के जग जन्मिया दूजे पाए मन मुख न चेते आवे जाए आप फुला के प्रभ आप फुलाया इहो जियो विडानी चाकरी लाया मां दुख खटे बिरसा जन्म गवाया कृपा कर सतगुरु मिलाए एको नाम चेते विच्चों परम चुकाए नानक नाम जपे नाओ नौ निद पाए गौड़ी ग्वारे री महला तीजा जिना गुरुमुख त्याया तिन पूछो जाए गुर सेवा ते मन पति आए से तनवंत हर नाम कमाए पूरे गुर ते सो जी पाए हर हर नाम जपो मेरे पाई गुरुमुख सेवा हर काल खाए पाई गुरुमुख सेवा हर काल खाए पाई रहाओ आप पछाणे मन निर्मल होए जीवन मुक्त हर पावे सोए हर गुण गावे मत उत्तम होए सहजे सहज समावे सोए दूजे पाए न सेवे आ जाए हों मैं माया महा बिख खाए पुत कुटुंब गृह मोह आजमाए मन मुख अंधा आवे जाए हर हर नाम देवे जन सोए अंजन भगत गुर सबदी होए गुरमत बिरला बूझे कोए नानक नाम समावे सोए नानक नाम समावे सोए गौड़ी ग्वारे री महला तीजा गुर सेवा जुग चारे होई पूरा जनकार कमावे कोई अखुट नाम तन हर टोट न होई ऐसे सदा सुख दर शोभा होई ए मन मेरे परम न कीजे गुरुमुख सेवा अमृत रस पीजे रहाओ सतगुर सेवे से मां

सतगुर सेवे सदा मन दासा, होमे मार कमल प्रगासा, अनहद वाजे निज कर वासा, नाम रते कर माहे उदासा। सतगुर सेवे तिन की सच्ची बाणी, जुग जुग पवती आस वखाणी। हम दिन जपें

योग हृदय नाम नित हर रस कोग गुरुमुख प्राणी नाम हर चाहे जन्म जीत लाहा नाम पाए रहाओ ज्ञान स्यान गुर शब्द है मीठा गुर कृपा से किने विरले चक दीठा कर्म कांड बहु करे अचार बिन नावे त्रिग त्रिग अहंकार बंधन बांधियो माया पास जन नानक छूटे गुर प्रगास महला तीजा गौड़ी बैरागण जैसी धरती ऊपर मेघुला बरसत है क्या धरती मदे पानी नाही जैसे धरती मदे पानी प्रगासिया बिन पगा बरसत फिर।

तेरा रूप सदा है तेरे, तुझ ही माही समाही। इतने जन्म फूल परे थे, जा पाया ता फूले नाही। जाता कारज सोई पर जाने, जे गुर के शब्द समाही। तेरा शब्द तू है आपे परम कहाई। नानक तत् तत् क्यों मिलिया, पुनरप जन्म न आही। गौरी बैरागन महला तीजा, सब जग काले वस है, बांदा दूजे पाए। हो मैं कर्म कमाव दे, मन मुख मिले सजाए। मेरे मन गुर चरणी चित लाए, गुरमुख नाम निधान ले, दरगे ले छाए रहाओ। लक्ष चौरासी परम दे, मन हट आवे जाए। गुर का शब्द न चीन्यो, फिर जो नहीं पाए। गुरमुख आप पछाणिया, हर नाम वसिया मन आए। अंदिन भगती रतिया, हर नामे सुख समाए। मन शब्द मरे प्रतीत होए, हो मैं तजे विकार। जन नानक करमी पायन, हर नामा भगत पंडार। गौरी बैरागन महला तीजा, कई अड़े दिन चार है, हर हर लिख पाया। शोभावंती नार है, गुरमुख गुण गाया। पेव कड़े गुण समले, सौरे वास पाया। गुरमुख सहज समानिया, हर हर मन पाया। ससुरे पेये फिर वसे, कहो कित विद पाये। आप निरंजन अलख है, आपे मेलाये रहाओ। आपे ही प्रभु देह मत, हर नाम ते आये। वड़पागी सतगुरु मिले, मुख अमृत पाये। हो मैं दुबदा बिनस जाए, सहजे सुख समाये। सब आपे आप वर्तदा, आपे नाए लाये। मन मुख गर्भ न पायो, अज्ञान ए आने। सतगुरु सेवा ना करें, फिर पछताने। गर्भ जो नी वास पाए दे, गर्भे गल जाने। मेरे करते ए वह पामदा, मन मुख परमाने। मेरे हर प्रभ लेख लिखाया, दुर्मस्तक पूरा। हर हर नाम से आया, पेटिया गुरसूरा। मेरा पिता माता हर नाम है, हर बंधक बीरा। हर हर बस मिलाए प्रभु, जन नानक कीरा। गौरी बैरागन महला तीजा, सतगुर ते ज्ञान पाया। हर सत बिचारा, मत मलीन प्रगट पई। जत नाम मुरारा, शिव सकत मिटाया। चूका अंधियारा, तुरमस्तक जिन को लिखिया। तिन हर नाम प्यारा, हर कित विद पाये संत जनो। जिस देखो जीवा, हर बिन चसाना जीवती। गुर मिलियो हर रस पीवा रहाओ। हर हर गुण गावा, नित हर सुनी। हर हर गतकीनी, हर रस गुर ते पाया। मेरा मन तन लीनी, तन तन गुर सतपुरख है। जिन भगत हर दीनी, जिस गुर ते हर पाया। सो गुर हम कीनी, गुण दाता हर

हर शरणागत राखले हो, मूड मुग्ध निस्तारे सहज आनंद सदा गुरुमति, हर हर मन प्याया सज्जन हर प्रभ पाया, पर सोहेला गाया हर दया तार प्रभ बेनती, हर हर चेताया जन नानक मंगे तूर तिन, जिन सतगुर पाया गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, चौथा चौक दे इको अंकार सतगुरु प्रसाद। पंडित खास सिमरत पढ़िया, जोगी गोरख गोरख करिया, मैं मूरख हर हर जप पढ़िया, ना जाना क्या गत राम हमारी, हर पद मन में

सूद वैश पर किरत कमावे, मैं मूरख हर नाम छुड़ावे। सब तेरी सृष्ट तू आप रहा समाई, गुरमुख नानक दे वड्याई। मैं अंधले हर टेक टिकाई, मैं अंधले हर टेक टिकाई। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, निर्गुण कथा कथा है हर की। पज मिल साधु संगत जन की, तर पौजल अकथ कथा सुन हर की। गोविंद सत संगत में लाए, हर रस रसना राम गुण गाए। रहाओ जो जन प्यावे हर हर नामा, तिन दासन दास करो हम रामा। जन की सेवा उत्तम कामा, जो हर की हर कथा सुनावे। सो जन हमरे मन चित पावे, जन पग रेण वड पागी पावे। संत जना स्यों प्रीत बन आई, जिनको लिखत लिखिया तुर पाई। ते जन नानक नाम समाई, ते जन नानक नाम समाई। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, माता प्रीत करे पुत खाए। मीने प्रीत पई जल नाए, सतगुर प्रीत गुर सिख मुख पाए। ते हर जन हर मेलो हम प्यारे, जिन मिलिया दुख जाए हमारे। रहाओ जो मिल बछरे गौ प्रीत लगावे, कामन प्रीत जा फिर कर आवे। हर जन प्रीत जा हर जस गावे, सारंग प्रीत बसे जल पारा।

गुर सिख प्रीत गुर मिले गुलाटे, जन नानक प्रीत साध पग चाटे, जन नानक प्रीत साध पग चाटे। गौरी ग्वारे री महला चौथा, पीखक प्रीत पीख प्रभ पाए, भूखे प्रीत होवे अन खाए, गुर सिख प्रीत गुर मिल आघाए, हर दर्शन देहो हर आस तुम्हारी, हर कृपा लोच पूर हमारी। रहाओ चटवी प्रीत सूरज मुख लागे, मिले प्यारे सब दुख त्यागे, गुर सिख प्रीत गुरु मुख लागे, बछरे प्रीत खीर मुख खाए, हृदय बिबसे देखे माए, गुर सिख प्रीत गुरु मुख लाए, और सब प्रीत माया मोकाचा, बिनस जाए कूड़ा कटपाचा, जन नानक प्रीत त्रिपत गुर साचा, जन नानक प्रीत त्रिपत गुर साचा। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, सतगुर सेवा सफल है बनी, जित मिल हर नाम।

हर आपे शब्द सुरत तुम आपे, हर आपे वेखे विखे आपे, हर आप जपाए आपे हर जापे, हर आपे सारंग अमृत तारा, हर अमृत आप पियावन हारा, हर आप करे आपे निस्तारा, हर आपे बेड़ी।

चौथा साहो हमारा तू कणी जैसी तू रास दे तैसी हमने हर नाम बनन जय रंग सो जे आप दयाल होए दे हम बन जा रे राम के हर वंज करावे दे रास रे रहाओ लाहा हर तगत तन खटिया हर सच्चे सा मन पाया हर जप हर वखर लद्या जम जा गाती नेर ना आया और वणज करें व्यापारिये अनंत तरंगी दुख माया कोई जे है वणज हर लाया फल से हा तिन पाया हर हर वणज सो जन करे जिस कृपाल होए प्रभ दे जन नानक सा।

आए। हल जोते उद्यम करे मेरा पुत ती खाए। त्यों हर जन हर हर जप करे हर अंत छाए। मैं मूरख की गत की जय मेरे राम गुर सतगुर सेवा हर।

सतगुरा जब गुरु बोले तब विषम होए जाए। हम जैसे अपराधी अगर कोई राख है, जैसे हम सतगुरु राख लिए छड़ाए। तू गुरु पिता तू है गुरु माता, तू गुरु बंदप मेरा।

तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूके सब सोग संतापे, गौरी बैरागन महला चौथा। कंचन नारी में जियो लुभत है मोह मीठा माया, कर मंदर कोड़ खुशी मन अन रस लाया।

अंतर बाहर मुख दे गिरास खिन खिन पोचार त्यों सतगुर गुर सिख राखता हर प्रीत प्यार मेरे राम हम बारिक हर प्रभ के।

जरा मरा ताप सिरत साप सब हर के बस है, कोई लाग न सके बिन हर का लाया। ऐसा हर नाम मन चित नित त्यावो, जन नानक जो अंति।

कर कृपा हर मेलिया मेरा सतगुरु पूरा इच पुनी जन केरिया ले सतगुरु तूरा हर भगत दृढ़ावे हर भगत सुने तिस सतगुरु मिलिए तोटा मूल न आवे हर लाभ नित दृढ़िए जिसको हृदय विगास है पाओ दूजा नाही नानक तिस गुर मिल उदरे हर गुण गावाही महला चौथा गौरी पूर्वी हर दयाल दया प्रभ कीनी मेरे मन तन मुख हर बोली गुरमुख रंग पाया अत गूड़ा हर रंग पीनी मेरी चोली अपने हर प्रभ की हौ बोली जब हम हर सेती मन मानिया कर दीनो जगत सब गोल अमोली रहाओ करो विवेक संत जन पाई खोज हृदय देख टंडोली हर हर रूप सब जोत सवाई हर निकट वसे हर कोली हर हर निकट वसे सब जगते अपरंपर पुरख अतोली हर हर प्रगट कियो गुरु पूरे सिर वेचियो गुरु कह मोली हर जी अंतर बार तुम शरणागत तुम वड पुरख वडोली जन नानक अंदिन हर गुण गावे मिर सतगुर गुर वे चोली गौरी पूर्वी महला चौथा जग जीवन अपरंपर स्वामी जगदीशर पुरख विदाते जित मार्ग तुम प्रेरो स्वामी तित मार्ग हम जाते राम मेरा मन हर सेती राते सत संगत मिल राम रस पाया हर रामे नाम समाते रहाओ हर हर नाम हर हर जग अवकद हर हर नाम हर साते तिनके पाप दोख सब बिन से जो गुरमत राम रस खाते जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक ते गुर संतोख सरनाते दुर्मत मैल गई सब तिनकी जो राम नाम रंग राते राम तुम आपे आप प्रभ ठाकुर तुम जेवड़ अवर न दाते जन नानक नाम ले ता जीवे हर जपिए हर के।

अति निर्मल जप हर हर हर मन माचे राम मेरा मन तन बेद लियो हर साचे जी काल के मुख जगत सब ग्रस्या गुरु सतगुर के बचन हर हम बाचे रहाओ जिनको प्रीत नाही हर सेती ते साकत मूड नर काचे तिनको जन्म मरण अत पारी विच विष्टा मर मर पाचे तुम दयाल शरण प्रतपालक मोको दीजे दान हर हम जाचे हर के दास दास हम कीचे मन निरत करे करनाचे आपे साहा बड़े प्रभ स्वामी हम बन जा रहे हैं ताचे मेरा मन तन जियो रास सब तेरी जन नानक के साहा प्रभ साचे गौड़ी पूर्वी महला चौथा तुम दयाल सर्व दुख पंजन एक बिनो सुनो देकाने जिससे तुम हर जाने स्वामी सो सतगुर मेल मेरा प्राणे राम हम सतगुर पार ब्रह्म कर माने हम मूर मुग्ध अशुद्ध मत होते गुर सतगुर के बचन हर हम जाने राव जितने रस अनरस हम देखे सब कितने फीक फीकाने।

हर का नाम अमृत रस चाखिया, मिल सतगुर मीठ रस गाने, जिनको गुर सतगुर नहीं पेटिया, ते साकत मूड दीवाने, तिनके कर्महीन तुर पाए, देख दीपक मोय कचाने, जिनको तुम दया कर मेलो, ते हर हर सेव लगाने, जन नानक हर हर हर जप प्रगते, मत गुरमत नाम समाने, गौड़ी पूर्वी महला चौथा, मेरे मन सो प्रभु सदा नाल है, स्वामी कौ किथे हर पहु नसी है, हर आपे बस ले प्रभ साचा, हर आप छदाए छुटी है, मेरे मन जप हर हर हर मन जपी है, सतगुर की शरणाई पज पो, मेरे मना गुर सतगुर पीछे छुटी है, रहाओ मेरे मन सेवो सो प्रभ सर्व सुख दाता, जित सेवे निज कर वसी है, गुरुमुख जाए लहो कर अपना, कस चंदन हर जस कसी है, मेरे मन हर हर हर हर हर जस उत्तम, ले लाहा हर मन हसी है, हर हर आप दया कर देवे, ता अमृत हर रस चखी है, मेरे मन नाम बिना जो दूजे लागे, ते साकत नर जम कुटी है, ते साकत चोर जिना नाम विसारिया, मन तिनके निकट न पिटी है, मेरे मन सेवो अलख निरंजन नर हर, जित सेवे है लेखा छुटी है, जन नानक हर प्रभु पूरे किए, खिन मासा तोल न कटी है, गौड़ी पूर्वी महला चौथा, हमरे प्राण वसगत प्रभु तुमरे, मेरा जियो पिंड सब तेरी, दया करो हर दर्श दिखावो, मेरे मन तन लोच कनेरी, राम मेरे मन तन लोच मिलन हर केरी, गुर किरपाल कृपा किंचत गुर कीनी, हर मिलिया आए प्रभु मेरी, रहाओ जो हमरे मन चित है स्वामी, साबिद तुम हर जानो मेरी, अंदिन नाम जपी सुख पाई, नित जीवा आस हर तेरी, गुर सतगुर दाते पंथ

ना जाने आगे जो हर राखे त्यों ठाने हम फूल चूक गुर कृपा तारो जन नानक कुतरे काडे। गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु परया मिल साधु खंडल खंडा है पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पुन वड्डा है कर दंडौत पुन वड्डा है राव सात हर रस साध।

ते नाम दिड़ाया मुख मस्तक पाग सबागे। राम गुरमत हर लिव लागे, राम गुरमत हर लिव लागे रहाओ। कट कट रमैया रमत राम राए, गुर शब्द गुरु लिव लागे। हौ मन तन देवो काट गुरु को, मेरा परम पौ गुरु बचनी पागे। अंधियारे दीपक आन जलाए, गुर ज्ञान गुरु लिव लागे। अज्ञान अंधेरा बिनस बिनास्यो, कर वस्त लही मन जागे। साकत बदक माया तारी, तिन जम जोहन लागे। उन सतगुर आगे शीश ना बेचिया, ओए आवे जाए अपागे। हमरा बिनो सुनो प्रभ ठाकुर, हम शरण प्रभु हर मांगे। जन नानक की लज पात गुरु है, सिर बेचो सतगुर आगे।

तन तन गुरु हर राया, राम गुर के बचन हर पाया। रहाओ मेरे हीरे प्रीत राम राय की, गुरु मार्ग पंथ बताया। मेरा जियो पिंड सब सतगुरु।

आया हम अपराध पाप भोकी ने कर दुष्टी चोर चुराया अब नानक शरणागत आए हर राखो लाज हर भाया गौड़ी पूर्वी महला चौथा गुरमत बाजे शब्द अनाद गुरमत मनुआ गावे बद पागी गुर दर्शन पाया तन तन गुरु लिवलावे गुरमुख हर लिवलावे रहाओ हमरा ठाकुर सतगुर पूरा मन गुर की कार कमावे हम मल मल तोवे पाम गुरु के जो हर हर कथा सुनावे हृदय गुरमत राम रसायन जुहवा हर गुण गावे मन रसक रसक हर

ब्रह्मा मत माता मत जियो नाम मुख रामा संतोख पिता कर गुर पुरख अजन्मा वड पागी मिल रामा गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्वाणी जियो वड पागी मिल सुगड़ सुजानी जियो मेरा मन तन हर रंग पिन्ना आवो संतो मिल नाम जपाहा रिच संगत नाम सदा लैलाहा जियो कर सेवा संता।

ब्राह्मण करीहा जियो मिल संत जना रंग माने रलिया जियो गुरदीपक ज्ञान सदा मन गलिया जियो हर तुठे टुल टुल मिलिया जियो मेरे मन तन प्रेम लगा।

मेरा हर प्रभ सज्जन सैनी जियो, हर आए मिलिया जग जीवन मेरे गोविंदा, मैं सुख विहानी रहनी जियो। मैं मेलो संत मेरा हर प्रभ सज्जन, मैं मन तन भुख लगाया जियो, हूँ रह ना सकूं बिन देखे मेरे प्रीतम, मैं अंतर बिरहो हर लाया जियो। हर लाया मेरा सज्जन प्यारा, गुर मेले मेरा मन जीवाया जियो, मेरे मन तन आस

हर दान देवे सब मंगी जियो, भगता नाम आधार है मेरे गोविंदा, हर कथा मंगे हर चंगी जियो, हर आपे भगत कराएंदा मेरे गोविंदा, हर भगता लोच मन पूरी जियो, आपे जल थल वरतदा मेरे गोविंदा, रब रहा नहीं दूरी जियो, हर अंतर बाहर आप है मेरे गोविंदा, हर आप रहा पर पूरी जियो, हर आत्म राम पसारिया मेरे गोविंदा, हर वेखे आप हदूरी जियो, हर अंतर वाजा कौन है मेरे गोविंदा, हर आप वजाए त्यों वाजे जियो, हर अंतर नाम निदान है मेरे गोविंदा, गुर शब्दी हर प्रभ गाजे जियो, आपे शरण पवाएंदा मेरे गोविंदा, हर भगत जना राख लाजे जियो, वड़ पागी मिल संगती मेरे गोविंदा, जन नानक नाम सिदका जय जियो, गौड़ी माज महला चौथा, मैं हर नामे हर बिरहो लगाई जियो, मेरा हर प्रभ मित मिले सुख पाई जियो, हर प्रभ देख जीवा मेरी माई जियो, मेरा नाम सखा हर पाई जियो, गुण गावो संत जियो, मेरे हर प्रभ केरे जियो, जप गुरमुख नाम जियो, भाग वडेरे जियो, हर हर नाम जियो, प्राण हर मेरे जियो, फिर बहुड़ न पव जल फेरे जियो, क्यों हर प्रभु वेखा मेरे मन तन चाओ जियो, हर मेलो संत जियो, मन लगा पाओ जियो, गुर शब्दी पाये हर प्रीतम राओ जियो, वड पागी जप नाओ जियो, मेरे मन तन वडड़ी गोविंद प्रभ आसा जियो, हर मेलो संत जियो, गोविंद प्रभ पासा जियो, सतगुर मत नाम सदा प्रगासा जियो, जन नानक पूरे

हाउ नाम विटो कुर्बान जियो हाउ हर हर सज्जन हर मीत दसाई जियो हर दसो संतो जी हर खोज पवाई जियो सतगुर तुठड़ा दसे हर पाई जियो हर नामे नाम समाई जियो मैं वेदन प्रेम हर बिरहों लगाई जियो गुर सरदा पूर अमृत मुख पाई जियो हर हो दयाल हर नाम त्याई जियो जन नानक हर रस पाई जियो महला पंजवा राग गौड़ी ग्वारेरी चौपदे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद किन विद कुशल होत मेरे पाई क्यों पाये हर राम सहाई रहाओ कुशल ना ग्रे मेरी सब माया ऊंचे मंदर सुंदर छाया झूठे लालच जन्म गवाया हस्ती कोड़े देख विगासा लस्कर जोड़े नेब खवासा गल जेवड़ी होमे के फासा राज कमावे दैग सारी माने रंग पोग बहुनारी जो नरपत सुखने पे खारी एक कुशल मोको सतगुरु बताया हर जो किच करे सो हर क्या पगता पाया जन नानक होमे मार समाया इन

साफ कर उपाया, लख 84 जोन परमाया, साध संग पयो जन्म परापत, पर सेवा पद हर हर गुरमत, त्याग मान झूठ अभिमान, जीवत मरहे दर्दे।

अविनाशी गुर के बचन कटी जम फांसी गुर का बचन जी के संग गुर के बचन रचे राम के रंग जो गुर दिया सो मन के काम संत का किया सत्कर्मान रहाओ गुर का बचन अटल अछेद गुर के बचन कटे परमपेद गुर का बचन कतो न जाए गुर के बचन हर के गुण गाए गुर का बचन जी के साथ गुर का बचन अनाथ को नाथ गुर के बचन

चाहे हो गुरु उपदेश मने में ले हो जाको राम नाम लिव लागी कहो नानक सो तन वड पागी गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा सुन हर कथा उतारी मैल महा पुनीत पय सुख सैल वदे पाग पाया साध संग पार ब्रह्म सो लागो रंग हर हर नाम।

सब जाए गुरपुर सब परम चुकाया हर सिमरत नानक सुख पाया गौरी ग्वारे री महला पंजवा अगले मोए से पाछे परे जो उभरे से बंद लख थरे।

सिर ऊपर ठाडो तवन राए, मीठी कर कर बिखिया खाए। हौ बंदो हौ साधो बैर, हमरी पूम कौन काले पैर। हौ पंडित हौ चतुर।

मन मेरे गौहर नाम का ओला, तुझे ना लागे ताता चोला। रहाओ जो बोहित पै सागर माहे, अंधकार दीपक दीपाहे, अगन शीत काल।

कर कृपा जिस आप दिवावे, हर हर नाम जाके हृदय वसे, दुख दर्द ते नानक नसे, गौड़ी द्वारे री महला पंजवा, बहुत दर्ब कर मन ना अघाना, अनेक रूप देख नहीं पता।

त्रिग तन त्रिग तन माया संग राते राव जो बिगारी कै सिर दीजे दाम ओए खसमे कै गृह उन दुख सहाम जो सुपने होए बैसत।

कृष्णा आप बिना है आप करे रास, नानक प्रभ आ गए अरदास। बौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, बहु रंग माया बहु विद पेखी, कलम कागज सियान पलेखी, मेहर मलूक होए देखिया खान ताके।

अखेर वृत राजन की लीला, मन ना सुहेला पर पंच हीला, कर कृपा संतन सच कया, सर्व सुख एहो आनंद लया, साध संग हर कीर्तन गाये, कहो नानक वड़ पा।

होन न पाये राम के दासा, कवन सो विद जित राम गुण गाए, कवन सो मत जित तरे ए माए राव। जो पलाई सो बुरा जाने, साच कहे सो विखे समाने, जाने नाही जीत अर हार, इहो वलेवा साकत संसार। जो हला हल सो पीवे बौरा, अमृत नाम जाने कर कौरा, साध संग के नाही नेर, लख चौरासी परमता फेर। एक जाल पहाए पंखी, रस रस को

निमख न कृष्णा तेरी लाखे हर रास्ता तू चाखे साद चाखत होए रहे विस्माद अमृत रसना पियो प्यारी ए रस राती होए तृप्तारी रहाओ हे जेवे तू राम गुण गाओ निमख निमख हर हर हर त्याओ आन न सुनिए कतहु जाइए साध संगत वड पागी पाइए आठ पैर जेवे आराद पार ब्रह्म ठाकुर आजाद इहा उहा सदा सुहेली हर गुण गावत रसन अमोली बनस्पत मौली फल फूल पेगे ए रस राती बोर न छोड़े आन न रस कस लवे न लाई कहो नानक गुर पे हैं सहाय गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा मन मंदिर।

कवन बपारी जाका उहां विसाहो, नाम रतन को व्यवहारी अमृत भोजन करे आहारी रहाओ, मन तन अर्पी सेव करी जय कवन सो जुगत जित कर पी जय, पाए लगो तज मेरा तेरे कवन सो जन जो सौदा जोर है।

संगा ठाकुर नाम कियो उनवर्तन त्रिपत अगावन हर कै दर्शन हर संग राते मन तन हरे गुरपुरे की सरनी परे रहा चरण कमल आत्म आधार एक निहारे आज्ञाकार एको बनज एको व्योहारी अवर न जाने बिन निरंकारी हरक सोग दो हूते मुक्ते सदा अलिपत जोग हर जुगते दीसे सब में सबते रहते पार ब्रह्म का।

व्यापत कर्म करे हो फासा, व्यापत ग्रस्त व्यापत उदासा, आचार व्यवहार व्यापत ए जात, सब किस व्यापत बिन हर रंग रात, संतन के बंधन काटे हर राय, ताको कहां व्यापै माए, तहु नानक जिन

सगल भगत जाका नाम आधार, सर्व व्यापत पूरन तनी जाकी शोभा कट कट बनी। जिस सिमरत दुख डेरा कहे, जिस सिमरत जम किछु ना कहे, जिस

संत प्रसाद हर कीर्तन गाओ, संत प्रसाद सगल दुख मिटे, संत प्रसाद बंधन ते छुटे, संत कृपा ते मिटे मोह परम, साध रेण मज्जन सब कर्म, साध कृपाल दयाल गोविंद, साधा मैं ए हमरी जिंद, कृपा निध कृपाल ते आवो, साध संग ता बैठन पावो, मोहे निर्गुण को प्रभु कीनी दया, साध संग नानक।

पैर अब मत दिन सी दुष्ट बिगानी जबकि सुनिया हर जस्तानी रहाओ सहज सुख आनंद निधान राख।

सुखदाता जे नाम जपावे कर कृपा तिस संग मिलावे रहाओ जिस होए दयाल तिस आप मिलावे सर्व निधान गुरु ते पावे आप त्याग मिटे आमन जाना साध के संग पार

पार ब्रह्म परमेश्वर चाहिए गुर पूरे ते ए मत पाए रहाओ करण करावन हार दयाले जी जम सगले प्रतपाल अगम अगोचर।

प्रभ सेवक साचा वैसा हो गुरु पूरे रथ दे हाथ नानक पार ब्रह्म सम्राट गौड़ी द्वारे री महला पंजवा गुरु प्रसाद नाम मन लागा जन्म जन्म का सोया जागा अमृत गुण उचरे प्रभ वाणी पूरे गुरु की सुमत प्राणी प्रभ सिमरत कुशल सब पाए कर बाहर सुख सह सबाए रहाओ सोई पछाता जिन्हें उपाया कर कृपा प्रभ आप मिलाया बाँ पकड़ लीनो कर अपना हर हर कथा सदा जप जपना मंत्र तंत्र औखद पुने चार हर हर नाम जी प्राण आधार साचा तन पायो हर रंग दुतर करे साध कै संग सुख बैसो संत सज्जन परवार हर तन खटियो जाका नाहि सुमार जिसे प्राप्त किस गुरु दे नानक बिरथा कोई नहे गौड़ी द्वारे री महला पंजवा हस्त पुनीत हो।

माया मगन ना कछुए मोह उदरे आप करे संसार राम नाम जप के संकार आप कमाओ अवरा उपदेश राम नाम हृदय प्रवेश जाके माथे एहो निदान सोई पुरख जपे भगवान आप तैर हर हर गुण गाओ कहो नानक हो।

आस कर जाती, सत होवन मन लगै न राती, बावे मार्ग टेढ़ा चलना, सीधा छोड़ अपूठा बुनना, दोहा सुरिया का।

विचर आ गया तिचर पोगे पोग जले न पाये राम स्नेह तीर्थ संयोग सती उठ होई रहाओ देखा देखी मन हाथ जल जाये प्रिय संग न पावे बहु जोन को आये शील संजम प्रिय आज्ञा माने किस नारी को दुख न जमाने कौ नानक जिन प्रियो परमेश्वर।

भरपूर सतगुरु अपने कौ बलिहार है, छोड़ न जाई सर पर तार है। रहाओ दुख रोग सोग बिसरे जब नाम, सदा आनंद जा हर गुण गाम। बुरा पला कोई ना कही जाए, छोड़ मान हर

सहज आनंद हर साधु माहे, आज्ञाकारी हर हर राय, रहाओ जाके अचिंत वसे मन आए, ताको चिंता कतहु नाहे, जाके दिन सो मन से फरमा, ताके कछु नाही डर जमा, जाके हृदय दियो गुरु नामा, कहो नानक ताके सगल निधाना, गौड़ी महला पंजवा, अगम रूप का मन में थाना, गुरु प्रसाद किने विरले जाना, सहज कथा के अमृत कुंटा, जिसे प्राप्त तिस

आपन तन नहीं जाके दरबा, राज मिलख नहीं आपन दरबा, आपन नहीं का को लपटायो, आपन नाम सतगुर के पायो रहाओ, सुत बनता आपन नहीं पाई, इष्ट मीत आप बाप ना माई, सोयना रूपा सुन नहीं दाम, हैवर गैवर आपन नहीं काम, कहो नानक जो गुरु बख्श मिलाया, किसका सब किस जिसका।

हर सा प्रीतम कर मन मीत, प्राण आधार राखो सब चीत रहाओ। रे मन मेरे तू ताको सेव, आद पुरख अपरंपर देव, किस ऊपर मन कर तू आशा, आद जुगाद जा का परवासा, जा की प्रीत।

कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ आया, केवल नाम रिदमाए समाया। गौड़ी महला पंजवा, काकी माई काको बाप, नाम तारीख झूठे सब साथ, काहे को मूर्ख पकलाया।

राजयोग हर कै मार्ग पतित पुनीत पूरी शोभा पूरा लोकीक करण हार सद वसै हजूरा कहु नानक।

विच अग कोट संत प्रसाद जन्म मरण के छोट संत का दर्श पूरन स्नान संत कृपा ते जपिए नाम रहाओ संत के संग

सो प्रसन्न आए वक्त पंचार अमृत नाम हृदय ले संचार कहो नानक जाता पूरा कर्म इस पेटे साधु के चरण गौड़ी महला पंजवा हर गुण जपत कमल प्रगास है हर सिमरत त्रास सब नाश है सामत पूरी जित हर गुण गावे वडे पाग साधु संग पावे रहाओ साध संग पाये निज नामा साध संग पूरन सब कामा हर की भगत जन्म परवान गुर कृपा ते नाम बखान कहो नानक सो जन परवान जा कै हृदय वसै भगवान गौड़ी महला पंजवा एक जा का मन राता विसरी तिसे पराई ताता बिन गोविंद ना दिसे कोई करण करावन करता सोई रहाओ मने कमावे मुख हर हर बोले सो जन इत उत्कत है न डोले जाके हर तन सो सत्साओ गुर पूरे कर दीनो विसाओ जीवन पुरख मिलिया हर राया कहो नानक परम पद पाया गौड़ी महला पंजवा नाम भगत के प्राण आधार नामो तन नामो व्योहार नाम वडाई जन शोभा पाए कर कृपा जिस आप दिवाए रहाओ नाम भगत के सुख स्थान नाम रत सो भगत परवान हर का नाम जन को तारे साफ साफ जन नाम समारे कहो नानक जिस पूरा पाग नाम संग ताका मन लाग गौड़ी महला पंजवा संत प्रसाद हर नाम से आया तब के तावत मन तृप्ताया सुख विश्राम पाया गुण गाए श्रम मिटिया मेरी हती बलाए रहाओ चरण कमल आराध भगवंता हर सिमरन ते मिटी मेरी चिंता सब तज अनाथ एक शरण आयो ऊंच स्थान तब सहजे पायो दुख दर्द प्रम पौ नस्या करण हार नानक मन बस

चरण कमल ठाकुर उरदार, दुलभ दे नानक निस्तार। गौरी महला पंजवा, जाको अपनी कृपा तारे, सोजन रसना नाम उचारे। हर बिसरत सहसा दुख व्यापे, सिमरत नाम परम पौ पागे। रहाओ हर कीर्तन सुने, हर कीर्तन गावे, इस जन दुख निकट नहीं आवे। हर की टहल कर जन सोहे, ताको माया अगर न पोहे। मन तन मुख हर

दुख बिन से सुख हर गुण गाए, गुरपुरा पेटिया लिव लाए राओ, हर का नाम दियो गुर मंत्र, मिटे वसूरे उतरी चिंत, अनद पए गुर मिलत कृपाल, कर कृपा का तेजम जाल, कहो नानक गुर पूरा पाया, ताके बहुर न व्यापे माया, गौड़ी महला पंजवा, रास लिया गुर पूरे आप, मन मुख को लागो संताप।

मृतक देह साध संग बिहुना आवत जात जोनी दुख छीना रहाओ। अनेक वस्त्र सुंदर पहराया जो दरना खेत माहे डराया सगल शरीर आवत सब काम नेफल मानुक जपै नहीं नाम कहो नानक जा को कह दया।

साध संग मिल पजे गोपाला। गौड़ी महला पंजवा, कल कलेश गुर शब्द निवारे, आवन जान रहे सुख सारे, तय दिन से निरपो हर के आया, साध संग हर के गुण गाया, रहाओ चरण कवल हृदय अंतर तारे, अग्न सागर गुर पार उतारे, बूढ़त जात पूरे गुर कांडे, जन्म जन्म के टूटे गांडे, कहो नानक किस गुर बलिहारी, जिस पेतत गत पई हमारी। गौड़ी महला पंजवा, साध संग ताकी सरनी परो, मन तन अपना आगे तरो, अमृत नाम पीवो मेरे पाई, सिमर सिमर सब तपत बुझाई, रहाओ तज अभिमान जन्म मरण निवारो, हर के दास के चरण नमस्कारो, सास सास प्रभ मने संभाले, सो तन संचो जो चाले नाले, तिसे प्राप्त जिस

अमृत दृष्ट संत जीवाए, काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक को दीनी अपनी सेव रहाओ, मिट गई चिंत पुनी मन आशा, करी दया सतगुरु गुण पासा, दुख नाठे सुख आए समाए, कील न परी जा गुर फरमाए, इच पुनी पूरे गुर मिले, नानक के जन सुफल फले, गौड़ी महला पन्नवा, ताप गए पाई प्रभ सांत,

सगल रोग का दिल स्या खाओ। सहज सुभाए बोले हर बाणी, आज पहर प्रभ सुनरो प्राणी। दुख दर्द जम नेड़ न आवे, कहो नानक जो हर गुण गावे। गौड़ी महला पंजवा, पले दिन पले संजोग, जित पेटे पार ब्रह्म निर्जोग। ओ बेला को हों बल जाओ, जित मेरा मन जपे हर नाओ। रहाओ सफल मूरत सफल ओ परी, जित रसना उचरे हर हरी। सफल ओ माथा संत नमस्कार, से चरण पुनीत चले हर मार्ग। कहो नानक भला मेरा कर्म, जित पेटे साधु के चरण। गौड़ी महला पंजवा, गुरु का शब्द रास मन माहे। नाम सिमर चिंता सब जाहे, दिन भगवंत नाही अनकोए। मारे राखे को सोए, रहाओ गुरु के चरण हृदय उद्धार। अग्न सागर जब उतरे पार, गुरु मूरख्यों लाए ध्यान। ईहा ऊहा पावे मान, सगल त्याग गुर शरणी आया। मिटे अंधे से नान सुख पाया। गौड़ी महला पंजवा, जिस सिमरत दुख सब जाए। नाम रतन वसे मन आए, जब मन मेरे गोविंद की बाणी। साधु जन राम रसन वखाणी। रहाओ इक्कस बिन नाही दूजा कोए, जाकी दृष्ट सदा सुख होए। साजन मीत सखा कर एक, हर हर अक्षर मन में लेख। रव रया सर्वत स्वामी, गुण गावे नानक अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा, तै मैं रचियो सब संसारा। तिस पौ नाही जिस नाम अधारा, पौ ना व्यापे तेरी सरना। जो तुझ पावे सोई करना। रहाओ सोग हरख में आवन जाना, तिन सुख पाया जो प्रभ पाना। अगन सागर मह व्यापे माया, से शीतल जिन सतगुरु पाया। राख ले

तुम मन वसे तो दुख न लागे, तुमरी कृपा से ब्रह्म पौ पागे। पार ब्रह्म अपरंपर स्वामी, सगल कथा के अंतर जामी। करो अरदास अपने सतगुर पास, नानक नाम मिले।

कण बिना जैसे सोथर तुखा, नाम बिहून सुने से मुखा, हर हर नाम जपो नित प्राणी, नाम बिहून त्रिग जे बिगानी, रहाओ नाम बिना ना

दात, नानक नाम जपै दिन रात। गौरी महला पंजवा, तू समरथ, तू है मेरा स्वामी।

जो कुछ वर्त है सब तेरा पाना, हुक्म बूझे सो सच समाना, कर कृपा दीजे प्रभु दान, नानक सिमरै नाम निधान। गौड़ी मैला पंजवा ताका दर्श पाये वड़ पागी, जाकी राम नाम लिव लागी, जाके हर वसिया मन माही, ताको दुख सुखने भी नाही। राव सर्व निधान राखे जन माहे, ताके संग किलविक दुख जाहे, जन की महिमा कति न जाए, पार ब्रह्म जन रहा समाये, कर कृपा प्रभु दिनो सुनी जय, दास की सूर नानक सो दी जय। गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत तेरी जाए बलाए, सर्व कल्याण वसे मन आए।

पूरे सतगुरु मिल सारे गोविंद गुण गावो मेरे पाई मिल साधु हर नाम ते आई रहाओ दुलभ दे होई परवान सतगुरु ते पाया नाम निशान हर सिमरत पूरन पद पाया साध संग तय परम मिटाया जत तत देखो तत

चरण कमल हृदय उतारी, मन तन तन गुर प्राण आधारी, सफल जन्म होवे प्रवान, गुर पार ब्रह्म निकट कर जान, संत तूर पाये वड पागी, नानक गुर पेटत हर सों लिव लागी। गौड़ी महला पंजवा। करे दुह कर्म दिखावे होर, राम की दरगह बांदा चोर, राम रमे सोई रामाना, जल सल मैयल एक समाना, रहाओ अंतर बिक मुख अमृत सुनावे, जमपुर बादा चोटा खावे, अनक पर्दे में कमावे विकार, खिन में प्रगट हो है संसार, अंतर साच नाम रस राता, नानक किस

आनंद निवास राम जना को राम परोसा नाम जपत सब मिट्यो अंदेसा रहाओ साध संग कछ पौ ना पराती गुण गोपाल गाये दिन राती कर कृपा प्रभु बंधन छोट चरण कमल की दीनी ओट कहो नानक मन पई परती।

चरण कमल मन में प्रवेश, उचरो राम नाम लख बारी, अमृत रस पीवो प्रभ प्यारी, रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा, जप जप जीवे परमानंदा, काम क्रोध लोभ मद खोए, साध के संग किलबिख सब टोए, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक दीजे सागर वाला। गौड़ी मेला पंजवा, जिसका दिया पैने खाए, किस क्यों आलस क्यों बने माए, खसम विसार आन कम लागे, कौड़ी बदले रतन त्यागे, रहाओ प्रभु त्याग लागत अन लोबा, दास सलाम करत कत सोबा, अमृत रस खावे खान पान, जिन दिए तिसे न जाने स्वान, कहो नानक हम लून हरामी, बख्श ले हो प्रभ अंतरगामी। गौड़ी महला पंजवा, प्रभ के चरण मन माए ध्यान, सगल तीर्थ मजन स्नान, हर दिन हर सिमरन मेरे पाई, कोट जन्म की मल ले जाए, रहाओ हर की कथा हृदय माहे बताए, मन बाँचत सगले फल पाए, जीवन मरण जन्म परवान, जाके हृदय वसे भगवान, कहो नानक से जन पूरे, जिना प्राप्त साधु पूरे। गौड़ी महला पंजवा, खादा पैन दा भूख कर पाए, किसनो जो है दूत धर्म राए, किस क्यों बेमुख जिन जियो पिल जीना, कोट जन्म पर मैं बहुजूना, रहाओ साकत की ऐसी है रीत, जो किस तरह सगल विपरीत, जियो प्राण जिन मन तन तारिया, सोई ठाकुर मनो बिसारिया, बजे विकार लिखे बहु कागर, नानक उदर कृपा सागर, पार ब्रह्म तेरी।

सगल मनोरथ मुक्त पद गीत, ऐसा मीत करो सब कोए, जाके बिरथा कोए न होए, रहाओ अपने स्वाय हृदय।

काम अनित बार नानक बलिहारा, सफल दर्शन गोविंद हमारा। गौड़ी महला पंजवा, कोट बिगन हिरे खिन माहे, हर हर कथा साध संग सुनाहे, पीवत राम रस।

औखद मंत्र तंत्र सब सार करने हार हृदय में तार सज फल परम पजियो पार ब्रह्म कहो नानक अतल ए धर्म गौड़ी महला पंजवा कर कृपा पेटे गुरसोई तित बल रोग ना व्यापे कोई राम रमन करण तै सागर करण सूर फारे जम कागर रहाओ सतगुर मंत्र दियो हर नाम ए आसर पूरन पै काम जप तप संयम पूरी वडियाई गुर कृपाल हर पै सहाई मान मोख होए गुर परम तेख नानक पसरे पार ब्रह्म गौड़ी महला पंजवा दिखे राज के अंदुला पारी दुख लागे राम नाम सितारी तेरे दास को तुही वड्याई माया मगन नरक ले जाई रहाओ रोग ग्रस्त सितारे नाओ दिख माते का ठौर न ठाओ चरण कमल स्यों लागी प्रीत आन सुखा नहीं आवे चीत सदा सदा सिमरो प्रभु स्वामी मिल नानक हर अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा आठ पैर संगी बटवारे कर कृपा प्रभु ले निवारे ऐसा हर रस रमो सब कोए सर्व कला पूरन प्रभु सोए रहाओ महातपत सागर संसार प्रभु खिन में पार उतारन हार अनित बंधन तोरे नहीं जाहे सिमरत नाम मुक्त फल पाए।

0: गौड़ी मैला पंजवा
1: हाथी पाई हर को नाम
0: विचर संसार पूरन सब काम वड पागी हर कीर्तन गाये पार ब्रह्म तू देहता पाये रहाओ हर के चरण हृदय उर्धार पाव सागर चढ़ उतरे पार साधु संग करो सब कोए सदा कल्याण फिर दुख ना होए प्रेम भगत पद गुणी निधान नानक दरगे पाये मान गौड़ी महला पंजवा
1: जल तल मैयल पूरन हर मीत
0: ब्रह्म बिन से गाए गुण गीत उठत सोवत हर संग पहरुआ जा के सिमरन जम नहीं डरुआ रहाओ चरण कमल प्रभु हृदय निवास सगल दुख का होया नास आशा मान तान तन एक साचे साकी मन में टेक
1: महा गरीब जन साध अनाथ
0: नानक प्रभु राखे देहात गौड़ी महला पंजवा हर हर नाम मजन कर सूचे कोट ग्रहण पुन फल मूचे रहाओ हर के चरण हृदय में बसे जन्म जन्म के किल विखनते साध संग कीर्तन फल पाया जम का मार्ग दृष्ट न आया मन बच क्रम गोविंद आधार ताते छुटियो भिक संसार कर कृपा प्रभु कीनो अपना नानक जाप जपे हर जपना गौड़ी महला पंजवा पौ शरणाई जिन हर जाते मन तन शीतल चरण हर गाते कै पंजन प्रभु मन ना बसाही दरपत दरपत जन्म बहुत जाही रहाओ जा कै हृदय बस्यो हर नाम सगल मनोरथ ताके पूरन काम जन्म जरा मृत जिस वास सो समरथ सिमर सास गिरास मीत साजन सखा प्रभ एक नाम स्वामी का नानक टेक गौड़ी महला पंजवा बार राक्षोरी रह समाल कार्य आए गोविंद ले नाल हर हर नाम संतन कै संग मंथन राता राम कै रंग रहाओ गुरु प्रसादी सागर तरिया जन्म जन्म के किल विख सब हिरिया शोभा सुरत नाम भगवंत पूरे गुरु का निर्मल मंत चरण कमल हृदय में जाप नानक पेख जीवे प्रताप गौड़ी महला पंजवा
1: तन एहो थान गोविंद गुण गाए
0: कुशल खेम प्रभ आप बसाए रहाओ विपत तहां जहां हर सिमरन नाही कोट आनंद जह हर गुण गाही हर विसरे दुख रोग कनेरे प्रभ सेवा जम लगे ननेरे सोवड पागी निचल थान जह जपिए प्रभ केवल नाम जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी नानक को मिलिया अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा
1: जो प्राणी गोविंद त्यावे पढ़िया अन पढ़िया

रूपवंत सो चतुर्सियाना जिन जन मानिया प्रभ का पाना जग में आया सो परवान काट काट

साज तूर कर सुध मंजाई, अनक जला जे तो वै दे, मैल न उतरे सुध ना ते। सतगुर पेट्यो सदा कृपाल, हर सिमर सिमर कात्या पौकाल। मुकत पुगत जुगत हर नाओ, प्रेम भगत नानक गुण गाओ। गौड़ी महला पंजवा, जीवन पदवी हर के दास। जिन मिलिया आत्म प्रगास, हर का सिमरन सुन मन कानी। सुख पावे हर द्वार प्राणी, रहाओ आठ पैर से आई है गोपाल। नानक

राम नाम नित रसन बखान, दिन से रोग पहे कल्याण, पार ब्रह्म गुण अगम विचार, साधु संगम है निस्तार, निर्मल गुण गावो नित नीत, गई व्याद उबरे जनमीत, मन बच क्रम।

आगे आप तू थान वस जाते आप तेरे मन हर को जाते पप प्रवान सत निशान जाको आप करे फुरमान आपे दाता आप प्रतपाल नित नित नानक राम नाम समाल गौड़ी महला पंजवा सतगुर पूरा पया कृपाल हृदय वसिया सदा गोपाल राम रवत सद ही सुख पाया मया करी पूरन हर राया रहाओ कहो नानक जाच।

दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे, बादशाह सा सब वस्त्र दीने, अमृत नाम मारे।

अस्थिर पर बसे सुख आसन, गुर प्रसाद नानक सुख बासन, गौरी महला पंजवा, कोट मज्जन तीनो स्नान, लाख अरब खरब दीनो दान, जा मन वस्यो हर को नाम, सगल पवित्र गुण गाए गोपाल, पाप मिटे साधु शरण दयाल, रहाओ बहुत उर्द तप साधन सादे, अनेक लाभ मनोरथ लादे, हर हर नाम रसन आरादे, सिमरत सासत वेद बखाने, जोग ज्ञान सिद्ध सुख जाने, नाम जपते प्रभु सो मन माने, अगाध बोध हर अगम अपारे, नाम जपत नाम हृदय विचारे, नानक को प्रभु कृपा धारे, गौरी महला पंजवा, सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल गुर हृदय बसाया, गुरु गोविंद।

जैसे माई प्रभु की शरण उभरे सब कोए, करण करावन पूर्ण सच सोए रहाओ। अब मन बसिया करने हारा, कै दिन से आत्म सुख सारा, कर कृपा अपने जन राखे, जन्म जन्म के

राम को बल पूरन पाई, ताके बिरथा ना व्यापे काई। रहाओ जो जो चितवे दास हरमाई, सो सो करता आप कराई। निंदक की प्रभ पत गवाई, नानक हर गुण निर्भोगाई। गौरी महला पंजवा, उज बल वीर ब्रह्म सुख सागर। गर्त परत जह लेहो अंगुरिया, रहाओ श्रवण ना सुरत, नैन सुंदर नहीं आरत। द्वार रटत पिंगुरिया, दीना नाथ अनाथ, करुणा में साजन नीत।

सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध नाम मा रस माहे सो प्रसन्न पै केशवा से जन हर गुण गाहे। मात पिता सुत बंद को तू मेरे प्राण आधार साध संग नाम।

को संत मिले वडपाजी रहाओ मन अर्पो तन राखो आगे मन की मत मोह सगल त्यागी जो प्रभु की हर कथा सुनावे अन दिन फिरो तिस पिछे विरागी पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे पेटियो पुरुष रसिक बैरागी मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी गौरी महला पंजवा निकसरे पंखी सिमर हर पांख मिल साधु शरण दहो।

कोई संत मिला वे मेरा रहाओ। सेवा करो दास दासन की अनक पांच किस करो निहोरा। तुला तार तोले सुख सगले बिन हर दर्श सबो ही थोरा। संत प्रसाद दाए गुण सागर जन्म जन्म को जात बहोरा। आनंद सुख पेटत हर।

कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मोहे मार्ग दे बताई रहाओ। अंतर अलख न जाई लखिया विच पर्दा हूँ मैं पाई माया मोह सबो।

नौनिध नाम निधान एक थाई तौ बाहर कैथ जायो। एक कनक अनक पांच साजी बहु प्रकार विचायो, कहो नानक परम गुरु खोई है इव तत्त मिलायो। गौरी महला पंजवा औद कटै

खेद करें और बहुत संतावे आयो शरण तुहारे कर कर हारो अंत बहु पाती छोड़े कतहु नाही एक बात सुनता की ओटा साध संग मिट जाहे कर कृपा संत मिले मोहतिन के तीरज पाया संति मंत दियो मोह निरपो गुर का शब्द कमाया जीत ले ओए महा दुखादी सहज सुहेली बानी कहो नानक मन पया परगासा पाया पद निर्वाणी गौड़ी महला पन्नवा ओ अविनाशी राया निरपो संग तुम्हारे बसते तेहो डर्म कहाँ ते आया रहाओ एक महल तू हुए असारो एक महल निमानो एक महल तू आपे आपे एक महल गरीबानो एक महल तू पंडित बखता एक महल खल होता एक महल तू सब कुछ ग्राहज एक महल कछु न लेता काश की पुत्री कहाँ करे बकरी खिलान हारो जाने जैसा पेट करावे बाजी दर ओ कैसो ही साज आने अंत कोठरी बहुत पाप करिया आप हुआ रखवारा जैसे महल राखे तैसे रहना क्या हो करे बिचारा जिन कुछ किया सोई जाने जिन ए सब विद साजी कहो नानक अपरा

जन पार ब्रह्म रंग राते सूख सहज आनंद तिना संग उन संसार अवर न दाते। जगत उदाहरण से ही आए जो जन दर्श प्यासा उनकी शरण पर ऐसो तरया संत संग पूर्ण आशा।

पंच चेले मिल पे इकतरा एक के वस्तिये दस बैरागन आज्ञाकारी तब निर्मल जोगी थिए परम जराए चराई विपूता पंच एक कर पेखिया सहज सुख सोकीनी पुगता जो ठाकुर मस्तक लेखिया जय पौ नाही ता आसन बांधियो सिंगी अनहत बानी पत विचार डंडा कर राखियो जुगत नाम मन पानी ऐसा जोगी वद पागी पेटे माया के बंधन काटे सेवा पूज करो तिस मूरत की नानक तिस पग चाटे गौड़ी महला पंजवा अनूप पदार्थ नाम सुनो सगल त्याय ले मीता हर औषध जाको गुर दिया ताके निर्मल चीता रहाओ अंधकार मिट्यो किह तंते गुर शब्द दीपक पर दासा क्रम की जाली काकी काटी जाको साथ संगत विश्वासा तारी ले पव जले तारू बिखड़ा बोहित साधु संगा पूरन होई मन की आशा गुर के त्यो हर रंगा नाम खजाना पगती पाया मन तन तृप्त

तुम प्रवराते पोत पोत भगतन संग जोरी प्रयो प्रयो नाम तेरा दर्शन चाहे जैसे दृष्ट ओ चंद चकोरी राम संत में तेज किछ नाही एक जन कई महलाख करोरी जा कह ही है प्रगट प्रभ हुआ।

सब कुछ तुम रहे हाथ ऐसा निधान देहो मोको हर जने चले हमारे साथे निर्गुण आरे को गुण की जय हर नाम मेरा मन जाते संत प्रसाद नान खर पेटे मंत्र शीतल त्राके गौरी महला पंजमा सह समायो देव मोको सतगुरु।

ब्रह्मंड खंड हर ताको नाम जपी जय रे। रहाओ मन की मत त्यागो हर जन हुकम बूझ सुख पाए रे। जो प्रभ करे सोई फल मानो सुख दुख ओही त्याय रे। कोट पतित उधारे किन में करते बार न लागे रे। दीन दर्द दुख पंजन स्वामी जिस पावे तिसे निवार।

दाता सगल कथा प्रतिपारे रहाओ महा कष्ट काते खिन पीतरे रसना नाम चितारे शीतल सांत सुख हर सरणी जलती अग्न निवारे गर्भ कुंड नरक के राख पव जल पार उतारे चरण कमल आराधत मन में जम की त्रास बिदारे पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगम अपारे गुण गावत त्यावत सुख सागर जुए जन्म नहारे काम क्रोध लोभ मोहे मन लीनो निर्गुण के दातारे कर कृपा अपनो।

जीत जन्म के रतन अमौलक साध संगत जप एक किना रहाओ सुख संपत बनता विनोद छोड़ गए बहु लोग भोग हैवर गैवर राज रंग त्याग चलियो है मूड़ नंग चोआ चंदन देह फूलिया सो तन कर संग रूलिया मोहे मोया जाने दूर है कहो नानक सदा हदूर है। गौरी महला पंजवा मन तर कर दे हर नाम नो सागर लहर संसार संसार गुर बोहित पार ग्राम नो रहाओ कल कालख अंधियारिया गुर ज्ञान दीपक उजियारिया बिख बिखिया पसरी अतकनी उबरे जप जप हर गुनी मतवारो माया सोया गुर के तत प्रम्पो खो।

अमित जुगत नहीं पाया, गुर चाकर ले लाया, मारे पंच बिछा दिया, गुर कृपा के दल सा दिया, बख्शीश बजो मिल एक।

जीरे ओला नाम का अवर जे कर्म करावनो तिन में पव है जाम का रहा अवर जतन नहीं पाये वदे पाद हर के आये।

राम सेवक पैर कीन, लख चौरासी जोन फिरे गोविंद लोक नहीं जन्म मरे, बल बुद्ध सियान पहुँ में रही हर साध शरण नानक गही। गौरी महला पंजवा, मन राम नाम गुण गाये, नीत नीत हर सेविय, सास सास हर त्याय, रहाओ संत संग हर मन वसे, दुख दर्द अनेरा प्रम नसे, संत प्रसाद हर जापिये, सो जन दुख ना व्यापिये, जा को गुर हर मंत्र दे, सो उबरिया माया अगन के, नानक को

कना आवे जी के संग काम रहाओ कटिए तेरा अनुरोग तू गुरु प्रसाद कर राज योग हर रस जिन जन चाखिया ताकि कृष्णा लाखिया हर विश्राम निध पाया।

साध संगत मिल हर रवे से गुणी गहीर राव जाको गुरमुख हृदय बुद्ध ताके कर तल नवनिध सिद्ध जो जाने हर पद तनी किछ नाही ताके कमी करने हार पछानिया सर्व सुख रंग मानिया हर तन जाके गृह वसै कहो नानक तिन संग दुख नसै।

पान सब का खाना रहाओ ऐसे है रे खत्म हमारा छिन में साज सवार नहारा काम करी जे ठाकुर पावा गीत चरित प्रभ के गुण गावा।

अज्ञानी मानुक पया जो नाही सो लो है रैन अंधारी कारिया कवन जुगत जित पोरे प्रम तो हारिया।

करण सुख भय अकाल पुरख अगाध बोध सुनत जसो कोट अगथय कृपा निज प्रभ मया तार नानक हर हर नाम लय गौड़ी पूर्वी महला पंजवा मेरे मन शरण प्रभु सुख पाए जा दिन बिसरे प्राण सुख दाता सो दिन जात अजाए रहाओ एक रैन के पावन तुम आए बहु जुग आस बदाए।

रतन जन्म सफल गुर किया, दर्शन को बलहरिय रहाओ, जेते सास ग्रास मन लेता, तेते ही गुण गाय, जो हो दयाल सतगुर अपना, ताए मत बुध पाये, मेरे मन नाम ले जम बनते छूटे, सर्व सुखा सुख पाये।

अनुक बंधन माया परमत परमाया गुण लुज नहीं गाया मन बिछे ही मैं लुजी है जा को रे कृपा करे जीवत सोई मरे साध संग माया।

आवै दुख न पंथ पयान रहाओ। सेवक सेवक सदा सेव तेरे संग बस्त है पाल। कर सेवा तू साध की हो का तिजे जम जाल। होम जग तीरथ किए दुखों में बदे विकार। नरक सुरग दोए पुंचना होए।

0: मैं कैसो कह पुकार नामक कहे सुन रे मना कर कीर्तन होए उधार।
1: राग गौड़ी माला।

किया। सतगुरु सब समाया रहाओ, लाठी भूख तृष्ण सब लाठी, चिंता सगल बिसारी, कर मस्तक गुर पूरे तरयो, मन जीतो जग सारी। त्रिपद अधाए रहे रिद अंतर, दोलन ते अब चूके, अखुट खजाना सतगुर दिया, तोट नहीं रे मुके। अचरज एक सुनो रे पाई, गुर ऐसी बूझ बुझाई, लाए परदा ठाकुर जो पेट्यो, तो बिसरी तात पर आई। कहो ना जाई एहो अचंबो, सो जाने जिन चाखिया, कहो नानक सच पै बिगाता, गुर निधान हृदय ले राखिया। गौड़ी माला महला पंजवा, उबरत राजा राम की सरणी, सर्व लोक माया के मंडल, गिर गिर परते तरणी रहाओ। शास्त सिमरत वेद विचारे, मां पुरखन यो कहया, बिन हर भजन नाही निस्तारा, सूख न किन्हू लया। तीन पवन की लखनी जोरी, बूझत नाही लहरे, बिन हर भगत कहां स्थित पावे, फिर तो पहरे पहरे। अनक बिलास करत मन मोहन, पूरन होत न कामा, जल तो कभू न बूझत, सगल बिरसे बिन नामा। हर का नाम जपो मेरे मीता, यह सार सुख पूरा, साध संगत जन्म मरण निवारे, नानक जन की तूर।

अर करनी प्रमता आगे छोर न पावे ऊहा काम न आवे ए बिद ओ लोगन ही पति आवे। चतुर वेद मुख बचनी उचरे आगे महल न पाये बूझे नाही एक सुदाकर ओ सजली चाक चखाइए। नानक कह तो यो बिचारा जे कमावे सो पार ग्रामी गुर सेवो अर नाम ते आवो त्यागो मनो गुमानी। गौड़ी माला पन्नवा माधो हर हर हर मुख कहिए हम ते कछु न होवे स्वामी ज्यों राखो त्यों रहिए रहाओ। क्या किस करे के करने हारा क्या इस हाथ बिचारे जित तुम लावो तित ही लागा।

गौरी महला पंजवा माज, आओ हमारे राम प्यारे जियो, रैन दिनस साथ साथ सितारे जियो, संत देव संदेशा पैचरण आरे जियो, खुद दिन कित बिद करिए जियो, संग तुम्हारे मैं करे आनंदा जियो, वन तिण त्रिभवन सुख परमानंदा जियो, सेज सुहावी इहो मन बिद संदा जियो, पेट दर्शन इहो सुख लई है जियो, चरण पठार करी नित सेवा जियो, पूजा अर्चा बंदन देवा जियो, दासन दास नाम जप लेवा जियो, बिनो ठाकुर पह कही है जियो, इच पुन्नी मेरी मन तन हरिया जियो, दर्शन पेखत सब दुख पर हरिया जियो, हर हर नाम जपे जप करिया जियो, इहो अजर नानक सुख सही है जियो, गौड़ी माज महला पंजवा, सुन सुन साजन मन मित प्यारे जियो, मन तन तेरा इहो जियो पेवारे जियो, विसरना ही प्रभ प्राण आधारे जियो, सदा तेरी शरण आई जियो, जिस मिले मन जीवे पाई जियो, गुरु प्रसादी सो हर हर पाई जियो, सब किछ प्रभ का प्रभ किया जाए जियो, प्रभ को सद बल जाए जियो, एहो निधान जपैवट पागी जियो, नाम निरंजन एक निवलागी जियो, गुरपूरा पाया सब दुख मिटाया जियो, आठ पैर गुण गाया जियो, रतन पदार्थ हर नाम तुम्हारा जियो, तू सच्चा साहु भगत मन जारा जियो, हर तन रात सच

माया मोहड़िया देव जार सारता से अखी जिखड़िया कोई जे मूर्ख लोभिया मूल ना सुनी कहा इकस दो चौ क्या गणी सब इकत साध मुठी एक अद नाए रसियड़ा का विरली जाए उठी भगत सच्चे दर सोंदे आनंद करे दिन रात रंग रते परमेश्वर है जन नानक तिन बल जात।

जोर तुम्हारे सुख बसां सत शब्द निशान राव सबे गल्ला जातिया सुन के चुप किया कद ही सुरत न लगी।

आओ जित कट वसे पार ब्रह्म सोई सुहावा थाओ जम कंकर नेड़ न आवई रसना हर गुण गाओ सेवा सुरत न जानिया ना जापे आराध ओठ तेरी जग जीवना मेरे ठाकुर अगम आगाज पाए किरपाल गुसाइया नखे सोग संताप तत्ती वाव न लगई सतगुर रखे आप गुर नारायण दय गुर गुर सच्चा सृजन हार गुर तुठे सब किस पाया जन नानक सद बलिहार गौड़ी माज महला पंजवा हर राम राम राम रामा जप पूरन होए कामा रहाओ राम गोविंद जपेंदिया हुआ मुख पवित्र हर जस सुनिए जिसते सोई पाई मित्र सब पदार्थ सब फला सर्व गुणा जिस माहे क्यों गोविंद मनो विसारिये जिस सिमरत दुख जाहे जिस लड़ लगे जीविये पव जल पईये पार मिर साधु संग उधार होए मुख उजल दरबार जीवन रूप गोपाल जस संत जना की रात नानक उबरे नाम जप दर सच्चे साबात गौड़ी माज महला पंजवा मीठे हर गुण गाओ जिंदू तू मीठे हर गुण गाओ सच्चे सेती रतिया।

हित सो जीवन सोए अंचल गह के साधका तरना इव संसार पार ब्रह्म आराधी है उदरे सब परवार साजन बंध सो मित्र सो हर नाम हृदय दे अवगुण सब मिटाए के पर उपकार करे माल खजाना थो कर हर के चरण निदान नानक जाचते।

साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते एनस पागो, रहाओ सुख दुख दोनों समकर जाने और मान अपमाना, हर शोक ते रह अतीता तिन जग तत पछाना, उस तत निंदा दो त्यागे खोजे पद निर्वाणा, जन नानक ए खेल कथन है किन्हों गुरमुख जाना, गौड़ी मैला नावा साधो रचना राम बनाई, एक दिन से एक अस्थिर माने अचरज लख्यो न जाई, रहाओ काम क्रोध मोह बस प्राणी हर मूरत बिसराई, झूठा तन साचा कर मान्यो ज्यों सुपना रहनाई, जो दीसे सो सगल विनाशे जो बादर की छाई, जन नानक जग जान्यो मिथ्या रहो राम शरणाई, गौड़ी महला नावा प्राणी को हर जस मन नहीं आवे, एनिस मगन रहे माया में कहो कैसे गुण गावे, रहाओ पूत मीत माया ममता स्यों ए विद आप बंधावे, मृग तृष्णा ज्यों झूठो इहो जग देख ताक उठतावे, भुगत मुक्त का

निज सिद्ध निर्मल नाम विचार पूरन पूर रहया बिखमार त्रिपुटी छूटी विमल मजार गुर की मत जिए आई कार। इन विद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहाओ इक सुख मानिया सहज मिलाया निर्मल बाणी परम सुकाया लाल पहे सूहा रंग माया नगर पई दिख ठाक रहाया उल्ट पई जीवत मर जा गया शब्द रवे मन हर क्यों ला गया रस संग्रह दिख पर हर त्या गया पाए बसे जम का पौ पा गया साध रहे बादंग अंकारा चित हर क्यों राता हुक्म अपारा जात रहे पत के आचारा दृष्ट पई सुख आता।

पाए भगत करी राचो हरन आए सिखिया दीखिया भोजन पाओ हुक्म संजोगी निज कर जाओ गर्भ गतं सुख आत्म त्याना जोत पई ज्योति माए समाना लिखत मिटे नहीं शब्द निशाना करता करना करता जाना न पंडित न चतर सियाना न फूलो न परम फुलाना कथो न कथनी हुक्म पछाना नानक गुरमत है समाना गौड़ी ग्वारे री महला पहला मन कुंचर काया उद्याने गुर अंकस सच शब्द निशाने राज द्वारे शोभ सुमाने चतुराई ने चीनिया जाए बिन मारे क्यों कीमत पाए रहाओ कर में अमृत तप कर ले नन्ना कार ना कोई करे राखे आप वड्याई दे नील अनिल अगन इक थाई जल निवरी गुर बूझ बुझाई मन दे लिया रहत गुण गाई जैसा कर बाहर सो तैसा वैस गुफा में आँखों कैसा सागर डूगर निरपो ऐसा मुए को कहो मारे कौन निडरे को कैसा डर कवन शब्द पछाने कीने पौन जिन कहया तिन कहन वखानिया जिन बूझिया तिन सहज पछानिया देख विचार मेरा मन मानिया कीरत सूरत मुक्त इक नाई तही निरंजन रहा समाई निज कर व्याप रहा निज ठाई उत्सत करे केते मुन प्रीत तन मन सूचे साठ सुचीत नानक हर पज नीता नीत गौरी ग्वारे री महला पहला ना मन मरे ना कारज होए मन वस दूता दुर्मत दोए मन माने गुरते इक होए निर्गुण राम गुणे वस होए आप निवार विचारे सोए रहाओ मन पूलो बहुत चिते विकार मन पूलो सिर आवे पार मन माने हर एक अंकार मन पूलो माया कर जाए काम विरुदो रहे न खाए हर पद प्राणी रसन रसाए जैवर हैवर कंचन सुतनारी बहुत चिंता फिर चाले हारी जुए खेलन काची सारी संपो संची पै विकार हर शोक उबे दरबार सुख सहजे जप हृदय मुरार नजर करे ता मेल मिलाए गुण संग्रह अवगुण शब्द जलाए गुरमुख नाम पदार्थ पाए बिन नावे सब दुख निवास मनमुख मूर माया चितवास गुरमुख ज्ञान तुर कर्म लिखियास मन चंचल कावत फुन तावे साचे सूचे मैल न पावे नानक गुरमुख

सुख मांगत दुख आगल होए, सगल विकारी हार पर होए, एक बिना झूठे मुक्त न होए, कर कर करता देखे सोए। तृष्णा अगन शब्द बुझाए, दूजा परम सहज सुभाए, गुरमति नाम हृदय वसाए, साची बाणी हर गुण गाए। तन में साचो गुरमुख पाओ, नाम बिना नाही निज खाओ, प्रेम परायण प्रीतम राओ, नदर करे ता बूझे नाओ। माया मोह सर्व जंजाला, मन मुख कुचील कुचित विकराला, सतगुर सेवे चूके जंजाला, अमृत नाम सदा सुख नाला। गुरमुख बूझे एक लीलाए, निज कर वासे साज समाए, जमन मरना ठात रहाए, पूरे गुर के ए मत पाए। कथनी कथो ना आवे और, गुर पुछ देखिया।

तरण गगन ने देखो दोए, नारी पुरुष सबाई लोए, रव सस देखो दीपक उजियाला, सर्व निरंतर प्रीतम बाला, कर कृपा मेरा चित लाया, सतगुरु मोको एक बुझाया, एक निरंजन गुरुमुख जाता, दूजा मार शब्द पछाता, एको हुक्म वर्ते सब लोई, एक से सब ओपत होई, राह दोवे खसम एको जान, गुर कै शब्द हुक्म पछाण, सगल रूप वर्ण मन माही, कहो नानक एको सालाही, गौड़ी महला पहला, अध्यात्म कर्म करे ता साचा, मुक्त पेद क्या जाने काचा, ऐसा जोगी जुगत विचार है, पंच मार सात पुरधार है, रहाओ जिसके अंतर सात वसावे, जोग जुगत की कीमत पावे, राम सत एको गृह उद्यान है, करनी कीरत कर्म समान है, एक शब्द एक पिछला मांगे, ज्ञान ध्यान जुगत सत जागे, पैर अच रहे ना बाहर जाए, कीमत कौन रहे लिवलाए, आपे मेले परम सुपाए, गुर प्रसाद परम पद पाए, गुर की सेवा शब्द विचार, हौ में मारे करनी सार, जब तब संजम पाठ पुराण, कहो नानक अपरम परमान, गौड़ी महला पहला, सीमा गही व्रत सील संतोखं, रोग ना व्यापे ना जम दोखं, मुक्त पाए प्रभ रूप न देखं, जोगी को कैसा डर होए, रूख बिरख गृह बार सोए, रहाओ निरपौ जोगी निरंजन त्यावे, अंदिन जागे सच विवलावे, सो जोगी मेरे मन पावे, सो जोगी मेरे मन पावे, काल जाल ब्रह्म अग्नि जारे, जरा मरण गत गर्व निवारे, आप तरह पितरी निस्तारे, सतगुरु सेवे सो जोगी होए, पैरच रहे सो निरपो होए, जैसा सेवे तैसो होए, नर नहीं केवल निरपो ना हो, अनाथे नाथ करे बल चाओ, पुनरप जन्म ना ही गुण गाओ, अंतर बार एको जाने, गुर के शब्द आप पछाने, साचे शब्द दर निशाने, शब्द मरे तिस निज कर वासा, आवे ना जावे चूके आसा, गुर के शब्द कमल पर गासा, जो दी सह तो आस निराशा, काम क्रोध बिख भूख से आसा, नानक बिरले मिले उदासा, गौड़ी महला पहला, ऐसो दास मिले सुख होई, दुख विसरे पावे सत सोई, दर्शन देख पई मत पूरी, अखट मज्जन चरने तूरी, रहाओ नेत्र संतोखे एक लिव तारा, जेवा सूची हर रस तारा, सत करनी अब अंतर सेवा, मंत्र पास्या अलख अपेवा, जय जय देखो तैसे साचा, दिन बूझे जगरत जग काचा, गुर समझावे सोजी होई, गुरमुख बिरला बूझे कोई, कर कृपा राखो रखवाले, बिन बूझे पशु कहे बेताले, गुर कहया अवर नहीं दूजा, किस कहो देख करो अन पूजा, संत हेत प्रभ त्रिपवन तारे, आत्म चीने सो सत विचारे, साच हृदय सच प्रेम निवास, प्रणवत नानक हम ताके दास, गौड़ी महला पहला, ब्रह्म में गर्भ किया नहीं जानिया, वेद की विपत पड़ी पछतानिया, जह प्रभ सिमरे तही मन मानिया, ऐसा गर्भ बुरा संसार है, जिस गुर मिले तिस गर्भ निवार है, रहाओ बल राजा माया अंकारी, जगन करे बहु पार असारी, दिन गुर पूछे जाए प्यारी, हरी चंद दान करे जस लेवे, दिन गुर अंक ना पाए अपेवे, आप पुलाए आपे मत देवे, दुर्मत हरनाथ दुराचारी, प्रभ नारायण गर्भ परहारी, प्रहलाद उधारे कृपा तारी, पूलो रावण मुग्ध अचेत, लूटी लंका की समेत, गर्भ गया बिन सतगुर हेत, शैत बाहो मद कीट में खासा, हरनाकस ले नखो विदासा, दैत संगारे बिन पगत अभ्यासा, जरा संद काल जमुन संगारे,
रकत बीज काल नेम बिदारे दैत संगार संत निस्तारे आपे सतगुर शब्द विचारे दूजे पाए दैत संगारे गुरमुख साच पगत निसारे बूढ़ा दुर्योधन पत खोई राम न जानिया करता सोई जन को दुख पचे दुख होई जन में जय गुर शब्द न जानिया क्यों सुख पावे परम पुलानिया एक तिल पूले बौर पछतानिया कंस के चांडूर ना कोई राम ना छीनिया अपनी पत कोई बिन जगदीश ना राखे कोई बिन गुर दर्ब ना मेटिया जाए गुरमत धर्म तीरज हर नाए नानक नाम मिले गुण गाए गौड़ी महला पहला चोआ चंदन अंक चढ़ावो पाट पटंबर पहर हटावो बिन हर नाम कहाँ सुख पावो क्या पहरो क्या ओढ़ दिखावो बिन जगदीश कहाँ सुख पावो रहाओ कानी कुंडल गल मोतियन की माला लाल निहाली फूल गुलाला बिन जगदीश कहाँ सुख पाला नैन सलोनी सुंदर नारी खोर सिगार करे अति प्यारी बिन जगदीश पजे नित खुआरी दर कर महला सेज खाली ऐनक फूल बिछावे माली बिन हर नाम सो देह दुखाली हैवर गैवर नेजे वाजे लक्कर नेब खवासी पाजे बिन जगदीश चूठे दिवाजे सिद्ध कहावो रिद सिद्ध बुलावो ताज कुल है सिर खतर बनावो बिन जगदीश कहाँ सच पावो खान मलूक कहावो राजा अबे तबे कूड़े है पाजा बिन गुर शब्द ना सवर

प्रणवत नानक शरण तुम्हारे। गौड़ी महला पहला सेवा एक ना जानत अवरे, पर पंच ब्याज त्यागे कवरे, पाय मिले सच साचे सचरे, ऐसा राम भगत जन होई, हर गुण गाय मिले मल तोई, रहाओ ऊंदो कवल सगल संसार है, दुर्मत अग्न जगत पर जा रे, सो उबरे गुर शब्द विचार है, प्रिंग पतंग कुंचर अर मीना, मृग मरे सह अपना कीना, तृष्णा राज तत नहीं दीना, काम चिते कामन हितकारी, क्रोध विनाश है सगल विकारी, पत मत खोवे नाम विसारी, पर कर चीत मन मुख डोलाए, गल जेवरी तंदे लपटाए, गुरमुख छूटस हर गुण गाए, जो तन विधवा पर को दे, काम दाम चित पर वसे, बिन फिर तृप्त ना कभू होई, पर पर पोथी सिमरत पाठा, देख पुराण पढ़े सुन साटा, बिन रस राते मन बो नाटा, ज्यो चात्रिक जल प्रेम प्यासा, ज्यो मीना जल माहे उलासा, नानक हर रस की तृप्ताता। गौड़ी मेला पहला हट कर मरे ना लेखे पावे, वेद करे बहु पसंद लगावे, नाम विसार बहुर पछतावे, तू मन हर जियो तू मन सुख, नाम विसार सह जम दुख, रहाओ चोवा चंदन अगर कपूर, माया मगन परम पद दूर, नाम विसारे सब कूड़ो कूर, नेजे वाजे तख सलाम, अद की तृष्णा व्यापे काम, बिन हर जाचे भगत ना नाम, वाद अंकार नाही प्रभ मेला, मन दे पावे नाम सुहेला, दूजे पाए अज्ञान दुहेला, बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन बोहित सागर नहीं वाट, बिन गुर सेवे काटे काट, किसको वाहो वाहो जे वाट दिखावे, किसको वाहो वाहो जे शब्द सुनावे, किसको वाहो वाहो जी मेल मिलावे, वाहो वाहो किसको जिसका इहो जियो, गुर सब जी मत अमृत पियो।

नानक नाम रते पत पाए। कौड़ी महला पहला हो मैं करत देखी नहीं जानिया, गुरमुख भगत बिरले मन मानिया। हो करत नहीं पच पाई है, हो मैं जाए परम पद पाई है। रहाओ हो मैं कर राजे बहुत आवे, हो मैं खपे जन्म मर आवे। हो मैं निवरे गुर शब्द विचार है, चंचल मत त्यागे पंच संगार है। अंतर साच सहज कर आवे, राजन जान परम गत पावे। सच करनी गुर परम चुकावे, निरपो के कर तारी लावे। हो कर मरना क्या पावे, पूरा गुर पेटे सोच अगर चुकावे। जेसी है तेती क्यों नाही, गुरमुख ज्ञान पेट गुण गाही। हो मैं बंधन बंद पवावे, नानक राम भगत सुख पावे। गौरी महला पहला प्रथमे ब्रह्मा काले कर आया, ब्रह्म कमल पयाल न पाया। आज्ञा नहीं लीनी परम पुलाया, जो उपजे सो काल संगारिया। हम हर राखे गुर शब्द विचारिया। रहाओ माया मोहे देवी सब देवा, काल न छोड़े बिन गुर की सेवा। ओ अविनाशी अलख पेवा, सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना। नामो पूले जम का दुख सहना, मैं पर नाम ज्यो राखो रहना। चौधरी राजे नहीं किसे मुकाम, सा मरे संचे माया दाम। मैं तन जी जय हर अमृत नाम, रैयत मेहर मुकदम।

ओ गुरुमुख जा पै तापत होई, काजी सेख पेख फकीरा, वडे कहावे हो मैं तन पीरा, काल न छोड़े बिन सतगुर की तीरा, काल जाल जेवा अरनैनी, कानी काल सुने बिख बैनी, बिन सबदे मूठे दिन रैनी, फिर दे साच वसे हर नाए, काल न जो है सके गुण गाए, नानक गुरमुख शब्द समाए, गौरी मैला पहला बोले साच मिथ्या नहीं राई, चाले गुरमुख हुकम रजाए, रहे अतीत सच्चे शरणाए, सच कर बैठे काल न जो है, मन मुख को आवत जावत दुख मोह है, रहाओ अप्यो पियो अकथ कथ रही है, निज कर बैस सहज कर रही है, हर रस माते इहो सुख कही है, गुरमत चाल नहीं चल नहीं डोले, गुरमत साच सहज हर बोले, पीवे अमृत सत विरोले, सतगुर देखिया दीखिया लीनी, मन तन अर्पियो अंतर गत कीनी, गत मित्र पाई आत्म चीनी, भोजन नाम निरंजन सार, परम हंस सच ज्योत अपार, जह देखो तह एक अंकार, रह निरालम एका सच करनी, परम पद पाया सेवा गुर चरणी, मन से मन मानिया क्योंकि अंग प्रमणी, इन विद कौन कौन नहीं तारिया, हर जस संत भगत निस्तारिया, प्रभ पाए हम अवर न पारिया, साच महल गुर अलख लखाया, नेचल महल नहीं छाया माया, साच संतोखे परम चुकाया, जिनके मन वसिया सच होई, तिनकी संगत गुरमुख होई, नानक साच नाम मलख होई, गौरी महला पहला, राम नाम चितरा पै जाका, उपजंप दर्शन की जय ताका, राम ना जपो अपाग तुम्हारा, जुग जुग दाता प्रभ राम हमारा, रहाओ गुरमत राम जपै जन पूरा, चित कट अनहत बाजे तूरा, जो जन राम भगत हर प्यार, से प्रभ राखे कृपा तार, जिनके हृदय हर हर सोई, तिनका दर्श परस सुख होई, सर्व जिया में एको रवे, मन मुख अंकारी फिर जूनी पवे, सो बूझे जो सतगुर पाए, हों मैं मारे गुर सबदे पाए, अर्ग उर्ग की संग क्यों जाने, गुरमुख संग मिले मन माने, हम पापी निर्गुण को गुण करिए, प्रभ होए दयाल नानक जन करिए, हम पापी निर्गुण को गुण करिए, प्रभ होए दयाल नानक जन करिए, सोलें अष्टपदिया।

की सेवा करें, ठाकुर नहीं दिसे, पोखर नीर विरोली है, माखन नहीं दिसे। इस पद जो अर्थाए ले सो गुरु हमारा, नानक की ने आपको सो अपर अपारा, सब आपे आप वर्तदा आपे परमाया, गुर कृपा ते बूझिए सब जम समाया।

मन का सूतक दूजा भाव परने पूले आवो जाओ मन सूतक तवे न जाए जिचर शब्द न पीजे हर कहनाए राव सबो सूतक जेता मो आकार मर मर जमे वारो वार सूतक अगन पौने पानी माहे सूतक भोजन जेता किसाहे सूतक कर्म न पूजा होए नाम रते मन निर्मल होए सतगुर सेवे सूतक जाए मरे न जन्मे काल न खाए सातक सिमरत सोध देखो कोए विण नावे को मुक्त न होए जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार कल में गुरमुख उतरत पार साचा मरे न आवे जाए नानक गुरमुख रह समाए गौड़ी मैला तीजा गुरमुख सेवा प्राण अधारा हर जियो राखो हृदय उर्धारा गुरमुख सोबा सात द्वारा पंडित हर पर तजो विकारा गुरमुख पौजल उतरो पारा रहाओ गुरमुख विचो हो मैं जाए गुरमुख मैल ना लागे आए गुरमुख नाम वसे मन आए गुरमुख कर्म कर्म सच होई गुरमुख अहंकार जलाए दोई गुरमुख नाम रते सुख होई अपना मन प्रबोधो बूझो सोई लोक समझावो सुने ना कोई गुरमुख समझो सदा सुख होई मनमुख डंफ बहुत चतुराई जो किस कमावे सो थाए ना पाई आवे जावे खौर ना काई मनमुख कर्म करे बहुत अभिमाना बग जो लाए बहन चाना जम पकड़िया तभी पछताना बिन सतगुर सेवे मुक्त ना होई गुर प्रसादी मिले हर सोई गुरदाता जुग चारे होई गुरमुख जात पत नामे।

आई। राम पढ़ो मन करो विचार, गुर प्रसादी महल उतार रहाओ। वाद विरोध ना पाया जाए, मन तन फीका दूजे पाए, गुर के शब्द सच लिवलाए। हो मैं मैला यो संसारा, नित तीर्थ नावे ना जाए अहंकारा, बिन गुर पेटे जम करे खुआरा। सो जन साचा जे हो मैं मारे, गुर के शब्द पंच संगारे, आप तरे सगले कुल तारे, माया मोह नट बाजी पाई, मन मुख अंध रहे लपटाई, गुरमुख अलिपत रहे लिवलाई। बहुते पेख करे पेख तारी, अंतर तिसना फिरे अंकारी, आप ना चीने बाजी हारी, कापड़ पहर करे चतुराई, माया मोह अत परम पुलाई, बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई। नाम रते सदा बैरागी, ग्रही अंतर साच लिव लागी, नानक सतगुर सेवे सेवड़ पागी। गौड़ी महला तीजा, ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा, तिस्ते उपजे देव मोह प्यासा, त्रै गुण परमे नाही निज करवासा, हम हर राखे सतगुरु मिलाया, अन दिन भगत हर नाम दृढ़ाया रहाओ। त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला, पढ़ वाद वखाणे सिर मारे जमकाला, तत नाचीने बन्ने पंड पराला, मनमुख अज्ञान को मार्ग पाए, हर नाम विसारिया बहु कर्म दृढ़ाए, पवजल डूबे दूजे पाए। माया का मोहताज पंडित कहावे, बिखिया राता बहुत दुख पावे, जम का गल जेवड़ा नित काल संतावे, गुरुमुख जमकाल ने

परम पुनाए, मनमुख अंधे सदा बिख खाए, जम डंड सहे सदा दुख पाए, जमुआ ना जो है हर की शरणाई, हों मैं मार सच लिवलाई, सदा रहे हर नाम लिवलाई, सतगुर सेवे से जन निर्मल पवित्ता, मन से मन मिलाए सब जग जीता, इन विद कुशल तेरे मेरे नीता, सतगुरु सेवे सो फल पाए, हृदय नाम विच्चों आप गवाए, अनहद बाणी शब्द बजाए, सतगुरु ते कवन

पावन हारा मर्ज में फिर वारो वारा अंधे गुरु ते परम न जाई मूल छोड़ लागे दूजे पाई बिका माता बिख माए समाई माया तर मूल जंत्र परमाए हर जियो विसरिया दूजे पाए जिस नजर करे सो परम गत पाए अंतर साच बार साच वरताए साच न छपे जे को रखे छपाए ज्ञानी बूझे सह सुबाए गुरुमुख साच रहा लिवलाए हौ मैं माया शब्द जलाए मेरा प्रभ साचा मेल मिलाए सतगुर दाता शब्द सुनाए तावत राखे ठाक रहाए पूरे गुरते सो जी पाए आपे करता सृष्ट सिर्ज जिन गोई तिस बिन दूजा अवर न कोई नानक गुरमुख बूजे कोई गौड़ी महला तीजा नाम अमोलक गुरमुख पावे नामो सेवे नाम सह समावे अमृत नाम रसना नित गावे जिसनो कृपा करे सो हर रस पावे अंधिन हृदय जपो जगदीसा गुरमुख पावो परम पद सुखा रहाओ हृदय सुख पया प्रगास गुरमुख गावे सच गुण दास दासन दास नित होवे दास गृह कुटुंब मैं सदा उदास जीवन मुक्त गुरमुख को होई परम पदार्थ पावे सोई त्रै गुण मेटे निर्मल होई सहजे साच मिले प्रभ सोई मोह कुटुंब स्यों प्रीत न होए जा हृदय वसिया सच सोए गुरमुख मन वेदिया अस्थिर होए हुकम पचाने बूझे सच सोए तू करता मैं अवर न कोए तुझ सेवी तुझ ते पत होए कृपा करें गावा प्रभ सोए नाम रतन सब जग में लोए गुरमुख बाणी मीठी लागी अंतर बिकसे अंधिन लिव लागी सहजे सच मिलिया प्रसादी सतगुर पाया पूरे वड पागी हौ मैं ममता दुर्मत दुख नास जब हृदय राम नाम गुणतास गुरमुख बुद्ध प्रगति प्रभ जास जब

शब्द मन रंगिया लिव लाए, निज कर वस्या प्रभ की रजाए, सतगुरु सेवे जाए अभिमान, गोविंद पाईए गुणी निधान रहाओ। मन बैरागी जा शब्द पौ खाए, मेरा प्रभ निर्मला सब तै रहा समाए, गुर कृपा ते मिले मिलाए, हर दासन को दास सुख पाए, मेरा हर प्रभ इन विद पाया जाए, हर कृपा ते राम गुण गाए, त्रिग पहु जीवन जित हर नाम न लगे प्यार, त्रिग से सुखाली कामन मोगवार, तिन सफल जन्म जिन नाम आधार, त्रिग त्रिग गृह कुटुंब जित हर प्रीत न होए, सोई हमारा मीत जो हर गुण गावे सोए, हर नाम बिना मैं अवर न कोए, सतगुर ते हम गत पत पाई, हर नाम ते आया दुख सगल मिटाई, सदा आनंद हर नाम ले विलाई, गुर मिलिए हमको शरीर शुद्ध भई, हऊ मैं तृष्णा सब अग्न बुझई, बिन से क्रोध खिमा गह लई, हर आपे कृपा करे नाम देवे, गुरुमुख रतन को विरला।

मन करहला गुरु गोविंद संभाले रहाओ। मन करहला विचारिया मन मुख फाथिया महाजाल। गुरुमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम समाले। मन करहला मेरे प्यारिया सत्संगत सतगुरु पाल। सत्संगत लग हर त्याय हर हर चले तेरे नाल। मन करहला वड पागिया हर एक नजर निहाल। आप छड़ाए छुट्टी है सतगुरु चरण समाल। मन करहला मेरे प्यारिया विच देही जोत समाल। गुरु नौ निज नाम विखालिया हर दात करी दयाल। मन करहला तू चंचला चतराई छड़ विकराल। हर हर नाम समाल तू हर मुक्त करे अंतकाल। मन करहला बड पागिया तू ज्ञान रतन समाल। गुर ज्ञान खड़ग हथ तारिया जम मारे अड़ा जम काल। अंतर निधान मन करहले प्रम पवे बार पाल। गुर पुरुष पू

जब यो मन में करत गुमाना तब यो बावर फिरत बिगाना जब यो हुआ सगल की रीना ताते रमैया कट कट चीना सहज सुहेला फल मस्कीनी सतगुर अपने मोहे दान दीनी रहाओ जब किसको यो जान समंदा तब सगले इस मेले फंदा मेर तेर जब इन्हें चुकाए कांते इस संग नहीं बहराए जब इन अपनी अपनी तारी तब इसको है मुश्किल पारी जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किस ताता जब इन अपनो बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा जब इसते सब बिन से परमा पेद नाही है पार ब्रह्मा जब इन किच कर माने पेदा तब ते दुख दंड अर खेदा जब इन एको एक ही बूझिया तब ते इसनो सब किच सूझिया।

कर कृपा जो सतगुर मिलियो, मन मंदिर में दीपक जलियो, जीत हार की सोजी करी, तो इस कर की कीमत परी। करन करावन सब किछ एक है, आपसे बुद्ध विचार विवेक है, दूर ना ने

आस जपत पाओ अपदा जाए, तावत मनुआ आवे खाए। जास जपत फिर दुख ना लागे, जास जपत ए हो मैं पागे। जास जपत वस आवे पंचा, जास जपत हृदय अमृत संचार। जास जपत ए तृष्णा बुझे, जास जपत हर दरगे सिजे। जास जपत कोट मिटे अपराध, जास जपत हर होवे साध। जास जपत मन शीतल होवे, जास जपत मल सगली खोवे। जास जपत रतन हर मिले, बहुर ना छोड़े हर संग हिले। जास जपत कई बैकुंठ वास, जास जपत सुख सह निवास। जास जपत ए अग्न न पोहत, जास जपत एहो काल न जोहत। जास जपत तेरा निर्मल माथा, जास जपत सगला दुख लाता। जास जपत मुश्किल कछु न बने, जास जपत सुन अनहत तुने। जास जपत ए निर्मल सोए, जास जपत कमल सीधा होए। गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी, जिसके हृदय मंत्र दे हरी। अखंड कीर्तन तिन पोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द निरिद अंतर तारे। पंच जना स्यो संग निवारे, दस इंद्री कर राखे वास। ताके आत्मे होए प्रगास, ऐसी दृढ़ता ताके होए। जा को दया मया प्रभ सोए, रहाओ साजन दुष्ट जा के एक समान है। जेता बोलन तेता ज्ञान है, जेता सुनना तेता नाम, जेता पे

सहज गुर पेट्यो सत धर्मा जा कै सहज पया सो जाने नानक दास ता कै कुर्बाने। गौड़ी मैला पंजवा प्रथमे गर्भ वास्ते तरिया पुत्र कलत्र कुटंब संग जुरिया भोजन अनेक प्रकार बहु कपरे सर पर गमन करेंगे बपुरे कवन स्थान जो कबहु ना तरे कवन शब्द जित दुर्मत हरे रहाओ। इंद्रपुरी में सर पर मरना ब्रह्मपुरी नेचल नहीं रहना शिवपुरी का होएगा काला त्रैगुण माया बिनस बिताला गिर तर तरण गगन अरतारे रव सस पवन पावक नीरारे दिनस रैन बर्त अरपेदा सासत सिमरत बिन सेंगे बेदा तीरथ देव देहोरा पोथी माला तिलक सोच पाक होती तोती दंडौत प्रसादन पोगा गमन करे गो सगलो लोगा जात वर्ण तुर्क अर हिंदू पस पंखी अनेक जोन जिंदू सगल पसार दिसे पासारा बिनस जाए गो सगल आकारा सहज सिफत भगत तत ज्ञाना सदा आनंद नेचल सचताना तहां संगत साध गुण रसे अनपौ नगर तहां सदवसे तह पौ परमा सोग ना चिंता आवन जावन मृत ना होता तह सदा आनंद अनहत आखारे भगत वसे कीर्तन आधारे पार ब्रह्म का अंत न पार कौन करे ताका विचार कहो नानक जिस कृपा करे नेचर थान साध संग तरे। गौड़ी महला पंजवा जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिसे वड्याई जो इस मारे तिसका दुख जाए ऐसा कोई जो दुबदा मार दवावे इसे मार राज जोग कमावे रहाओ। जो इस मारे तिसको पौ नाहे जो इस मारे सो नाम समाहे जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझे जो इस मारे सो दरगे सिजे जो इस मारे सो तनवंता जो इस मारे सो पतवंता जो इस मारे

जो इस मारे सो नहीं चलता नहीं, जो इस मारे सो वड पागा, जो इस मारे सो अंधिन जागा, जो इस मारे सो जीवन मुक्ता।

इस मारी बिन थाए न पड़े, कोट कर्म जाप तप करे, इस मारी बिन जन्म न मिटे, इस मारी बिन जमते नहीं छूटे, इस मारी बिन ज्ञान न होई, इस मारी बिन झूठ ना तोई, इस मारी बिन सब किछ मैला, इस मारी बिन सब किछ जौला, जाको पै किरपाल कृपा निज, तिस पै खलासी हो।

मन अपने में फिर चेत बिनस जाहे माया के हेत हर अविनाशी तुमरे संग मन मेरे रच राम के रंग जा के काम उतरे सब भूख जा के काम ना जो है दूत जा के काम तेरा वड गमर जा के काम होवे तू अमर जाके चाकर को नहीं दान जाके चाकर को नहीं बान जाके दफ्तर पूछे ना लेखा ताकि चाकरी

बोले कूर साकत मुखकारा बिन सिमरन गर्दव की न्याई साकत थान परिष्ट फिराई बिन सिमरन कूकर हर काया साकत लोभी बंद न पाया बिन सिमरन है आत्म काती साकत नीचे तिस कुल नहीं जाती जिस पया कृपाल तिस सत्संग मिलाया कहो नानक गुर जगत कराया गौड़ी मैला पंजवा गुर के बचन मोह परम गत पाई गुर पूरे मेरी पैज रखाई गुर के बचन से आयो मोह नाओ गुर प्रसाद मोह मिलिया छाओ रहाओ गुर के बचन सुन रसन वखाणी गुर कृपा से अमृत मेरी बाणी गुर के बचन मिटिया मेरा आप गुर की दया ते मेरा वड प्रताप गुर के बचन मिटिया मेरा परम गुर के बचन पेख्यो सब ब्रह्म गुर के बचन कीनो राज जोग गुर के संग तरिया सब लोग गुर के बचन मेरे कार्य सिद्ध गुर के बचन पाया नाउ निद जिन जिन कीनी मेरे गुर की आशा तिसकी कटिए जम की फासा गुर के बचन जागिया मेरा कर्म नानक गुर पेटिया पार ब्रह्म गौड़ी मैला पंजवा तिस गुर को सिमरों सास सास गुर मेरे प्राण सतगुर मेरे

गीते जिन गुरमो को दीना जियो अपना दासरा आपे मुरलियो आपे लायो अपना प्यार सदा सदा तिस गुर को करी नमस्कार कल कलेश तै परम दुख लाथा कहो नानक मेरा गुर समराथा गौड़ी मैला पंजवा मिल मेरे गोविंद अपना नाम देहो नाम बिना त्रिग त्रिग असनेहो रहाओ नाम बिना जो पहरे खाए जो कुकर जूठन में पाए नाम बिना जेता व्यवहार जो मृतक मिथ्या सिगार नाम विसार करे रस भोग सुख सुपने नहीं तन में रोग नाम त्याग करे अनकाज बिनस जाए चूठे सब पाज नाम संग मन प्रीत न लावे कोट कर्म कर तो नरक जावे हर का नाम जिन मन ना आराधा चोर की न्याई जमपुर बादा लाख अडंबर बहुत विस्तारा नाम बिना चूठे पासारा हर का नाम सोई जन ले कर कृपा नानक जिस दे गौड़ी मैला पंजवा आद मद जो अंत निवा है सो साजन मेरा मन चाहे हर की प्रीत सदा संग चाले दयाल पुरख पूरन प्रतपाले रहाओ बिन सतनाही छोड़ न जाए जह पेखा तह रया समाए सुंदर सुगड़ चतुर जी दाता पाई पूत पिता प्रभ माता जीवन प्राण आधार मेरी रास प्रीत लाई कर हृदय निवास माया सिरख काटी गोपाल कर अपना लीनो नदर निहाल सिमर सिमर काटे सब रोग चरण ध्यान सर्व सुख भोग पूरन पुरख नवतन नित बाला हर अंतर बार संग रखवाला कहो नानक हर हर पद चीन सर्व सुनाम भगत कौ दीन रागौड़ी माध महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद खोजत फिरे असंख अंत न पारिया सेई होए भगत जिना कृपारिया हों वारिया हर वारिया रहाओ सुन सुन पंथ डराओ बहुत पहारिया मैं तक्की ओट संता लेहो उबारिया मोहन लाल अनूप सर्व साधारिया गुर निव निव लागो पाए देहो दिखारिया मैं किए मित्र अनेक इकस बलिहारिया सब गुण किसी नाहे हर पूर पंडारिया चौ दिस जपिए नाउ सूख सवारिया मैं आही और तुहार नानक बलिहारिया गुर काड्यो पूजा प्रसार मोह कुपारिया मैं जीत्यो जन्म अपार बहुर नहारिया मैं पायो सर्व निदान अकत कतारिया हर दरगे शोभावंत बाल उडारिया जन नानक लगा रतन अमोर

रेण हर रंग रंगो, जप जेवा हर एक मंगो, राव तज हो मैं गुर ज्ञान पजो, मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दी सह सो संग न गयो, साकत मूड लगे पच मोयो, मोहन नाम सदा रव रहयो, कोट मदे किने गुरमुख लयो, हर संतन कर नमो नमो, नौ निद पावे अतुल सुखो, नैन अलोवो साध जनो, हृदय गावो नाम निदो, काम क्रोध लोभ मोह तजो, जन्म मरण दो ते रहयो, दुख अंधेरा करते मिट्यो, गुर ज्ञान दृढ़ायो दीप बलियो, जिन सेव्या सो पार परयो, जन नानक गुरमुख जगत करयो। महला पंजवा गौड़ी, हर हर गुर गुर करत परम गए, मेरे मन सब सुख पायो, रहाओ बल तो जल तो तौ क्या, गुर चंदन शीत लायो, अज्ञान अंधेरा मिट गया, गुर ज्ञान दीपायो, पावक सागर गहरो, चर संतन नाव तरायो, ना हम कर्म ना कर्म सुच, प्रभ गह पूजा अपायो, पौ खंडन दुख पंजनो, भगत वचल हर नायो, अनाथ नाथ कृपाल दीन, समरथ संत ओटायो, निर्गुनी आरे की बेनती, देहो दर्श हर आयो, नानक शरण तुहारी ठाकुर, सेवक द्वारे आयो। गौड़ी महला पंजवा, रंग संग बिखिया के पोगा, इन संग अंध ना जानी, हौ संचो हौ खाटता सगली अवध बिहानी, रहाओ हौ सूरा प्रधान हो, को नाही मुझे समानी, जो बनवंत अचार कुलीना, मन में होए गुमानी, जो उलझायो बाद बुद्ध का, मर्त्या नहीं विसरानी, पाई मीत बंदव सके, पाछे तिन्हों को संपानी, जित लागो मन बासना, अंत साई प्रगटानी, आंग बुद्ध सुच कर्म कर, ए बंधन बंदानी, दयाल पुरख।

ना बिन करवास ना ही पुछो सखी सहेलिया, बिन नाम प्रीत प्यार ना ही वसे साथ सुहेलिया। सच मन सज्जन संतोख मेला, गुरमति सो जानिया, नानक नाम ना छोड़े सातन नाम सहज समानिया। मिल सकी सहेलड़ियो हम पिर रावे हा, गुर पुछ लिखोगी जियो शब्द स्नेहा। शब्द साचा गुर दिखाया मन मुखी पछतानिया, निकस जातो रह अस्थिर जाम सच पछाणिया। साच की मत सदा नौतन

शंकर साजने आया, मिलवर नारी मंगल गाया, गुण गाए मंगल प्रेम रहती, मुंद मन उमा हो, साजन रहन से दुष्ट व्यापे, साच जप सच लाहो, कर जोड़ सातन करे बिनती, रैन दिन रस पिनिया, नानक पिर तन कर।

सुनना प्रभु जियो एक लड़ी बनमाहे, क्यों ती रहगी ना बिना प्रभ वे परवाहे। तन ना बाजो रह न साके बिखम रहन कनेरिया, नह नींद आवे प्रेम पावे सुन बेनंती मेरिया। बाजो प्यारे कोई न सारे एक लड़ी कुर लाए, नानक सा तन मिले।

सबदे सुहावे ता पत पावे दीपक देह उजारे सुन सखी सहेली साच सहेली साचे के गुणसारे सतगुर मेली ता फिर रावी बिगसी अमृत बाणी नानक सा तन।

हर प्रीत प्यारे शब्द विचारे किसी का सो होवे पुन दान अनेक नावन क्यों अंतर मल तोवे नाम बिना गत कोई न पावे हाथ निग्रह बे बाणे नानक सच कर।

तेरा मैल सच्चा जियो, नाम सच्चा वा पारो, नाम का वा पार मीठा, भगत लाहा अंदिनो, जिस बाज वखर कोई न सूजे, नाम लेवो खिन खिनो, परख लेखा नदर सा

गुण सारे खिन पल रह न सके जियो बिन हर प्यारे, बिन हर प्यारे रह न सके गुर बिन महल न पाई है। जो गुर कहे सोई पर की जय तिसना अग्न बुझाई है। हर साचा सोई तिस बिन अवर न कोई बिन सेवे सुख न पाए। नानक सा तन मिले मिलाई जिसनो आप मिलाए। तन रहन सुहेलड़िए जियो हर स्यों चित लाए। सतगुर सेवे पाव करे जियो विच्चों आप गवाए। विच्चों आप गवाए हर गुण गाए अन दिन लागा पाओ। सुन सखी सहेली जी की मेली गुर के शब्द समाओ। हर गुण सारी ताकंत प्यारी नामे तरी प्यारो। नानक कामन ना प्यारी राम नाम गलहारो। तन एक लड़ी जियो बिन ना प्यारे दूजे पाए मुठी जियो बिन गुर शब्द करारे। बिन शब्द प्यारे कौन दुत्तर तारे माया मोह खुआई। कूण विगुती तापिर मुती सा तन महल न पाए। गुर शब्दे राती सहजे माती अन दिन रह समाए। नानक कामन सदा रंग राती हर जियो आप मिलाए। ता मिलिए हर मेले जियो हर बिन कौन मिलाए। बिन गुर प्रीतम अपने जियो कौन परम चुकाए। गुर परम चुकाए यूं मिलिए माए तासा तन सुख पाए। गुर सेवा बिन कोर अंधार बिन गुर मग न पाए। कामन रंग राती सहजे माती गुर के शब्द विचारे। नानक कामन हर वर पाया।

कापड़ तन ना सुहाई, कापर तन सुहावे जा पिर पावे, गुरमती चित लाये सदा सुहागन जा सतगुर सेवे, गुर के अंक समाये गुर शब्द मेला ता पिर रावी, लाहा नाम संसारे नानक कामन ना प्यारी, जा हर के गुण सारे सा तन रंग माने जियो अपने नाल प्यारे, एनस रंग राती जियो गुर शब्द विचारे, गुर शब्द विचारे हों मैं मारे, इन बिद मिलो प्यारे सा तन सुहागन सदा रंग राती, साचे नाम प्यारे अपने गुर मिल रही है अमृत गई है, दुबदा मार निवारे नानक कामन हर

पानी अन्न न पावे मरिए हावे बिन फिर क्यों सुख पाए। गुर आगे करो बिनंती जे गुर पावे ज्यो मिले तिवे मिलाये आपे मेल ले सुखदाता आप मिलिया करे आए नानक कामन सदा सुहागन ना फिर मरे न जाए। गौड़ी महला तीजा कामन हर रस बेदी जियो हर कै सह सुवाए मन मोहन मोह लिया जियो दुबदा सह समाए दुबदा सह समाए कामन वर पाए गुरमति रंग लाए इहो शरीर पूर कुसत परिया गलताई पाप कमाए गुरमुख भगत जित सहज तुन उपजे बिन भगती मैल न जाए नानक कामन।

मिलिए प्यारे अंदिन दुख निवारे अंतर महल फिर रावे कामन गुरमती विचारे अमृत नाम पिया दिन राती दुबदा मार निवारे नानक सच मिली सुहागन गुर कै हेत अपारे आवो दया करे जियो प्रीत मत प्यारे कामन बिनो करे जियो सच शब्द सिगारे सच शब्द सिगारे हों मैं मारे गुरमुख कार सवारे जुग जुग एको सच्चा सोई बूझे गुर विचारे मनमुख काम व्यापी मोह संतापी किस आगे जाए पुकारे नानक मनमुख थाउ न पाए बिन गुर अत प्यारे मुंद एयाणी पोली निगुणिया जियो फिर अगम अपारा आपे मेल मिलिए जियो आपे बख्शन हारा अवगुण बख्शन हारा कामन कंत प्यारा कट कट रहा समाई प्रेम प्रीत पाए भगती पाई है सतगुरु बूझ बुझाए सदा आनंद रहे दिन राती अंदिन रहे लिवलाई नानक सहजे हर वर पाया सातन नौनिद पाई गौड़ी महला तीजा माया सर सबल वरते जियो क्यों कर दुत्तर तरिया जाए राम नाम कर बोहता जियो शब्द खेवट विच पाए शब्द खेवट विच पाए हर आप लंगाए इन विद दुत्तर तरिए गुरुमुख भगत प्राप्त होवे जीव त्या यो मरिए किन में राम नाम किल विख काटे पए पवित्र शरीरा नानक राम नाम निस्तारा कंचन पए मनूरा स्त्री पुरुष काम व्यापे जियो राम नाम की विद नहीं जानी।

पिता सुत पाई करे प्यारे जियो, डूब मोए बिन पानी, डूब मोए बिन पानी गत नहीं जानी। हो मैं ताप संसारे, जो आया सो सबको जासी, उबरे गुर विचारे, गुरमुख होवे राम नाम वखाणे, आप तरह कुल तारे, नानक नाम वसे कट अंतर, गुरमत मिले प्यारे, राम नाम बिन को थिर नाही जियो, बाजी है संसारा, दृढ़ भगत सच्ची जियो, राम नाम वा पारा, राम नाम वा पारा अगमा पारा, गुरमति तन पाईए, सेवा सुरत भगत के साची, विच्चों आप गवाईए, हम मतहीन मूरख मुगद अंधे, सतगुरु मार्ग पाए, नानक गुरमुख शब्द सुहावे, अंदिन हर गुण गाए, आप सराय करे आप जियो, आपे शब्द सवारे, आपे सतगुर आप शब्द जियो, जुग जुग भगत प्यारे, जुग जुग भगत प्यारे, हर आप सवारे, आपे भगती लाए, आपे दाना आपे बीना, आपे सेव कराए, आपे गुण दाता अवगुण काटे, हृदय नाम वसाए, नानक सद बलिहार।

आद गवाए सदा हर रस पाए जा हर पाए रसना सब सुहाए नाम प्याए सदा सुख पाए नाम रहे लिवलाए नामे उपजै नामे बिनसै नामे सच समाए नानक नाम गुरमति पाए आपे ले लवाए ए विदानी चाकरी पिया जियो तन छोड़ परदेश सिधाए दूजे किने सुख न पायो पिरा जियो बिख्या लोभ लुभाए बिख्या लोभ लुभाए परम पुलाए ओ क्यों कर सुख पाए चाकरी विदानी खरी दुखाली आप वेच धर्म गवाए माया बंधन टिके नाही छिनछि दुख संताए नानक माया का दुख तदे चूके जा गुर शब्दी चितलाए मन मुख मुकुट गवार तिरा जियो शब्द मन ना वसाए माया का परम अंग तिरा जियो हर मार्ग क्यों पाए क्यों मार्ग पाए बिन सतगुरु पाए मन मुख आप गणाए हर के चाकर सदा सुहेले गुरचरणी चित लाए जिसनो हर जियो कृपा करे सदा हर के गुण गाए नानक नाम।

जैसा मेरे मन अनंद भया जियो वजी वादाई कर लाल आया प्यारा सब तिखा बुझाई मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर सखी मंगल गाया सब मीत बंदप हरख उपजा दूध ठाव गवाया अनहतवा जे वजह कर में फिर संग सेज विछाई दिनवंत नानक सहज रहे हर मिलिया कंत सुखदाई।

आवे। जहाँ साध संत एकत्र हो गए तहाँ तुझे त्यावे। कर दया मया दयाल स्वामी हो दीन कृपारा, बिनवंत नानक दर्श प्यासे मिल दर्शन सुख सारा। मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली, मोहन तू माने एक जी अवर सब राली। माने ता एक अलेख ठाकुर जिन्हें सब कल तारिया, तुद बचन गुर के वस किया आद पुरख बनवारिया। तू आप चलिया आप रहया आप सब कल तारिया, बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक शरण तुम्हारिया। मोहन तुद सत्संगत त्यावे दर्श त्याना, मोहन जम नेड़ ना आवे तुद जपे निदाना। जम काल तिन को लगे नाही जो एक मन त्यावे, मन बचन कर्म जे तुद आराधे से सबे फल पावे। मल मूत मूड जे मुग्ध होते से देख दर्श सो ज्ञाना, बिनवंत नानक राज निचल पूरन पुरख भगवाना। मोहन तू सुफल फलिया।

बेअंत गुण तेरे कथे न जाही, सतगुर पुरख मुरारे बिनवंत नानक तेक राखी, जित लग तरिया संसारे। गौड़ी महला पंजवा श्लोक। पतित असंख पुनीत कर पुनः पुनः बलिहार, नानक राम नाम जप पाव को तिन किल बिख दाहन हार। छंत। जप मना तू राम नारायण गोविंदा हर मादो, त्याय मना मुरार मुकंदे कटिये काल दुख सातो, दुख हरण दीन शरण श्री तार चरण कमल आरा दिए, जम पंथ बिखरा अग्न सागर निमक सिमरत साधिय, कल मले दहता शुद्ध करता दिन सरण आरा दो, बिनवंत नानक करो कृपा गोपाल गोविंद माधो। सिमर मना दामोदर दुख हर पै पंजन हर राया, श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वचल बिरदाया, पदक वचल पुरख पूरन मने चिंदिया पाये, तम अंग कूप ते उधार नाम मन वसाये, सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन गुण अंक भगती गाया, बिनवंत नाम।

बिनवंत नानक करो कृपा समरथ सब कल धारी। गुण गाओ मना अचुत अविनाशी सबके ऊंच दयाला, दिसंबर देवन को एक सर्व करे प्रतपाला। प्रतपाल महादयाल दाना दया तारे सब किसे, काल कंटक लोभ मोह नासे जी जाके प्रभु बसे। सो प्रसन्न देवा सफल सेवा पई पूरन काला, बिनवंत ना

हर संते मान त्याग कर भगत खगौरी मोहे साधु मंते सखी वस आया फिर छोड़ न जाई तेरी रीत पली भगवंत नानक जरा

गोविंद गाये, कल कलेश मिटे प्रम नासे, मन चिंदिया फल पाये, पार ब्रह्म पूरन परमेश्वर नानक नाम ते आये। सखी इच करी नित सुख मनाई, प्रभु मेरी आस पुजाए, चरण प्यासी दर्श बैरागन पेखो थान सवाए। खोज लहो हर संत जना संग समरथ पुरख मिलाए, नानक तिन मिलिया सुरजन सुखदाता सेवड पागी माए। सखी नाल वसा अपने ना प्यारे, मेरा मन तन हर संग हिलिया, सुन सखिए मेरी नींद भली, मैं आप नड़ा फिर मिलिया। प्रम खोयो सांत सह स्वामी, परगास तया कौल खिलिया, वर पाया।

परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान पंजन गुरुदेव बंधक सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है गुरुदेव मंत्र निरोधरा गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मजन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित्र करा गुरुदेव आद जुग जुग गुरुदेव मंत्र हर जप उदरा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूढ़ पापी जित लग तरा गुरुदेव सत गुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा श्लोक आपे किया कराया आपे करने जोग नानक एको रव रया दूसर हुआ न होग पौड़ी ओं साध सतगुर नमस्कार आद मद अंत निरंकार आपे सुन आपे सुख आसन आपे सुनत आप ही जासन आपन आप आपे उपायो आपे बाप आप ही मायो आपे सुखम आपे अस्त।

निरंकार आकार आप निर्गुण सरगुण एक एक एक बखान नो नानक एक अनेक पौड़ी। ओम गुरुमुख कियो अकारा एक सूत परोवन हारा तिन तिन त्रै गुण विस्तारं निर्गुण ते सरगुण दिष्टारं सगल पाप कर करें उपायो जन्म मरण मन मोह बढ़ायो दोहू पाप ते आप निरारा नानक अंत न पारा वारा। श्लोक से सहा भगवंत से सच संपै हर रास नानक सच सुच पाई है ते संतन के पास। पवड़ी सत्सा सत सत सत सो सत पुरख ते पिन न को सो शरण परे जे पायं सिमर सिमर गुण गाय सुनायं संशय परम नहीं कछ व्यापत प्रगट प्रताप पाहू को जापत सो साधु ए पहुंचन हारा नानक ता कह सद बलिहारा। श्लोक तन तन कहां पुकारते माया मोह सब कूरे

या मनुआ तन नहीं बांचे सुर्ग न आछे अख प्रे प्रीत साध रज राचे तंदे कहां व्यापे ताहो जो एक छाद अनकते न जाहो जा कहिए है दियो प्रभ नाम नानक साध पूरन भगवान। श्लोक अनक पेख अर ज्ञान त्यान मन हथ मिलियो न कोए कहो ना।

ने ए साजन कछ कहो उपाया, जाते तरो विषम ए माया, कर कृपा सत्संग मिलाए, नानक ताके निकट न माए। श्लोक किरत कमावन शुभ अशुभ कीने, तिन प्रभ आप पस आपन हो।

या जुग जित जित आपे लायो सो सो पायो जो आप दिवायो ओवा का अंत न जाने को जो जो करे सो फुन हो एक के सगला विस्तारा नानक आप सवार नहारा श्लोक

या मन अपना, हर हर नाम जपो जप रसना, रे रे दरगे कह न को, आओ बैठ आदर सुख देव। ओआ महली पावे तू बासा, जन्म मरण न होए विनाशा, मस्तक कर्म लिखियो तुर जाके, हर संपै नाम।

मधमाते या माया में जन्म मरना, जो जो हुक्म तिवे त्यों करना, को ऊन ना को पूरा, को सुगर ना को मूरा, जित जित लावो तित

आप अवर नहीं हो, हो अनहार होत सज आया, ओ आपका अंत ना काहू पाया। कीक हस्त में पूर समाने, प्रगत पुरख सब ठाऊ जाने, जाको दीनो हर वस अपना, नानक गुरमुख हर हर ते जपना। श्लोक आत्म रस जे

को गमिय जास रसन हर हर जस पन्ने आए बसे साधु के संगे अंदिन नाम त्यावे रंगे आवत सो जन नामे राता जाको दया मया विदाता एक आवन फिर जोन ना आया नानक हर के दर्श समाया श्लोक यास जपत मन होए आनंद बिनसे दूजा पाओ दुख दर्द तिसना बुझे नानक नाम समाओ। पौड़ी जैया जारो दुर्मत दो तिसे त्याग सुख सहजे सो यैया जाए परो संत सरना जे आसर एया पव जल करना यैया जन्म ना आवे सो एक नाम ले मने परो यैया जन्म ना हारिये गुर पूरे की टेक नानक ते सुख पाया जाके ही रे एक। श्लोक अंतर मन तन बस रहे पीत ऊत के बीत गुर पूरे उपदेशया नानक जपिए नीत। पौड़ी अंदिन सिमरो तास को जो अंत सहाय होए ए बिखिया दिन चार छे छार चलियो सब कोए ताको मात।

पूरक कुंभक रेचक कर माता ज्ञान ध्यान तीर्थ स्नानी सोम पाक अपरस उद्यानी राम नाम संग मन नहीं एता जो कछ तीनो सौ अनेता हो आते उत्तम गनो चंडाला नानक जे मन बसे गोपाला। श्लोक कुंट चार दह दुष्प्रमे कर्म किरत की रेख सुख दुख मुक्त जोन नानक लिखियो लेख। पौड़ी तत्ता कारण करता सो लिखियो लेख न मेटत को।

खर्च खजाना नाम तंग या भगतन की रास खिमा गरीबी आनंद सहज जपत रहे गुणतास खेले बिगसे अनद स्यो जा को होत कृपाल सदीव गनीव सुहावने राम नाम गृह माल खेद ना दुख ना दान ते।

लोग आस अनित गुरमुख मिटा नानक नाम अरोग पौड़ी गद्दा गोविंद गुण रमो सास सास जपनीत कहां विशासा देह का बिलम न करहो मीत न बारक न जोगने न बिरधि कच बंद ओ बेरा न बूझिए जो आए परे जम

गुर प्रसाद सिमरत रहे जाहू मस्तक पाग नानक आए सफल के जाको प्रिय सुहाग। श्लोक कोखे शास्त्र देव सब आम न कस्तो कोए आप जुगा दी हूं।

जतकत ओही समाहे, पूले को मन जो आवे सरना, नाम तत्कल महे पुनः चरना, काल काल अनिक पछतावे, बिन हर भगत कहाँ थित पावे, कोल महारस अमृत ते पिया, नानक हर गुरु जाको दिया। श्लोक गाने काले सब दिवस।

काल ते जो साकत प्रभ कीन अनक जोन जन्मे मरे आत्म राम न चीन ज्ञान ध्यान ताहू को आए कर कृपा जी आप दिवा।

चार कुंट दह दुष्कम आयो पई कृपा तब दर्शन पायो। चार विचार बिन सो सब दुआ साध संग मन निर्मल हुआ।

छच्छाचार हो तेरे संता, अपनी कृपा करो भगवंता। छाड़ सियानप बहु चतुराई, संतन की मन टेक टिकाई, छार की पुत्री परमगत पाई, नानक जाको संत।

पौड़ी जज्जा जाने हो कछुआ बांध्यो जो नलनी प्रमसुआ जो जाने हो भगत ज्ञानी आगे ठाकुर तिल नहीं मानी।

है तुम्हारो, राम नाम से कर व्योहारो, चूरत चूरत साकत मुआ, जा कह हृदय होत पाओ बिया, चरह कसम मल पाप तेरे मनुआ, अमृत कथा संत संग सुनुआ, चरह काम क्रोध दुष्टाई, नानक जा को कृपा गुसाई। श्लोक। यतन करो तुम अनक विद, रहन न पाओ मीत, जीवत रहो।

बिनस्तो कास्यों करिए संग ज्ञानो या विद सही चित झूठो माया रंग। ज्ञानत सोई संत सोए प्रमते की चत पिन अंधकूप ते ते कढ़ो जे होवो सो प्रसन्न। ज्ञा के हाथ

या डेरा को श्रम कर काले जा का तसू नहीं संग चाले। ओ आडेरा की सो मित जाने जा को दृष्ट पूरन भगवान डेरा ने चल सच।

साध संग अहं बुद्ध विकराल सुख पावो सहजे बसो दर्शन देख निहाल। तेरी जा मैं जमर गर्भ जोन दुख पाए मोह मगन लपतत रह हों आवे जाए। तहत तहत अब

हुक्मे बूझे सदा सुख नानक लिखिया पाए। श्लोक तन मन तन अर्पो तिसे प्रभु मिलावे मोहे नानक परम पो काटी है चूके जमकी जो। पौड़ी तत्ता तास्यो प्रीत कर गुण निध गोविंद राय फल पावे मन बाँचते तपत तुहारी जाए। त्रास मिटे जम पंथ की जास बसे मन नाओ गत पावे मत हुए परगास मैली पावे ठाओ। ताहू संग न तन चले गृह जो बन नह राज।

नानक नाम ते आईए कारज आवै रास पौड़ी। तद्दा तावत तो मिटै संत संग होए बास तुरते किरपा।

जाके मन तन नाम बसाई, नाम निधान गुरुमुख जो जपते, बिख माया में ना ओए खपते। नन्ना कार ना होता ता कहो, नाम मंत्र गुर दीनो जा कहो। निध निधान हर अमृत पूरे, तें बाजे नानक अनहद तूरे। श्लोक

पौड़ी पत्ता परमित पार न पाया पतित पावन अगम हर राया होत पुनीत कोट अपराधु अमृत नाम जपे मिल साधु पर पच त्रोह मोह मिटनाई जाको राखो आप गुसाई पाँच सौ छत

नानक गुर ते सिख पाई, फिरन मिटे नितनीत पौड़ी। फफा फिरक फिरक तू आया, दुर्लभ दे कल युग में पाया, फिर या अवसर चरे न हाथा, नाम जपो तो कटिए फासा। फिर आवन जान ना होई, एक जपो जप सोई, करो कृपा प्रभु।

आवे। बांध्यो आपन हो बंदा, दोष देत आगे को अंधा, बातचीत सब रही सियानप, जिसे जनाबो सो जाने नानक। श्लोक पै पंजन अग दू

मन मूर्ख कह करे पुकार। जो मांगे तो मांगे दिया, जाते कुशल न काहू थिया, मांगन मांगता एक मांग, नानक जाते।

मम्मा जाहू मरम पछाना, पेटत साध संग पतियाना, दुख सुख उआ के समत विचारा, नरक सुर्ग रहत अवतारा, ताहू संग ताहू निर्लेपा, पूरन कट कट पुरख विशेखा, उआ रस में उआहू सुख पाया, नानक लिपत नहीं ते माया। श्लोक। यार मीत सुन साजनो, बिन हर छूटन नाहे, नानक ते बंधन कटे, गुर की चरनी पाहे। पौड़ी। यैया जतन करत बहु विदिया, एक नाम बिन कह लोस दिया, याहू जतन कर होत छुटारा, वाहू जतन साध संगारा, या उबरन तारे सबको, वाहे जपे बिन उबर न हो, याहू तरन तारन समराथा, राख लेहो निर्गुण नरनाथा, मन बच कर्म जे आप जनाई, नानक ते मत

पार ब्रह्म ऐसो अगनता असंख खते खिन बख्शन हारा नानक साहिब सदा दियारा। श्लोक सत कहो सुन मन मेरे शरण परो हर राए उकत सियानप सगल त्याग नानक ले समाए। पौड़ी ससा सियानप छाड़ एयाना हिकमत हुकम ना प्रपति आना सहस पाठ करें चतुराई संग तुहारे एक ना जाए। सो सो जप दिन राती रे जी चले तुहारे साथी साध सेवा लावे जे आपे नानक ताको दुख ना व्यापे। श्लोक हर हर मुख ते बोलना मन उठे सुख होए नानक सब में रब रहा थान थनंतर सोए। पौड़ी हेरो कट कट सगल के पूर रहे भगवान होवत आए सद सदीव दुख पंजन गुर ज्ञान। हौ छुटके होए आनंद ते हौ नाही ते आप हटे दुख जन्मे मरन संत संग परताप। हित कर नाम दृढ़ दयाला संते संग होत कृपाला पूरे कछु न किन्हु किया नानक सब कछ प्रवते हुआ। श्लोक लेखे कते न छूटिए खिन खिन फूलन हार बख्शन।

जियो पिंड जिन सुख दिए ताहे न जानत तत्। लाहा माया कारने दैद स्टूडन जाए, देवन हार दार प्रभ निमख न मने बसाए। लालच झूठ बिकार मोह या संपे मन माहे, लंपट चोर निंदक महा तिन्हों संग बिहाए। खुद पावे ता बख्श ले खोटे संग खरे, नानक पावे पा।

पाव जल ते काडो प्रभु नानक तेरी टेक पौड़ी। खेलत खेलत आयो अनक जोन दुख पाए, खेद मिटे साधु मिलत सतगुरु बचन समाए। खिमा गई सच संचयो खायो अमृत नाम, हरि कृपा ठाकुर भई अनद सुख विश्राम। खेत निबाही बहुत लाभ कर आए पतवंत, खरा दिलासा गुर दिया आए मिले भगवंत। आपन किया करें आप आगे पाछे आप, नानक सो सराही है जे कट कट रहा ब्याप। श्लोक आए प्रभ शरणागति कृपा निद दयाल, एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल। पौड़ी अखर में त्रिभवन प्रभ धारे, अखर कर कर वेद विचारे। अखर शास्त्र सिमरत पुराना, अखर नाद कथन वख्याना। अखर मुक्त जुगत पै परमा, अखर कर्म कीर्त सुच परमा। दृष्टमान अखर है जेता नानक पार ब्रह्म निर्लेपा। श्लोक हाथ कलम अगम मस्तक लिखावती, उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती। पुस्तक कह न जाए मुख।

हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे है भी होवन हार, हे संत के सदा संग निधारा आधार। हे ठाकुर हूँ दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोए, नानक दी जय।

गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है, गुरुदेव मंत निरोधरा, गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित करा, गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत हर जप उदरा।

प्रभ के सिमरन दुख जम हसै, प्रभ के सिमरन काल पर हरे, प्रभ के सिमरन दुश्मन तरे, प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागे, प्रभ के सिमरन अंधन जागे, प्रभ के सिमरन पौ न व्यापे, प्रभ के सिमरन दुख न संतापे, प्रभ का सिमरन साध के संग सर्व निधान नानक हर रंग, प्रभ के सिमरन रिद सिद्ध नौ निद, प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तक बुद्ध, प्रभ के सिमरन जप तक पूजा, प्रभ के सिमरन बिनसै दूजा, प्रभ के सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभ के सिमरन दरगे मानी, प्रभ के सिमरन होय सो भला, प्रभ के सिमरन सो फल फला, से सिमरन जिन आप सिमराए, नानक का कहला गुरु पाए, प्रभ का सिमरन सबते ऊंचा, प्रभ के सिमरन उदरे मूचा, प्रभ के सिमरन तृष्णा बुझे, प्रभ के सिमरन सब किछ सुझे, प्रभ के सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ के सिमरन पूर्ण आशा, प्रभ के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम अमृत माहि सुनाए, प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभ को सिमरे से तनवंते, प्रभ को सिमरे से पतवंते, प्रभ को सिमरे से जन प्रवान, प्रभ को सिमरे से पुरुष प्रदान, प्रभ को सिमरे से बेमोहताजे, प्रभ को सिमरे से सर्व के राजे, प्रभ को सिमरे से सुखवासी, प्रभ को सिमरे सदा अविनाशी, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगैर वाला, प्रभ को सिमरे से परोपकारी, प्रभ को सिमरे तिन सद बलिहारी, प्रभ को सिमरे से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरे तिन सुख बिहावे, प्रभ को सिमरे तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरे तिन निर्मल रीता, प्रभ को सिमरे तिन अनंत घनेरे, प्रभ को सिमरे बसे हर नेरे, संत कृपा ते अंजन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभ के सिमरन कारज पूरे, प्रभ के सिमरन कभो न झूरे, प्रभ के सिमरन हर गुण बानी, प्रभ के सिमरन सहज समानी, प्रभ के सिमरन निचल आसन, प्रभ के सिमरन कमल विगासन, प्रभ के सिमरन अनहद जुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार, सिमरे से जन जिन को प्रभ नया, नानक तिन जन सरनी पया, हर सिमरन कर पगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेत उपाय, हर सिमरन तय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौकुंट जाते, हर सिमरन तारी सर करना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा, कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरुमुख हर सिमरन तिन पाया श्लोक, दीन दर दुख पंजना, कट कट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभु साथ, अष्टपदी, जय मात पिता सुत नीत न भाई, मन उहा नाम तेरे संग सहाई, जय मां प्यान दूत दम दले, ते केवल नाम संग तेरे चले, जय मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माए उदारी, अनित पुने चरण कर्त नहीं तरे, हर को नाम कोट पाप पर हरे, गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख घनेरे, सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हो सुखिया, लाख करोरी वंदना करे, हर का नाम जपत निस्तर है, अनेक माया रंग सिखना बुझावे, हर का नाम जपत आभावे, जे मार के हो जात केला, ते हर नाम संगोत सोएला, ऐसा नाम मन सदा ते आई है, नानक गुरुमुख परम गत पाई है, छूटत नहीं कोट लखबाही, नाम जपत ने पार कराही, अनेक विघ्न जय आए संगारे, हर का नाम तत्काल उधार है, अनेक जोन जन्मे मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम, हौ मैला मल कभो न धोवे, हर का नाम कोट पाप खोवे, ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाये साध के संग, जे मार्ग के गने जाए न कोसा, हर का नाम उहा संग तोसा, जे पैंदे महा अंग गुबारा, हर का नाम संग जियारा, जहां पंख तेरा को न जानू, हर का नाम तह नाल पहचानू,
जय महा प्याम कपट बहु काम तै हर के नाम की तुम ऊपर छाम जहाँ त्रिखा मन तुझ आकर खै तै नानक हर हर अमृत बरख है भगत जना की बरकर नाम संत जना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर के नाम उदरे जम कोट हर दस पर संत दिन रात हर हर औसत साध समात हर जन के हर नाम निधान पार ब्रह्म जन की नो दान मन तन रंग रते रंग एक है नानक जन के बिरत विवेक है हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर के नाम जन को तृप्त भूत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत तब करे न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर के नाम जन सो बापाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत पछवाए वियोग जन वाता हर नाम की सेवा नानक पूजे हर हर देवा हर हर जन के माल खजीना हर तन जन को आप सब दीना हर हर जन के ओट सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रसमाते आठ पैर जन हर हर जपे हर का पगत प्रकट नहीं छपे हर की पगत मुक्त बहु करे नानक जन संकेते तरे पार जात ए हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सबसे उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लखा नाम की महिमा संत रिद रसे संत प्रताप दीर्घ कर नसे संत का संग बड़ भागी पाये संत की सेवा नाम ध्याये नाम तुल कछ अगर न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्व टंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान।

शास्त्र स्मृत वख्यान जो अभ्यास कर्म कर्म क्रिया सगल त्याग बन मदे फिरया अनेक प्रकार की ये बहु जतना पुन दान हो में बहु रतना शरीर कटाए हो मैं कर राती वर्त नेम करे बहु पासी नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड पृथ्वी फिर चिरजीव है महा उदास कपि सरथी वै अगन माए हो मत प्राण कनक अश्व है वर पूम दान न्योली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संजम अच्छादन निमख निमख कर शरीर कटावे तो भी हो मैं मेल न जावे हर के नाम संसर कछ ना है नानक गुरमुख नाम जपत जप पाहे मन कामना तीरथ दे छुटे गर्भ गुमान ना मन ते हुटे सोच करे दिन और रात मन की मैल न तनते जात इस देही को बहु साधना करे मन से कभू ना बिख्या करे जल तो वह बहु दे अनीत शुद्ध कहा होए काची वीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतित बहुमूच बहुत श्यांत जम का पौ व्याप अनेक जतन कर प्रसन्ना ध्याप पेट अनेक अगर नहीं बुझे कोट उपार दर गैनी सिजय छूटत नाही ऊप बयाल मोह व्याप माया जाल अगर करतूत सगली जमदाने गोविंद पदन बिन तिल नहीं माने हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोले सह सुभाए चार पदार्थ जे को मांगे साफ जना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे जे को अपनी शोभा लोरे साध संग ए हो मैं चोरे जे को जन्म मरण से डरे साफ जना की सरनी परे जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक तों कह बल बल जासा सगल पुरुख में पुरुख प्रदान साफ संग जाका मिटे अभिमान आपस को जो जाने नीचा सो गनिये सबसे ऊंचा जा का मन होए सगल की रीना हर हर नाम तिन कट पट चीना मन अपने ते बुरा मिटाना देखे सगल सृष्ट साजना सुख दुख जन कम दृष्टेता नानक पाप पुन नहीं लेता निर्तन को

कर जामे अपनी गत मिट जानो आपे आपन संग आप प्रवराते तुमरी उस्तक तुमते होए नानक अवर न जानस कोए सर्व कर्म में श्रेष्ठ कर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया।

मारे आ, बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध, पर जोगन पोजन सुख सूद, बिर पया ऊपर साख सैन, मुख पियाओ बैठ को देन, त्यों निर्गुण गुण कछु न बूझे, बख्श लियो तो नानक सीजे, जे प्रसाद तर ऊपर सुख बसे, सुत प्रात मीत बनता संग हसे, जे प्रसाद पीवे शीतल जला, सुखदाई पवन पावक अमूला, जे प्रसाद पोगे सब रसा, सगल समग्री संग साथ बसा, जीने हस्त पाव कर नेत्र रसना, तिसे त्याग अवर संग रचना, ऐसे दोख मूड अंग व्यापे, नानक काज लेहो प्रव्यापे, आद अंत जो राखनहार, तिस्यो प्रीत न करे गवार, जा की सेवा नव निध पावे, तास्यो मूड़ा मन नहीं लावे, जो ठाकुर सब सदा हजूरे, ताको अंदा जानत दूरे।

झूठ संग मचे। जो छदना सो अस्थिर कर माने, जो होवन सो दूर कराने। छोड़ जाए किसका श्रम करे, संग सहाई किसका हरे। चंदन लेप उतारे धोए, गर्द प्रीत पसंद संग होए। अंधकूप में पतित विकराल, नानक काट लियो प्रभु दयाल। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। बाहर पेट अंतर मल माया, छप सुनाए कछ करे छिपाया। बाहर ज्ञान त्यान स्नान, अंतर व्यापे लोभ सुवान। अंतर अगन बाहर तन सुहा, जल पाथर कैसे करे अथाहा। जाके अंतर बसे प्रभु आप, नानक तेजन सहज समात। सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गए लियो ओर निभावे। कहां बुझारत बूझे डोरा, निष्कई है तो समझे पोरा। कहां विष्णु पद गावे गुंग, जतन करे तो भी सुरभंग। कह पिंगल पर्वत पर भवन, नहीं होत उहा उस गवन। करतार करुणा में दीन बेनती करे, नानक तुमरी कृपा करे। संग सहाय सो आवे ना चीत, जो बैराई तासो प्रीत। बलुआ के गृह पीतर बसे।

त्याहु जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लियो आपन कर करम। तू ठाकुर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बार तेरे तुमरी कृपा में सुख गनेरे।

तारा। जाके मन लागा प्रभ मीठा, सर्व सुख ताहू मन बूठा। जिस जन अपना हुकुम मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया। अगनत साओ अपनी देरास, खात पीत बरते अनत उलास। अपनी अमान कछ बहुर सावले, अज्ञानी मनी रोस करे। अपनी प्रतीत आप ही खोए।

बताओ सो जो लावे ने ताको हाथ ना आवे के है। मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या।

अष्टपदी। जे प्रसाद शक्ति अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माहे। जे प्रसाद सुगंधित तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे।

ताके जे प्रसाद तुझको ना पहुंचे मन साथ साथ सिमरो प्रभुचे जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे जे प्रसाद अपूखन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद अस्वारी मन किस प्रभु को कभू ना बिसारी।

पत्र है गुरु प्रसाद नानक जस कहै। जे प्रसाद सुने करन नाद, जे प्रसाद पेखें विस्माद, जे प्रसाद बोले अमृत रसना, जे प्रसाद सुख सह।

होत साध के संग मिटै अभिमान, साध के संग प्रगटे सो ज्ञान, साध के संग बुझे प्रभ नेरा, साध संग सब होत निवेरा, साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा बरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माए समानी, साध के संग अगोचर मिले, साध के संग सदा प्रफुल्ल है,

कै संग शोभा सुर देवा, साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध कै संग सर्वथान गम, नानक साध कै संग सफल जन्म, साध कै संग नहीं कछ काल, दर्शन पेटत होत निहाल, साध कै संग कलू कत हरे, साध कै संग नरक पर हरे, साध कै संग इहा उहा सुहेला, साध संग बिचरत हर मेला, जो इच्छा सोई फल पावे, साध कै संग ना बिरथा जावे, पार ब्रह्म साध रिद बसे, नानक उदरे साध सुन रसे, साध कै संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ, साध कै संग ना मन से बिसरे, साध संग सर पर निस्तरे, साध कै संग लगे प्रभु मीठा, साधु कै संग कट कट जीठा, साध संग पै आज्ञाकारी, साध संगत पै हमारी, साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे।

ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म

सकल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। श्लोक उर्दारे जो अंतर नाम सर्व में पेखे भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार है नानक ओ अपरस सगल निस्तार है।

कृपाल आप जरे अवरे नाम जपावे नानक ओ वैष्णो परम गत पावे। भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मनते दिन सह सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म।

अष्टपदी, कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट बन प्रमेय उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आपम ध्यान तारे, कई कोट कब काब विचारे, कई कोट नर्तन नाम दियावे, नानक करते का अंत न पावे, कई कोट पै अभिमानी, कई कोट अंत अज्ञानी, कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अभिज आत्म निकोर, कई कोट पर दर्द को हिरे, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर बिरख मिट जाए।

सिर छत्र सगल समग्री अपने सूत धारे, नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारे। कई कोट राजस्थान सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत हर शास्त्र, कई कोट

नानक सब कुछ प्रभ के हाथ। कई कोट पै बैरागी राम नाम संग तिन लिव लागी। कई कोट प्रभ को खोजनते आत्म में पार ब्रह्म लहंते।

जिनको होए आप सो प्रसन्न, नानक के जन सदा तन तन। कई कोट खानी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट होए अवतार, कई जुगत कीनो विस्तार। कई बार पसरो पासार, सदा सदा एक एकंकार। कई कोट कीने बो पात, प्रभते होए प्रभ माय।

हुक्मे तार अदर रहावे, हुक्मे उपजे हुक्म समावे, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार, कर कर देखे अपनी वडियाई, नानक सब में रिया समाई। प्रभ पावे मान गत पावे, प्रभ पावे ता पाथर तरावे, प्रभ पावे बिन शास्त्र राखे, प्रभ पावे ता हर गुण पाखे, प्रभ

जो पावे सो कार करावे, नानक दृष्टि अवर न आवे। कहो मानस के क्या होए आवे, जो तिस पावे सोई करावे। इसके हाथ होए ता सब पिछले, जो तिस पावे सोई करे। अनजानत भिक्षा में रखे, जे जानत आपन आप बचे। परमे पूला दे दिस्तावे, निमक माए चार कुंट फिर आवे। कर कृपा।

कबहु सिद साधक मुख ज्ञान, कबहु कीट हस्त पतंग होए जिया, अनेक जोन परमे परमिया। नाना रूप जो स्वादी दिखावे, जो प्रभ पावे तिवे न चावे, जो तिस

जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए प्रभु कृपा से बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक हों छूटे सहस खटे लखो सावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे अनेक भोग दुखिया के करे न तृप्त आवे खप खप मरे बिना संतोष नहीं को राजे सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे।

पर अष्टपदी संत के दुखन आरजा कटे, संत के दुखन जमते नहीं छुटे, संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन सो बाते हीन, संत के हते को रखे न कोए, संत के दुखन थान प्रस्त होए, संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक भी तरे, संत के दुखन ते मुख पवे, संत के दुखन काग जून लवे, संत के दुखन सर्प जोन पाए, संत के दुखन त्रिगत जोन किरमाए, संत के दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन सबको छले, संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच निचाए, संत दुखी का थाव को नाहे, नानक संत पावे तो ओए भी जत पाहे, संत का निंदक महा अपताए, संत का निंदक खिंच करना पाए, संत का निंदक महा त्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राजते हीन, संत का निंदक दुखिया अर्दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत की निंदा दुख में दुख, नानक संत पावे ता उसका भी होय मोख, संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसे का नहीं मित, संत के दुखी को दान लागे, संत के दुखी को सब त्याग है।

संत का दोखी इउं बिल लाए जो जल बिहून मछली तड़फड़ाए। संत का दोखी भूखा नहीं राजै जो पावक ईंधन नहीं त्रापै। संत का दोखी छुटै अकेला जो बुआर तिल खेत माहे दुएला। संत का दोखी तरम ते रहत संत का दोखी सब मिथ्या कहत। किरत निंदक का तुरही पया नानक ज्योतिष पावै सोई थिया। संत का दोखी बिगड़ रूप होए जाए संत के दोखी को दरगह मिले सजाए। संत का दोखी सदा सहकाई है संत का दोखी ना मरे ना जीवाई है। संत के दोखी की पूजै ना आसा संत का दोखी उठ चले निराशा। संत के दोख ना त्रिष्टे कोए जैसा पावे तैसा कोई होए। पया किरत ना मेटे कोए नानक जाने सच्चा सोए। सब कट तिसके ओ करने हार सदा सदा तुसको नमस्कार। प्रब की उस्तत करो दिन रात तिसे ते आवो सास गिरास। सब कछवर तै तुसका किया जैसा करे तैसा को थिया। अपना खेल आप करने हार दूसर कौन कहे विचार। जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे बड़ पागी नानक जन से श्लोक। तजो सियानक सुरजनो सिमरो हर हर राय। एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पौ जाए। अष्टपदी मानुक की टेक बिरथि सब जान देवन कोए कै भगवान। जिसके दिए रह अधाए बहुर न तृष्णा लागे आए। मारे राखे एक आप मानुक कै किछु नाही हाथ। तिसका हुकुम बूझ सुख होए तिसका नाम रख कंठ करोए। सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन न लागे कोए। उस्तत मन में कर निरंकार कर मन मेरे सब।

तैं पाप जपिए हर बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दरगह नानक उजल मथा बड़पा गीते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करें विचार से तनवंत गनी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एक को एक एक पछाने इत उत की ओ सो जी जाने नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिने निरंजन जानिया गुर प्रसाद आपन आप सुजै तिसकी जानो तृष्णा बुझै साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओ हर जन रहत अंदन कीर्तन केवल ख्यान ग्रस्त में सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आशा तिसकी कटिए जन की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक किसे न लागे दुख जिसको हर प्रभु मन से त्यावे सो संत सुहेला नहीं बुलावे जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवक कहो किसते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुर प्रसाद तक सब बुझिया जब देखो तब सब किस मूल नानक सो सुखम सोई अस्थूल न किस जन्मे न किस मरे आपन चलित आप ही करे आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल में आप अनेक जुगत रख थाप उथाप अविनाशी नाही किस खंड तारण तार रहे ब्रह्मंड अलक अभेद पुरख प्रताप आप जपाए त नानक जाप जिन प्रभु जाता सो शोभावंत सगल संसार उदर तिन मंत प्रभु के सेवक सगल उदारन प्रभु के सेवक दूप विसारन आपे मेल ले कृपाल गुर का शब्द जप पे निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनो कृपा करें बट पागे नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरुष को उत्तम करमान जो किस करे सो प्रभ के रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुबाए हो वै सो होए करने हार पछाने सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिस पे उपजे तिस माहि समाए ओए सुख निदान उन्हों बने आए आप उसको आप दीनो मान नानक प्रभ जन एक को जान श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभु बिरथा जाननहार जाके सिमरन उदरी नानक तिस बलिहार अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिसते बिरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आप आपन किया कछु न होए जे सो प्राणी लोचे कोए किस दिन नाही तेरे किछ काम गत नानक जप एक हर नाम रूपवंत होए नाही मोह प्रभ की जोत सगल कट सो है तनवंता होए क्या को गर्भ है जा सब किस किसका दिया दर्भ है आप सूराजे को कहावे प्रभ की कला बिना कह धावे जे को होए बहेदा तार किस दिन हार जाने गावार जिस गुर पर साल तू तैहो रोग नानक सोजन सदा अरोग जो मंदर को थामे थमन क्यों गुर का शब्द मने अस्थमन जो पाखान नाल चढ़ तरे प्राणी गुर चरण लगत निस्तर जो अंधकार दीपक प्रकाश गुर दर्शन देख मन होए विगास जो महा उद्यान में मार्ग पावे क्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे तिन संतन की बाचो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूरख काहे बिल लाइये पूर्व लिखे का लिखिया पाइये दुख सुख कर देवन हार अवर त्याग तू किस चितार जो कछ करे सोई सुखमान पूला काहे फिरे अजान कौन बख्त आई तेरे संग लपट रहे रस लोभी पतंग राम नाम जप हृदय माहे नानक पद से ती कर जाहे जिस वक्र को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया तज अभिमान लो मन मोल राम नाम हृदय में तोल लाभ खेप संत संचाल अवर त्याग दिखिया जंजाल
तन तन कहे सब कोए, मुख ऊजल हर दरगे सोए, त्यो वापार विरला वापार है, नानक तां कह सब बलिहार है। चरण साध के तो तोय पियो, अरब साध को अपना जियो, साध की तूर करो स्नान, साध ऊपर जाइए कुर्बान, साध सेवा वड पागी पाइए, साध संहर कीर्तन गाइए, अनेक विघन पे साधु राखे, हर गुण गाय अमृत रस चाखे, ओट गई संतें दर आया, सर्व सुख नानक ते पाया, मृतक को जीवालनहार, पूखे को देवत आधार, सर्व निधान जा की दृष्टि माहे, पूर्व लिखे का लेना पाए, सब किस किस का ओ करने जोग, किस दिन दूसर हुआ न होग, जप जन सदा सदा दिन रहनी, सबसे ऊंच निर्मले करनी, कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सोजन निर्मल थिया, जा के मन गुर की प्रतीत, किस जन आवे हर प्रवचीत, भगत भगत सुनिए ते लोए, जा के हृदय को होए, सच करनी सचता की रहत, सच हृदय सतमुख कैत, साची दृष्ट साचा आकार, सच वर्ते साचा पासार, पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सोजन सच समाता। श्लोक रूप न रेख न रंग किछ, त्रिगुण ते प्रभु भिन्न, तिसे बुझाए नानका, जिस होवे सो प्रसन्न। अष्टपदी अभिनय।

जाना। पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शंद। साफ तेरे की चरनी पाओ नानक कै मन एवं राव। मनसा पूरन सन्ना जोग जो कर पाया सोई होग। हरन परन जा का नेत्र फोर तिस्ता मंत्र न जाने होर। अनद रूप मंगल सज्जा कै सब थोक सुनिए कर पाके। राज में राज जोग में जोगी तप में तपी सरगस्त में भोगी। चाहे चाहे पगते सुख पाया नानक किस पुरुख का किने अंत न पाया। जाकी लीला की मितना है सगल देव हारे अवगाहे। पिता के जन्म के जाने पूत सगल पर होई अपने सूत।

जन दास नाम से आवे से त्यो गुण में जाको भरमाए जन्म मरे फिर आवे जाए ऊंच नीच तिसके स्थान जैसा दिन आवे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना देख करे एक रंग नाना विद की नो विस्तार प्रभ अविनाशी एकंकार नाना चलत करे खिन माहे पूरे ओ पूरन सब ठाए नाना विद कर दंत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कब तिसके सब तिसके ठाओ जब जब जीवे नान खरनाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मंड नाम के तारे सिमृत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आगाश कपाल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुरिया सब भवन नाम के संग उदरे सुन श्रवण कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जनगत पाए रूप सत जा का सत स्थान पुरुष सत केवल प्रधान करतूत सत सत जा की बाणी सत पुरुष सब माए समानी सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत्त सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब पली सत नाम प्रभुता सुखदाई विश्वास सत नाम गुरते पाई सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जा कह रहे प्रवेश सत निरत बूझे जे कोए नाम जपत्ता की गत होए आप सत की आ सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सृष्टि हो करने हार और न बूझ करत विचार करते की मित न जाने किया नानक ज्योतिष पावे सो वर्तिया बिस्मन बिस्म पे बिस्माद जिन बूझिया तिस आया स्वाद प्रभ के रंग रात जन रहे गुर के बचन पदार्थ लहे ओए दाते दुख का तनहार जाके संग करे संसार जन का सेवक सो वड़ पागी जन के संग एक लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे श्लोक आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच अष्टपदी चरण सत सत प्रसन्हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत त्यावनहार आप सत सत सबधारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभ भक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुझनहार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मानिया करण करावन तिन मूल पछानिया जहाँ कह हृदय विश्वास प्रग आया सत ज्ञान तिस मन प्रगटाया कहते निर्भो होए बसाना जिसते उपजा तिस माए समाना बस्त माए ले बस्त गदाई ताको पिनना कहना जाई बूझे बूझन हार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आ गया कारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम के रंग सेवक को प्रभु पालन हारा सेवक की राखे निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभु धारे नानक सो सेवक साथ साथ समारे अपने जन का प्रदाता कह अपने सेवक की सर पर राखे अपने दास को दे बधाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप पत राखे ताकि गतमित कोई न लाखे प्रभु के सेवक को ना पहुँचे प्रभु के सेवक ऊँचते ऊँचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दैन प्रगटाया नीकी कीरी महकल राखे पसंद करे लश्कर कोट लाखे जिसका साफ न काटत आप ताको राष्ट्र देकर हाथ मानस जतन करत बहु पांच किसके कर्तव्य से जात मारे न राखे और न कोए सर्व जिया का राखा सोए काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विडाणी बारंबार बार प्रभ जपिए पी अमृत मन तंत्र पिए
नाम रतन जिन गुरमुख पाया किस किच अवर नाही दृष्टाया। नाम तन नामो रूप रंग नामो सुखर नाम का संग नाम रस जो जंत्र स्थाने मंत्र नामे नाम समाने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कै सब काम। बोलो जस जे बै दिन रात प्रभ अपने जन की नीदात रहे भगत आत्म कह चाहे प्रभ अपने सो रह समाये। जो हुआ हो वत सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह एक न जानो। आठ पैर प्रभ बसे हजूरे कहो नानक से जन पूरे मन मेरे तिनकी ओट ले मन तन अपना तिन जन दे। जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर सब पाप मिटावे। अवर से आनप सगली छाड तिस जन की तू सेवा लाग आवन जान न होवी तेरा नानक तिस जन के पूजो सब तेरा।

अष्टपदी सतगुर सिख की करे प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुर्मत मल हिरे गुर बचनी हर नाम उचरे सतगुर सिख के बंधन काटे गुर का सिख विकार ते हाटे सतगुर सिख को नाम तन दे गुर का सिख वड़ पागी है सतगुर सिख का हल्क पलक सवार नानक सतगुर सिख को जी नाल समार गुर के गृह सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन में सह आपस को कर कछ न जनावे हर हर नाम हृदय सत्यावे मन बेचे सतगुर के पास तिस सेवक के कार्य रास सेवा करत होए ने कामी किसको हो प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले बीस विश्वे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनेक बार गुर को बल जाओ सर्व निदान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म एक आप नहीं कछ भरम सह स्यान लया न जाइए नानक ऐसा दुर्बड़ पागी पाइये सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत पेखत संग राम गुण गवे पार ब्रह्म की दरगे गवे सुनकर वचन करन आघाने मन सुन तो खातम कपियाने पूरा गुर अख्यो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेख हो संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तिस लय मिलाए जीवा एक पुस्तक अनेक सतपुरुष पूरन विवेक काहु बोल न पहुंचत प्राणी अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई अनेक भगत बंधन मुक्त करे चरण कमल हृदय सिमरे सब बलिहारी सतगुरु अपने नानक जिस पर साथ ऐसा प्रभ जपने क्यों हर रस पावे जन कोए अमृत पीवे अमर सो होए उस पुरख का नाही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुण पास आठ पैर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक को दे मोह माया के संग ना लेप मन में राखे हर एक अंधकार दीपक प्रगासे नानक परम मोह दुख सहते नासे तपत माए ठाट वरताई अंध भया दुख ना ठे भाई जन्म मरण के मिटे अंदेशे साधु के पूर्ण उपदेशे पहुंचू का निरपो हो बसे सगल व्याद मन से खैन से जिसका साथ तिन कृपा भारी साध संग जप नाम मुरारी ठित पाई चूके क्रम गवन सुन नानक हर हर दस्रवन निर्गुण आप सरगुण भी ओही कलाकार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिंदु जाना ही कोए सर्व निरंतर एक को सोए पोत पोत रव्या रूप रंग कहे प्रभा साध कै संग रच रचना अपनी कल तारी अनेक बार नानक बलिहारी श्लोक साथ न चाले बिन भजन बिखिया सगली चार हर हर नाम कमावना नानक इहो दम सार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपास सब मीत विसारो चरण कमल में उर्धारो करण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गहो नाम हर वत यो तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंठ उठ भावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुख को नित बांचे मीत सो सुख साधु संग परीत जिस शोभा को करे पली करनी सा शोभा पज हर की सरनी अनेक उपावी रोग न जाए रोग मिटे हर औखद लाए सर्व निदान में हर नाम निदान जप नानक दरगे परवान मंत्र बोधो हर कहनाए दैर्ज तावत आवे ठाए ताको बिघन ना लागे कोए जाके हृदय बसे हर सोए कल पाती ठांडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पौ बिन से पूरन होए आस भगत पाए आत्म प्रगास तित कर जाए बसे अविनाशी कहो नानक काटी जम फांसी
सत विचार कहे जन साचा, जन्म मरे सो काचो काचा। आवागमन मिटे प्रभु सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव। त्यों रतन जन्म का होए उधार, हर हर सिमर प्राण आधार। अनेक उपाव न छूटन हारे, सिमरत साथ वेद विचारे। हर की पगत करो मन लाए, मन बंशत नानक फल पाए। संग न चाल तेरे धना, तू क्या लगता है मूर्ख मना। सुत मीत कुटम अर्गनता, इनसे कहो तुम कर्म सनाता। राज रंग माया विस्तार, इनसे कहो कर्म छुटकार। अहस्ती रथ असवारी, चूठा डंप चूट पासारी। जिन दिए तुझ बुझे ना बेगाना, नाम विसार नानक पछताना। गुर की मत तू ले आने, पगत बिना धो डूबे स्याने। हर की पगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारे चीत। चरण कमल वाको मन माहे, जन्म जन्म के किल विख जाए। आप जपो अगरा नाम जपाओ, सुनत कहत रहत गत पाओ। सार भूत सत हर को नाओ, सह सुभाए नानक गुन गाओ। गुन गाव तेरी उतरस मैल, बिनस जाए हो मैं विख फैल। हो है अचिंत बसे सुखनाल, साफ ग्रास सर नाम समाल। छाड़ स्यान सगली मना, साफ संग पावे सत घना। हर पूंजी संच करो व्यवहार, इहां सुख दरगे जयकार। सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जाके मस्तक लेख। एको जप एको सलाह, एको सिमर एको मन आहे। एक के गुण गाव अनंत, मंतन जाप एक भगवंत। एको एक एक हर आप, पूरन पूर रहो प्रव्याप। अनेक विस्तार एक ते भये, एक अराज प्राशक गए। मंतन अंतर एक प्रवराता, गुरु प्रसाद नानक एक जाता। श्लोक फिरत फिरत प्रभु आया।

अष्टपदे जाचक जन जाचे प्रदान कर कृपा देवो हर नाम। साजना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी सरदा पूर। सदा सदा प्रभु के गुण गावो साथ साथ प्रभु तुम्हें ध्यावो। चरण कमल सो लागे प्रीत भगत करो प्रभु की नित नीत। एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रसार। प्रभु की दृष्टि महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए। जिन चाख्या से जन तृप्ता में पूरन पुरख नहीं डोलाने। सुवर भरे प्रेम रस रंग उपजे चाव साज के संग। परे शरण आम सब त्याग अंतर प्रगास आम दिन लिवलाग। बड़ पागी जपिया प्रभु सोए नानक नाम रति सुख होए। सेवक की मनसा पूरी भई सतगुर ते निर्मल मत लई। जन को प्रभु होयो दयाल सेवक की नो सदा निहाल। बंधन काट मुक्त जन भया जन्म मरण दुख क्रम गया। इच्छुनी श्रद्धा सब पूरी रव रया सब संग हजूरी। जिस पासा तिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाये। सो क्यों बिसरे जे काल न पाने सो क्यों बिसरे जे की आजाने। सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरे जे अगन में राखे गुरु प्रसाद को बिरला लाखे। सो क्यों बिसरे जे बिखते काडे जन्म जन्म का टूटा गांडे। गुरपुरे सत्य है बुझाया प्रभु अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो यो काम आम त्याग जपो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरह नाम जपाओ। भगत पाए तरी है संसार बिन भक्ति तन हो सी छार। सर्व कल्याण सुख निज नाम बूढ़त जाप पाए विश्राम। सगल दुख का होत नाश नानक नाम जपो गुण कास। उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर एही सुआओ। नेत्रों पेक दर्श सुख होए मन बिकसे साध चरण तोए। भगत जना के मन तन रंग बिरला को पावे संग। एक बस दीजे कर माया गुरु प्रसाद नाम जप लया। ताकि उपमा कहीं न जाए नानक रहया सर्व समाए। प्रभु संग दीन दयाल भगत वचल सदा कृपाल। अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा कर्त कृपाल। आद पुरुष कारण करतार भगत जना के प्राण आधार। जो जो जपै सो हुए पुनीत भगत पाए लावे मनहित। हम निर्गुनियार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरुष भगवान। सर्व वैकुंठ मुक्त मोक्ष पाए एक निमित हर के गुण गाए। अनेक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन भाई। बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत। फली सो करनी सो बातनवंत हृदय बसे पूरन गुरमंत। साध संग प्रभु देव निवास सर्व सुख नानक प्रगास। श्लोक सर्व गुण निर्गुण निर्...

फिर जाप अष्टपदी। जब अकार्य कठिना दृष्टि ताप पाप पुन तब कहते होता। जब तारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध के संकमात। जब इसका वरण चेन ना जापत तब हर्ष शोक कोक्ष व्यापत। जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत भरम। आपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार न दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुकत को किसको बनी। जब एक है हर अगम अपार तब नरक स्वरूप को कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सह सुवाए तब शिव सकट को कित ठाए। जब आपे आप अपनी जोत धरे तब कौन निडर कौन कत डरे। आपन चलित आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण को कहां विनाशन। जब पूरन करता प्रभ होए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे। आपन आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही ऊपर जा। जय निर्मल पुरुष पुरुष पत होता तह बिन मैल कहो क्या सोता। जय निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान।

सारा बहु बेअंत ऊंचते ऊंचा नानक आपस को आते पहुंचा। जय आप रचियो प्रपंच आकार त्यो गुण में कीनो विस्तार। पाप पुन तह पई कहावत कौ नरक कौ स्वर्ग बंछावत। आल जाल माया जंजाल होमे मोह परम तय पार। दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की योग ज्ञान। आपन खेल आप कर देखे खेल संकोच है तो नानक एक है। जय अवगत भगत है आप जय पसरे पासा संत प्रताप। दो पास का आपे धनी उनकी शोभा उन्हों बनी। आपे कौतक करे अनंत जोज आपे रस को गन निर्जोग। जिस पावे तिस आपन ना इलावे जिस पावे तिस खेल खिलावे। बेसुमार अथा अगनत अतोले ज्यों बुलावो त्यों।

नानकिए को पसरिया दूजा कह विस्तार। अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार आपे एक आप विस्तार जा तिस्तावे ता श्रेष्ठ उपाय अपने भाणे ले समाए सुनते पिन नहीं किछ होए आपन सूत सब जगत परोए जाको प्रभु जीव आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तपका देता नानक सगल श्रेष्ठ का जेता जी जंत्र सबका कह हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राख है तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मनो बिसार है तिस तज अगर कहा को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जा कह सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण निदान बेअंत अपार नानक दास सदा बलिहार पूरन पूर रहे दयाल सब ऊपर होत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो ब्याप।

संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर करो हर तन के पर ले हो पंडार नानक गुर पूरे नमस्कार केम कुशल सहज आनंद साध संग पज परमानंद।

एक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार। उत्तम श्लोक साध के बचन अनुलीक लाल ए रतन सुनत कमावत होत उधार आप करे लोके निस्तार।

शब्द अनाहद वाजे, सुन सुन अनद करे प्रभु गाजे, प्रगटे गोपाल मां के माथे, नानक उदरे तिन के साथे।

अमृत नाम साध संग लैन। सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण होई सेवक की सेव। आल जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते। हर प्रसाद दया प्रभधारी नानक निभी खेप हमारी।

होए प्रधान पुरुष प्रगट सब लोए सबसे ऊंच पाए अस्थान बहु न होवे आवन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रिद्ध नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध

आस सुंदर चतुर तत्व का बेता सुंदर सी एक दृष्टेता ए फल किस जन के मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निधान जपे मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत के मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटे संत कृपा से जम से छुटे जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन

पाव बिन से अमृत रसे रंग रते निरंकार दुख दारद अपवित्रता नासे नाम आधार। सुर नर मुन जन खोजते सुख सागर गोपाल मन निर्मल मुख उजला होए।

नारद मुन जन सुख व्यास जस गावत गोबिंद रस गी दे हर्षो बीदे भगत रचे भगवंत। मोह मान प्रम बिनस्यो पाई शरण दयाल चरण कमल मन तन बसे दर्शन देख निहाल। लाभ मिले तो ताहिरे साध संग निवलाए खाट खजाना गुण निध हरे नानक नाम त्याए। श्लोक संत मंडल हर जस

आए भंडार संत संगत में पाई है अंत न पारावार। आप तजो गोविंद पजो शरण परो हर राए, दुख हरे पव जल तरे मन चिंदिया फल पाए। आठ पैर मन हर जपे सफल जन्म परवा।

जम कंकर जोए न सकई, नानक प्रभु दयाल। पौड़ी अष्टमी अष्ट सिद्ध नवनिध, सगल पदार्थ पूरन बुद्ध, कवल प्रगास सदा आनंद, निर्मल रीत निरो

एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम, मन संतोख सर्व जी दया, इन विद वर्त संपूर्ण भया, तावत मन राखे इकठाए, मन तन शुद्ध जपत हर नाए, सब में पूर रहे पार ब्रह्म, नानक हर कीर्तन कर अटल एव धर्म।

द्वादशी दान नाम स्नान, हर की भगत करो तज मान, हर अमृत पान करो साध संग, मन तृप्ता से कीर्तन प्रवरंग, कोमल बाणी सबको संतोख है, पंच पू आत्मा हर नाम रस को खै, गुर पूरे ते ए नेचो पाये, नानक राम रमत फिर जोन न आईए। श्लोक तीन गुणा में व्याप्या पूरन होत न काम, अकत उदाहरण मन बसे नानक छूटे नाम। पौड़ी त्रौदशी तीन ताप संसार, आवत जात नरक अवतार, हर हर भजन नाम मन में आयो, सुख सागर प्रभ निमख न गायो, हरक सोग का देह कर बांधियो, दीर्घ रोग माया आसादियो, दिने विकार करत श्रम पायो, नैनी नींद सुपन बरड़ायो, हर विसरत होवत ए हाल, शरण नानक प्रभ।

वैकुंठ प्रभ आप सगल पवन पूरन प्रताप दशे दिशा रविया प्रभ एक करण आकाश सब में प्रभ टेक जल थल वन पर्वत पाताल परमेश्वर तें बसें दयाल सूखम अस्थूल सगल भगवान।

को उपदेश है को दृढ़ है तिसका होए उदार। किलबिख का तय होए निर्मला जन्म जन्म मल जाए हलत पलत मुख।

सतगुर पुरख दयाल है, जिसनो समत सब कोए, एक दृष्ट कर देखदा मन पावनी ते सिद्ध होए। सतगुर विच अमृत है, हर उत्तम हर पद सोए, नानक कृपा ते।

हर तन खटिया गुरमुख शब्द विचार हो मैं मैल बिख उतरे हर अमृत हर उधार सब कारज तिनके सिद्ध हैं जिन गुरमुख कृपा तार नानक जो तुर मिले।

रंग स्यों गुरुमुख हर गुण तास जन नानक हर शरणागती हर मेले गुरसावास पौड़ी। तू करता पुरख अगम है किस नाल तू वड़ी तुद जेवड़ होए सो आखिए तुद जेहा तू है पड़ी है तू कट कट एक वर्तदा।

जन नानक सुख सवन। महला चौथा, सतगुर दाता दयाल है जिसनो दया सदा होए, सतगुर अंदरों निर्वैर है सब देखे ब्रह्म इक सोए। निर्वैरा नाल जे वैर चलाएंदे तिन विच्चों तिस्तिया ना कोए, सतगुर सबना दाता।

जिसनो सतगुरु मेले सो गुण रवे, गुण आख वखाणी नानक सच्चा सच है बुझ सच समाणी। श्लोक महला चौथा। हर सत निरंजन अमर है, निर्भउ निर्वैर निरंकार, जिन जपिया इक मन इक चित तिन लत्ता हो मैं पार, जिन गुरमुख हर आराध्या तिन संत जना जयकार, कोई निंदा करे पूरे सतगुरु की तिसनो फिट फिट कहे सब संसार। सतगुरु विच आप वर्तदा हर आपे रखन हार, तन तन गुरु गुण गावदा तिसनो सदा सदा नमस्कार, जन नानक तिन को वारिया जिन जपिया सिरजनहार। महला चौथा। आपे तरती साजियन आपे आकाश, विच आपे जंत उपायन मुख आपे दे गिरास, सब आपे आप वर्तदा आपे ही गुणतास, जन नानक नाम त्याय तू सब किलविख कटे तास। पौड़ी। तू सच्चा साहिब सच है सच सच्चे पावे, जो तुद सच सलाह दे तिन जम कंकर नेड़ ना आवे, तिनके मुख दर उजले जिन हर हृदय सच्चा पावे, कूड़ यार पिछा हां सटियन कूड़ हृदय कपट महा दुख पावे, मोह काले कूड़ यारिया कूड़ यार कूड़ो होए जावे। श्लोक महला चौथा। सतगुर तरती तर्म है तिस विच जेहा को बीजे तेहा फल पाए, गुर सिखी अमृत बीजिया तिन अमृत फल हर पाए, ओना हलक पलक मुख उजले ओए हर दरगह सच्ची पहनाए, इकना अंदर खोट नित खोट कमावे, ओह जेहा बीजे तेहा फल खाए, जहां सतगुर सराफ नदर कर देखे स्वावगीर सब उगड़ आए, ओए जेहा चित में नित तेहा पाएन, ओए ते हो जेहे देव जाए, नानक दोही श्री खसम आपे वरत है, नित कर कर देख।

कोई पुत्र सिख सेवा करे सतगुरु की तिस कार्य सब सवारे जो इच्छे सो फल पाए सी पुत तन लक्ष्मी खर मेले हर निस्तारे सब निधान सतगुरु विच जिस अंदर हर उर्धारे सो पाए पूरा सतगुरु जिस लिखिया लिखत लिलारे जन नानक मांगे तूर तिन जो गुर सिख मित प्यारे। महला चौथा जिनको आप दे वड्याई जगत दी आपे आन तिनको पैरी पाए डरिये ता जे किच आप दुखी चै सब करता अपनी कला वधाए देखो पाई इहो अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का जिन अपने जोर सब आन निवाए अपने आप भगता की रख करे हर स्वामी निंदका दुष्टा के मौका ले कराए सतगुर की वड्याई नित चढ़े सवाई हर कीरत भगत नित आप कराए अनदिन नाम जपो गुर सिखो हर करता सतगुर करी वसाए सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो हर करता आप मोह कढ़ाए गुर सिखा के मोह उजले करे हर प्यारा गुर का जयकार संसार सबद कराए जन नाम

हर दासन की हर पैज रखाए पौड़ी। तू सच्चा साहिब आप है सच हमारे, सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रवण जारे थारे। सच सेवै सच वणंजले गुण कथे निरारे, सेवक पाए से जन मिले गुर शब्द सवारे। तू सच्चा साहिब अलख है गुर शब्द लिखारे। श्लोक महला चौथा, जिस अंदर ताप पराई होवे तिसदा कदे न होवी पला। ओस दे आखिया कोई न लगे नित ओजारी पुकारे खला। जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या ओसदा सब गया। नित चुगली करे अनहोंदी पराई मोह कड न सके ओसदा काला भया। कर्म तरती शरीर कल युग विच जेहा को बीजे तेहा को खाए। गला ऊपर तपावस न होई विच खादी तत्काल मर जाए। पाई वेखो न्याओ सच करते का जेहा कोई करे तेहा कोई पाए। जन नानक को सब सोजी पाई हर दर किया बाता आप सुनाए। महला चौथा, होंदे प्रतख गुरु जो बिछड़े तिनको दर टोई नाही। कोई जाए मिले तिन निंदका मोह फिके थुक थुक मोह पाही। जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके नित पंबल पूसे खाई। जिन गुरु गोपिया अपना से लेंदे तहा फिराई। तिनकी पुख कदे ना उतरे नित पुखा पुख कुकाही। ओना दा आखिया को ना सुने नित हौले हौल मराही। सच गुर की वड्याई वेख न सकनी ओना अगे पिछे थाओ नाही। जो सतगुरु मारे तिन जाय मिले रेंदी खोंदी सब पत दुआई। ओए अगे कुश्ती गुर के फिटके जे ओस मिले तिस कुष्ट उठाही। हर तिन का दर्शन ना करो जो दूजे पाए चित लाही। कुर करते आप लिख पाया तिस नाल क्यों चारा नाही। जन नानक नाम अराध तू तिस अपड़ को ना सकाही। नावे की

तिसको जगत निव्या सब पैरी पया जस वर्त्या लोई, तिसको खंड ब्रह्मांड नमस्कार करें, जिसके मस्तक हाथ करया गुर पूरे सो पूरा होई, गुर की वड्याई नित चढ़े सवाई अपर को नास कोई, जन नानक हर करते आप बैठ क्या आपे पैज रखे प्रभ सोई। पौड़ी काया कोट अपार है अंदर हट ना ले, गुरमुख सौदा जो करे हर वक्त संभाले, नाम निदान हर वन जी है हीरे परवाले, विन काया जे होर से तन खोज दे से मूड बेताले, से उजड़ परम पवाये ज्यो चार मिर्ग पाले। श्लोक महला चौथा, जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा जग में होया, नरक कोर दुख खू है ओथे पकड़ को टोया, कूक पुकार को ना सुने ओ औखा होय होय रोया, ओन हलत पलत सब गवाया लाहा मूल सब खोया, ओ तेली संदा बलद कर नित पल के उठ प्रभ जोया, हर वेखे सुने नित सब किछ तिदू किछ गुजा ना होया, जैसा बीजे सो लुणे जेहा पूर्व किने बोया, जिस कृपा करे प्रभ अपनी तिस सतगुर के चरण तोया, गुर सतगुर पिछे तर गया ज्यो लोहा कार संगोया, जन नानक नाम से आए तू जप हर हर नाम सुख होया। महला चौथा, वड पागिया सोहागनी जिना गुरमुख मिलिया हर राय, अंतर जोत पर गासिया नानक नाम समाए। पौड़ी एव शरीर सब धर्म है जिस अंदर सच्चे की विच जोत, गुहज रतन विच लुक रहे कोई गुरमुख सेवक कड्डे कोत, सब आत्म राम पछाणिया ता इक रविया इको ओत पोत, इक देखिया इक मन्या इको सुनिया श्रवण स्रोत, जन नानक नाम सलाहे तू सच सच्चे सेवा तेरी होत। श्लोक महला चौथा, सब रस तिन कह हृदय है जिन हर वस्या मन माहे।

हर दरगह ते मुख उजले तिनको सब देखन जाए। जिन निरपो नाम से आया तिनको को कोई ना है। हर उत्तम तिनी सरेविया जिनको तुर लिखिया है। ते हर दरगे पहनाई है जिन हर उठा मन माहे। कोय आप करे सब कुटम स्यो तिन पिछे सब जगत छदाहे। जन नानक को हर मेल जन तिन वेख वेख।

ते जंत भय हरि आवले, जिनी मेरा सतगुर देखिया जाए। तन तन पिता तन तन कुल, तन तन सो जननी, जिन गुरु जनिया माए।

सच्चा शब्द पतार है सदा सदा रावे। ज्यों उबली मजीठ है रंग गहगा त्यों सच्चे नो जियो दे। रंग चलू ले अतरती

सत संगत में हर उस्तत है, संग साधु मिले प्यारिया। ओए पुरख प्राणी तन जन है, उपदेश करें पर उपकारिया। हर नाम दृढ़ावे हर नाम सुनावे, हर नामे जग निस्तारिया। गुर वेखण को सब कोई लोचे, नव खंड जगत नमस्कारिया। तुद आपे आप रखिया, सतगुर विच गुर आपे तुद सवारिया। तू आपे पूजे पूज करावे।

जन भगत है सच सच्चा जिनी अरादिया, जिन गुरमुख खोज टंडोलिया तिन अंदरों ही सच ला दिया। सच साहिब सच जिनी सेविया, काल कंटक मार तिनी साधिया। सच सच्चा सबदू वड़ा है, सच सेवन से सच रला दिया। सच सच्चे नू

सुभाए सतगुर सेती मन रता रखिया बणत बनाए जिहवा सालाहे ना रजई हर प्रीतम चित लाए नानक नावे की मन पुख है मन तृप्त है हर रस खाए पौड़ी सच सच्चा कुदरत जानिए दिन राती जिन बनाया सो सच सलाही सदा सदा सच सच्चे किया वड्याईया सलाही सच सलाह सच सच कीमत किने न पाया जा मिलिया पूरा सतगुरु ता हाजिर नदरी आईया सच गुरमुख जिनी सलाहया तिना पुखा सब गवाईया श्लोक महला चौथा मैं मन तन खोज खोजेंदिया सो प्रभ लद्दा लोड़

दुख विहाए, सतगुर पुरख निर्वैर है, आपे लय जिस लाए, नानक दर्शन जिना विखा लियोन, तिना दरगे लय छड़ाए। महला तीजा, मनमुख अज्ञान दुर्मत अंकारी, अंतर क्रोध जुए मत हारी, कूड़ कुसत ओह पाप कमावे, क्या ओह सुने क्या आख सुनावे, अन्ना बोला कोई उजड़ पाए, मन मुख अंधा आवे जाए, बिन सतगुरु पेटे थाए न पाए, नानक पूरब लिखिया कमाए। पौड़ी, जिनके चित्त कठोर है से बह ना सतगुर पास, ओथे सच वर्तदा कूड़ियारा चित उदास, ओए वल छल कर चत कट दे, फिर जाए बह कूड़ियारा पास, विच सच्चे कूड़ न गड्डे, मन वेखो को निर्जास, कूड़ियार कूड़ियारी जाय रले, सच्चार सिख बैठे सतगुर पास। श्लोक महला पंजवा, रहंदे खोंदे निंदक मारियन, कर आपे आहर संत सहाई नानका।

जे करण कारण समरथ पौड़ी पंजवा लै फाहे राती तुरह प्रभ जाने प्राणी तके नार पराया लुक अंदर ठाणी सन्नी देन विखम थाए मिठा मदमाणी करमी आपो आपनी आपे पछताणी अजराइल फिरस्ता तिन पीड़े काणी। श्लोक महला पंजवा। सेवक सच्चे साह के सेई परवान दूजा सेवन नानका से पच पच मोए।

उस्तति विच होवै एत दोखै तपा दे मारिया। महापुरखा की निंदा का वेख जे तपे नो फल लगा, सब गया तपे का कालिया। बाहर बह पंचा विच तपा सदाए, अंदर बह तपा पाप कमाए।

मन मुख मूलों पुल्लिया विच लभ लोभ अहंकार झगड़ा करदिया अन दिन गुदरे शब्द ना करे विचार शुद्ध मत करते सब हिरलई बोलन सब विकार दित्ते किते ना संतोखिये अंतर तिसना बहु अज्ञान अंध्यार नानक मन मुखा ना।

खांदे सुख ना पाएन मुगद नर संत नाल खांदे ओए लोचन ओना गुणा नो ओए अहंकार सड़न दे ओए बेचारे क्या करें जा पाग तुर मंदे जो मारे तिन पार ब्रह्म से किसे न संदे वैर करन निर्वैर नाल तर्म न्याय पचंदे जो जो संत सरापिया से फिरे पवंदे पेड़ मुंडा हूं कटिया तिस डाल सुकंदे। श्लोक महला पंजवा। गुरु नानक हर नाम दृढ़ाया पन्नन करण समरथ प्रभ सदा समाले मित्र तू दुख सबाया लथ। महला पंजवा। खुद आवंत ना जाने लाज कुलाज कुबो

गुरमुख ज्ञान विवेक बुद्ध होए, हर गुण गावे हृदय हार परोए, पवित्र पावन परम विचारी, जे उस मिले तिस पार उतारी, अंतर हर नाम वासना समाणी, हर दर शोभा महा उत्तम बाणी, जे पुरुष सुने सो

सतगुर आखे सो कार कमावन, सो जप कमावे गुर सिखा की काल सच्चा थाए पावे। बिन सतगुर के हुक्मे जे गुर सिखा पासों कम कराया लोड़े, तिस गुर सिख फिर नेड़ ना।

जे बिन सतगुर के मन मने काम कराए सो जंत महा दुख पावे पौड़ी। तू सच्चा साहिब अत वड्डा तुहे जेवर तू वड वड्डे जिस तू मेले सो तुद मिले तू आपे बख्श लह लेखा छड़े जिसनो तू आप मिलाएंदा सो सतगुर सेवे मन गड़ गड़े। तू सच्चा साहिब सच तू सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे ज्यों पावे त्यों।

हर हर नाम जो जन जपै सो आया परवान, तिस जन के बलिहारणे जिन पजिया प्रभ निर्वाण, जन्म मरण दुख कटिया हर पेटिया पुरुष।

मन तन नित पावो, नाम सुने नाम संग्रह नामे लिव लावो, गृह तन सब पवित्र होए, हर के गुण गावो, हर नाम

तू सब में एक वर्तदा सब माहे समाना थान थनंतर रव रहा जी अंदर जाना साध संग मिल पाये मन सच्चे पाना नानक प्रभ शरणागत।

जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई, कर सेवा पार ब्रह्म गुर पुख रह न काई, सगल मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई, तुद जेवड़ तू है पार ब्रह्म नानक शरणाई। श्लोक महला पंजवा। डिठड़ो हब ठाए ऊन न काई जाए, नानक लद्दा तिन सुआओ जिना सतगुर भेटिया। महला पंजवा। दामनी चमत्कार त्यों वरतारा जग के, वत सुहावी साए नानक नाउ जपंदो तिस्तनी पौड़ी। सिमरत शास्त्र सोध सब किने कीव न जानी, जो जन पेटे साध संग सो हर रंग माणी, सच नाम करता पुरख ए रतना खानी, मस्तक होवे लिखिया हर सिमर पराणी, तोसा दिच्चे सच नाम नानक मेहमानी। श्लोक महला पंजवा। अंतर चिंता नैनी सुखी मूल न उतरे पुख, नानक सच्चे नाम बिन किसे न लथो दुख। महला पंजवा। मुठड़े से ही साथ जिन्नी सच न लद्या, नानक से साबास जिन्नी गुर मिल इक पछाणिया पौड़ी। जिथे बैसन साध जन सो थान सुहंदा, ओए सेवन समरथ अपना बिनसे सब मंदा, पतित उदाहरण।

नित चितारिया निखुट ना जाई मूल अतुल पंडारिया नानक शब्द अपार तिन सब किछ सारिया महला पंजवा सिखो शब्द प्यारे हो जन्म मरण की टेक मुख उजल सदा सुखी नानक सिमरत एक पौड़ी ओथे अमृत वंडी है सुखिया हर करने जम के पंथ न पाये फिर ना ही मरने जिसनो आया प्रेम रस से ही जरने बाणी उचरे साध जन अम्यो चले चरने पेक दर्शन नानक जीव्या मन अंदर तरने श्लोक महला पंजवा सतगुरु पूरे सेवे दुखा का होए नास नानक नाम आराध्य कारज आवे रास महला पंजवा जिस सिमरत संकट छुटे अनद मंगल विश्राम नानक जपिए सदा।

बिखै कौड़तन सगल माहे जगत रही लपटाए नानक जन विचारिया मीठा हर खाना पौड़ी। ए निशानी साधकी जिस पेटत तरिए जम कंकर नेड़ ना आवई फिर बहुड़ ना मरिए पव सागर संसार बिख सो पार उतरिए हर गुण गुम्फो मन माल हर सब मल पर हरिए।

आया पूरन अगम विस्माद नानक राम नाम तन कीता पूरे गुर प्रसाद पौड़ी तो वो ना चली खसम नाल लब मोहे विगु

लालच अटिया नित फिरे स्वार्थ करे न कोए, जिस गुर पेटे नानका तिस मन वसिया सोए। पौड़ी सबे वस्तु कौड़िया सच्चे नाउ मिठा, साध आया तिन हर जना चक साधी डिठा, पार ब्रह्म जिस लिखिया मन तिसे उठा, एक निरंजन रव रहा पाव दोया कुठा, हर नानक मंगे जोड़ कर प्रभ देवे तुठा। श्लोक महला पंजवा।

जन रंग रूप रस बाद के करें प्राणिया जिस पुलाए आप तिस कल नहीं जानिया रंग रते निर्वाण सच्चा गावही नानक शरण द्वार जे तुद पावही पौड़ी जम्मन मरण ना तिन को जो हर लड़ लागे जीवत से परवान हो।

दिशा जल पर्वत बन राए, जिथे डिठा मृत को इल बैठी आए। पौड़ी जिस सर्व सुखा फल लोड़िए, सो सच कमावो, नेड़े देखो पार ब्रह्म इक नाम ते आवो। कोई सगल की रेण का हर संग समावो।

एक जे साजन मैं किया सर्व कला समरथ जियो हमारा खनिए हर मंतन संदड़ी वत। महला पंजवा जे कर गए प्यारड़े तुद ना छोड़ा मूल हर छोड़न से दुर्जना पढ़े दोजक कैसू।

14 अब मोहे जलत राम जल पाया, राम उदक तन जलत बुझाया, रहाओ मन मारण कारण बन जाये, सो जल बिन भगवंत न पाये। जे पावक सुर नर है जारे, राम उदक जन जलत उबारे, पव सागर सुख सागर माहे, पीव रहे जल निखुटत नाही, कह कबीर पज सारंग पानी, राम उदक मेरी तिखा।

तू सतगुर हौ नौतन चेला, कह कबीर मिल अंत की बेला। गौरी कबीर जी, जब हम एको एक कर जानिया, तब लोगे काहे दुख मानिया। हम अपत्ते अपनी पत खोई, हमरे खोज परो मत कोई। रहाओ हम मंदे मंदे मन माही, साँझ पाथ काहू स्यो नाही।

निर्ग मुक्त सब होग, क्या नांगे क्या बांधे चाम, जब नहीं चीनस आत्म राम। रहाओ मूड मुंडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति पेड़ न गैया काई, बिंद राख जो तरिय पाई, खुश रे क्यों ना परमगत पाई, कहो कबीर सुनो नर पाई, राम नाम बिन किन गत पाई। गौरी कबीर जी संध्या प्राप्त।

मिल पाथर की कर ही सेव, कहो कबीर भगत कर पाया, पोले पाए मिले रघुराया। गौड़ी कबीर जी गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती, कहो रे पंडित बामन कब के होए, बामन कह कह जन्म मत खोए। रहाओ जो तू ब्राह्मण ब्रह्मणी जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया, तुम कत ब्राह्मण।

राजा रंक दो मिल रोई है, जो पैरसना राम न कहबो, उपजत बिनसत रोवत रहबो। रहाओ जस देखिए तरवर की छाया, प्राण गए कौका की माया। जस जंती में जियो समाना, मुए मरम को का कर जाना। हंसा

इस पर चाहे परच रहोस गौड़ी कबीर जी। जो जन परमित परमन जाना, बातन ही बैकुंठ समाना, ना जाना।

लाज न मरो कहो कर मेरा, अंक की बार नहीं कछ तेरा। रहाओ अनक जतन कर काया पाली, मरती बार अगन संग जाली, चोआ चंद

ता सुख बिसरे परमानंदा, कूटा एक पंच पनिहारी, टूटी लाज परे मतहारी, कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओ कूटा ना पनिहारी। गौड़ी कबीर जी। अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनेक जन्म किए बहुरंगा, ऐसे कर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए। रहाओ जोगी जति तपि ब्रह्मचारी, कबहू राजा छत्रपत कबहू पेखारी, साकत मरे संत सब जीवे, राम रसायन रसना पीवे। कहो कबीर प्रभ कृपा की जय, हार परे अब पूरा दी जय। गौड़ी कबीर जी की नाल रलाए लिखिया महला पंजवा। ऐसो अचरज देखो कबीर, दद कै पोले बिरोले नीर, रहाओ हरी अंगूरी गधा चरे, नित उठ हाथे ही गै मरे, माता पैसा अमुहा जाए, कुद कुद चरे रसा तल पाए। कहो कबीर प्रगट पई खेड, ले ले को चूगे नित पेड, राम रमत मत प्रगटी आई, कहो कबीर गुरसो जी पाई। गौड़ी कबीर जी पंच पदे। ज्यों जल छोड़ बाहर पयो मीना, पूरब जन्म हों तप का ही ना, अब कहो राम कवन गत मोरी, सजीले बनारस मत पई थोरी। रहाओ सगल जन्म शिवपुरी गवाया, मरती बार मगहर उठ आया, बहुत वर्ष तप किया काशी, मरन पया मगहर की बासी। काशी मगहर संबिचारी, ओछी पगत कैसे उतरस पारी, कहो गुर गज शिव सब को जाने, मुआ कबीर रमत श्री राम है। गौड़ी कबीर जी। चोआ चंदन मर्दन अंगा, सो तन जले काठ कै संगा, इस तन तन की कवन बढ़ाई, तरन परे उर्वार न जाई। रहाओ रात जे सोवे दिन करे काम, एक खिन लेह ना हर को नाम, हाथ ता डोर मुख खायो तंबोर, मरती बार कस बांध्यो चोर, गुरमत रस रस हर गुण गावे, रामे राम रमत सुख पावे। कृपा करके नाम दृढ़ाई, हर हर बात सुगंध बसाई, कहत कबीर चेतरे अंदा, सत राम झूठा सब तंदा। गौड़ी कबीर जी तिप दे चार तुके, जमते उलट पए है राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम, बैरी उलट पए है मीता, साकत उलट सुजन पए चीता, अब मोहे सर्व कुशल कर माने।

जिन राम जानिया तिने पछानिया, जो गूंगे साकर मन मानिया, ऐसा ज्ञान कथे बनवारी, मन रे पवन दृढ़ सुखमन नारी, रहाओ सो गुर करो जे बहुर न करना, सो पद रवो जे बहुर न रवना, सो ध्यान करो जे बहुर न तरना, ऐसे मरो जे बहुर न मरना, उल्टी गंगा जमुन मिलावो, बिन जल संगम मन में नावो, लोचा समसर इहो व्यवहारा, तत विचार क्या और विचारा, अब तेज बाय पृथ्वी।

मोल अब मोहे राम अपना कर जानिया सह सुभाए मेरा मन मानिया रहाओ ब्रह्म कथ कथ अंत न पाया राम भगत बैठे कर आया कहो कबीर चंचल मत त्यागी केवल राम भगत निज पागी गौड़ी कबीर जी जे मरने सब जगत तरासिया सो मरना गुर शब्द प्रगासिया अब कैसे मरो मरना

सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो पाई मेरे मन भावे। रहाओ जे कट राम रहा परपूर, तिनकी पग पंकज हम तूर।

जो मन मारे है, मन को मार कहो किस तारे रहाओ। मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन भगत न होई। कहो कबीर जो जाने पेओ, मन मधुसूदन त्रिभुवन देओ। गौरी कबीर जी। ओए जो दिसे अंबर तारे, किन ओए चीते चीतन हारे। कहो रे पंडित अंबर कास्यों लागा, बूजे बूजन हार सवागा रहाओ। सूरज चंद करें उजियारा, सब में पसरिया।

राम जपत तन जर की ना जाए, राम नाम चित रहा समाए रहाओ, काको जरे काए हुए हान, नटवट खेले।

सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमो न मांगिया पावे। विख्या अजो सुरत सुख आसा, कैसे हुई है राजा राम निवासा। रहाओ इस सुख ते शिव ब्रह्म डराना, सो सुख हमो साच कर जाना। सनकादिक नारद मुन सेखा, तिन भी तन में मन नहीं पेखा। इस मन को कोई खोजो पाई, तन छूटे मन कहाँ समाई। गुर प्रसादी जय दियो नामा, भगत के प्रेम इन्हीं है जाना। इस मन को नहीं आवन जाना, जिसका परम गया तिन साच पछाना। इस मन को रूप न रेखिया काई, हुक्मे जोया हुक्म बूझ समाई। इस मन का कोई जाने पे हो, ए मन लीन।

चेतक सिद्ध पै लिव लागे, रहाओ साधक सिद्ध सगल मुनहारे, एक नाम कल्प कर तारे, जो हर हरे सो होए नाना, कह कबीर राम नाम पछाना।

कह कबीर पूरन जग सोई, जाके हृदय अवरना कोई। कौन को पूत पिता को काको, कौन मरे को दे संतापो, हर

आई, जन्म मरण कट परम गत पाई, रहाओ साधु संगत दियो रलाए, पंच दूत ते लियो छड़ाए, अमृत नाम जपो जप रसना, अमोल दास कर लीनो अपना, सतगुर कीनो पर उपकार, काड लीन सागर संसार, चरण कमल

जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी, जत पेखो तत अंतर जामी, अपनी भगत आप ही दृढ़ाई, पूरब लिखत मिलिया मेरे पाई, जिस कृपा करे तिस पूरन साज, कबीर को स्वामी गरीब निवाज। जल है सूतक थल है सूतक, सूतक ओपत होई, जन्मे सूतक मुए फुन सूतक।

कोई कुशल कुशल करते जग बिन से कुशल भी कैसे होई रहाओ। माटी के कर देवी देवा तिस आ गए जियो देही ऐसे पितर तुम्हारे।

गौड़ी। जीवत मरे मरे फुन जीवे ऐसे सुन समाया, अंजन माहे निरंजन रही है बौड़ न पवजल पाया। मेरे राम ऐसा खीर बिलोई है।

प्रगटिया पद परगासा, सकत अंधेर जेवड़ी प्रम चूका, नेचल शिव कर बासा। तिन बिन बाणे तनुख चढ़ाई है, इहो जग बेदिया पाई, दह दिस बूढ़ी पवन चुलावे, डोर रही लिवलाई। उन मन मनुआ सुन समाना, दुबदा दुर्मत पागी, कहो कबीर अनुपव इक देखिया, राम नाम लिवलागी। गौड़ी बैरागन तिप दे, उल्टत पवन चक्र खट पे दे, सुरत सुन अनरागी, आवे न जाए मरे न जीवे, तास खोज बैरागी। मेरे मन मन ही उल्ट समाना, गुर प्रसाद अकल पई अवरे, नातर था बेगाना। रहाओ निवरे दूर दूर फुन निवरे, जिन जैसा कर माने।

पाप पुन दोए बैल बिसाहे पवन पूजी प्रगास्यो तृष्णा गुण परी कट पीतर इन विद टांड बिसाहो। ऐसा नायक राम हमारा सगल संसार कियो बनजारा रहाओ काम क्रोध दोए पै जगाती मन तरंग बटवा।

जोड़न हारो सदा अतीता ए कही है किस्माहे। जोड़ी जुड़े ना तोड़ी टूटे जब लग होए विनाशी काको ठाकुर का।

गज नव गज दस गज इक्कीस पुरिया एक तनाई साठ सूत नव खंड बेहतर पाठ लगो अधिकाई गई बुनावन माहो कर छोड़े जाए जुलाहो रहाओ गजी न मिनिए तोल न तुलिए पाचन शेर अढ़ाई जो कर पाचन बेग न पावे चगर करे करहाई दिन की बैठ खसम की बरकस ए बेला कति आई।

महोए। जित कट नाम ना उपजै, फूट मरे जन सोए। सावल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तोहे। रहाओ साध मिले सिद्ध पाये, के एहो जोग के भोग दो।

कर्म कर्म करते बहु संजम अहं बुद्ध मन जा रहे रे सास ग्रास को दातो ठाकुर सो क्यों मनो विसार्यो रे हीरा लाल।

छोरे स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेरियो मद रस लैत बिकारियो रे कर्म पाव संतन संगाने कासट लोह उधारियो रे तावत जोन जन्म प्रम थाके अब दुख कर हम हारियो रे कह कबीर गुर मिलत महारस प्रेम भगत निस्तारियो रे गौड़ी काल भूत की हस्तनी मन बौरारे चलत रचियो जगदीश काम सुआए गज बस परे मन बौरारे अंकस थयो शीश बिखे बाच हर रात समझ मन बौरारे निरपय होए न हर पजे मन बौरारे गयो न राम जहाज राहो मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरारे लीनी हाथ पसार छूटन को सहसा परे।

में राम नाम तन कर संचौनी सो तन कठी न जावे हमरा तन मादो गोविंद तरनी तर यह सार तन कही है जो सुख प्रभ गोविंद।

मन मुकंद जेहबा नारायण परे न जमकी फांसी निज तन ज्ञान भगत गुरदीनी तास सुमत मन लागा जलत अम्ब थम्ब मन।

तुम कर लाख कोट अश्व हस्ती, हम कर एक मुरारी गौड़ी। ज्यों कप के कर मुष्ट चनन की लुबद ना त्याग दयो, जो जो कर्म किए लालस्यों ते फिर ग्रह परयो। भगत बिन बिरथे जन्म गयो, साध संगत भगवान भजन बिन कहीं ना सच रहो रहाओ। ज्यों उद्यान कुसुम प्रफुल्लत किन्ह न कराओ लयो, तैसे प्रमत अनेक जून में फिर काल हयो। या तन जोबन अर सुत दारा पेखन को जो दयो, तिन ही माए अटक जो उर्जे इंद्री प्रेर लयो। औद अनल तन तिन को मंदर चौ दिस ठाट ठयो, कह कबीर पै सागर तरन को मैं सतगुर ओट लयो। गौड़ी पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुत्री जोरी, मैं ना ही कछ आए न मोरा, तन तन सब रस गोविंद तोरा रहाओ। इस माटी में पवन समाया, चूठा पर पंच जोर चलाया, किन्हू लाख पांच की जोरी, अंक की बार गगरिया फोरी, कह कबीर।

आयो लागत पवन खसम बिसरायो जीरा हर के गुना गाओ रहाओ गर्भ जोन में उर्द तप करता तो जठर अगर मैं रहता लख चौरासी जोन प्रम आयो अब के छुटके ठौर न ठायो कहो कबीर पज।

रमैया गुण गाय जाते पाये परम निधान रहाओ। क्या जप क्या तप संजमो क्या व्रत क्या स्नान जब लग जुगत न जानिए पाओ भगत भगवान। संपै देख ना हरखिए विपत देख ना रोए ज्यों संपै

ॾाढो परम प्रगट होए नाचो या माया के डांडे सूर के सन्मुख रंग ते डरपे सती के सांचे पांडे डगमग छाड़ रे मन बहुरा अब तो जरे मरे।

जोन में प्रमथ नंद बहु ठाकुरे भगत हेत अवतार लियो है पाग बड़ो बपरा कोरे। तुम जो कहत हो नंद को नंदन नंद सो नंदन का कोरे तरन आकाश दसो दिस नाही तब यो नंद कहा थोरे। रहाओ संकट नहीं पर

नाम पदार्थ मने बसाये, हृदय शुद्ध जो निंदा हुए हमरे कपरे निंदक तोए। निंदा करे सो हमरा मीत, निंदक माए हमारा।

होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही। अब हम तुम एक भये हैं, एक कह देखत मन पतियाही। जब बुद्ध होती तब बल कहता, अब बुद्ध

दी बस्त अनूप बीच पाई। कुंजी कुलफ प्राण कर राखे करते बार न लाई। अब मन जागत रहो रे पाई गाफल होए कै जन्म गवायो। चोर मुसे कर जाई रहाओ पंच पहरुआ दर में रहते तिनका नहीं पतियारा। चेत सुचेत चित होए रहो तौले परगास उजारा। नौ कर देख जो कामन पूली बस अनूप न पाई। कैत कबीर नवे कर मूसे दसवें सत समाई। गौड़ी माई मोहे अब

अक्षर लोक त्रय सब कछ इन्हीं माहे, ए अक्षर खिर जाएंगे कोई अक्षर इनमें ना है। जहाँ बोलते अक्षर आवा, जह अबोलते मन ना रहावा, बोल अबोल मद है सोई, जस ओ है तस लख है न कोई। अल्लह लहो तो क्या कहो, कहो ता को उपकार, बटक बीज में रव रहे हो जाको तीन लोक विस्तार। अल्लह लहंता पेद छे, कछ कछ पायो पेद, उलट पेद मन भेदियो, पायो अपंग अछेद।

लिख अर मेटे ताहे न माना, ओंकार लखे जो कोई सोई लख मेटना ना होई, तक्का किरण कमल में पावा।

रह बिहंगम कतह न जाई, अगे गह गह गगन रहाई। कग्गा कट कट निमसे सोई, कट फूटे कट कबह न होई। ता कट माहे काट जो पावा, सो कट छाड़ अब कट कत तावा। गंगा निग्रह स्नेहो कर निर्वारो संदेह, नाही देखना पाजी है परम स्यानप एहे। चच्चा रचित चित्र है पारी, तज चित्र चेतो चित्रकारी। चित्र बचित्र एह अब चेरा, तज चित्र चित्राक्ष चितेरा। सच्चा एह छत्रपत पाता, छक के ना रहो छाड़ के ना आसा। रे मन मैं तो

टट्टा बिकट काट कट माही, खोल कपाट महल के न जाही, देख अटल टल कतह न जावा, रह लपट कट पर चो पावा। ठट्ठा एह दूर ठग नीरा, नीठ नीठ मन किया तीरा, जिन ठग ठगिया सगल जग खावा, सो ठग ठगिया ठौर मन आवा। डड्डा डर उपजे डर जाई, कहां डर में डर रहा समाई, जो डर डरे तब

जोत्रे भवन तन माहे समावा तो तत्ते तत मिलिया सच पावा थथा अथा था नहीं पावा ओ अथा एहो थिर ना रहावा थोड़े थल थानक आरंभे बिन ही थांबे मंदर थंबे दद्दा देख जो बिन सनहारा जस अदेख तस राख बिचारा दसवें द्वार कुंची जब दीजे तो दयाल को दर्शन की जय तद्दा।

अब पौ पान परोसो आवा जो बाहर सो पीतर जानिया पया पेद पूपत पहचानिया। मम्मा मूल गया मन माने मरमी होए सो मन को जाने मत कोई मन मिलता बिल मावे मगन पया ते सो सच पावे। मम्मा मन स्यों काज है मन सादे सिद्ध होए

बल बल जे बिसंतना जस गावे, विसन मिले सभी सच पावे। वाह वाह वाही जानिए, वाह जाने एहो होए, एहो

अपनी रो दो कट पर चै जो उपजय पाओ पूर रहा तह त्रिभुवन राव। खखा खोज पर जो कोई जो खोजे सो बहुर।

पारे अल्प सुख छाड़ परम सुख पावा तब ए त्रिय ओ कंत कहावा। हा हा होत होए नहीं जाना जब ही होए तब है मन माना है तो सही लखे जो कोई तब ओही ओह एहो ना होए। ल्यो ल्यो करत फिरे सब लोग ता कारण व्यापे बहु सोग

अंतरजामी राम समारो जीवत पावो मोख द्वार अनपो शब्द तत निज सार चरण कमल गोविंद रंग लागा संत प्रसाद पै मन निर्मल हर कीर्तन में।

अंग माया ब्रह्म रमे सब संग ना ओ बढ़े न कटता जाए अकुल निरंजन एक कह पाए। तृतीया तीने सम कर ल्यावे अनद मूल परम पद पावे साध संगत उपजे विश्वास बाहर पीतर सदा प्रगास। चौथे चंचल मन को गहो काम क्रोध संग कबहो न बहो।

नीच ऊंच नहीं मान अमान, व्यापक राम सगल सामान। चौदस चौदह लोक मजार, रोम रोम में बसे मुरा।

हरत्या में तुझ जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पे जिन हरत्याया जियो तिन टूटी जम की फांसी जिन निरपो जिन हर निरपो त्याया जियो तिनका पो सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जियो ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जियो जन नानक तिन बल जासी तेरी पगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता

सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई, कह न जाए तेरी तिलवड़ियाई, सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धा पुरख।

गुर प्रसाद वसे मन आए, दुख अनेरा विचों जाए। साच प्यारा आप करे, अवरी को साच न दे, जे किसे देव।

इत रंग नाचो रख रख पैर आसा मैला पैला। पौन उपाय तरी सब तरती जल अग्नि का बंद किया अंधुले दे दिस मुंड कटाया रावण मार क्या वड़ा भया। क्या उपमा तेरी आखी जाए तू सर्वे पूर रहा लिवलाए रहाओ जी उपाय जुगत हथ कीनी काली नाथ क्या वड़ा भया। किस तू पुरख जोरू कौन कही है सर्व निरंतर रव रया नाल कुटम साथ वरदाता ब्रह्मा पालन सृष्ट गया आगे अंत न पायो ताका कंस छेद क्या वड़ा भया। रतन उपाय तरे खीर मथया होर पखलाए जे असी किया

पनत नानक सबना का फिर एको सोए, जिसनो नदर करे सा सुहागण होए, आसा मैला पहला ग्रियो बन संतर तय सुबाए, दुर्मत गत पई कीरत ठाए, सच पौड़ी साचो मुख नाओ, सतगुर सेव पाए निज थाओ, मन चूरे खट दर्शन जान, सर्व ज्योत पूरन भगवान रहाओ, अधिक त्यास पेक बहु करे, दुख बिखिया सुख तन पर हरे, काम क्रोध अंतर तन हिरे, दुबदा छोड़ ना।

जिंद तन मन हर पै आ गए जिंद झूठ विकार महा दुख दे देख वरन दिसे सबके जो पुजे सो आवे जाए नानक अस्थिर नाम रजाए आसा मेला पहला एको सर्वर कमल अनूप सदा विदासे।

एहनस भगत करे लिवलाए, नानक तिन कह लागे पाए। आसा मैला पहला गुरमत साची हुज्जत दूर, बहुत सियाणप लागे तूर। लागी मैल मिटे सचनाए, गुर प्रसाद रह लिवलाए। है हजूर हाजर अरदास, दुख सुख सा

हर वार जिन पाया तन नारी, हर सिउ राती शब्द विचारी, आप तरह संगत कुल तारे, सतगुरु सेव तत विचारे, हमरी जात पत सच नाओ, कर्म तर्म संजम सत भाओ, नानक बस

एक हर राते रह समाए, एक तरन गगन में ठौर न पावे, से कर्महीन हर नाम न त्यावे, गुर पूरे ते गत मित पाए, एहो संसार बिखवत अत पौजल।

ज्यों जल अम्ब ऊपर कमल निरारे, बुरा पला को किसनो कही है, दिसे ब्रह्म गुरुमुख सच लही है, अकथ कथो गुरुमत विचार, मिल गुर संगत पावो पार, सात वेद सिमरत बहु भेद, अठ मज्जन हर रस रेद, गुरुमुख निर्मल मैल न लागे, नानक हृदय नाम वडे तुर पागे, आसा मेला पहला, निव निव पाए लगो गुर अपने, आत्म राम निहारे।

0: ठोकरे।
1: ऐसा गुरमत रमत शरीरा, हर पज मेरे मन गहर गंभीरा रहाओ। अनत तरंग भगत हर रंगा, अंदिन सूचे हर गुण संगा। मिथ्या जन्म साकत संसारा, राम भगत जन रहे निरारा। सूची काया हर गुण गाया, आत्म चीन रहे लिवलाया। आद अपार अपरंपर हीरा, लाल रता मेरा मन धीरा। कथनी कहे कहे से मुए, सो प्रभ दूर नाही प्रभ तू है। सब जग देखिया माया छाया, नानक गुरमत नाम ते।

तहनत अंधले दीपक दे, पौजल डूबत चिंत करे, कहे सुने जो माने ना हो, हों बलिहार है ताके जाओ, नानक एक।

अंध जीव रस नाही तन्नी पवन न वाजे चरनी चले पजूता आ गए बिन सेवा फल लागे अखर बिरख बाग पोए।

सब जप तप जिस हर हृदय अलखा व्यवहार नानक राम नाम मन राता गुरमत पाए सहज सेवा आशा महला पहला पंच पदे।

ता तीर्थवासी कुंगरू वाजे जी मन लागे तो जम कहा करे मोसों आ गए रहाओ आस निरासी तो सन्यासी जा जत जोगी ता काया पोगी दया दिगंबर दी बिचारी आप मरे अवरा ने मारी एक

भूखे कोई जाति स्थावे बख्शे सोई गुर प्रसादी दुर्मत खोई जह देखा तह एको सोई कहत नानक ऐसी मत आवे ताको सच्चे सच समावे आसा मैला पहला दुख दे तित सर्वरण भई ले निवासा पानी पावक तिन्हें किया पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबियले मन एक न चेतस मूर मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा ना हूं जति सती नहीं पड़िया मूरख मुगदा जन्म तया प्रणवत नानक तिनकी।

जय कर करते कीरत होए सोकर राख वडाई तोए राव विश्वे चस्या करिया पैरा सिती वारी माओ भया सूरजे को रुत अनेक नानक करते के केते वेश ओंकार सतगुरु प्रसाद आशा करती जा मैला पैला लख लख कर लख वाजे ने जे लख उठ करे सलाम लखा उपकर फुरमाइश तेरी लख उठ रखे मान जा पत लेखे ना पवे ता सब निराफल का

आओ लख खटिए लख संजिए खाजे लख आवे लख जाए जा पत लेखे ना पवे ताजी किथे फिर पाए लख सासत समझावनी लख पंडित पढ़े पुराण जा पत लेखे ना पवे ता सबे कुपरवान सच नाम पत उपजे कर्म नाम करतार एनस हृदय जेवस है नानक नदरी पार आसा मैला पहला दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल उन चानन ओ सोखिया चूका जमसो मेल लोका मत को फकड़ पाए लख मरिया कर एक थे एक रतीले पाए रहाओ पिंड पत्तल मेरी के सो क्रिया सच नाम करतार एथे उथे आगे पाछे इहो मेरा आधार गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावे आत्म राओ सच्चा नावन तासी है जा एनस लागे पाओ इक लोकी होर छमिछरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शीश का कभू निकूटस नाहे।

कर कर पगवे पेख पए, तौ कारण साहिबा रंग रते, तेरे नाम अनेका रूप अनंता, कहन न जाही तेरे गुण के ते रहाओ। दर कर महला हस्ती कोड़े, छोड़ विलायत देश गए, पीर पे कांबर सालिक साधक, छोड़ी दुनिया खाए पए, साध सहज सुख रस कस्त जियले,

नानक जात कैसी आसा कर पंजवा महला पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद पीतर पंच गुप्त मन वासे फिर न रहे जैसे पवे उदासे मन मेरा दयाल सेती फिर न रहे लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगे रहाओ फूल माला गल पहरोगी हारो मिलेगा प्रीतम तब करोगी सिगारो पंच सखी हम एक पतारो पेट लगी है जीड़ा चालन हारो पंच सखी मिन उदन करे हार साहो कजूता कणवत नानक।

सिगार कामन तन पहरे रावे लाल प्यारी। लाल बहु गुण कामन मोही तेरे गुण हो है नावरी राव। हर हर हार कंठले पहरे दामोदर दंतले कर कर करता कंगन पहरे किन विद चित तेरे। मधुसूदन कर मुंद्री पहरे परमेश्वर पटले तीरज तड़ी बंधावे कामन श्री रंग सुरमा दे। मन मंदर जे दीपक जाले काया सेज करे ज्ञान राव जब सेजे आवे ता नानक भोग करे। पासा मैला पहला चीता होवे करे कराया तिस क्या कही है भाई। जो किछ करना सो कर रहा कीते क्या चतुराई। तेरा हुकुम पला तुद पावे नानक ताको मिले वडाई। साचे नाम समावे रहाओ किरत पया परवाना लिखिया दौड़ हुकुम ना होई। जैसा लिखिया तैसा पढ़िया मेट ना सके कोई। जे क्यों दरगे बहुता बोले नौ पवे बजारी शतरंज बाजी पक्के नहीं कच्ची आवे सारी। ना को पढ़िया पंडित दीना ना को मूर्ख मंदा बंदी अंदर से।

हिंसा के मां हंडावो, जो कुछ करे पला कर मानो, सहज जोग निध पावो। बाबा जुगता जियो जुग है जुग जोगी, परम तम तुम्हें जोगं। अमृत नाम निरंजन पाया, ज्ञान काया रस कोगं। रहाओ शिव नगरी में आसन बैठो, कल्प त्यागी बादं। सिंगी शब्द सदा तुम सो है, एन स्तूर नादं। पत विचार ज्ञान मत दंडा, वर्तमान विपूतं। हर कीरत रह रास हमारी, गुरुमुख पंथ अतीतं। सगली जोत हमारी सम्या, नाना वर्ण अनेकं। कहो नानक सुन परथर जोगी, पार ब्रह्म लिव एकं। ऐसा मेला पहला, गुर कर ज्ञान ध्यान कर पावे, कर करनी कस पाई है।

रच रहा एनस बनी प्रेम लिव लागी शब्द अनाहद गया रहा पूरा साच प्याला सहजे तिसे पियाए जाको नदर करे अमृत का व्यापारी हो वह क्या मद छूछे पाव करे गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान भया दर दर्शन का प्रीतम हो वह मुक्त वैकुंठ करे क्या सिर्फ तीरता सद बैरागी जुए जन्म न हारे कहो नानक सुन कर पर जोगी खीवा अमृत धारे आशा महला पहला खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया आपे दोष न दे करता जमकर मुगल चढ़ाया एती मार पाई कर लाने ते की दर्द न आया करता तू सदमा का सोई जे थकता सकते को मारे काम रोष न होई रहा सकता सिंह मारे पै वग गए खसमे सा पुरसा।

गुर कै दर्शन सदा सुख होए। गुर कै दर्शन मोख द्वार, सतगुर सेवै परवार साधार। निगुरे को गत पाई नाही, अवगुण मुठे चोपा खाई। गुर कै शब्द सुख शांत शरीर, गुरमुख तां को लगे नखीर। जम काल किस नीड़ न आवे, नानक गुरमुख साथ।

माए सेवड़ का घी जिन नाम से आया सदा गुण दाता मन वसाया जो गुण संग्रह है तिन बलिहार है जाओ दर साचे साचे गुण गाओ आपे देव सह सुभाए नानक कीमत कह न जाए ऐसा मैला तीजा सतगुरु विच वड्डी वड्याई चिरी विच ने मेल मिलाई आपे मेले मेल मिलाए अपनी कीमत आपे पाए हर की कीमत किन विध होए हर अपरंपर अद

मन गाते हर रंग लाए, तिनका जन्म मरण दुख लाथा, ते हर दरगे मिले सुधाए रहाओ, शब्द चाखे साचा साध पाए, हर का नाम मन वसाए, हर प्रभु सदा रहा परपूर, आपे नेड़े आपे दूर, आखन आखे बकै सब कोए, आपे बस मिलाए सोए, कहने कथन न पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, गुरमुख विच्चों आप गवाए, हर रंग राते मोह चुकाए, अत निर्मल गुर शब्द विचार, नानक नाम सवारण हार, आसा महला तीजा, दूजे पाए लगे दुख पाया, बिन शब्द बिरथा जन्म गवाया।

पाए, संत संगत मिल हर गुण गाए, नौमे नाम करे विचार, आप तरह कुल उदनहार, गुर की बाणी नाम बजाए, नानक महल शब्द कर पाए, गुरमत सत सर हर जल नाया, दुरमत महल सब दुरत गवाया, आसा महला तीजा, मन मुख मरे मर मरण विगाड़े, दूजे पाए आत्म संगारे, मेरा मेरा कर कर विभूता, आत्म ना चीने पर मैं विसूता, मर मोया सब दे मर जाए, पुस्तक निंदा गुर समझन आई, इस युग में लाहा हर जप ले जाए, रहाओ नाम विहून गर्भ गल जाए, बिरथा जन्म दूजे लोभाए, नाम विहूनी दुख जले सबाई, सतगुरु पूरे बूझ बुझाए, मन चंचल बहु चोटा खाए, एथो छुड़किया ठौर न पाए, गर्भ जोन विष्टा का वास, तित कर मनमुख करे निवास, अपने सतगुरु को सदा बल जाई, गुरमुख ज्योति ज्योत मिलाई, निर्मल बाणी निज कर वासा, नानक हो मैं मारे सदा उदास।

तन मन अर्पे सतगुर शरणाई, हृदय नाम वड्डी वड्याई, सदा प्रीतम प्रभ होए सखाई। सो लाला जीवत मरे, सोग हरक दोय सम कर जाने, गुर प्रसादी शब्द उदरे रहाओ। करणी कार तुरो फुरमाई, बिन शब्द को थाए न पाई, करणी कीरत नाम वसाए, आपे देवे टिल न पाए। मन मुख परम पुले संसार, बिन राशि कूड़ा करे वपार, बिन राशि वखर पल्ले ना पाए, मन मुख पुला जन्म गवाए। सतगुर सेवे सो लाला होए, उत्तम जाति उत्तम सोए, गुर पौड़ी सबदू ऊंचा होए, नानक नाम वडाई होए।

आवे दुहागणी का मन देख सिंगार पुत्र कलत तन माया चितलाए चूत मोह पाखंड विकार राव सदा सुहागण जो प्रभ पावे गुर शब्दी सिंगार बनावे सेज सुखाली अंगिन हर रावे मिल प्रीतम सदा सुख पावे सा सुहागण साथी।

अंतर निर्मल अमृत शरणाए सदा सूचे साथ समाए। हर प्रभ वेख सदा हजूर गुर प्रसाद रहा भरपूर जहां जाओ तह वेखा सोए गुर बिन दाता वरना कोए। गुर सागर पूरा पंडार उत्तम रतन जवाहर अपार गुर प्रसादी देवन हार नानक बख्शे बख्शन हार आसा मैला तीजा गुर सायर सतगुर सच सोए पूरे पाग गुर सेवा होए। सो बुझे जिस आप बुझाए गुर प्रसादी सेव कराए ज्ञान रतन सब सोजी होए। गुर प्रसाद अज्ञान विनाशे अंधन जागे वेखे सच सोए रहाओ मोह गुमान गुर सब जलाए पूरे गुर पे सोजी पाए। अंतर महल गुर शब्द पछाने आवन जान रहे फिर नाम समाने। जमन मरना है संसार मन मुख अचेत माया मोह गुबार पर निंदा दो कूर कमावे विष्टा का कीड़ा विष्टा माए समावे। सत संगत मिल सब सोजी पाए गुर का शब्द हर पल दृढ़ाए पौना मन्ने सदा सुख होए नानक सच समावे सोए। आसा मैला तीजा पंच पदे शब्द मरे तिस सदा आनंद सतगुर पेटे गुरु गोविंद ना फिर मरे ना आवे जाए पूरे गुर ते साच समाए। जिनको नाम लिखिया तुरलेख ते अंदिन नाम सदा त्यावे गुर पूरे ते भगत विशेख रहाओ। जिनको हर प्रभ ले मिलाए तिनकी गहन गत कहीं न जाए पूरे सतगुरु दित्ती वड्याई उत्तम पदवी हर नाम समाए। जो किच करे सो आपे आप एक कड़ी में थाप थाप कह कह कहना आप सुनाए जे सो काले थाए न पाए। जिनके पोते पुन तिना गुरु मिलाए सच बाणी गुर शब्द सुनाए जहां शब्द वसे तहां दुख जाए ज्ञान रतन साचे सहज समाए। नावे जेवड होर तर नाही कोए जिसनो बख्शे साचा सोए पूरे शब्द मन वसाए नानक नाम रते सुख पाए। आसा मैला तीजा नृत्य करे बहु वाजे बजाए यो मन अंधा बोला है किस आँख सुनाए। अंतर लोभ परम अनलवाओ दीवा बले ना सोजी पाए। गुरमुख भगत कट चानन होए आप पछाण मिले प्रभ सोए रहाओ। गुरमुख नृत्य हर लागे पाओ पूरे ताल विच्चों आप गवाए मेरा प्रभ साचा आपे जान गुर के शब्द अंतर ब्रह्म पछाण। गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार गुर का शब्द सहज विचार गुरमुख भगत जुगत सच सोए पाखंड भगत नृत दुख होए। एहा भगत जन जीवत मरे गुर प्रसादी पव जल तरे गुर के वचन भगत खाए पाए हर जियो आप वसे मन आए। हर कृपा करे सतगुरु मिलाए नेचल भगत हर स्यों चित लाए भगत रते तिन सच्ची सोए नानक नाम रते सुख होए। आसा कर अठवां काफी मैला तीजा ओंकार सतगुर प्रसाद। हर के पाने सतगुर मिले सत सोजी होई गुर प्रसादी मन वसे हर बूझे सोई। मैं सहुदाता एक है और ना ही कोई गुर कृपा ते मन वसे ता सदा सुख होई रहाओ। इस युग में निरपो हर नाम है पाये गुर विचार बिन नामे जम के बस है मन मुख अंध गवार। हर के पाने जन सेवा करे बूझे सच सोई हर के पाने सालाही है पाने मने सुख होई। हर के पाने जन्म पदार्थ पाया मत उत्तम होई नानक नाम सलाहे तू गुरमुख गत होई।

विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सभी आख वखाने, जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा और न कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरुमुख प्रगट होए। इको ओंकार सतगुर प्रसाद, रागा सा हर दूजा महला चौथा, किस ही तरह किया मित्र सुत नाल भाई, किस ही तरह किया कुरुम सके नाल जवाई, किस ही तरह किया सिकदार चौधरी नाल अपने सुआई, हमारा तरह हर रया समाई, हम हर स्यों तरह किया मेरी हर केक, मैं हर बिन पक तरा और ना कोई, हूँ हर गुण गावा असंख अनेक, रहाओ जिन स्यों तड़े करे से जाहे, झूठ कड़े कर पछोताहे, फिर ना रहे मन खोट कमाहे, हम हर स्यों तड़ा किया जिसका कोई समरथ ना है, ये सब कड़े माया मोह पसारी, माया को लूजे गवारी, जन्म मरे जुए बाजी हारी, हमरे हर तड़ा जे हलत पलत सब सवारी, कल युग में तड़े पंच चोर चगड़ाए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान वधाए, जिसनो कृपा करे तिस सत्संग मिलाए, हमरा हर तड़ा जिन एह तड़े सब गवाए, मिथ्या दूजा पाओ तड़े बह पावे, पराया छिद्र अटकले अपना अहंकार वधावे, जैसा बीजे तैसा खावे, जन नानक का हर तरा कर्म सब सृष्ट जिने आवे, आसा मेला चौथा, हृदय सुन सुन मन अमृत पाया, गुरबाणी हर अलख लखाया, गुरमुख नाम सुनो मेरी बहना, एको रव रया कठ अंतर मुख बोलो, गुर अमृत बहना रहाओ, मैं मन तन प्रेम महा बैराग, सतगुर पुरख पाया वड पाग, दूजे पाए पवे बिख माया, पाग हीन नहीं सतगुर पाया, अमृत हर रस हर आप पियाया, गुरपूरे नानक हर पाया, गुरपूरे नानक हर पाया, आसा महला चौथा।

जाए वडे पाग गुरु मुखार पाए नाम ही कालख मुख माया नाम बिना त्रिग त्रिग जीवाया। वड़ा वड़ा हर पाग कर पाया नानक गुरुमुख नाम दिवाया आसा महला चौथा गुण गावा गुण बोली बाणी गुरुमुख हर गुण आंख वखाणी जप जप नाम मन पया आनंदा सत सत सत गुरु नाम दृढ़ाया रस गाए गुण करमा।

शरीर सरोवर गुण प्रगट किए, नानक गुरमुख मुख कट कडिए। आसा मैला चौथा, नाम सुनी नामो मन पावे, वडे पाग गुरमुख हर पावे। नाम जपो गुरमुख परगासा, नाम बिना मैं तर नहीं काई। नाम रविया सब सांस ग्यासा, रहाओ नाम में सुरत सुनी मन भाई। जो नाम सुनावे सो मेरा मीत सखाई। नाम हीन गए मूड नंगा, पच पच मोए बिख देख पतंगा। आपे थापे थाप उठापे, नानक नाम देवे हर आपे। आसा मेला चौथा, गुरमुख हर हर वेल वधाई। फल लागे हर रस रसाई, हर हर नाम जप अनत तरंगा। जप जप नाम गुरमुख सालाही, मारिया काल जम कंकर पुयंगा। रहाओ हर हर गुर में पगत रखाई, गुर सुठा सिख देवे मेरे भाई। हो मैं कर्म किस विद नहीं जाने, जो कुंचर नाए खाक सिर छाने। जे वड पाग होवे वड ऊचे, नानक नाम जपे सच सूचे। आसा मैला चौथा, हर हर नाम की मन भूख लगाई। नाम सुने मन तृप्त है मेरे भाई। नाम जपो मेरे गुरु सिख मीता, नाम जपो नाम में सुख पावो।

गुरमत हर गुण बोलो जोगी त्यो मनुआ हर रंग पेन। जोगी हर दियो मति उपदेश जुग जुग हर हर एको वर्ते तिस आगे हम आदेश राव। गावे राग पास बो बोले एहो मनुआ खेले खेल जोवे कूप सिंचन को बसदा उठ बैल गए चर।

जोगी जंगम श्रेष्ठ सब तुमरी जो देहो मति तित चेल जन नानक के प्रभ अंतर जामी हर लावो मनुआ पेल। आसा मैला चौथा कब को पाले कुंगरू ताला कब को बजावे रबाब आवत जात बार खिन लागे हों कब लग समारो नाम। मेरे मन ऐसी पगत बन आई हम हर बिन खिन पल रह न सको जैसे जल बिन मीन मर जाई रहा। कब तो मेले पंच सत गायन कब को राग तुम उठावे मेलत चुनत खिन पल चसा लागे कब लग मेरा मन राम गुन गावे। कब को नाचे पाव पसारे कब को हाथ पसारे हाथ पाव पसारत बिलम तिल लागे कब लग मेरा मन राम सुमारे। कब को लोगन को पति आवे लोक पति ने ना पत होए जन नानक हर हृदय सद त्यावो ता जय जय करे सब कोए। आसा मैला चौथा सत संगत मिलिए हर साधु मिल संगत हर गुण गाए ज्ञान रतन बलिया कट चानन अज्ञान अंधेरा जाए। हर जन नाचो हर हर त्याए ऐसे संत मिले मेरे पाई हम जन के तो मैं पाए रहाओ। हर हर नाम जपो मन मेरे अन दिन हर लिव लाए जो इच्छो सोई फल पाओ फिर भूख न लागे आए। आपे हर अपरम पर करता हर आपे बोल बुलाए से संत पले तुद पावे जिनकी पत पावे खाए। नानक आख न राजे हर गुण जो आखे त्यों सुख पाए भगत भंडार दिए हर अपने गुण गाहक वनज ले जाए।

गुरपुरे सावास चलन जानिया लाहा नाम सो सार सब सुनाणिया रहा। पूरब लिखे देह से आए माया चलन आज के कल तुरु फुरु।

जीवन मरण सुख होए जिना गुर पाया, नानक सच्चे सच सच समाया। ऐसा मैला चौथा जन्म पदार्थ पाए नाम ते आया, गुर प्रसादी बुझ सच समाया। जिन तुर लिखिया लेख तिन्नी नाम कमाया, दर्श चार मैल बुलाया रहाओ। अंतर नाम निधान गुरमुख पाइए, अंजन नाम से आए हर गुण गाइए। अंतर वस्त अनेक मनमुख नहीं पाइए, हूँ मैं गर्भ गर्भ आप खुआइए। नानक आपे आप खुआइए, गुरमत मन पर गास सच्चा पाइए।

कीर्तन करो। सतगुरु मोको हर नाम बताया, हम हर दिन खिन पल रह ना सको रहाओ। हम रह श्रवण सिमरन हर कीर्तन, हम हर दिन रह न सको हम एक खिन। जैसे हंस सरवर बिन रह न सके, तैसे हर जन क्यों रहे हर सेवा बिन। किन्हु प्रीत लाई दूजा पाओ, रिद तार किन्हु प्रीत लाई मोह अपमान। हर जन प्रीत लाई हर निर्वाण, पद नानक सिमरत हर हर भगवान। आसावरी मैला चौथा, माई मेरो प्रीतम राम बताओ री माई। हम हर बिन खिन पल रह न सको, जैसे करहल बेल दी जाई राव। हमरा मन बैराग बिरकत कहो, हर दर्शन मीत कहताई। जैसे अल कमला बिन रह न सके, तैसे मोय हर दिन रह न जाई। राज शरण जगदी सुर प्यारे, मोय सरदा पूर हर गुसाई। जन नानक के मन अंध होत है, हर दर्शन निमक दिखा।

सोई फिर खाया, जिन सुख बैठा ली तिस पौ बहुत दिखाया, पाई मीत कुटुम देख विवादे, हम आई वसगत गुर प्रसादे, ऐसा देख भी मोहित हुए, साधिक सिद्ध सुरदेव मनुखा, बिन साधु सब त्रोहन त्रोहे, रहाओ एक फिरे उदासी तिन काम व्यापे, एक संचय गिरही तिन हुए नापे, एक सती कहावे तिन बहुत कल पावे, हम हर राखे लग सतगुरु पावे, तप करते तपसी फूलाए, पंडित मोहे लोग सुनाए, त्रैगुण मोहे मोहा आकाश।

हूँ मैं प्रीत, दुखिया त्यागी लोगारीत, त्रै गुण त्याग दुर्जन मीत समाने, तुरिया गुण मिल साध पछाने, सहज गुफा में आसन बांधया, ज्योत स्वरूप अनाद वाजया, महा आनंद गुर शब्द विचार, त्रै सो राती तन सुहागना।

जित ग्रह वसै सो ग्रह सो बावंता, गुरमुख पाई किन विरलै जनता, सो करणी कामन गुरमिल हम पाई। जज काज परथाए सुहाई रहाओ, जिचर वसी पिता के साथ, टिचर कंत बहु फिरे उदास, कर सेवा सतपुरुष मनाया, गुर आनी कर मैं तां सर्व सुख पाया। बत्ती सुलखणी सत संतत पूत, आज्ञाकारी सुगर स्वरूप, इस पूरे मन कंत स्वामी, सगल संतोखी देर जेठानी, सब परवार है माए श्रेष्ठ, मत्ती देवी देवर ज्येष्ठ, तन सो ग्रहो जित प्रगति आए, जन नानक सुखे सुख विहाए। आसा मैला पंजवा, मता करो सो पकन न देई, सील संजम के निकट खलोई, वेश करे बहु रूप दिखावे।

तीरथ न छोड़े जोग सन्यास, पढ़ थाके सिमरत वेद व्यास। जै बैसो तै नाले बैसे, सगल पवन में सबल प्रवेश है। होछी शरण पया रह न पाई, कौमी ताहो कह कह जाई। सुनो उपदेश सतगुर पे आया, गुर हर हर नाम।

पांचों फुनकाल न खाए। करण कारण समर्थ हमारे सुखदाई मेरे हर हर राय। नाम तेरा जप जीवे नानक पोत पोत मेरे संग सहाय। आशा मैला पंजवा हर लावे बिल लावे निंदक पार ब्रह्म परमेश्वर बिस्रिया। अपना कीता पावे निंदक रहाओ जे कोई उसका संगी होवे। नाले ले सिदावे अनहोंदा अजगर पार उठाए। निंदक अग्नि माए जलावे परमेश्वर के द्वारे जे होए बतीते। सो नानक आप सुनावे भगत जना को सदा आनंद है। हर कीर्तन गाए बिकसावे आसा मेला पंजवा। जो मैं कियो सगल सिगारा तो भी मेरा मगना पतियारा।

वस्त्र भी पूछन सुख बहुत विशेष है, कोई भी जानो कितने न लेखे पथ शोभा अरमान महत आज्ञाकारी सगल जगत। गृह ऐसा है सुंदर लाल प्रभु पावा सा सदा निहाल, व्यंजन भोजन अनेक प्रकार रंग तमाशे बहुत विस्तार, राज मिलक अर बहुत फुरमाइस मन नहीं त्रापे तृष्णा ना जायस, बिन मिलबे यो दिन ना बिहावे मिले प्रभु ता सब सुख पावे, खोजत खोजत सुनी ए सोए साध संगत बिन तरयो न कोए, जिस मस्तक पाग तिन सतगुरु पाया पूरी आशा मन तृप्ताया, प्रभ मिलिया ता चूकी डंजा नानक लद्दा मन तन मंजा। आशा महला पंजवा पंच पदे

बिचता अस्त्र रटक परे ते चाम, इस ऊपर ले राख्यो गुमान, एक वक्त बूझे ता होवे पाक, बिन बूझे तू सदा न पाक, कहो नानक गुर को कुर्बान, जिससे पाये हर पुरख सुजान, आखा मेला पंजवा एक तुके चौपदे, एक कड़ी दिन सुनो तो बहुत दिहारे, मन ना रहे कैसे मिलो प्यारे, एक पल दिन सुनो को कब होना बिहावे।

सब अंत न जाने पंच दूत मिल फिर विछोड़ी प्रम प्रम रोवे हाथ पछोड़ी जन नानक को हर दर्श दिखाया आत्म चीन परम सुख पाया।

दूध जन बकरा मोको कहाँ डवाई रहाओ हर मेरी ओट में हर का तान हर मेरा सखा मन माहे दीवान हर मेरी पूंजी मेरा हर वेसा हो गुरमुख तन छट्टी हर मेरा साहो गुर कृपा ते ए मत आवे जन नानक हर कै अंक समावे आसा मैला पंजवा प्रभ होए कृपाल ताए हो मन लाई सतगुर सेव सब फल पाई मन क्यों बैराग करेगा सतगुरु मेरा पूरा मनसा का दाता सब सुख निधान है अमृत सर सद ही पर पूरा रहाओ चरण कमल हृद अंतर धारे प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे संत सखी मिल मंगल गाया अरहद बाणी नाद बजाया गुरु नानक तुठा मिलिया हर राय सुख रैन विहानी सह सुवाए आसा मेला पंजवा कर कृपा हर प्रगति आया मिल सतगुर तन पूरा पाया ऐसा हर तन संचिय भाई कहे न जाने जल नहीं डूबे संग छोड़ कर कत हो न जा रहा कोट न आवे निकुट न जाए खाए खर्च मन रहा अगाए सो सत्सा हो जिस कर हर तन संचाना इस तन से सब जग वरसाना तिन हर तन पाया जिस खूब लिखे का लेना जन नानक अंतवार नाम गहना आसा मेला पंजवा जैसे किसान बोवे किसानी काची पाकी बाढ़ परानी जो जन में सो जानो मुआ गोविंद भगत अस्थिर है।

वस्त बाहर उठ जाता, सुनी न जाई सच अमृत का था, वार करते चूठी लग जाता रहा, वजो साहिब का सेब बिरानी, कैसे गुने अच्छा दियो प्राणी, किस्यो लूक जो सद ही संगी, काम न आवे सो फिर मंगी, कहो नानक प्रभु दीन दयाला, जो पावे त्यों कर कृतपाला, आसा मेला संजवा, जी प्राण तन हर को नाम, इहा उहा उन संकाम, बिन हर नाम अवर सब छोरा, तृप्त अधावे हर दर्शन मन मोरा रहाओ, पगत पंडार

साध संगत निर्बुद्ध विवेक दास सगल का छोड़ अभिमान नानक को गुरु दीनो दान आसा मेला पन्नवा बुद्ध प्रगास कई मत पूरी तमसे बिनसी गुरमत दूरी ऐसी गुरमत पाई ने बूढ़त कोर अंध कूप में निक्षो मेरे पाई रे रहाओ महा अगा अगन का सागर गुर बोहित तारे रत्नागर दुतर अंध बिखम ए माया गुर पूरे प्रगट मार्ग दिखाया जात पाप कछ उक्त न मोरी गुरु नानक शरणागत तोरी आसा मेला पंजवा तिप दे दूजा हर रस पीवत सद ही राता आन रसा खिन में लह जाता हर रस के माते मन सदा आनंद।

आए हर साधु हर समाए लाख करोरी मिले न के जिसे प्राप्त तिस ही दे नानक चाक पे बिस्माद नानक गुरते आया साद ईत ऊत कछ छोड़ न जाए नानक गीदा हर रस माहे आसा मेला पंजवा काम क्रोध लोभ मोह मिटावे छुटके गुरमत अपनी धारी

गोविंद मिलन किए तेरी बरिया, अगर काज तेरे किते न काम, मिल सौद संगत पज केवल नाम, संग जाम लाग पव जल करन के, जन्म बिरथा जात रंग माया कह रहा हो, जब तक संजम कर्म ना कमाया, सेवा साधना जान्या हर राया, कहु नानक हम नीच कर्मा, शरण करे की रा

उठत सोवत जागत विसर नाही तू सास गिरा साराओ राख राख शरण प्रभ अपनी अगन सागर विकराला नानक के सुखदाते सतगुर हम तुमरे बाल गोपाला आसा मैला पन्नवा हर जन लीने प्रभु छड़ाए प्रीतम सो मेरो मन मान्या पाप मुआबिक खाए प्रभाओ पाला ताओ कछु न व्यापे राम नाम गुण गाए बाकी को चित कछु न लागे चरण कमल शरणाए संत प्रसाद पय कृपाला होए आप सहाए गुण निधान नित गावे नानक सहसा दुख मिटाए आसा मैला पंजवा।

मिल संग पयो मन निर्मल गुरपुर लेखिन में तारे रहाओ सबकी रेन होए रहे मनवा सगले दिशे मीत प्यारे सब मदे रविया मेरा ठाकुर दान देत सब जी समारे एको एक आप एक है सगला पासारे जप जप होए सगल साध जन एक नाम ते आए बहुत उधारे गैर गंभीर बेअंत गुसाई अंत नहीं किस पार आवारे तुमरी कृपा ते गुण गावे नानक त्याय त्याय प्रभु को नमस्कारे आसा मेला पंजवा तू बेअंत अविगत अगोचर एहो सब तेरा आकार क्या हम जंत करे चतुराई जा सब किछ तुझे मझार मेरे सतगुर अपने बालक राखो लीला तार।

आधार अगद करे सास सास संवारे न पोहे अगनार पर तन पर दारा पर निंदा इनसो प्रीत निवार चरण कमल सेवी रिद

हुकुम पार ब्रह्म का छोड़ चलिया एक दिहाड़े कर्म कर्म जुगत बहु करता करने हार ना जाने उपदेश करे आप ना कमावे सत शब्द ना पछाने नांगा आया नांगो जासी जो अस्ति खाक छाने संत सज्जन सुनो सब मीता झूठा एवं पसारा मेरी मेरी कर कर डूबे खप खप मोए गवारा गुरमिल नानक नाम ते आया साच नाम निस्तारा राग आसा कर पंजवा महला पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद प्रम में सोई सगल जगत तंद अंद को जागे हर जन महामोहनी मगन प्रेय प्रीत प्राण को त्यागे विरला चरण कमल अनूप हर संत मंत को लागे साधु नानक साधु संग जागे ज्ञान रंग वड पागे कृपा इको अंकार सतगुरु प्रसाद राग आसा कर छेवा महला पंजवा जो तुद पावे सो परवाना सूख सहज मन सोई करण कारण समरथ अपारा अवर नहीं रे कोई तेरे जन रसक रसक गुण गावे मसलत मता सियानत जन की जो तू करे करावे रहाओ अमृत नाम तुम्हारा प्यारे साध संग रस पाया त्रिपत अघाए से जन पूरे सुख निधान हर गाया जा को टेक तुम्हारी स्वामी का को नाही चिंता जा को दया तुम्हारी हुई से सह पले भगवंता कर्म मोह त्रो सब निकसे जब का दर्शन पाया वर्तन नाम नान

किस पे करे पुकारा। निंदक की गत कत होना ही खसमे एवे पाना, जो जो निंद करे संतन की त्यों संतन सुख माना। संता टेक तुम्हारी स्वामी तू संतन का सहाई, कहो नानक संत हर राखे निंदक दिए रुड़ाई। आसा महला पंजवा बार तोए अंतर।

ना छुपाया, कूड़ कपट बंश निमुनिया दा, दिनस गया तत्काले सत सत सत नानक कहया, अपने हृदय देख समाले आसा मैला पन्या। उद्यम करत हो गए मन निर्मल, नाचे आप निवारे, पंच जनाले वसगत राखे मन में एकंकारे, तेरा जन नृत्य करे गुण गावे, रबाब पखावज ताल कुंगुरु अनहद शब्द बजावे, रहाओ प्रथमे मन पर बोधे अपना पाछे अवर रिझावे, राम नाम जप हृदय जापे मुक्ति सगल सुनावे, कर संग साधु चरण पखारे संत पूर तन लावे, मन तन अर्थ करे गुर आगे सत पदार्थ पावे, जो जो सुने पे खेलाए सरदा ताका जन्म मरण दुख पागे, ऐसी नृत्य नरक निवारे नानक गुरुमुख जागे आसा मैला पंजवा।

आई रे आज के बस गुरकीनो के हर कुकर तिने लगाई रे रहाओ बाज फूनिया छपरा थामिया निकरिया कर पाया रे बिन जड़िए ले जड़ियो जड़ावा थेवा अचरज लाया रे दादी दाद न पहुंचन हारा चूपी निर्नो पाया रे माल गुली चै बैठी ले मृतक नैन दिखालन ताया।

चित मैं जियो सुनकर बचन तुम्हारे सतगुर मन तन मेरा ठार थियो राव तुमरी कृपा ते पयो साध संग एहो काज तुम आप कियो दिड़ कर चरण गहे प्रभ तुमरे सहजे बिखिया पई थियो सुख निधान नाम प्रभ तुमरा एहो अविनाशी मंत्र लियो कर कृपा मुझे सतगुर दीना ताप संताप मेरा बैर गियो तन सो मानस देही पाई जित प्रभ अपने मेल लियो तन सो कल युग साध संकीर्तन गाये नानक नाम आधार हियो।

कर गुर काट लिए, निरपो पे सगल को मिटिया राखे राखन हारे, ऐसी दास तेरी प्रव मेरे कारज सगल सवारे, गुण निधान साहिब मन मेला।

काम क्रोध अहंकार दाखरो संयम कौन छुट्योरी सुर नर देव असुर त्रै घनिया सगलो पवन लुट्योरी दावा अग्न बहुत तृण जाले कोई हरिया बूट रहोरी ऐसो समरथ वरण न साको ताकि उपमा जात न कहोरी काजर कोट में पई न कारी निर्मल बरन बन्योरी महामंत्र गुर हृदय बस्यो अचरज नाम सुन्योरी कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई प्रेम भगत नानक सुख पाया साधु संग समाई इको अंकार सतगुरु प्रसाद राग आसाद।

नाम बिना माटी संग रलिया, कान कुंडलिया बस्तर ओढ़लिया, सेज सुख लिया मन गर्भ लिया, रहाओ तले कुंचरिया सिर कनक छतरिया, हर पगत बिना ले तरन गडलिया, रूप सुंदरिया अनिक स्त्रिया, हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया, माया चलिया बिकार बिखलिया, शरण नानक प्रभु पुरख दयालिया, आसा मेला पंजवा एक बगीचा पेड़ कन करिया, अमृत नाम कहा मैं फलिया, ऐसा करो विचार ज्ञानी, जाते पाये पद निर्वाणी, आस पास दिखुआ के कुंता, बीच अमृत है पाई रे, रहाओ सिंचन हारे एक है माली, खबर करत है पात पत डाली, सगल बनस्पत आन जड़ाई, सगली फूली निफल नाकाई, अमृत फल नाम जिन गुरते पाया, नानक दास तरी तिन।

जाता सो ग्रस्त उदासी परवान, नाम रता सोई निर्माण, जाको मिलियो नाम निधाना, पंत नानक का पूर खजाना, आसा मैला पन्नवा। तीर्थ जाओ ता करते, पंडित पूछो ता माया राते, सो स्थान बताओ मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता, रहाओ शास्त्र वेद पाप पुन विचार, नरक स्वर्ग फिर

तह दुख डेरा हुक्म बूझै सोई परवान साथ सब जाता निशान गुरु पूरे हर नाम दृढ़ाया पंत नानक मेरे मन सुख पाया आसा मैला पंजवा जहां पठावो तह तह जाई जो तुम देहो सोई।

कहो नानक नित इवै ते आई गत होवे संतै लग पाई। आसा मैला पंजवां उठत बैठत सोवत त्याये मार्ग चलत हरे हर गाये। श्रवण सुनी जय अमृत कथा जास सुनी मन होए आनंदा दुख रोग सगले मन लखा राव। कारज काम बाट काट जपी जय गुर प्रसाद हर अमृत पी जय। दिन सरैन हर कीर्तन गाये सो जन जन की वाट न पाये। आठ पैर जिस विसरे नाही गत होवे नानक तिस लग पाए। आसा मैला पंजवा जा कै सिमरन सुख निवास तई कल्याण दुख होवत नास। अनद करो प्रभु के गुण गावो सतगुर अपना सब सदा मनावो रहाओ। सतगुर का सच शब्द कमावो फिर कर बैठे प्रभु अपना पावो। पर का बुरा न राखो चीत तुमको दुख नहीं पाई मीत। हर हर तंत मंत गुर दीना इन सुख नानक अंदिन चीना। आसा मेला पंजवा जिस नीच को कोई न जाने नाम जपत ओह चौकुंत माने। दर्शन मांगो दे प्यारे तुमरी सेवा कौन कौन ना तारे राव। जाके निकट न आवे कोई सगल सृष्ट हुआ के चरण मल धोई। जो प्राणी काहु ना आवत काम संत प्रसाद का को जपिए नाम। साध संग मन सोवत जागे अब प्रभु नानक नीचे लागे। आसा मेला पंजवा एको एकी नैन निहारो सदा सदा हर नाम समारो।

पाए मन निर्मल हर हर हर हर नाम सुना रहाओ बिन सियो मन का मूर्ख टीठा प्रभ का पावना लागा मीठा गुर पूरे के चरण गए कोट जन्म के पाप लहे रतन जन्म एवं सफल भया कहू नानक प्रभ करी मया आसा महला पंजवा सत गुर अपना सद सदा समारे गुर के चरण के संग चारे जागरे मन जागन हारे बिन हर अवर नाव सुकामा चूठा मो मिथ्या पसारे राव गुर की बाणी से रंग लाए गुर कृपाल होए दुख जाए गुर बिन दूजा नाही थाओ गुर दाता गुर देवे नाओ गुर पार ब्रह्म परमेश्वर आप आठ पैर नानक गुर जाप आसा मेला पंजवा आपे पेड़ विस्थारी साख अपनी खेती आपे राख जत कत पे कुए कै ओही कट कट अंतर आपे सोई राव आपे सूर किरण विस्थार सोई गुपत सोई आकार सर गुण निर्गुण था पैनाओ दो मिल एक कै कीनो ठाओ कहो नानक गुरु परम को खोया अनुज रूप सब नैन अलोया आसा महला पंजवा

रहाओ। मूर्ख मुग्ध अज्ञान अविचारी नाम तेरे की आस मन धारी। जप तप संयम कर्म न सादा नाम प्रभु का मने अरादा। किछु न जाना मत मेरी थोरी बिनवत नानक ओट प्रभ तोरी। आसा महला पंजवा हर हर अखर दोए माला जपत जपत पै दीन दया।

तुत कतै न डोले कहु नानक जो राचे नाए हर माला ता कै संग जाए आसा महला पंजवा जिसका सब किछ तिसका होए तिस जन लेप न व्यापे कोए हर का सेवक सद ही मुक्ता जो किछ करे सोई पल जन कह अत निर्मल दास की जुगता रहाओ सगल त्याग हर सरणी आया तिस जन कहां व्यापे माया नाम निधान जाके मन माहे तिसको चिंता सुखने नाहे कहो नानक गुरु पूरा पाया परम मोह सगल बिन साया।

मिट गया दुख बिसारी चिंता, फल पाया जब सतगुर मंता, सोई सत सत है सोए, सिमर सिमर रख कंठ परोए, कहो नानक कौन ओ कर्मा, जाके मन वस्या हरनामा, आसा मैला पंजवा, काम क्रोध अहंकार विभूते, हर सिमरन कर हर जन छूटे, सोए रहे माया मदमाते, जागत भगत सिमरत हर राते, रहाओ मोह परम बहु जोन को आया, अस्थिर भगत हर चरण ते आया, बंधन अंग कूप गृह मेरा, मुक्ते संत बुझे हर नेरा, कहु नानक जो प्रभु शरण आये, इहा सुख आगे गत पाए, आसा मेला पंजवा, तू मेरा तरंग हम मीन तुम्हारे।

तू मेरी गत पथ तू करवान, तू समरथ मैं तेरा तान, अन दिन जपो नाम गुण खास, नानक की प्रभु पै अरदास, आसा मैला तन्यवा। रोवन हारे झूठ कमाना, हस हस सोग करत बेगाना, को मुआ का कह कर गावन, को रोवे को हस हस पावन, रहाओ बाल व्यवस्था ते बिरधाना, पहुँचना मुका फिर पछताना, त्रयो गुण में वर्त संसारा, नरक सुरग फिर अवतारा, कहो नानक जो लाया नाम, सफल जन्म।

निसारे हो, खिसर गयो पूम पर डारे हो, साध मोहिला दी अंकारे, दोष नाही प्रभ करने हारे, साध संग मिटे परम अंधारे, नानक मेली सिरजन हारे, आसा मेला पंजवा, चरण कमल की आस प्यारे, जम कंकर नस गए विचारे, तू चित आवे तेरी माया, सिमरत नाम सगल रोग खया, रहाओ अनेक दुख देवे अवरा को, पहुँच न साके जन तेरे को, दर्स तेरे की प्यास मन लागी, सहज आनंद बसे बैरागी, नानक की अरदास सुनी जाए, केवल नाम हृदय में दी जाए, आसा मेला पंजवा, मन तृप्ता नो मिटे जंजाल, प्रभ अपना होया कृपाल, संत प्रसाद पली बनी, जाके गृह सब किछ है, पूरन सो पेटिया निरपैतनी रहाओ, नाम दृढ़ाया साध कृपाल।

ओजन पूरन रहे अधाई, कछु न थोड़ा हर पगतन को, खात खर्चत बिलछत देवन को, रहाओ जाका तनी अगम गुसाई।

जा को दया करो मेरे स्वामी, कहो नानक नाही तिन कामी। आशा महला पंजवा, जो मैं अपना सतगुरु त्याया, तब मेरे मन महा सुख पाया, मिट गई गणित बिना।

तेरी देख चलत मन पै दिलासा, नानक दास तेरा परवासा। आसा महला पंजवा, अन दिन मूसा लाज टुकाई, गिरत कूप में खाए मिठाई। सोचत साचत रैन बिहानी, अनक रंग माया के चितवत। कबू न सिमरे सारंग पानी रहाओ, द्रुम की छाया नहीं चल ग्रे बांदिया। काल के फांस सकत सर सांदिया, बालू किनारा तरंग मुख आया। सो थान मूड नहीं चल कर पाया, साध संग जप्यो हर राए। नानक जीवे हर गुण गाए, आसा मेला पंजवा। दो तुके नावा, उनके संग तू करती केल। उनके संग हम तुम संग मेल, उनके संग तुम सब को लो रहे।

उनके संग तू रखी पलोल, ओस बिना तू छुटकी रोल। उनके संग तेरा मान महत, उनके संग तुम साख जगत। उनके संग तेरी सब विथाटी, ओस बिना तू हुई है माटी। ओ बैरागी मरे न जाए, हुक्मे बादाकार कमाए। जोड़ बिछोड़े नानक थाप, अपनी कुदरत जाने आप। आसा महला पंजवा, ना ओ मरता ना

तृष्णा, जह ओ निर्मल ता हम जतना, हम किच नाही एके ओही, आगे पाछे को सोई, नानक गुरु खोए परम पंगा, हम ओए मिल होए इकरंगा। आसा महला पंजवा, अनेक पांच कर सेवा करिए, जियो प्राण तन आगे तरिए, पानी पखा करो तज अभिमान, अनेक बार जाइए कुर्बान, सारी सुहागण जो प्रभु पाई, तिसके संग मिलो मेरी माई रहाओ, दासन दासी की पनहार, उनकी रेण बसे जी नाल, माथे पाग तो पावो संग, मिले स्वामी अपने रंग, जाप ताप देवो सब ने मां, कर्म कर्म अर्पो सब हो मां, गर्भ मोह तज हो वो रेन, उनके संग देखो प्रभ नैन, निमख निमख एही आ

या अम्ब मजरिया गर्भ गर्भ पुआ हूँ मैं परिया रहाओ निरपो होयो कया निहंगा चीत न आयो करता संगा लफ्तर जोड़े।

गुनी हम त्याग गवाई, निर्गुण मिलियो वजी वधाई रहाओ। ऐसी सुंदर मन को मोह है, बाट काट गृह।

अब मोरे मन पया आनंद, पौ चूका टूटे सब फंद, कहो नानक जा सतगुर पाया, कर सगला मैं सुखी बसाया। आखा मेला पंजवा, आठ पैर निकट कर जाने, प्रभु का किया मीठा माने, एक नाम संकन आधार।

आवग आज्ञा पार ब्रह्म की उठ जासी मोत चसाहा। रे मन लेखे चाले लेखे बैसे लेखे लेंदा साहा। सदा कीरत कर नानक हर की।

पुरख बिराते हैं, बहुर बहुर जन्मा दे जो पयो कृपाल, दीन दुख पंजन तो गुर मिल सब सुख लादे, कहो नानक।

जन्म मरण दुख लाथे, रहाओ दूजा पासा मेला पंजवा। निमक काम स्वाद कारण कोट दिनस दुख पावे, करी मोत रंग माने फिर बोर बोर पछतावे। अंधे चेत हर हर राया, तेरा सो दिन नेड़े आया, रहाओ पलक दृष्ट देख फूलो।

प्रीतम प्रत्येखन का चाओ। दया करो किरम अपने को यह मनोरथ सुहाओ। तन तन तेरा तू प्रभु मेरा हमरे बस किछ नाहे। ज्यों ज्यों राखे त्यों त्यों रहना तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किल विख काटे मज्जन हर जन तूर। पाए भगत परम पौ नासे हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवा अगम अगोचर दर्श तेरा सो पाए जिस मस्तक पाग। आप कृपाल कृपा प्रभ तारी सतगुरु बख्शिया हर नाम। कल जुग उधारिया गुरुदेव मल मूत मूड जे मुग्ध होते सब लगे तेरी सेव। रहाओ तू आप

करता सब सृष्टि धरता, सब मेरे आसमाए परम राजा विस्माद हुआ, सब पई पैरी आए। सत युग त्रेता द्वापर कणिए, कल युग उत्तमो जुगा माहे, ऐ कर करे सो ऐ कर पाए, कोई न पकड़िए किसे थाए। हर जियो सोई करें जे भगत तेरे जाचे, एहो तेरा बिरद कर जोड़ नानक।

सतगुरु बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ। महाबिखादी दुष्ट अपवादी ते पुनीत संगारे, जन्म पवनते नरक पड़ते तिनके कुल उधारे। कोई न जाने कोई न माने से प्रगट हर द्वारे।

मोकुटम्ब बिखे रसमासे मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ सुपन आनंद उलास मन मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संगे तिल मर्म ना लहे कर कृपा राखे सत्संगे नानक शरण आहे आसा महला पंजवा तिप दे ओहा प्रेम पिरी रहाओ कनक माणिक गज मोतियन ला।

चरणन सरणन संतन बंदन सुखो सुख पाहे नानक तप्त हरि मिले प्रेम पिरी आशा मैला पंजवा गुरे दिखायो लोए ना रहाओ ईते ऊते कट कट कट कट तू ही मोहिना कारण करना कारण करना एक है सोहिना संतन परसन बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोएना आशा मैला पंजवा हर हर नाम अमोला ओह सहज सुहेला रहाओ संग सहाई छोड़ न जाई ओह अगे अतोला प्रीतम पाई बाप मोरो माई भगतन का ओला अलख लखाया गुर ते पाया नानक एहो हर का चोला आसा मैला पंजवा अपनी भगत निवाहे ठाकुर आयो आहे रहाओ नाम पदार्थ हुए सक

आया गुण रस रस गावे, एक आशा दर्श प्यासा आन न पावे, दया तुहारी क्या जंत विचारी, नानक बल बल जावे। आशा महला पंजवा, एक सिमर मन माही रहाओ, नाम ते आवो हृदय बसावो, तिस बिन को नाही, प्रभ सरनी आये सर्व फल पाये, सगले दुख जाही, जीवन को दाता पुरख विदाता, नानक कट कट आही। आशा मेला पंजवा, हर बिसरत सो मुआ रहाओ, नाम ते आवे सर्व फल पावे, सो जन सुखिया हुआ, राज कहावे हो कर्म कमावे, बांध्यो नलनी प्रमसुआ, कहो नानक जिस सतगुर पेटिया, सो जन ने चलसिया। आशा मेला पंजवा, कर चौथा इको अंकार, सतगुर प्रसाद। ओह नियो नवेला, अपने प्रीतम स्यो लाग रहे रहाओ, जो प्रभ पावे जन्म न आवे, हर प्रेम भगत हर प्रीत रचे, प्रभ संग मिली जय इहो मन दी जय, नानक नाम मिले अपनी दया करो। आशा मेला पंजवा, मिल राम प्यारे तुम बिन तीरज को ना करे,

आए प्रभ तुमरे दर्श बिन सुख नाही वर्त नेम संजम कर थाके नानक साध शरण प्रभ संग वसे आसा मैला पंजवा कर पंद्रवा पड़ताल ओंकार सतगुरु प्रसाद विकार माया माद सोयो सूझ बूझ ना आवे पकर केस जम उठारियो तद ही कर जावे लोभ बिखिया बिखे लागे हिरवित चित दुखाही खिन पंगुना के मान माते असुर जाने नाही रहाओ वेद शास्त्र जन पुकारे सुने नाही डोरा निप्त बाजी हार मुका पछतायो मन पोरा दान सगल गैर वजह परया दीवान लेखे ना परया जिह कारज रह ओला सोए कामना करया ऐसो जग मोहे गुर दिखायो तो एक कीरत गाया मान तान

काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल काम रहाओ। तज मान मोह विकार मिथ्या जप राम राम राम मन संतना के चरण लाग प्रभ गोपाल दीन दयाल पतित पावन पार ब्रह्म हर चरण सिमर जाग कर भगत नानक पूरन भाग आशा मैला पंजवा हर शोक बैराग आनंदी खेल री दिखायो रहाओ खिनहु पै निरपै खिनहु।

गोविंद कर हां, हर हर मन प्यार हां, गुर कहया सो चित धर हां, अनस्यो कोर फेर हां, ऐसे लालन पायो री सखी रहाओ, पंकज मोह सर हां, पग नहीं चले हर हां, गह दियो मूड नर हां।

ना रहाओ। टूटे अन पराना रवियो सर्व थाना लहो जम पयाना पायो पेड़ थाना तो चूकी सगल कान

तिस निकट ना कदे दुख हा, जो हर हर जस सुने हा, सब को तिस मने हा, सफल सो आया हा, नानक प्रभ पाया मेरे मना, आसावरी मैला तन्यवा। मिल हर जस गाये हा, परम पद पाये हा, उआ रस जो विदे हा, ताँ को सगल सिदे हा, अन दिन जा गया हा, नानक बड़ पा गया मेरे मना रहाओ, संत पग तोये हा, दुर्मत खोये हा, दासे रेन होए हा, व्यापे दुख ना कोए हा, भगता शरण पर

उत्तर अवघट सरवर नावे, बके न बोले हर गुण गावे, जल आकाशी सुन समावे, रस सत चोल महारस पावे, ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे, परपुर तार रहा सब ठौरे, रहाओ सच व्रत नेम न काल सुनतावे, सतगुर शब्द क्रोध जलावे, गगन निवास समाध लगावे, पारस परस परम पद पावे, सच

सुरत विभूत चढ़ावे, दर्शन आप सहज कर आवे, निर्मल बाणी नाद बजावे, अंतर ज्ञान महारस सारा, तीर्थ मज्जन गुर विचारा, अंतर पूजा थान मुरारा, ज्योति ज्योत मिलावन हारा, रस रसिया मत एक भाए, तख्त निवासी पंच समाए, कार कमाई खसम रजाए, अवगत नाथ न लख्या जाए, जल में उपजे जल ते दूर, जल में ज्योत रहा करपूर, किस नेड़े किस आखा दूर।

उजड़ पर मैं रहे न पाई, बिन बूझे को खाए न पाई, नाम बिहुने माथे छाई, साच तनी जग आए बिनासा, छूटस प्राणी गुरमुख दासा रहाओ, जग मुहे बांधा बहुती आसा, गुरमति इक पे उदासा, अंतर नाम कमल पर गासा, तिनको नाही जम की त्रासा, जग त्रिय जित कामन हितकारी, पुत्र कलत्र लग नाम विसारी, वृथा जन्म गवाया बाजी हारी, सतगुर सेवे करनी सारी, बारों हो मैं कह कहाए, अंदरों मुक्त लेप कदे ना लाए।

नदर करे संजोग मिलाए, रूड़ो कहो ना कहया जाई, अकथ कथो न कीमत पाई, सब दुख तेरे सुख रजाई, सब दुख मेटे सा चैन आई, कर बिन वाजा पग बिन ताला, जे शब्द बुझे ता सच निहाला, अंतर साथ सबे सुख नाला, नदर करे राखे रखवाला, त्रिभुवन सूजे आप गवावे, बाणी बूजे सच समावे, शब्द विचारे एक लिवतारा, नानक तन सवारन हारा।

जमन मरना हुकुम पछाण राव माया मोह जग बांदा जम काले बांदा छूटे नाम समाले गुर सुख दाता अवर न पाल हलत पलत निभी तुद नाल सबद मरे ता एक लिवलाए अचर चरे ता परम चुकाए जीवन मुक्त मन नाम वसाए गुरमुख होए ता सच समाए जिन तरसा जी गगन आकाश जिन सब थापी थाप उथाप सर्व निरंतर आपे आप किसे न पूछे बख्शे आप।

जग पंडित विरला विचारी, बिन सतगुर पेटे सब फिरे अंकारी। जग दुखिया सुखिया जन कोए, जग रोगी भोगी गुण रोए। जग उपजे बिन सह पत खोए, गुरमुख होवे बूझे सोए। महगो मोल पार अपार, अटल अछल।

जिस वेदन होए जिस बीती जाने प्रभ सोए आपे करता करे सोए जीवत मरना तारे तरना जय जगदीश परम गत सरना हों बलिहारी सतगुर चरणा गुर बोहित शब्द पै तरना निरपो आप निरंतर ज्योत बिन नावे सूतक जग छोत दुर्मत बिन सह क्या कह रोत जन्म मुए बिन भगत सरोत मुए को सच रोवे मीत त्रै गुण रोवे नीता नीत दुख सुख पर हर सहज सुचीत तन मन सौ को कृष्ण प्रीत पीतर एक अनेक असंख कर्म कर्म बहु संख असंख दिन पै भक्ति जन्म बिरंथ हर गुण गावे मिल परमारंथ आप मरे मारे भी आप उपाय थाप उथाप सृष्ट उपाय ज्योति तू जात शब्द विचार मिलन नहीं प्रात सूतक अगन पथे जग खाए सूतक जल थल सभी थाए नानक सूतक जन्म मरी जय गुरु प्रसाद।

शिव सहज कर गुर करतार, आशा मनसा शब्द जलाए, राम नारायण कहे कहाए, गुर ते वाट महल कर पाए।

साच अकूट पंच तीन नव चार सुमावे तरण गगन कल तार रहावे बाहर जातो उल्ट करावे मूर्ख हुए ना आखी सूजे जेवा रस नहीं कहया बूजे बिखका माता जग सो लूजे उत्तम संगत उत्तम होवे गुण को पावे अवगण तोवे

हुक्मों वरतै जो तिस पावै गुरबिन पूरा कोई न पावै बालक बिरद न सुरत प्राण पर जो बन बूढ़े अभिमान बिन नावे क्या लहस निदान जिसका अन तन सहज न जाना परम फुलाना फिर पछताना गल पाही बौरा बौराना बूढ़त जग देखिया तो डर पागे सतगुरु राखे से बढ़ पागे।

मन झूठ अनीते, कहां चलो मन रहो करे, गुरुमुख राम नाम तृप्ता से खोजत पावो सहज हरे। रहाओ काम क्रोध मन मोह शरीरा, लग लोभ अहंकार सुपीरा, राम नाम दिन क्यों मन तीरा, अंतर नावन साच पछाने, अंतर की गत गुरुमुख जाने, साच शब्द बिन मेल ना पछाने, निरंकार में आकार समावे, अकल कला सच साच टिकावे, सो नर गर्भ जोन नहीं आवे, जहाँ नाम मिले तह जाओ, गुर प्रसादी कर्म कमाओ, नाम मेरा ताहर गुण गाओ, गुर सेवा से आप पछाता, अमृत नाम बसे

है सदा सुख आ गए। मन चंचल विद नाही जाने, मन मुख मैला शब्द ना पछाने, गुरुमुख निर्मल नाम बखाने। हर जियो आगे करी अरदास, साधु जन संग

नानक हर जन के दासन दासा। आसा मैला पहला तन बिन से तन का को कही है, बिन गुरु राम नाम कत नहीं है, राम नाम तन संग सिखाई, एनस निर्मल हर लिवलाई, राम नाम बिन कवन हमारा, सुख दुख सम कर नाम न

अवर्णा औषध तंत्र न मंता, हर हर सिमरन किल विखानता, तू आप पुलावे नाम विसार, तू आपे राखे कृपा धार। रोग परम पेद मन दूजा, गुर बिन परम जपे जप दूजा, अमृत पुरख गुर दर्शना देखे, विन गुर शब्द जन्म के लेखे, देख अचरज रहे विस्माद, कट कट सुर नर सह समाद, पर पुर पार रहे मन माही, तुम संसार अवर को नाही, जाके भगत हेत मुख नाम, संत भगत की संगत राम, बंधन तोरे सहज ध्यान, छूटे गुरुमुख हर गुर ज्ञान, ना जम दूत दुख तिस लागे, जो जन राम नाम लिव जागे, भगत वछल भगता हर संग, नानक मुक्त पए हर रंग, आसा महला पहला इक तुकी, गुर सेवे सो ठाकुर जाने, दुख मिटे सच शब्द पछाने, राम जपो मेरी सखी सखैनी, सतगुर सेव देखो प्रभ नैनी राव, बंधन मात पिता संसार, बंधन सुत कन्या अरनार, बंधन कर्म तर्म हो किया, बंधन पुत कलक

तन जोबन दोय वैरी होए जिन्नी रखे रंग लाए दूता नो फुरमाया ले चले पत गवाए जे तिस पावे।

जाए जिसनो आप खुआए करता खुश ले चंग्याई। कोई हु पीर वर्ज रहाए जमीर सुनिया ताया

ओनी तुपक तावन चलाई ओनी हस्त चढ़ाई जिनकी चीरी दरगे पाटी तिना मरना पाई। एक हिंदवाणी अगर तुरकानी पटियाणी ठकुरानी इकना पेरण।

कोई पिंड पवे जियो चलसी जे जाने कोई ओही ओही क्या करो है होसी सोई तुम रोवोगे ओसनो तुम।

जे चलदा लै चलिया किछ संपै नाले, तां तां संचो देख के बूझो बिचारे, वणज करो मकसूद लै हो मत पछो तावो, अवगुण छोड़ो गुण करो ऐसे तत् परावो, धर्म भूम सत बीज कर ऐसी किस कमावो, तां वापस

बिन गुरु शब्द न छूट ही प्रम आवे जावे। इक गिर ही सेवक साधका गुरुमति लागे। नाम दान स्नान दृढ़ हर भगत सो जागे। गुर ते दर कर जानिए।

जय गुरमुख नाम पियाए मन मंदिर पी जय रहाओ कूड़ा लालच छोड़िए तो साच पछाणे गुर के शब्द समाये परमार्थ जाने यो मन राजा लोभिया लुभ तो लोभाई गुरमुख लोभ निवारिये हर्षो बने आई कल्लर खेती बीजिए क्यों लाहा पावे मन मुख सच ना पी जई कूड़ कूड़ गडावे लालच छोड़ो अंधे हो लालच दुख पारी साचो साहिब मन वसे हो मैं बिकमारी दुबदा छोड़ कुआटड़ी मूसोगे पाई एनस नाम सलाहिए सतगुरु शरणाई मन मुख पत्थर से

हुक्मी पैदा जाए दरगे पानी है, हुक्मे ही सिर मार बंदर बाणी है, लाहा सच ने आओ मन वसाई है, लिखिया पल्ले पाए गर्व मंजाई है, मन मुखिया सिर मार वाद खपाई है, ठग मुठी कूड़ियार बन चलाई है, साहिब हृदय वसाए ना पछोता वही, गुनहा बख्शन हार शब्द कमावही, नानक मंगे सच गुरमुख काली है, मैं तुझ बिन अवरना कोई नजर निहाली है, आसा मेला पहला, क्या जंगल टूंडी जाए मैं कर बन हरियावला, सच टिके कर आए शब्द उतावला, जह देखा तह सोए अवर न जानिए, गुर की कार कमाए महल पछाणिए, रहाओ आप मिलावे सच तामन पावे।

तुर की फुरमाई। जे मन सतगुरु दे मिले किन कीमत पाई, रत्ना पारक सोतनी तिन कीमत पाई। नानक साहिब मन वसै।

पाई कृपा ते सुख पाया साके परखाई गुर बिन किने न पायो केती कह कहाए अड़प दिखावे वाटड़ी सच्ची भगत दृढ़ाए मन मुख जे समझाए पी उजड़ जाए बिन हर नाम न छूट सी मर नरक समाए जन्म मरे परमाई।

जिस आप कर आए नानक सिर दे छूटी है दरगे पत पाए आसा मेला पहला रूड़ो ठाकुर मारो रूड़ी गुरबाणी वड्डे पाक सतगुर मिले पाई है पद निर्वाणी मैं ओ लगिया।

अष्टपदियां कर दूजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सासत वेद सिमरत सर तेरा सुर सरी चरण समाणी साखा तीन मूल मत रहा।

ताके रूप न जाहि लखणे क्या कर आस विचारे। तीन गुणा तेरे जुगी अंतर चारे तेरिया खाने। कर्म होवे ता परम पद पाये कथे अकथ कहानी। तू करता किया सब तेरा क्या को करे प्राणी। जा को नदर करे तू अपनी साई सच समाने। नाम तेरा सब कोई लेत है जेती आवन जाने। जा तुद पावे ता गुरमुख बूझे होर।

कर कृपा नाम मनवसाए, इहो सिर दीजे आप गवाए, हुक्मे बूझे सदा सुख पाए, आप करे तै आप कराए, आपे गुरमुख नाम वसाए, आप पुलावे आप मार्ग पाए, सच्चा शब्द सच समाए, सच्चा शब्द सच्ची है बाणी, गुरमुख जुग जुग आख वखाणी, मन मुख मोहे परम पुलानी, बिन नामे सब फिरे बोराणी, तीन पवन में एक काम आया, मूरख पढ़ पढ़ दूजा पाव दृढ़ाया, बहु कर्म कमावे दुख समाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया, अमृत मीठा शब्द विचार, अंदिन पोगे हूं मैं मार, सहज आनंद कृपा धार, नाम रते सदा सच प्यार, हर जब पढ़िए गुर शब्द विचार, हर जब पढ़िए हूं मैं मार, हर जपिए पै सच प्यार, नानक नाम गुरु।

गुर ते कर दर पाया भगती परे पंडारा। गुरमुख नाम से आई है बूझे विचारा, गुरमुख पलक सलाह है अंतर शब्द अपारा। गुरमुख सुख उपजे दुख कदे न होई, गुरमुख हो मैं मारिये मन निर्मल होई। सतगुर मिले आप गया त्रिभुवन सो जी पाई, निर्मल ज्योत पसर रही ज्योति ज्योत मिलाई। पूरे गुर समझाया मत उत्तम होई, अंतर शीतल शांत होए नामे सुख होई। पूरा सतगुर ता मिले जानदर करे, किलविक पाप सब कटिए फिर दुख बिघन न होई। अपने हाथ वडियाईया दे नामे लाए, नानक नाम निधान मन वसिया वडियाई पाए। आसा मैला तीजा सुन मन मन वसाए, तू आपे आए मिले मेरे भाई। अंदिन सच्ची भगत कर सच्चे चित लाई, एको नाम त्याए तू सुख पावे मेरे भाई। हो मैं दूजा दूर कर वड्डी वड्याई रहाओ, इस भगती नो सुर नर मुन जन लोच दे, विन सतगुर पाई न जाए। पंडित पढ़ दे ज्योत की तिन बूझ न पाए, आपे थे सब रखियो ने किस कहन न जाई। आपे दे सो पाई है गुर बूझ बुझाई, जी जंत सब तिस दे सबना का सोई। मंदा किसनो आखिए जे दूजा होई, इको हुक्म वर्तदा एका सिरकारा। आप वाली दितियन अंतर लोग विकारा, एक आपे गुरमुख कीतियन बूजन विचारा। भगत भी ओ नानो बसियन अंतर पंडा।

अंतर ब्रह्म पछाणिया गुर की वड्याई, आपे दान करे किस आखिए आपे दे बुझाई। नानक नाम से आए तू दर सच्चे तो बापाई। आता महला तीजा, आपे आप पछाणिया साध मीठा भाई। हर रस चाखिए मुक्त भये जिना साचो भाई। हर जियो निर्मल निर्मला निर्मल मन वासा, गुरमती साला ये बिखिया माए उदासा रहा। बिन शब्द आप न जापई सब अंधी भाई, गुरमती कट चानना नाम अंत सखाई। नामे ही नाम वर्त दे नामे वर्तारा, अंतर नाम मुख नाम है नामे शब्द विचारा। नाम सुनिए नाम मनिए नामे वड्याई, नाम सलाहे सदा सदा नामे महल पाई। नामे ही कर चानना नामे शोभा पाई, नामे ही सुख उपजे नामे शरणाई। बिन नामे कोई ना मनिए मन मुख पत गवाई, जमपुर बादे मारिए बिरथा जन्म गवाई। नामे की सब सेवा करे गुरुमुख नाम बुझाई, नामो ही नाम मनिए नामे वड्याई। जिसनो देवे तिस मिले गुरुमती नाम बुझाई। नानक सब किस नाम।

का बोले नानिवे दूजा पाव सुहाओ क्यों मनुआ क्यों कर वसावे गुर प्रसादी ठाकी है ज्ञान मती कर आवे रहाओ सोहागणी आप सवारियों ने लाए प्रेम प्यार सतगुर के पाने चल दिया नामे सह शिगार सदा रामे फिर अपना सच्ची सेज सुवाए फिर कै प्रेम मोहिया मिल प्रीतम सुख पाए ज्ञान अपार सिगार है शोभावंती नार सासब राई सुंदरी फिर कहे प्यार सुहागणी विच रंग रखियो न सच्चे अलख अपार सतगुर सेवन अपना सच्चे पाए प्यार सुहागणी सिगार बनाया गुण का गलहार प्रेम पिरमल तन लावना अंतर

ते निर्मले सदा सच्ची सोए, एथे कर कर जाप दे आगे जुग जुग प्रगट होए। ए मन रूड़े रंगुले तू सच्चा रंग चढ़ाए, रूड़ी बाणी जे रपे ना इहो रंग लह ना जाए। रहाओ हम नीच मैले अत अभिमानी, दूजे पाए विकार गुर पारस मिले कंचन होए निर्मल ज्योत अपार। बिन गुर कोई ना रंगी है, गुर मिले रंग चढ़ाओ, गुर के पै पाए जोरते सिफ्ति सत समाओ। पै बिन लाग ना लग गई ना मन निर्मल होए।

सच सुवाए, बिन संगति सब ऐसे रहे जैसे पस्तोर, जिनकी ते तिसे ना जाननी, बिन नावे सब चोर, एक गुण विहाजे अवगुण।

नानक नामे लाए सवारियन सब दे ले मिलाए आसा मेला तीजा सब नामे नो लोच दी जिस कृपा करे सो पाए बिन नामे सब दुख है सुख।

मेल लह एक दरगे मार कडे कूड़ियार एक तुर पवित पावन है तुझ नामे लाए गुर सेवा ते सुख उपजे सत्य शब्द बुझाए एक कुचल कुचील विखली पते नामो आप खुआए ना ऊन सिद्ध ना बुद्ध है ना संजमी फिरे उत्वताए नदर करे जिस अपनी किसनो पावनी लाए सत संतोख ए संजमी मन निर्मल शब्द सुनाए लेखा पढ़ना पहुँची है कछ कहने अंत न पाए गुरते कीमत पाई है सच शब्द सोजी।

सच रतिया सुहागणी जिना गुर कै शब्द सिगार। कर ही सो फिर पाया सच्चे शब्द विचार, अवगण गुणी बखसाया हर्षो लिव लाई, हर वर पाया कामणी गुर मेल मिलाई। रहाओ इक फिर हदूर ना जानवी दूजे परम पुलाए, क्यों पायन दोहागणी दुखी रहन विहाए। जिनके मन सच वसिया सच्ची कार कमाए, अंदिन सेवे सहज सो सच्चे माही समाए। दोहागणी परम पुलाया कूड़ बोल बिखाए, फिर ना जानन अपना सुनी।

हथ निर्मल मन वसाए, सुहागणी सदा पिर पाया हो मैं आप दुआए, पिर सेती अम दिन गह रही सच्ची सेज सुख पाए, मेरी मेरी कर गए पल्ले किछ ना पाए, मैल नाही दुहागणी अंत गई पछताए, सो फिर मेरा एक है एक क्यों लिव लाए, नानक जे सुख लो।

मन सदा हरि आवला सहजे हर गुण गाए राव मन मुख सदा दुहागणी दर खड़िया बिललाहे जिना पिरका स्वाद ना आयो जो तुर लिखिया सो कमाहे गुरमुख बीजे सच जम्मे सत नाम व पार जो इतला है लायन भगती दे।

ना फिर रावया अपना तिना विटो बल जाओ सदा फिर कै संग रहे विचो आप गवाए तन मन शीतल मुख उजले फिर कै पाए प्यार से सुखाली फिर

गया सफल जन्म हमारा, नाम नवे निज पाया परे अकुट पंडारा, आवे इस राशि के व्यापारी जिना नाम प्यारा, गुरमुख हो वे सो तन पाए तिना अंतर शब्द विचारा, भगति सार न जाननी मनमुख अहंकारी, तुरु आखो आयन जुए बाजी हारी, बिन प्यारे भगत न हो वही ना सुख होए शरीर, प्रेम पदार्थ पाई है।

अन रस में पोलाया बिन नामे दुख पाए, सतगुरु पुरख ना पेटियो जे सच्ची बूझ बुझाए, ए मन मेरे बावले हर रस चट साध पाए, अन रस लागा तू फिरे बिरथा जन्म गवाए, रहाओ इस जुग में गुरुमुख निर्मले सच नाम रहे लिवलाए, विण कर्मा किछ पाये नहीं क्या कर कहे आ जाए, आप पछाणे शब्द मरे मनो तज विकार, गुर शरणाई पज पए बक्से बक्सनार, बिन नावे सुख न पाईए ना दुख विच्चों जाए, इहो जग माया मोह व्यापिया दूजे परम पुलाए, दोहागणी तिरकी सार न जानही क्या कर करे सिगार, अंदिन सदा जल्दिया फिरे सेजे रवे ना पतार, सुहागणी महल पाया विच्चों आप गवाए, गुर शब्दी सिगारिया अपने सहलैया मिलाए, मरना मनो विसारिया।

जुग जुग रही समाए, जो तुद पावे सो पला प्यारे, तेरी अमर रजाए, नानक रंग रते नारा।

सस्य सोए सृष्ट जिन साजी सबना साहिब एक भया सेवत रहे चित जिनका लागा आया तिनका सफल भया मन काहे भूले मूड मना जब लेखा देवे बीरा तो पड़या रहाओ ईवड़ी आद पुरख है दाता आपे सच्चा सोई एना अखरा में जो गुरमुख बूझे तिस सिर लेख न होई उड़े उपमाता की जय जाका अंत न पाया।

पढ़िया पंडित आप थिया। छछे छाया वर्ती सब अंतर, तेरा किया परम होआ, परम उपाय पुलायन आपे, तेरा कर्म होआ तिन गुरु मिलिया। जज्जे जान मंगत जन जाचे,

आरो अपना पाज पड़ो तुम हर सरना, ठठे ठांड वर्ती तिन अंतर हर चरणी, जिनका चित लागा सही जन निस्तरे तो प्रसादी सुख पाया। डड्डे डंफ करो क्या प्राणी, जो किछ होआ सो सब चलना, तिसे सिरेवो ता सुख पावो, सर्व निरंतर रव रहा।

नाने रवत रहे कट अंतर, हर गुण गावे सोई, आपे आप मिलाए करता पुनरप जन्म ना होई। तत्ते तारू पव जल हुआ, ताका अंत न पाया, ना तर ना तुल्हा हम

पाप साव परमेश्वर वेखण को परपंच किया, देखे बूझे सब कुछ जाने अंतर बाहर रव रया, फफे फाही सब जग पासा जम के

वेखे चाखे सब किछ जाने अंतर बाहर रव रहा राड़े राड़ करें क्या प्राणी तिसे त्यावो जे अमर होआ तिसे त्यावो सच समावो उस विटों कुर्बान किया हा है होर न कोई दाता।

ममे मत हिरलई तेरी मूड़े हों मैं वड्डा रोग पया अंतर आत्मे ब्रह्म ना चीनिया माया का मोहताज भया कक्के काम क्रोध परम्यो मूड़े ममता लागे तुद हर विसरिया पढ़े गुणे तू बहुत पुकारे।

निर्गुण राम तिन्नी बूझ लया, तेरा अंत न जाई लखिया, अकथ न जाई हर कथिया, नानक जिन को

आप प्रभ कृपा करे। सेजा सुहावी संग पिरके सात सर अमृत भरे। कर दया मया दयाल साचे शब्द मिल गुण गावो। नानका हर वर देख बिगसी मुंद मन उमाहो। मुंद सहज सलो नड़िए एक प्रेम बिनंती राम। मैं मन तन हर भावे प्रभ संगम राती राम। प्रभ प्रेम राती हर बिनंती नाम हर कै सुख वसै।

खाना जब तप कर कर संयम था की हठ निग्रह नहीं पाइए नानक सहज मिले जग जीवन सतगुर बूझ बुझाइए गुर सागरो रत्नागर तित रतन कनेरे राम कर मज्जनो सप्त सरे मन निर्मल मेरे राम निर्मल जल नाए जा प्रभ पाए पंच मिले विचारे काम क्रोध कपट बिखिया तज

सच साहिबो आद पुरख अपरम परो तारे राम अगम अगोचर अपर अपारा पार ब्रह्म प्रधानो आद जुगादि है भी होसी अवर चूठा सब मानो कर्म तर्म की सार न जाने सुरत मुक्त क्यों पाये नानक गुरमुख शब्द पछ।

नानक हर की भगत ना छोड़ो सहजे होए सो होई। मेरा मनो मेरा मन निर्मल साथ संभाले राम अवगुण मेट चले।

गुरमुख तत् विचारो साजन मीत सो जान सखा तू सच मिले वड्याई नानक नाम रतन प्रगासिया ऐसी गुरमत पाई सच अंजनो अंजन सार निरंजन राता राम मन तन रव रहा जग

हर दरगह मान सोई जन पावे, जो नर एक पछाणे ओह नव निध पावे, गुरमत हर त्यावे नित हर गुण आख वखाणे, एनस नाम तिसे का लीजे हर उत्तम पुरख प्रदान जियो।

कहो नानक गुर शब्द सवारी, सफलियो जन्म सवाया। दूजड़े कामन परम पुली, हर वर न पाए राम। कामन गुण नाही, बिरथा जन्म गवाए राम। बिरथा जन्म गवाए मन मुख आणी, अवगुणवंती चूरे। अपना सतगुर सेव सदा सुख पाया, ता फिर मिलिया हदूरे। देख फिर विगसी अंदरों सरसी, सच्चे शब्द सुभाए। नानक बिन नावे कामन परम फुलाणी, मिल प्रीतम सुख पाए। फिर संग कामन जानिया, गुर मेल मिलाई राम। अंतर शब्द मिली सहजे, तपत बुझाई राम। शब्द तपत बुझाई अंतर शांत आई, सहजे हर रस चाख्या। मिल प्रीतम अपने सदा रंग माने, सच्चे शब्द सुवाख्या। पढ़ पढ़ पंडित मोनी थाके, पेखी मुक्त न पाई। नानक बिन भगति जग बौराना, सच्चे शब्द मिलाई। सा तन मन आनंद भया, हर जियो मेल प्यारे राम। सा तन हर कै

भगत पाव इहो मार्ग बिखड़ा गुरुद्वारे को पावे। कहे नानक जिस करे कृपा सो हर भगती चितलावे। मेरे मन बैरागिया तू बैराग कर किस दिखावे। हर सोहेला तिन सद सदा जो हर गुण गावे। कर बैराग तू छोड़ पखंड सो सो सब किस जाने। जल थल महियल एको सोई गुरमुख हुकम पछाने। जिन हुकम पछाता हरि केरा सोई सर्व सुख पावे। इव कहे नानक सो बैरागी अन दिन हर लिवलावे। जै जै मन तू तावदा तै तै हर तेरे नाले। मन से आणप छोड़िए।

क्यों कहे नानक मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। मन तू गारब अटिया गारब लद्या जाए माया मोहनी मोया फिर जूनी पवाए गारब लागा जाए मुगद मन।

दुख गवाया, अदिष्ट अगोचर गुरु बचन त्याया, पवित्र परम पद पाया। अनहद तुन वाजे नित वाजे, गाई सतगुरु बाणी, नानक दात करी प्रभ दाते, ज्योति ज्योत समाणी।

रोम रोम रोम में मैं गुरुमुख राम से आए राम, राम नाम से आए पवित्र हुए आए तिस रूप ना रेख्या काए, रामो राम रव्या कट अंतर सब कृष्णा पूख गवाई, मन तन शीतल सिगार सब हुआ गुरमत राम पर गाता, नानक आप अनुग्रह किया हम दासन दासन दासा, जिन्नी रामो राम नाम विसारिया से मन मुख मूर अपागी राम, तिन अंतरे मोह व्यापे खिन खिन माया लागी राम, माया मल लागी मूर पै अपागी जिन राम नाम नह पाया, अनेक कर्म करें अभिमानी हर रामो नाम चुराया, महा बिकम जम पंस दुहेला कालू खत मोह अंधियारा, नानक गुरुमुख।

समाया। जिन अंतरे राम नाम वसै तिन चिंता सब गवाया राम। सब अर्था सब कर्म मिले मन चिंदिया को फल पाया राम। मन चिंदिया फल पाया राम नाम से आया राम नाम गुण गाए। दुर्मत कबुद गई सुध होई राम नाम मन लाए। सफल जन्म शरीर सब होआ जित राम नाम पर गासिया।

करता दुख विनाशन पतित पावन हर नाम जियो। हर सेवा पाई परम गत पाई हर उत्तम हर हर काम जियो। हर उत्तम काम जपिए हर नाम हर जपिए अस्थिर होवे। जन्म मरण दोवे दुख मेटे सहजे ही सुख सोवे। हर हर कृपा तारो ठाकुर हर जपिए आत्म राम जियो। हर हर करता दुख विनाशन पतित पावन हर नाम जियो। हर नाम पदार्थ कल युग उत्तम हर जपिए सतगुर पाए जियो। गुरुमुख हर पढ़िए गुरुमुख हर सुनिए हर जपते सुनते दुख जाए जियो। हर हर नाम जपिया।

लिख पाए जियो। हर नाम पदार्थ कलयुग उत्तम, हर जपिए सतगुरु पाए जियो। हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो। हर प्रीत लगाई हर नाम सिखाई, प्रम चूका आमन जान जियो।

हित दुख उतरे, हर हर नाम समाया, जिन हर से आया सुर पाग लिख पाया, तिन सफल जन्म परवान जियो, हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो, जिन हर मीठ लगाना ते जन प्रधाना, ते उत्तम हर हर लोग जियो, हर नाम वडाई हर नाम सखाई, गुर सबदी हर रस भोग जियो, हर रस भोग महा निर्जोग वड पागी हर रस पाया, से तन वड्डे सतपुरखा पूरे, जिन गुरमत नाम ते आया, जन नानक रेण मंगे।

जियो। कल युग हर किया पग त्रै किया, पग चौथा टिकै टिकाए जियो। गुर शब्द कमाया औखद हर पाया, हर कीरत हर शांत पाए जियो। हर कीरत रुत आई हर नाम।

लाए जियो, हर दया प्रभ तारो, पाखण हम तारो, सद देवो सब सुभाए जियो। आसा महला चौथा, मन नाम जपाना, हर हर मन पाना, हर भगत जना मन चाओ जियो, जो जन मर जीवे तिन अमृत पीवे, मन लागा गुरमत पाओ जियो, मन हर हर पाओ।

मन नाम जपाना हर हर मन पाना, हर भगत जना मन चाओ जियो, जग मरण ना पाया निच आप लुकाया, मत जम पकड़े ले जाए जियो, हर अंतर बाहर हर प्रभ एको, इहो जियड़ा रखिया ना जाए जियो, क्यों जियो रखी जय हर वस्त लोड़ी जय, जिसकी वस्त सो ले जाए जियो, मन मुख करण।

जो जग मरण न पाया नित आप लुकाया मत जम पकड़े ले जाए जियो। तुर मरण लिखाया गुरमुख तो आया जन उब

रागा समेला पंजवा छंत कर पहला अनगो अनद घना मैं सो प्रभ दीठा राम चाखेड़ा चाखेड़ा मैं हर रस मीठा राम हर रस मीठा मन में बूठा सतगुरु तूठा सहज भया गृहवस आया मंगल गाया पंच दुष्ट ओए पाग गया शीतल आघाने अमृत बाणे साजन संत बसीठा कहो नानक हास्यो मन मान्या सो प्रभ नैणी दीठा।

सारे नमस्कार कर लगे सेवा आचे जांजी आपे मांजी आप स्वामी आप देवा अपना कार्य आप सवारे आते तारन तारे कहो नानक सौ कर में बैठा सोहे बंक द्वारे नग्न दे नौन दे मेरे कर में आई राम सब किच में सब किच पाया नाम से आई राम नाम से आई सदा सखाई सह सुभाई गोविंदा गलत मिटाई चूकी ताई कदे न व्याप है मन चिंदा गोविंद गाजे अनहद वाजे अतरज शोक बनाई कहो नानक फिर मेरे संगे ता मैं नवनिध पाई सर से अड़े मेरे भाई सब मीता राम बिखमो बिखम अखाड़ा मैं गुरमिल जीता राम गुरमिल जीता हर हर कीता टूटी पीता परम गड़ा पाया खजाना बहुत निदाना सांत मेरी आप खड़ा सोई सो ज्ञाना सो प्रदाना जो प्रभ अपना कीता कहो नानक जा वल स्वामी ता सर से पाई मीता ऐसा महला पंजवा अकथा हर अकथ कथा किस जाए न जानी राम सुर नर मुन जन सहज वखानी राम सहजे वखानी अम्यो बाणी चरण कमल रंग लाया जब एक अलख प्रभ निरंजन मन चिंदिया फल पाया तज मान मोह विकार दूजा ज्योति ज्योत समाणी बिनवंत नानक गुर प्रसादी सदा हर रंग माणी हर संत सज्जन मेरे मीत सहाई राम वड पागी सत्संगत पाई राम वड पागी पाए नाम ते आए लाखे दुख संतापे गुर चरणी लागे परम पौ पागे आप मिटाया आपे कर कृपा में ले प्रभ अपने विछड़ कते न जाई बिनवंत नानक दास तेरा सदा हर शरणाई हर दर सोहन तेरे भगत प्यारे राम वारी तिन वारी जावा सद बलिहारे राम सद बलिहारे कर नमस्कारे जिन पेटत प्रभ जाता कट कट रग रहा सब थाई पूरन पुरुष विदाता गुरपुरा पाया नाम ते आया जुए जन्म नहारे बिनवंत नानक शरण तेरी राख कृपा धारे बेअंता बेअंत गुण तेरे केतक गावा राम तेरे चरणा तेरे चरण तूर वड पागी पावा राम हर तूड़ी नाई है मैल गवाई है जन्म मरण दुख लाथे अंतर बाहर सदा हदूरे परमेश्वर प्रभु साथे मिटे दुख कल्याण कीर्तन बौड़ जोन ना पावा बिनवंत नानक गुर शरण तरिये अपने प्रभु भावा आसा संत महला पंजवा कर चौथा इको अंकार सतगुर प्रसाद हर चरण कमल मन बेदिया किछ आम ना मीठा राम राजे मिल संत संगत आरा दिया हर कट कटे डीठा राम राजे हर कट कटे डीठा अमृतो उठा जन्म मरण दुख नाथे गुण निध गाया सब दुख मिटाया हों मैं बिनसी गाथे प्रियो सह सुबाई छोड़ न जाई मन लागा रंग मजीठा हर नानक बेदे चरण कमल किछ आन न मीठा ज्यों राती जल माछली त्यों राम रस माछली

लड़ लाए हर रत्न पदार्थो प्रगटो पूर्णो छोड़ न कथो जाए। प्रभु सुगर स्वरूप सुजान स्वामी ताकि मिटे न दाते जल संग्राती माछली नानक हर माते। चात्रिक जाचे बूंद ज्यो हर प्राण अधारा राम राजे माल खजीना सुत प्रात नीत सबू ते प्यारा राम राजे। सबू ते प्यारा पुरख निरारा ताकि गत नहीं जानिए हर सास गिरास न बिसरे कबू गुर शब्दी रंगमानिए। प्रभु पुरख जग जीवनो संत रस पीवनो जप परम मोह दुख दारा चात्रिक जाचे बूंद ज्यो नानक हर प्यारा मिले नारायण अपने मन ओरथो पूरा राम राजे। ताथी पीत परम की पेटत गुर सूरा राम राजे पूरन गुर पाए पूर्व लिखाए सब निज दीन दयाला आद मद अंत प्रव सोई सुंदर गुर गोपाला। सुख सहज आनंद कनेरे पतित पावन साधु तूरा हर मिले नारायण नानका मन ओरथो पूरा। आसा महला पंजवा संत कर छेवा इको ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक। जा को पय कृपाल प्रभु हर हर सही जपात नानक प्रीत लगी तिन राम स्यों पेटक साथ संगात। संत जल दुध न्याई रीत अब दुध आत नहीं मन ऐसी प्रीत हरे। अब उर्जो अल कमले बासन माहे मगन इक खिन भी नाहे तरे खिन नाहे तरिये प्रीत हरिये सिगार हगरस अर्पिये जह दुख सुनिये जम पंथ पणिये तह साध संग ना डरपिये। कर कीरत गोविंद गुणिये सगल प्राचत दुख हरे कहो नानक छंत गोविंद हर के मन हर्ष्यो निहो करे हो ऐसी मन प्रीत हरे। जैसी मछली नीर इक खिन भी ना धीरे मन ऐसा निहो करे हो। जैसी चात्रिक प्यास खिन खिन बूंद चवे बरस सुहावे में हो हर प्रीत करी जय इह मन दी जय अपलाये चित मुरारी मान न की जय शरण परी जय दर्शन को बलिहारी। गुर सो प्रसन्ने मिल ना विछुन्ने तन देन दी साथ सनेहा कहो नानक छंत अनंत ठाकुर के हर्ष्यों की जय नेहा मन ऐसा निहो करे हो। चकवी सूसने हो चितवे आस पणी कल दिनियर देखिए कोकिल अंब प्रीत चवे सुहाविया मन हर रंग कीजिए। हर प्रीत करी जय मान न की जय इक राशि के हम पाहुणिया अज क्या रंग लायो मोह रचायो नांगे आवन जावणिया। फिर साधु सरणी पड़ी है चरणी अब टूटस मोह जो किती है कहो नानक छंत दयाल पुरख के मन हर लाए प्रीत कब दिनियर देखी है। निष्कुरंक जैसे नाद सुन श्रवणी ही ओडिवे मन ऐसी प्रीत की जय। जैसी तरुण पतार उर्जी पह सिवे यो मन लाल दी जय मन लाल दी जय कोप करी जय हब खुशियां रंग माने फिर अपना पाया रंग लाल बनाया अत मिलियो मित्र चिराने। गुरथी आसाखी ता जिठम आखी फिर जेहा आवर न दिसे कहो नानक छंत दयाल मोहन के मन हर चरण गही जय ऐसी मन प्रीत की जय। आसा महला पंजवा श्लोक। बन बन फिरती खोजती हारी बहु अवगाहे नानक पेटे साध जब हर पाया मन माहे। छंत जा को खोजे असंख मुनि अनेक तपे ब्रह्मे कोट आराधे ज्ञानी जाप जपे। जप ताप संजम क्रिया पूजा अनेक शोधन बंदना कर गवन बसुदा तीर्थ मज्जन मिलन को निरंजना। मानुख बन तिन पशु पंखी सगल तुझे आराधते दयाल लाल गोविंद नानक मिल साध संगत होए गते। कोट विष्णु अवतार शंकर जटातार चाहे तुझे दयार मंथन रुच अपार। अपार अगम गोविंद ठाकुर सगल पूरक प्रवतनी सुर सिद्ध गण गंधर्व से आवे जप किन्नर गुणपनी। कोट इंद्र अनेक देवा जपत स्वामी जय जयकार अनाथ नाथ दयाल नानक साध संगत मिल उधार। कोट देवी जा को सेवे
लक्ष्मी अनक पांच गुप्त प्रगट जाको अराधे पौन पानी दिन सुरात नक्षत्र ससियर सूरत आवे बसद गगना गावे सगल खानी सगल बाणी सदा सदा त्यावे सिमरत पुराण चतुर्वेद खट शास्त्र जाको जपात पतित पावन भगत वछल नानक मिलिये संग साथ जेती प्रभु जनाई रसना तेत भनी अनजानत जो सेवे तेती नह जाय गनी अवगत अगमत अथा ठाकुर सगल मंजे बाहरा सर्व जाचक एक दाता नह दूर संगी जाहरा वस भगत थिया मिले जिया ताकी उपमा कित गनी तिहो दान मान नानक पाए शीश सादे तर चरनी आसा महला तन्यवा श्लोक उद्यम करो वट पागियो सिमरो हर हर राए नानक जिस सिमरत सब सुख होवे दुख दर्द परम जाए संत नाम जपत गोविंद ने अलसाइए पेट साधु संग जमपुर ने जाइए दुख दर्द ना कहो व्यापे नाम सिमरत सब सुखी साथ साथ आराध हर हर त्याए सो प्रभु मनमुखी कृपाल दयाल रसाल गुण निध कर दया सेवा लाइए नानक पयम पै चरण जमपे नाम जपत गोविंद ने अलसाइए पावन पतित पुनीत नाम

सूर्या अगाध बोध समरथ स्वामी सर्व का पौ पंजना नाम स्वयं पै चरण जम पै पावन पतित पुनीत नाम निरंजना। ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे मोय आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिदे हर चरण कारण करण स्वामी पतित उदरन हर हरे सागर संसार पल उतार नाम सिमरत बहुतरे आद अंत बेअंत खोजें सुनी उदरन संत संग विदे नानक पयम पै चरण जम पै ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे। भगत वत्सल हर बिरद आप बनाया जय जय संत अराधे तै तै प्रगटाया प्रभ आप लिए समाये सह सुभाये पवित कार्य सारया आनंद हर जस महा मंगल सर्व दुख विसारया चमत्कार प्रगास दह दिस एक तह दृष्टाया नाम स्वयं पै चरण जम पै भगत वचल हर बिद आप बनाया आशा महला पन्नवा फिर संतन सुहाग मरे न जावे जा कह गे हर नाओ सो सद ही रावे अविनाशी अवगत सो प्रभ सदा नवतन निर्मला न दूर सदा हदूर ठाकुर दह दिस पूरन सब सदा प्राण पत गत मत जाते प्रिय प्रीत प्रीतम पावे नानक बखाने गुरु बचन जाने फिर संतन सुहाग मरे न जावे जा को राम पतार का कैमद घना सुखवंती सानार सो बापूर बना मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु सर्व सिद्ध नव निद तित ग्रह नहीं ऊना सब कछु मधुर बानी प्रह मानी फिर सुहाग का बना नानक वखाने गुरु बचन जाने जाको राम पतार का अंग घना आओ सखी संत पास सेवा लागी है पीछो चरण पखार आप से आगी है तब आप मिटे संताप आपने जनाई है शरण गही जय मान ली जय करे सो सुख पाई है कर दास बासी तज उदासी कर जोर दिन रैन जागी है नानक वखाने गुरु बचन जाने आओ सखी संत पाग सेवा लागी है जाके मस्तक पाग से सेवा लाया ताकि पूरन आस जिन साथ संग पाया साथ संग हर के रंग गोविंद सिमरन लागया परम मोह विकार दूजा सगल तिने त्या गया मन शांत सह स्वभाव उठा अनद मंगल गुण गाया नानक वखाने गुरु बचन जाने जाके मस्तक पाग से सेवा लाया आशा महला पंजवा श्लोक हर

चैनते। मिलो संतन के संग मोहे उदार ले हो, बिनो करो कर जोड़ हर हर नाम दे हो। हर नाम मांगो चरण लागो, मान त्यागो तुम दया। कतहु न पावो शरण पावो, करुणा में प्रभ करमया। समर्थ अगत अपार निर्मल सुनो स्वामी बिनो एहो। कर जोड़ नानक दान मांगे, जन्म मरण निवार ले हो। अपराधी मतहीन निर्गुण अनाथ नीच, सट कठोर कुलहीन व्यापत मोह कीच। मल परम कर्म अहं ममता, मरण चीत न आवे। बनता विनोद आनंद माया, अज्ञान तालप तावे। खिसै जोबन बलै जरुआ, दिन निहारे संग मीच। बिनवंत नानक आस तेरी, शरण साधु राख नीच। परमे जन्म अनेक संकट महाजोन, लपट रहो ते संग मीठे पोग सोन। प्रमत पार अगमत आयो, बहु परदेश पायो। अब ओट तारी प्रभ मुरारी, सर्व सुख हर नायो। राखन हारे प्रभ प्यारे, मुझते कछु न हुआ होन। सुख सहज आनंद नानक, कृपा तेरी तरह पौन। नाम सारी उधारे भगत संसा कौन। जेन केन प्रकारे हर हर, जस सुनो श्रवण। सुन श्रवण बानी पुरख ज्ञानी, मन निधाना पावे। हर रंग राते प्रभ विधाते, राम के गुण गावे। बसुद कागद बन राज कलमा, लिखन को जे होए पावन। बेअंत अंत न जाए पाया, गही नानक चरण शरण। आशा महला पंजवा, पुरख पते भगवान ताकी शरण गही। निरपो पे प्राण चिंता सगल लही। मात पिता सुत मीत सुरजन, इष्ट बंधक जानिया। गय कंठ लाया गुर मिलाया, जस विमल संत वखाणिया। बेअंत गुण अनेक महिमा, कीमत कछु न जाए कही। प्रभ एक अनेक अलख ठाकुर, ओट नानक तिस गही। अमृत बन संसार सहाय आप भये, राम नाम उरहार बिक के दिवस गए। गत परम मोह विकार बिन से, जोन आमन सब रहे। अगन सागर तय शीतल, साध अंचल गह रहे। गोविंद गोपाल दयाल समरथ, बोल साधु हर जय जय। नानक नाम त्याय पूरन, साध संग पाई परम गते। जय देखो तय संग एको रव रया, पट पट वासी आप विरले किने लया। जय कल मैयल पूर पूरन कीट हस्त समान्या। आद अंते मत सोई गुर प्रसादी जान्या। ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला, गोविंद गुण निर्जन कहा। सिमर स्वामी अंतर जामी, हर एक नानक राव रया।

की साथ है, संग देखे करणहारा काए पाप कमाई है, सुकृत की जय नाम ली जय नरक मूल न जाइए, आठ पैर हर नाम सिमरो चले तेरे साथ है, पद साध संगत सदा नानक मिटे दो कमाते, वलवंश कर उधर परे मूर्ख गावारा, सब किश दे रहा हर देवन हारा, दातार सदा दयाल स्वामी काए मनो विसारी है, निर साध संगे पद्म संगे कुल समूह तारी है, शिव साधक देव मुंजन भगत नाम आधारा, बिनवंत नान सदा तजी है प्रभ एक करने हारा, खोट न की चई प्रभ परखन हारा, पूर कपट कमाऊ गड़े जन्मे संसारा, संसार सागर किन्नी तरिया जिन्नी एक से आया, तज काम क्रोध अनिंद निंदा प्रभ शरणाई आया, जल फल मैयल रविया स्वामी पूछ अगम अकारा, बिनवंत नानक टेक जन की चरण कमल आधारा, पेट हर संगौरड़ी अब फिर किछ नाही, माया रंग जेते से संग न जाही, हर संग साथी सदा तेरे दिन त्रैन संभालिए, हर एक बिन कछ अवर नाही पाव दुतिया जालिए, मीत जोबन माल सर्वस प्रभ एक कर मन माही, बिनवंत नानक वद पाग पाई है सुख सहज समाही, आशा मेला पंजवा शंख पर अठवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद, कमला परम पीत कमला परम पीत हे तीखण मद विपरीत, हे अवध अकाल जात गैबर बन कोर गैबर बन कोर, हे गृह मूसक मन चोर हे दिन करो अन दिन खास, दिन खास जात बिहात प्रभ बिन मिलो प्रभ करणा पते, जन्म मरण अनेक बीते प्रिय संग बिन कछ नह गते, कुल रूप तूप ज्ञान ही नी कुछ बिना मोहे कौन मात, कर जोड़ नानक शरण आयो प्रिय नाथ नर हर करो गात, मीना जलहीन मीना जलहीन हे ओहो बिछरत मन तन खीन, हे कत जीवन प्रिय बिन होत, सन्मुख सह बान सन्मुख सह बान, हे मृग अर्पे मन तन प्राण हे ओह बेदियो सहज स्रोत, प्रिय प्रीत लागी मिल बैरागी खिन रहन त्रिग तन तिस बिना, पलका ना लागे प्रिय प्रेम पागे चितवंत अंजन प्रमना, श्री रंग राते नाम माते पै परम दुतिया सगल खोत, कर मया दया दयाल पूरन हर प्रेम नानक मगन होत, अलियल गुंजात अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात, हे प्रीत कमल बंधावत आप चात्रिक चित प्यास चात्रिक चित प्यास, हे तन बूंद बचित्र मन आस, हे अल पीवत बिन सत ताप, ताता विनाशन दुख नाशन मिल प्रेम मन सन अतकना, सुंदर चतुर सुजान स्वामी कवन रसना गुणपना, गह पूजा लेवो नाम देवो दृष्ट तारत मिटत पाप, नानक जम पै पटित पावन हर दर्श ते सतमय संग।

सुंदरतम ध्यान सुंदरतम ध्यान। हे मन लुबुद गोपाल ज्ञान, हे जाचक जन राशतमान, प्रभ मान पूरन दुख विदीरन, सगल इच पुजंतिया, हर कंठ लागे दिन सुबागे, मिल नहा शेष सुअंतिया, प्रभ दुष्ट तारी मिले मुरारी, सगल कलमल पहान, बिन वंश नानक मेरी आस पूरन।

सूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद आशा महला पहला वासलोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे पुण्य यशराज की तुने श्लोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने देहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते की ये करतना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवे सूर चढ़े हजार इते चानन हुंदिया गुरबिन को रंदार महला पहला नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिलबु आर ज्यो सुन्ये अंदर खेत खेते अंदर छुटिया कहो नानक सोना फलियां फुलियां बपड़े पीतन विच सुआ पौड़ी आपी ने आप साजो आपी ने रचियो नाओ दुई कुदरत साजी है करे आसन जिठो चाहो दाता करता आप तू तुस देवे करे पसाओ तू जानो ही सब से दिल ऐसे जिंद कवाओ करे आसन जिठो चाओ श्लोक महला पहला सच्चे तेरे खन सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुझ आखे लख करोड़ सच्चे सब कान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सत्यायन सच जो मर जमे सो कच ने कच महला पहला वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जा सतन्याओ वड्डी वड्याई जाने चलसाओ वड्डी वड्याई जाने अलाओ वड्डी वड्याई बुझे सब भाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा पे आप नानक कार न कथनी जाए कीता करना सरबर जाए महला दूजा एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास इकना हुक्म समाए लए इकना हुक्म करे विनाश इकना पाने कड लए इकना माया विच निवास ए पे आख न जाते जे किसे आने रास नानक गुरमुख जानिए जा को आख करे परदास पौड़ी नानक जी उपाय कह लिखना वे तरम बहा लिया ओथे सच्चे ही सच निबड़े चुन वक कड्डे जिजमा लिया थाव न पाएन कूड़िया मौका ले दो जुकचा लिया तेरे नाय रते से जिन गए हार गए से ठगन वालिया लिखना में करम बालिया श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद पेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिर जंत विस्माद सौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडानी विस्माद करती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद सुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख उड़ान रहा विस्माद नानक पूजन पूरे पाग महला पहला

बाजारी बाजार में आयकड़े बाजार, गावे राजे रानियां बोले आलप ताल, लख क्या के मुंडड़े लख क्या के हार, जित तन पाइये नाम का सेतन होवे चार। ज्ञान न गली टूंडी है कठना करड़ा सार, कर्म मिले ता पाइये और हिकमत हुकम खुआर पौड़ी। नदर करें जे आपनी ता मदरी सतगुरु पाया, एहो जियो बहुते जन्म प्रम्या ता सतगुरु शब्द सुनाया, सतगुरु जे वरदाता को नहीं सब सुनियो लोक सुभाया, सतगुरु मिले सच पाया जिन विचो आप गवाया, जिन सचो सच बुझाया। श्लोक महला पहला। कड़िया सबे गोपिया पहर कन गोपाल, गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार, सगली तरती माल तन वर्तन सर्व जंजाल, नाक मुझसे ज्ञान होनी खाए गया जमकाल। महला पहला। वाइन चेले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर, उड़ उड़ रावा चाटे पाए वेखे लोक हसे कर जाए, रोटियां कारण पूरे ताल आप पछाड़े तरती नाल, गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम, निरपव निरंकार सच नाम जाका किया सगल जहां, सेवक सेवे कर्म चढ़ाओ किन्नी रैन जिना मन चाहो, सिक्की सिक्ख्या गुरु विचार नदरी कर्म लंगाए पार, कोलू चरखा चक्की चक हलवा रोले बहुत अनंत, लाटू माधानियां गा पंखी पौंदियां लैन न पा, सुवे चार पुआइए जंत नाम पौंदियां गंत नांत, बंधन बंद पुआए सोए पय किरत नचे सब कोए, नच नच हसे चले सिरोए उड़ न जाई सिद्ध न होए, नचे कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ सिना मन पाओ पौड़ी। नाओ तेरा निरंकार है नाई ले नरक न जाइए, जियो फिर सब तिसदा देखा जाए आप गवाइए, जे लोड़ है चंगा अपना कर कुनहु नीच सदाइए, जे जरवाना पर हर है जर वेश करें दी आइए, को रह न परिये पाइए। श्लोक महला पहला। मुसलमाना सिर्फ फरियत पढ़ पढ़ करें विचार, बंदे से जे पवे विच बंदी वेखन को दीदार, हिंदू साला ही साला हम दर्शन रूप अपार, तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास में कार, जोगी सुनत्या उनजे ते अलख नाम करतार, सुखम मूरत नाम निरंजन काया का आकार, सतिया मन संतोष उपदे देने के विचार, दे दे मंगे सैसा गुना शोक करे संसार, चोरा यारा ते कुड़ियारा खारा बावेकार, इक होदा खाए चले एथाउ तिना बेकाई कार, जल फल जिया प्रिया लोआ आकारा आकार, कोई जी आखे सोटू है जाने तिना भी तेरी सार, नानक पगता पुख सलान सच नाम आधार, सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंतिया पाचार। महला पहला। मिट्टी मुसलमान की पेड़ है पई कुम्यार, कर पांडे इट्टा किया जल्दी करे पुकार, जल जल रो वह बपड़ी चढ़ चढ़ तो अंगियार, नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी। बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने न पाया, सतगुर विच आप रखियो न कर प्रगट आप सुनाया, सतगुर मिलिया सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया, उत्तम क्यों विचार है जिन सच्चे सुन चुकलाया, जग जीवन दा का पाया। श्लोक महला पहला। हौ विच आया हौ विच गया, हौ विच जमया हौ विच मोआ, हौ विच दिता हौ विच लया, हौ विच खटिया हौ विच गया, हौ विच सत्यार कूड़ियार, हौ विच पाप पुन विचार, हौ विच नरक सुरग अवतार, हौ विच हसे हौ विच रोवे, हौ विच परिये हौ विच होवे, हौ विच जाति जिनसी खोवे, हौ विच मूर्ख हौ विच सियाणा, मोख मुक्त की सार न जाना, हौ विच माया हौ विच छाया, हौ मैं कर कर जंतु पाया, हौ मैं बूझे तांगर सूझे, ज्ञान विहूणा कर कतलूझे, नानक हुक्मी लिखिए लेख जिहा वेखे तिहा वेख। महला दूजा। हौ मैं एहा जात है हौ मैं कर्म कमाए, हौ मैं एही बंदना फिर जो नहीं पाए, हौ मैं किथो उपजे किथ संजम ए जाए, हौ मैं एहो हुक्म है पे है किथ फिराए,
हूँ मैं दीर्घ रोग है दारू भी समाए कृपा करे जे अपनी ता गुरु का शब्द कमाए नानक कह सुनो जनो इच्छन जब दुख जाए पौड़ी सेव कीती संतोखी जिन्नी सचो सत्य आया उन्हीं मंदे पैर न रखियो पर शुक्र कर्म कमाया उन्हीं दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया स्वरूप महला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तट्टा मेगा खेता दीपा लोआ मंडला खंडा वर पंडा अंडज उत्पुजा खानी सेत जहां सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंत उपाय कै संभाले सबना जिन करते करना किया चिंता वे करनी ता सो करता चिंता करे जिनु पाया जग तिस जुहारी स्वस्थ तिस दीवान अपग नानक सच्चे नाम बिन क्या शिक्षा क्या पग महला पहला लख ने किया चंगियाईया लख पुन्ना प्रवान लख तप पर तीर्था सहज योग बेबान लख सूरतन संग्राम रण में चुटे प्राण लख सुरती लख ज्ञान ज्ञान पढ़िया पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया मन जान नानक मती मिथ्या कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा साहिब एक तू जिन सचो सच वर्ताया जिस तू दे तिस मिले सच ता तिन्नी सच कमाया

ता क्यों जागे गुरु बिन सूता, पग पे ताना अपना किया कमाना, अल मल खाई सिर छाई पाई, मूर्ख समझे पत गुआई, गिण नावे किछ खाए न पाई, रह बिमाणी मरी मसाणी, अंग ना जाने फिर पछताणी। सतगुर पेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए, नानक नजर करे सो पाए, आस उंदे सेते ने केवल, होमे शब्द जलाए पौड़ी। अगर तेरे मन पाव दे, दर सोहन कीर्त गाव दे, नानक कर्मा बाहरे दर तो न लेनी ताऊ दे, एक मूल ना बुझन अपना अनहोंदा आप गणाए दे, होता भी का नीच जात होर उत्तम जात सदाए दे, तिन मंगा जीत जैत आए दे।

सब जग चलनहार, कूर मिठा कूर माथो कूर डोबे पूर, नानक बखाने बेनती तुद बाद कूड़ो कूड़ महला पहला। सब तां पर जानिए जार दैस चाहोए, कूड़ की मल उतरे तन करे हच्छा धोए। सब तां पर जानिए जां पर करे प्यार, नाओ सुन मन रहसी है तां पाए मोख द्वार। सब तां पर जानिए जां जुगत जाने जियो, तर्क काया साध के विच दे करता बियो। सब तां पर जानिए जां सिख सकी ले, दया जाने जी की किछ पुन दान करे। सच ता पर जानिए जा आपन तीर्थ करे निवास, सतगुरु नो पुछ के बहरे करे निवास। सत सबना होए दारू पाप कड्ढे कोए, नानक बखाने बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी। दान महिंदा तली खाक जे मिले ता मस्तक लाई है, कूड़ा लाल छड़ी है होए इक मन अलग से आई है। फलते वे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है, जे हो वे पूर्व लिखिया ता तूड़ तिना दी पाई है। मत थोड़ी से

मूर्त होए नानक पाहे बारा कोरे रंग न सोए पैर खुम चढ़ाई है शर्म पावतन होए नानक पगती जेर पै कूड़े सोए न कोई मेला पहला लब पाप दो राजा मेहता कूर हुआ सिकदार काम लेव सब पूछिए बह बह करे विचार अंधी रैयत ज्ञान विहूनी पाए परे मुर्दार।

मूरख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करें प्यार करमी कर्म करें गावावे मंगे मोख द्वार जति सदावे जुगत न जाने छड़ महे कर बार सबको पूरा आपे हो वै कट ना कोई आखे पग परवाना पिछे पाये ता नानक तोलिया जापे महला पहला वदी सवज्जग नाम का सच्चा वेखे सोए सबनी छाला मारिया करता करे सोए अगे जाप मजोर है अगे जियो नवे जिनकी लेख है पपवे चंगे से के पौड़ी तुर कर्म जिना को तुद पाया ता किन्नी खपन से आया ए ना जनता के वश किच नाही तुद वेकी जगत उपाया इकना नो तू मेल ले इकापो तुद खुआया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया सहजे ही सच समाया।

जो तपस्या तीरांत न जाई लखिया रहाओ। जात में जोत जोत में जाता अकल कला भरपूर आया। तू सच्चा साहिब सुवालियो जिनकी तीसो पार पया। कहो नानक करते किया बाता जो कुछ करना सो कर गया। महला दूजा जो शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर शब्द।

सूदर शब्द प्राकृत है, सर्व शब्द एक शब्द जे को जाने भयो, नानकता का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा। एक कृष्ण सर्व देवा देव दिवा पात्मा,

गुरु बिन ज्ञान न होए पौड़ी। पढ़िया हो वह गुनेगा ताऊ उमी साधना मारी है, जे हाँ काले कारणा तेवे हो नाव पचारी है, ऐसी कला न खेड़ी है जित दर गया हारी है, पढ़िया अत्य ओमिया विचार गए विचारी है, मुझ चले सो अगे मारी है। श्लोक महला पहला। नानक मेर शरीर का एक रथ एक रथवाओ, जुग जुग फेर वटाई है ज्ञानी बुझे ताहे, सब जुग रथ संतोख का कर्म अग्गे रथवाओ, त्रेते रथ जते का जोर अग्गे रथवाओ, द्वापर रथ कपे का सत अग्गे रथवाओ, कल युग रथ अगन का कूड़ अग्गे रथवाओ। महला पहला। शाम कहे सितंबर स्वामी सच में आछे साथ रहे, सबको सच समावे रिग कह रहा भरपूर, राम नाम देवा मैं सूर नाई ले प्राचित जाहे, नानक तो मुखंतर पाहे।

कर कृपा पार उतारया। श्लोक महला पहला। सिमल रुख सरायरा अप धीरज अतमुच ओज आवे आस पर जाहे निराशे कित फल फिके फुल बक बके कम ना आवे पत मिथक नीवी नानका गुण चंगियाईया तत सबको निवे आपको पर को निवे न कोए तारका राजू तोलिए निवे सो गौरा होए अपराधी दूना निवे जो हंता मिर्गाहे शीश निवाए क्या थी है जा हृदय कुसुदे जाए। महला पहला। पर पुस्तक संध्या बादंग शिल पूज बगल समादंग मुख चूठ बेपूखण सारंग त्रैपाल से हाल विचारंग गल माला तिलक लीलाटंग दो तोती वस्त्र कपाटंग जे जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट निश्चो कर्मं कहो नानक ने चो त्यावे फिर सतगुरु वात न पावे पौड़ी। कप्पड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा आपना आपे ही कीता पावना हुकम किए मन पावंदे राय पीड़े अगे जावना नंगा दोजक चालिया तां दिसै खरा डरावना कर अवगुण पछोतावना। श्लोक महला पहला। दया कृपा संतोख सूत जत गंडी सतवत एहो जनेऊ जी का है ता पांडे कत ना एहो टुटे ना मल लगे ना एहो जले न जाए तन सो मानस नानका जो गल चले पाए चौकर मुल अनाया बे चौके पाया सिखा कन चढ़ाया गुरु ब्राह्मण थिया ओ मुआ ओ चरपया वे तगा गया। महला पहला। लख चोरिया लख जारिया लख कूड़िया लख गाल लख ठगिया पहनामिया रात दिन जी नाल तब कपाओ कती है बामन वटे आए को बकरा रिन खाया सबको आखे पाए होए पुराना सुती है पीसर पाई है होर नानक तग न टूटे जे तग होवे जोर। महला पहला। नाय मने पथ उपजे साला ही सचूत दरगे अंदर पाई है तग ना टूट सपूत। महला पहला। तग ना इंद्री तग ना नारी पलके थुप वै निदारी तग ना तैरी तग ना

कर लावो गोबर कर न जाई, तोती टिक्का तै जप माली तान मलेच्छा खाई, अंकर पूजा पढ़े कतेबा संयम तुरका भाई, छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जहे करंदा महला।

पूर नान कूड़ रहा पर पूर मत्थे टिक्का पेड़ पोती का खाई हाथ छुरी जगत का साई।

मेला। मन का सूतक लोभ है जेवा सूतक कूड़, अखी सूतक वेखना परक्रिय पर अनुरूप, कन्नी सूतक कन पै लाल तवारी खाए, नानक हंसा आदमी बदे जमपुर जाए। मेला पहला सबो सूतक परम है दूजे लगे जाए,

किरतता हुआ पापवित पापी सो संग दया चुका पिया चित जित मुख नाम ना उचरे बिन नावे रस खाए नानक ए वह जानिए चित मुख थुका पाए। महला पहला पन जमिए पन निमिए पन मंगन भी आहो पंडो हो वह दोस्ती पंडो चले राहो पंड मुआ पंड पालिए पंड हो वह बंगान सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान पंडो ही पंड उपजे पंडे बाज न कोए नानक पंडे बाहरा एको सच्चा सोए जित मुखदा सलाही है पावरती चार नानक ते मुख उजले।

ना सके रास जे एक अदसंगी करे दूजी भी वे रास पौड़ी चाकर लगे चाकरी जे चले खसमे पाए हुरमत किसनो अगली ओ वजो पे गुना खाए खसमे करे बराबरी फिर हैरत अंदर पाए वजो गुआए अगला मुँह

तुम्हार साहेब तुखे जो मिले मेला दूजा, एक नहीं चाकरी जित को खसम न जाए, नानक सेवक काड़िए जैसे ती खसम समाए पावड़ी, नानक अंत न जा अपनी हरता के पारा बार, आप कराए साक्ती फिर आप कराए मार, इकना गली जंजीरिया इक तुरी चढ़े बिशियार, आप कराए करे आप हर कैसे करी पुकार।

यो गुरचरण लाग हम बिनवता पूछत कह जियो पाया कमल काज जब उपजय बिन सह कहो मुहे समझाया देव करो दया मुहे मार्ग लावो जित पह बंधन टूटे जन्म मरण दुख फेर कर्म सुख जी जन्म ते छूटे राव माया फास बंद नहीं फारे अब मन सुन ना लूके आपा पद निर्माण ना चीनिया इन विद अभियो न

ज्यों प्रतिबिंब बिंब को मिली है उदक कुंभ बिगराना। कहो कबीर ऐसा गुण प्रम पागा तो मन सुन समाना। आशा गज साडे तै तै कोतिया तेरे पायन तग गली जिना जप मालिया लोटे हाथ निबग। ओए हर के संत न आखिए बनारस के ठग। ऐसे संत न मौके पावे डाला सो पेदा गटकावे। रहाओ बासन मांझ चरावे।

मैं हूँ क्यों कर जाई। सतगुरु मिले ता मार्ग दिखाया, जगत पिता मेरे मन पाया। हूँ पूत तेरा तू बाप मेरा, एक है ठाहर दुहा बसेरा। कहो कबीर जन एको बूझिया, गुरु प्रसाद में सब किस सूझिया। आशा इकत पत्थर पर कुरकट कुरकट, इकत पत्थर पर पानी। आस पास पंच जोगिया बैठे, बीच नकट दे रानी। नकटी को ठंगन बाबा दू, किन्हें विवेकी काटी तू। राव सगल माहे नकटी का वासा, सगल मार ओहेरी। सगलिया की हो बहन पान जी।

करो विवेकी आपके संत कहावे ओह हमारे माथे कायम और हमरे निकट ना आवे नाको काटी कानो काटी काट।

आई, दिल में सोच विचार कवा दे, पिस्त दोज किन पाई, काजी तें कमन कतेब बखानी, परत गुनत ऐसे सब मारे, किन्हों खबर न जानी रहाओ, सकत स्नेहो कर सुन्नत करिए, मैं न बदौगा पाई, जोरे खुदाए मोहे तुर्क करेगा, आपन ही कट जाई, सुन्नत किए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिए, अर्ध शरीरी नार न छोड़े, ताते हिंदू ही रही है, छाड़ कतेब राम पज बौरे, जुल्म करत है पारी, कबीर है पकड़ी टेक राम की, तुर्क रहे पचिहारी। आशा जब लग तेल दीवे मुख बाती, तब सूजे सब कोई, तेल जले बाती ठहरानी, सुना मंदर होई, रे बौरे तुह करी न राखे कोई, तू राम नाम जब सोई रहाओ, काकी मात पिता थो काको, कवन पुरख की जोई, कट फूटे को बात न पूछे, काडो काडो होई, ब्योहरी बैठी माता रोवे, खटिया ले गए पाई, लख छुटकाए त्रिया रोवे, हंसी के ला जाए, कह कबीर सुनो रे संतो, पैसा गर कह पाई, इस बंदे से जुल्म होत है।

एक तो के संत सनंद अंत नहीं पाया, वेद पढ़े पर ब्रह्म में जन्म गवाया। हर का बिलोव ना बिलोवो मेरे भाई, सहज बिलोवो जैसे तक न जाए रहाओ। तन कर मटकी मन माए बिलोई, इस मटकी में सबक संजोई। हर का बिलोव ना मन का विचारा, गुरु प्रसाद पावे।

कहो कबीर हम राम राखे, कृपा कर हर राय आशा। 12 वर्ष बालपन बीते, 20 वर्ष तक तप न कियो, 30 वर्ष तक देव न पूजा, फिर पछताना विरद भयो। मेरी मेरी करते जन्म गयो, सायर शोक पुजंग बलयो, रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे, लूने खेत हथवार करे, आयो चोर तुरंत तह ले गयो, मेरी राखत मुग्ध फिरे, चरण शीश पर कंपन लागे, नैनी नीर असार बहे, जेवा बचन शुद्ध नहीं निकसे, तब रे कर्म की आस करे, हर जियो कृपा करे लिव लावे, लाहा हर हर नाम लियो, गुर प्रसादी हर खन पायो, अंते चलदिया नाल चलियो। कहत कबीर सुनो रे संतो, अन तन कछुए

खान करारा और खवादना की जय रे मन, सुकृत कर ली जय रे मन। रहाओ कुम्हारे एक जो माटी गूंदी, बहु विद्वानी लाई, काहू में मोती मुक्ताहल, काहू ब्याद लगाई। सू में तन राशन को दिया, मुग्ध कहे तन मेरा, जम कर दंड मुंड में लागे, खिन में करे निवेरा। हर जन उत्तम पग सदावे, आज्ञा मन सुख पाई, ज्योतिष पावे।

चिरगट फाल चतारा ले गयो तरी तागरी छूटी आशा। हम मस्कीन खुदाई बंदे तुम राज मन पावे अल्लाह अवल दीन को साहिब जोर नहीं फुरमावे। काजी बोलिया बन नहीं आवे रहाओ रोजा तरह निवाज गुजारे।

आप जनाए अवर को जाने तब हुए पिस्त सरी की। माटी एक पेट तर नाना तामे ब्रह्म पछाना कह कबीरा पिस्त छोड़ कर दोजक सो मन माना आशा। जगन नगर एक बूंद न बरखे।

साखी शब्द सुरत नहीं उपज खिंच तेज सब लीना श्रवणन बिकल पे संग तेरे इंद्री का बल खाका चरण रहे कर तर्क परे है मुखो न निक्षय बाता थाके पंच दूत सब तस्कर आप अपने प्रमते खाका मन कुंचर उर थाका तेज सूत तर रमते मृतक पाए दशा बंद छूटे मित्र पाई सब छोरे कहत कबीरा जो हर त्यावे जीवत बंधन तोरे आसा इक तुके चौथा सर्पनी ते ऊपर नहीं बलिया जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव छलिया मार मार सर्पनी।

बल अबल क्या इसते होई, ए बस्ती का वस्त शरीरा, गुर प्रसाद सहज तरे कबीरा। आशा कहां स्वाम को सिमरत सुनाए, कहां साकत कहे हर गुण गाए, राम राम राम रमे रम रही है, साकत स्यों पूल नहीं कही है रहाओ। कौआ कहां कपूर चराए, कह विषियर को दूध पियाए, सत्संगत मिल विवेक बुद्ध होई, पारस परस लोहा कंचन सोई, साकत स्वान सब करे कराया, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया, अमृत ले ले नीम सिंचाई, कह कबीर ओआ को सहज न जाई। आशा लंका सा कोट समुद्र सी खाई, तेह रावण कर खबर न पाई, क्या मांगो किछ फिर न रहाई, देखत नैन चलियो जग जाई। रहाओ एक लख पूत सवा लख नाती, तेह रावण कर दिया नवाती, चंद सूरज जाके तपतर सोई, वैसंतर जाके कपड़े तोई, गुरमत रामे नाम बसाई, अस्थिर रह न कटू जाई। कह कबीर सुनो रे लोई, राम नाम बिन मुक्त न होई। आशा पहला

गोविंदा जम द्वार जब पूछस बवरे तब क्या कहस मुकंदा रहाओ हम गोरु तुम ग्वार गुसाई जन्म जन्म रखवारे कबहू न पार उतार चरायो कैसे खसमा मारे तू बामन मैं काशीक जुल्हा बुजो मोर गियाना तुम तो जाचे कूपत राजे हर्षो मोर त्याना आशा जब जीवन ऐसा सुपने जैसा जीवन सुपन समान साच कर हम गांठ दीनी छोड़ परम निधान बाबा माया।

अब हुन रूप न होई, ताजा तन साज सब खाता, राम नाम बस होई, अब मोहे नाचनो ना आवे, मेरा मन मंदिर।

गया परम सब छूटे। सर्व पूत ए तय कर जानिया चूके बाद विवादा, कह कबीर मैं पूरा पाया पै राम प्रसादा। आशा रोजा करे मना।

में तेरा सोच विचार न देखे, खबर न करे दीन के बौरे, ताते जन्म अलेख है रहाओ। साच कतेब बखाने अल्हो, नार पुरख नहीं कोई, पदे गुने ना ही कछ गौरे, जो दिल में खबर न होई। अल्हो गैब सगल कट पीतर, हृदय लियो बिचारी, हिंदू तुर्क दोहों में एक है, कह कबीर पुकारी। आशा ते पिता एक तुका कियो सिंह।

गुप्त हीरा प्रगट पयो जब गुरगम दिया दिखाई आशा। पहली करूप कुछ आप कुलखनी सहरह के ही है बुरी अब की स्वरूप।

रहा कहो कबीर जब लोहरी आई बड़ी का सुहाग टर्यो लोहरी संग पई अब मेरा जेठी और करो आशा मेरी बहुरिया को तनिया नाओ ले राखियो राम जनिया नाओ इन मुंडियन मेरा कर कुंडरा।

रहो रहोरी बहुरिया कुंगत जिन काडे अंक की बार लहेगी ना आडे रहाओ कुंगत काड गई तेरी आगे उनकी गैल तो वे जिन लागे कुंगत कादे की यह बढ़ाई दिन दस पांच बहु पले आई कुंगत तेरों तो पर साचे हर गुण गाए।

तहता सी मन माना, जो लाहे कर अपना चीना, सत ही राम पछाना। कहत कबीर कार गह तोरी, सूते सूत मिलाए कोरी आसा। अंतर मैल जे तीर्थ नावे, किस बैकुंठ न जाना। लोक पति ने कछु न होवे।

जैसे मेंढक तैसे ओए नर फिर जोनी आवे। मनो कठोर मरे बनारस नरक में बांचिया जाई, हर का संत मरे हारम बैठा सगली सेंतराई। दिन सुनरे बेद नहीं शास्त्र तहां बसे निरंकारा, कह कबीर नरक से तिरावो बावरिया संसारा। दिन सुनरे बेद नहीं शास्त्र तहां बसे निरंकारा, कहत कबीर नरक।

आशा। मन मेरो गाजी जुहबा मेरी काटी, मत मत काटो जम की फांसी, कहां करो जाती कह करो पाती, राम को नाम।

हो आठ पहर अपना खसम के आवो। सोने की सुई रुपए का तागा नामे का चित हर सो लागा। आशा साप कुंठ से डे दिख नहीं छाडे उदक माहे जैसे बग त्यान माडे। काहे को की जय त्यान जपन्ना जब ते सुध ना ही मन अपना। रहाओ सिंगच पोजने जो नर जाने ऐसे ही ठग देओ बखाने। नामे के स्वामी लाए ले चगरा राम रसायन पियो रे।

प्रिंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश, पंच दोख असाध जान है पांची के तक आस। मा दो अभिव्याहित कीन विवेक दीप मलीन रहाओ।

काल सास अदद लागे कछ ना चले उपाय। रविदास दास उदास तज प्रम तपन तप गुर ज्ञान भगत जन।

रविदास पणे जो जाने सो जान, संत अनंत अंतर नाही। आशा तुम चंदन हम अरिंद बापुरे, संग तुम्हारे बासा, नीच रूख ते ऊंच पे हैं, गंध सुगंध निवासा। मादो सत्संगत शरण तुम्हारी, हम अवगण तुम उपकारी रहाओ। तुम मखतूल सुपेत सपैयल, हम बपुरे जस

तुझे चरण अरविंद पान मन पान कर पायो पायो रमैया धन रहाओ संपत विपते पटल माया धन। ताम है मगन होत ना तेरो जन प्रेम की देवरी बांधियो तेरो जन कह रविदास सूत वो कमन गुन आशा। हर हर हर हर हर हर हरे हर सुमृत जन जय निस्तरे रहाओ हर के नाम कबीर उजागर जन्म जन्म के काटे कागर निमत नाम दियो दूध पियाया तो जग जन्म संकट नहीं आया जन रविदास राम रंग राता क्यों गुरु प्रसाद नरक नहीं जाता। माटी को पुतना कैसे नचत है देखे देखे सुने बोले दौरे फिरत है रहाओ जब कछ पावे तब गर्व करत है माया गई तब रोवन लगत है मन बच क्रम रस कसे लुभाना।

प्रमत सुरत बहु जन्म दिलाने, तन मन तन नहीं तीरे, लालच दिख काम लुगद राता, मन बिसरे प्रभ हीरे। रहाओ दिख फल मीठ लगे मन बौरे, चार विचार न जानिया, गुंते पीत बदी अनपांती, जन्म मरण फिर तानिया। जुगत जान नहीं हृदय निवासी, जलत जाल जम फंद परे, दिख फल संच परे मन ऐसे, परम पुरख प्रभ मन बिसरे। ज्ञान प्रवेश गुरे तन दिया, ज्ञान मान मन एक मय, प्रेम पगत मानी सुख जानिया, तृप्त अघाने मुकुट भय। ज्योत समाए समानी जाके, अचली प्रभ पहचानिया, तन्ने तन पाया करनी तर, मिल जन संत सम।

त्यागि माया, प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया। सैन नाई बुतकारिया ओ कर कर सुनिया, हृदय वक्षया पार ब्रह्म पगता में गनिया।

कीचे नाम त्याये बिन नावे पूज न होए रहाओ। बाहर देव पखालिए जे मन तोवे कोई झूठ लह जियो मांजिए मोख पयाना होए। पशु मिले संग आई।

रहाओ। रब सस दीपक जा के त्रिभुवन एका ज्योत मुरार, गुरमुख होए सो एनस निर्मल, मन मुख रहन अंधार, सिद्ध समाज करे नित चगरा, दोह लोचन क्या हेरे, अंतर ज्योत शब्द तुन जागे, सतगुर चगर निवेरे, सुर नर नाथ बेअंत अजोनी, सच महल अपारा, नानक सहज मिले जग जीवन, नदर करो निस्तारा।

जित हर प्रीत न पाए, जित कम हर विसरै दूजे लगे जाए। ऐसा सतगुरु सेविए मना जित सेविए, गोविंद प्रीत उपजे अवर विसर सब जाए। हर से की चित गहर है, जरा का पौ न हो वही जीवन पदवी पाए। रहाओ गोविंद प्रीत सो इक सहज उपजिया, वेख जैसी भगत बनी आप से ती आप खाया। कामन निर्मल हुआ ज्योति ज्योत समय, दिन पागा ऐसा सतगुरु ना पाये। जे लोचे सब कोय कूड़े की पाल विच्चो निकले, कां सदा सुख होए। नानक ऐसे सतगुरु की क्या ओ सेवक सेवा करे, गुर आगे जियो तरे। सतगुर का पाना चित करे, सतगुर आपे कृपा करे। गुजरी महला तीजा, हर की तुम सेवा करो, दूजी सेवा करो ना कोई जी। हर की सेवा ते मनु चिंदिया फल पाये, दूजी सेवा जन्म बिरखा जाएगी। हर मेरी प्रीत रीत है, हर मेरी कथा कहानी जी। गुर प्रसाद मेरा मन पीजे, यहाँ सेव बनी जियो राव। हर मेरा सुमृत, हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंधक, हर मेरा भाई। हर की मैं भूख लागे, हर नाम मेरा मंत्र।

सतगुर मिले हर मन वसे, सहजी रहे समाए रहाओ। जहाँ पौ पाए अपना बैराग उपजे मन आए, बैराग ते हर पाए हर सु रहे समाए। शिव मुक्ते जे मन जिन्हें फिर तात न लागे आए, दसवें द्वार रहत करे त्रिभुवन सो जी पाए। नानक गुर ते गुर होया वेखो तिसकी रजाए।

अंत गया पछताए। त्यों मन काशी सब तीरथ सिमरत सतगुरु दिया बुझाए। अब सब तीरथ किस संग रहे जिन हर हृदय रहा समाए। नानक सतगुरु मिले हुकम बुझिया एक वसिया मन आए। जो तुद पावे सब सच है सच्चे रहे समाए। गुजरी महला तीजा तीजा एको नाम निधान पंडित सुन शिक्षा से। दूजे पाए जेता पढ़े पड़त गुणत सदा दुख होई। हर चरणी तू लाग रहो गुर शब्द सो जी होई। हर रस रसना चाक तू तामन निर्मल होई राव। सतगुर मिले मन संतोषी है ता फिर कृष्णा पूख न होए। नाम निधान पाया पर कर जाय ना कोई। कथनी बदनी जे करे मन मुख बूझ न होए।

गुरमत नाम मेरा प्राण सुखाई, हर कीरत हमरी रहरास राव। हर जन केवट पाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिले तृप्ता से, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते पागहीन जम पास। जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुरु संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सतसंगत जित हर रस पाया, मिल नानक नाम प्रगास। गुजरी महला चौथा। गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम, मिल सतसंगत शब्द मन मोह। जप गोविंद गोविंद त्याय, सबको दान दे प्रभ ओ है। मेरे भाई जना मोह को, गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह है। गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा, मिल गुर साध संगत जन सो है। रहाओ सुख सागर हर पगत है, गुरमुख कौला रिद सुध लागे पग ओ है। जन को राम नाम आधारा, हर नाम जपत हर नामे सो है। दुर्मत पागहीन मत फीके, नाम सुनत आवे मन रो है। कौआ काग कौ अमृत रस पाई है, तृप्त विस्ता खाए मुख गो है। अमृत सारे सतगुर सतवादी, जित नाते कौआ हंस हो है। नानक तन तन वड्डे वड पागी, जिन गुरमत नाम हृदय मल तो है। गुजरी महला चौथा। हर जन उत्तम उत्तम बाणी, मुख बोले पर पुकारे। जो जन सुने सरदार।

तुम प्राण सतगुर गुर पूरा हम पापी गुर निस्तारे रहाओ। गुरमुख वड पागे जिन हर हर नाम अधारे हर हर अमृत हर रस पावे हैं गुरमुख भगत पंडारे जिन दर्शन सतगुर सतपुरुष।

नानक जन हर की शरण आई, हर पावे हर निस्तारे, गुजरी महला चौथा। ओ दयाल मेरा मन लावो, हूँ अंगन राम नाम नित्याई, सब सुख सब गुण सब निधान, हर जित जपिए दुख पुख सब ले जाई। मन मेरे मेरा राम नाम सखा हर पाई, गुरमत राम नाम जस गावा, अंत बेली दर्ज है ले छाई रहाओ। तू आपे दाता प्रभ अंतर जामी, कर कृपा लोच मेरे मन लाई, मैं मन तन लोच लगी हर सेती, प्रभ लोच पूरी सतगुरु शरणाई। मानस जन्म पुन कर पाया, बिन नामे त्रिग त्रिग बिरथा जाय, नाम बिना रस कस दुख पावे, मुख फीका थुक थूक मुख पाई। जो जन हर प्रभु हर हर शरणा, तिन दर्जे हर हर देव डे आई, तन तन सबा सह

तू पाए ता कारज आ गया कर तरिया। मेरे माधो जी सत्संगत मिले से तरिया, गुरु प्रसाद परम पद पाया तू के पास ठहरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुख बनता कोई न किसकी धरिया, सिर सिर रिजक संभाए ठाकुर काहे मन पौ करिया।

क्रियाचार करें खटकर्मा इतरा के संसारी अंतर मेल न उतरे हूँ मैं बिन गुरु बाजी हारी मेरे ठाकुर रख ले वो कृपाधारी कोट मदे को बिरला सेवक हो सगले व्यवहारी रहा शासक वेद सिमरत सब सोदे सब एका बात पुकारी बिन गुरु मुक्त न को पावे मन वेखो कर बिचारी असठ मज्जन कर सुनाना प्रम आए थर सारी अनक सोच करे दिन राती बिन सतगुर अंधियारी तावत तावत सब जग आयो अब आए हर द्वारी दुर्मत मेख बुद्ध परगासी जन नानक गुरमुख तारी गुजरी महला पंजवा हर तन जाप हर तन ताप हर तन भोजन पाया निमख न बिसरो।

निज पाई आश्चर्य हर प्रकार खावो खर्चो तोट न आवे हलत पलत के संगे लाज खजाना।

निमख ना बिसरो तुम को हर हर सदा पजो जगदीश रहाओ। सतगुर तुम को होए दयाला संत संग तेरी प्रीत। कापड़ पथ परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत। अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत अनद अनंता। रंग तमाशा पूर्ण आशा कभे न व्यापे चिंता। पावर तुम्हारा यो मन हो हर चरणा हो कौला। नानक दास उन

तिन पौ सागर तरिया। गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटे, प्रभ तज अवर सेवक जे होई है, तित मान महत जस काटे। रहाओ माया के संबंध सेन साथ, तित ही कामना आया। हर का दास नीच कुल ऊंचा, किस संग मन बांचत फल पाया। लाख कोट बिखिया के बिंजन, तामे तृष्ण न बूझी। सुमरत नाम कोट उजियारा, बस्त अगोचर सूजी। फिरत फिरत तुमरे द्वार आया, तै पंजन हर राया। साध के चरण तूर जन बांचे, सुख नानक हो पाया। गुजरी मेला पंजवा, पंच पदा कर दूजा इको अंकार।

ए सुंदर बाग मंदिर संग न कछु जाया, अवर सब मिथ्या लोभ लभी, गुरपुरे दियो हर नामा, जी को एहा वस्त सभी रहाओ। इष्ट मीत बंदर सुत पाई, संग बनता रच हसया, जब अंति

दुख दिन से सुख किया निवासा, कृष्णा जलन बुझाई, नाम निधान सतगुरु दृढ़ाया, दिन सुना आवे जाई, हर जप माया बंधन टूटे, अरे कृपाल दयाल प्रभु मेरे, साध संगत मिल छूटे रहाओ। आठ पैर

सगल करत नमस्कारो, वर्ण जात को पूछे नाही बाछे चरण रवारो, ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो, सगल सृष्ट को तनी कही जय, जन को अंग निरारो रहाओ। साध संग नानक बुद्ध पाई, हर कीर्तन आधारो, नाम देव त्रिलोचन।

श्री ब्रंच अर सगल मोन जन जह न सकाए गता। प्राप्ति अगम अगाध कथा सुनिए अवर अवर बिद बुझिए बकन कथ रहता रहाओ। आपे पगता आप स्वामी आपन संग रता नानक को प्रभ पूर रहो है एचो जतर कथा। गुजरी महला पंजवा मता मसूरत अवर सियानप जन को कछु न आयो जह जह अवसर आए बनियो है तहां तहां हर के आयो। प्रभ को भगत वचल बिरदायो करे प्रतपाल बारक की न्याय जन को लाड लडायो रहाओ। जब तप संयम करम तरम हर कीर्तन जन गायो सन परयो नानक ठाकुर की अभय दान सुख पायो। गुजरी महला पंजवा दिन राति आराधो प्यारो निमख ना की जय टीला संत सेवा कर पावनी लाई त्याग मान हठीला मोहन प्राण मान रंगीला बास रे।

पूरे मेरे सतगुरु मन शरण तुम्हारे परी अचेत्या ने बारक नानक हम तुम राखो तार करे। गुजरी महला पंजवा तू दाता जी आ सबना का बसो मेरे मन माहे चरण कमल रिद माहे समाये तह परम अंधेरा नाहे ठाकुर जा सिमरा तू ताहे कर कृपा सर्व प्रत पालक प्रभु को सदा सलाही रहाओ। सास सास तेरा नाम समारो तुम ही कहो प्रभु आही नानक टेक पहली करते की और आस बिदानी लाही।

तेरे चित चित वो हर रसन अरादो निरखो तुमरी ओर रहाओ। दयाल पुरख सर्व के ठाकुर बिनो करो कर जोर नाम जपे नानक दास तुमरो उदरस आखी फोर। गुजी महला पंजवा ब्रह्म लोक अर रुद्र लोक आई इंद्र लोक ते ताए साध संगत को जो है न साके मल मल तो वह पाए। अब मोह आए पर्यो शरण आए गोज पाव को बहुत प्रजा रहे।

0: कमल संगराच सगल जीव जाको आराधे ताहू को तू चाच रहाओ। नानक शरण तुम्हारी करते तू प्रभ प्राण आधार होए सहाय जिस तू राखे तिस कहा करे संसार। गुजरी महला पंजवा
1: जल की तेज सवारी आप
0: हर हर नाम दियो गुर अवखद उतर गयो सब ताप राव हर गोविंद रखियो परमेश्वर अपनी कृपा तार।

कपटे अनित जुगत कर कायो बिसरत प्रभु के ते दुख गनिये महामोनी खायो करो अनग्रो स्वामी मेरे गनो न मोहे कमायो गोविंद दयाल कृपाल सुख सागर नानक हर शरणायो गुजरी मैला पंजवा रसना राम राम रवंत छोड़ आन व्यवहार मिथ्या पज सदा भगवंत रहाओ नाम एक आधार भगता ईत आगे तेक कर कृपा गोविंद दिया गुर ज्ञान बुद्ध विवेक करण कारण समरथ श्री कर शरण ताकी गही मुक्त जुगत रवा।

दे सांस सांस आराध हर हर लह जाए मन की चिंग मेरे मन जाप प्रभ का नाम सुख सहज आनंद पावे मिली निर्मल थाओ राव साध संग उधार एहु मन आठ पहर आराध काम क्रोध अहंकार बिन सह मिटे सगल उपाद अटल अछेद अपेद स्वामी शरणता की आओ चरण कमल आराध हृदय एक सों लिवलाओ पार ब्रह्म प्रभ दयाकारी बख्श ली ने आप सर्व सुख हर नाम दिया नानक सो प्रभ जाप गुजरी मैला पंजवा गुरु प्रसादी प्रभ ते आया गई शंका टूट दुख अनेरा पै बिना से पाप गए निखूट हर हर नाम की मन प्रीत मिल साध बचन गोविंद क्या

साफ सास ना बिसर कबहू ब्रह्म प्रभ समरथ गुण अनक रसना क्या बखाने अगनत सदा कथ दीन दर्द निवार तारण दयाल कृपा करण अटल पदवी।

जोग हर नाम औखद गुरु नाम दीनो करण कारण जोग मन तन बांसी है जन तूर कोट जन्म के लह पातक गोविंद लोचा पूर रहाओ। आद अंते मद आशा कुकरी विकराल गुर ज्ञान कीर्तन गोविंद रमण काती है जमजाल। काम क्रोध लोभ मोह मूठे सदा आवागमन प्रभ।

क्लेशमिते तै परमा निर्मल गुण प्रभु गाय गोविंद तुझ बिन अवर ना ठाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाम रहाओ। सतगुर सेव लगे हर चरणी वड्डे पाग लागी कवल प्रगास पए साध संगे दुर्मत बुद्ध त्यागी आठ

सहज पाए जाए ते नानक पार ब्रह्म लिव जागे। पार जात कर आंगन मेरे पोप पत्र पट डाला, सर्व जोत निरंजन शंभू छोड़ो बोत जंजाला। सुन सुखवंते नान

जोगी काम क्रोध अहंकार तजियले लोभ मोह तिस्माया मन तत अविगत त्याया गुरु प्रसादी पाया ज्ञान ज्ञान सब दात कचियले सेत बरन सब दूता ब्रह्म कमल मद तासर साधन जागत नाही सूता महा गंभीर पत्र पाताला नानक सर्व जो आया उपदेश गुरु मम पुनः न गर्भं बिताज अमृत पियाया गुजरी मेला पहला कवन कवन जाचे प्रभदाते ताके अंत न परे सुमार जैसी पूख हो।

जल थल तरण जगन कह नाही आपे आप किया करतार। ना तद माया मगर न छाया ना सूरज चंद ना जोत अपार। सर्व दृष्ट लोचन अब अंतर एका नदर सो त्रिगुण सार। पवन पानी अगन तिनकिया ब्रह्मा विष्णु महेश अकार। सर्वे जाचक तू प्रभदाता दात करे अपने विचार। कोट के तिस जाचे प्रभ नायक देंदे तोट नाही पंडार। ऊंदे पांडे कछ ना समावे सीधे अमृत परे निहार। सिद्ध समाधि

जम जो है बूझे अंतर शब्द विचार। अब तब अवर ना मांगो हर कै नाम निरंजन दीजे प्यार, नानक चात्रिक अम

गुर प्रसादी हर प्रभ जाके ऐसी नाम बढ़ाई रहाओ। ऐ जी बहुते पेट करें पिछिया को के ते उधर परन कहताएं बिन हर भगत ना।

नाम रते केवल बैरागी सोग विजोग विसर्जत रोग पाई रे गुर कृपा ते भगत ठाकुर की सतगुर वाक हृदय हर निर्मले ना जम कान ना जम की बाकी रहा हर गुण रसन रवे प्रभ संगे ज्योतिष पावे सहज हरी बिन हर नाम बिरथा जग जीवन हर बिन नेफल नेक करी।

निंदक नर काले मुख निंदा जिन गुर की दात न पाए। ऐ जी शरण परे प्रभु बख्श मिलावे बिलम न अदुआर आए। अनदे मूले नाथ सिरनाथा सतगुर मेल मिलाई। ऐ जी सदा दयाल दया कर रव्या गुरमते प्रमन चुकाई। पारस पेट कंचन तात होई सत्संगत की वड़ियाई। हर जल निर्मल मन स्नानी मज्जन सतगुरु पाई पुनरप जन्म।

पज शरण सतगुर उबरे हर नाम रिद रमणं गुरमत निर्चल मन मन मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित साच अंतर जान रतन सारं तै पाए भगत तर पर जल मना चित लाए हर चरणी हर नाम हृदय पवित्र पावन इहो शरीर तौ सरणी लब लोभ